0: करें, आओ सभी मिलकर योग करें। जी हाँ, जिसमें आपको सभी प्राणायामों की समुचित जानकारी व योग अभ्यास के साथ साथ करते हुए सभी आसनों को भी कराया जाता है और साथ में अष्टांग योग को भी विस्तार रूप से बताया जाता है। तो सुनना ना भूले रोजाना सुबह 6 से 7 अपनी आरजे समता के साथ। जी हाँ, योगशाला।
1: सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि जो गर्मी का समय है, तापमान है, ये भीषण गर्मी आ चुकी है और इसमें जो भी लोग नित नियम योगा करते हैं उनके लिए थोड़े से प्रिकॉशन करना जरूरी है, क्योंकि जब हम योगा करते हैं तो हमारी बॉडी ऑलरेडी फिट से हीट होने लगती है, जिसके कारण से कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। इसीलिए गर्मी में किए जाने वाले योग भी कुछ अलग हैं और उनसे कुछ सावधानियां भी, तो आइए जानते हैं। सबसे पहले है, सुबह जल्दी उठ करके ही योग कर लेना चाहिए। जैसे सुबह 5 बजे से 7 बजे के बीच योग करना सबसे अच्छा समय माना गया है। इस समय मौसम ठंडा होता है और हमारा शरीर भी फ्रेश रहता है। शरीर को हाइड्रेट रखें, योग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं। नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ भी फायदेमंद होता है, लेकिन ध्यान रखें योग करने के तुरंत बाद नहीं, थोड़ा सा समय का अंतराल 20 मिनट 25 मिनट के बाद में आप नींबू पानी, नारियल पानी या छाछ ले सकते हैं। दिन में सुबह रात में हल्का ही भोजन करें। योग से पहले भारी या तला भुना खाना न खाएं। फल, सलाद और हल्का भोजन ही लें। कूलिंग योगा करें। जैसा कि बहुत सारी सीरीज में हमने आपको बताया है, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, बालासन, शवासन, ताड़ासन, ये सारे वो प्राणायाम और आसन हैं जो गर्मी में हमारी पूरे शरीर को ठंडक पहुंचा करके फायदा करते हैं। साथ ही साथ कॉटन के हल्के कपड़े और शरीर को ठंडा रखते हैं और पसीना जल्दी सूखता है, इसीलिए गर्मी के दिनों में जब हम योग करते हैं तो ढीले और सूती कपड़े ही पहनने चाहिए। खुली और ठंडी जगह ही चुनें योग करने के लिए। हवादार कमरे या फिर पेड़ पौधों वाली शांत जगह पर ही बैठ करके योग करें। ज्यादा कठिन योगासन से बचें। तेज धूप या बहुत ज्यादा मेहनत वाले आसन गर्मी में थकान, चक्कर ला सकते हैं। जैसे सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, ये थोड़े से हैवी आसन होते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं और पूर्ण रूप से इसे कर रहे

रहे हैं और उसको करने के बाद में कोई भारीपन या चक्कर नहीं आ रहा है, तो ही आप नियमित रूप से इसको अपनी दिनचर्या में ला सकते हैं, वरना आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। योग के बाद तुरंत तेज धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें ताकि शरीर का तापमान सामान्य हो जाए। गर्मी में कुछ ऐसे प्राणायाम हैं जो और फायदेमंद होते हैं, जैसे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, जो मन को शांत करने के साथ साथ शरीर को भी ठंडा रखने में मदद करते हैं। गर्मी में योग करें शांत मन, ठंडे वातावरण में, जिससे शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा, हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है, और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें, पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें, कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। बहुत सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए, सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी, नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है, इसीलिए आज की इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है, योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सकें, और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते ही हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। आइए अब हम बताने जा रहे हैं आपको कपालभाति प्राणायाम के कुछ प्रमुख फायदे, शारीरिक लाभ, मानसिक लाभ और आध्यात्मिक लाभ। तो सबसे पहले कपालभाति के शारीरिक लाभों की ओर चलते हैं। फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है और श्वास से जुड़ी बीमारियां जैसे अस्थमा, एलर्जी में ये लाभ देता है। रक्त को शुद्ध करता है और शरीर को अधिक से अधिक ऑक्सीजन प्रदान करता है। पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ साथ कब्ज, गैस और एसिडिटी को दूर करता है। मोटापा नियंत्रित करता है और पेट की चर्बी घटाने में भी यह सहायक सिद्ध होता है। लीवर और किडनी को स्वस्थ रखने में यह बहुत ज्यादा मददगार रहता है। शारीरिक लाभों में बहुत सारे ऐसे लाभ हैं जिसे हम शुद्ध प्राणायाम भी कहते हैं, यानी कि कपालभाति को हम एक और नाम से जानते हैं। वैसे तो बहुत सारे नाम हैं, शक्तिशाली श्वास क्रिया और शुद्धि प्राणायाम, कपालभाति मोमबत्ती आसन, ऐसे ही कपालभाति के बहुत ही नाम हैं। लेकिन फायदा एक, दूसरा लाभ की ओर चलते हैं जो कि हमारा है मानसिक लाभ। तनाव, चिंता, डिप्रेशन को कम करता है, एकाग्रता और स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, दिमाग को ठंडक और शांति प्रदान करता है। मानसिक लाभ में यह आसन प्राणायाम अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य संतुलित रहेगा, स्वस्थ रहेगा, तो ही हम आगे की क्रियाओं को कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सौंदर्य और दिनचर्या के लाभ, चेहरे पर प्राकृतिक चमक आता है, बाल और त्वचा स्वस्थ रहते हैं, आँखों की रोशनी में भी सुधार होता है। आध्यात्मिक और ऊर्जा के लाभ, शरीर के नाड़ियों की शुद्धि करता है, सुषुम्ना नाड़ी को सक्रिय करता है जिससे ध्यान और साधना में मदद मिलती है। शरीर और मन में प्राण शक्ति का संतुलन बरकरार रखता है। कपालभाति को सुबह खाली पेट करना सबसे अच्छा माना जाता है। शुरुआत में 2 से 3 मिनट में शुरू करके धीरे धीरे 10 से 15 मिनट तक यह आसन किया जा सकता है। तो आइए हमसे फिर मिलेंगे एक नए आसन के फायदे, एक नए योग क्रिया को लेकर के। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि बहुत सारी योग की योग सीरीज हमने आपके साथ शेयर की है, योग को किस तरीके से अपनाने के लिए बताया है, योग को करने के लिए बताया है, साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी प्रणालियों को भी शेयर किया है जो हमारे स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित भी हुई है। आज हम आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि जब योग से हम जुड़े थे तो मुझे भी इस तरीके की जानकारी पूर्णता नहीं थी, लेकिन जब हम योग से जुड़े तो हमें भी यह मालूम हुआ कि योग हमारे लिए और हमारे शरीर के लिए, हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यूं ही नहीं कहा गया है कि योग से जुड़ने के साथ जीवन भी बदल जाता है। ऐसे ऐसे योगियों को हमने योग करते हुए देखा है, ऐसे ऐसे रोगियों को हमने योग करते देखा है जो कि एक बहुत गंभीर रूप से जब पीड़ित होते हैं तो भी योग को करने के बाद भी उन्हें राहत मिलती है। योग में सबसे पहला जो कि हम पूर्णता 8 प्राणायामों के बारे में बताते आए हैं, अनुलोम विलोम, कपालभाति, अग्निसार, भस्त्रिका, भ्रामरी, अग्निसार। क्योंकि हम कई बार ये देखते हैं मुख्य 8 प्राणायामों के बारे में तो सभी बात करते हैं, लेकिन उसके फायदे, उससे जुड़ी हुई कई ऐसी बातें होती हैं जो कि हमारे, जिसे कहते हैं ना कि जब कोई कलाकार होता है तो जो आगे रहता है यानी कि जो फ्रंट पेज पे होता है हम उसे ही देखते हैं, लेकिन बैक ऑफ कैमरा यानी कि पर्दे के पीछे जो जिनका हाथ होता है, जिनकी मेहनत होती है, जिनके कारण हम उनको जानते हैं,
वो हम कहीं न कहीं भूल जाया करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये 8 मुख्य प्राणायामों के बारे में तो हमने सभी को जाना, किया भी और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली, पर क्या इसके फायदे को किसी ने जाना? अमूमन हम ये भी कह सकते हैं कि बिना फायदे के तो योग कोई करेगा ही नहीं, यानी कि अनुलोम विलोम कपालभाति अग्निसार भस्त्रिका भ्रामरी। यदि हम पहले से ही कर रहे हैं तो हमें उसके फायदे अगर ना मिलते तो कोई समझ ही नहीं पाता, पर ऐसा नहीं है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आज हम आपको देने जा रहे हैं, यह एक पर्दे के पीछे काम करने वाले व्यक्ति जैसी ही है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में, जो कि हमारे लिए इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी को पता है कि अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम जब हम करते हैं तो एकाग्रचित होकर के हम एक शांत अवस्था में बैठ जाते हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें वातावरण ही केवल शांत मिले, महत्वपूर्ण ये है कि हमें हमारी अंदर की संतुष्टि, हमारी अंदर का ध्यान और हमारी अंदर की खुशी महत्वपूर्ण साबित होनी चाहिए। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज अनुलोम विलोम के फायदे आपसे बताने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत बार अनुलोम विलोम को हमने किया, इस प्राणायाम के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारियां भी दी, कैसे होता है, कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, किस अवस्था से और किस अवस्था तक यह प्राणायाम करना चाहिए, परंतु आज हम अनगिनत फायदे लेकर के आए हैं जो कि अनुलोम विलोम प्राणायाम के हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने से कई तरह के फायदे हमें मिलते हैं, जिसमें से कुछ शारीरिक, मानसिक और हमारे बौद्धिक स्तर को यानी कि बौद्धिक स्वास्थ्य को फायदेमंद पहुंचाने में निरंतर काम करते हैं। कि अनुलोम विलोम वैकल्पिक श्वास, नासिका श्वास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पूर्णता दाई नासिका को बंद करके बाई नासिका से दाहिनी नासिका से सांस लेते हुए हम इसे पूर्णता करते हैं। ठीक वैसे ही जब हम श्वास का आवागमन यानी कि आदान प्रदान करते हैं, दाई नासिका से श्वास लेते हुए हम बाई नासिका से छोड़ते हैं और बाई नासिका से श्वास लेते हुए हम दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ते हैं, इसी प्रक्रिया को अनुलोम विलोम कहा जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम जब हम करते हैं तो हमारा पेट बहुत ही ज्यादा पीछे की ओर दबने लगता है। इसका सीधा कारण यही है कि श्वास से निर्मित यह प्राणायाम तो है ही, साथ ही साथ यह प्राणायाम हमारे पाचन तंत्र को भी बहुत मजबूत करता है। साथ ही साथ आपने देखा होगा कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाती है तो हमारा शरीर काला पड़ने लगता है। इस फूर्ति की जगह पर हमें हमेशा से उदासी महसूस होती है, किसी काम में मन नहीं लगना और हमेशा से एकांत में बैठने की इच्छाएं होती हैं, किसी से बात न करने के लिए या फिर हमेशा से चिड़चिड़ापन बना रहता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना और श्वास से निर्मित, जब हमारे पास ऐसे कुछ कारण हो जाते हैं तो हमें पाचन तंत्र की कमी भी महसूस होने लगती है। अनुलोम विलोम के फायदे वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ फायदे आज हम आपके साथ बताने जा रहे हैं। सबसे पहला जो फायदा है अनुलोम विलोम को करने से, इससे तनाव और चिंता कम होती है। आपने कभी ये गौर किया है कि यदि जिस दिन हम सुबह उठकर के योग से जुड़ते हैं, योग प्राणायाम करते हैं, उस दिन हमारा मूड और हमारा स्वास्थ्य भी साथ ही साथ में बहुत ही बढ़िया रहता है, जिसको आज की लैंग्वेज में जो टीनेजर्स बॉयज एंड गर्ल्स हैं वो कहते हैं कि आज हमारा मूड बहुत चिल है। इसका मतलब यही हुआ कि आज हमारा मूड बहुत ज्यादा अच्छा है। और वहीं अगर हम सवेरे उठ करके कभी किसी से चिड़चिड़ हो जाती है या फिर मूड ऑफ हो जाता है तो हमारा मन भी किसी काम में नहीं लगता है। दूसरा है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है। आप अनुलोम विलोम को बेहतर जानते हैं, अनुलोम विलोम इतना प्रभावशाली है, यदि जिन लोगों को अनुलोम विलोम करने के लिए नींद की अधिकता भी होती है या उसकी कमी होती है तो हम जान लें कि यह अनुलोम विलोम के प्रभाव के कारण ही होता है। अनुलोम विलोम जब हमारे साथ में सभी लोग मिलके करते हैं तो हमें इतना अच्छा प्रतीत होता है कि मैं आगे क्या ही बता दूं। जिन डॉक्टर्स ने यह गोली देते हैं या फिर जो पेशेंट जिन्हें नींद नहीं आती है, जिन
मरीजों को नींद नहीं आती है, जिन पेशेंट्स को नींद नहीं आती है वो लोग टैबलेट्स लेते हैं। अगर वो नित्य प्रति अनुलोम विलोम करें तो उन्हें नींद की शिकायत जो है वो भी दूर होती है, इसीलिए यह नींद की गुणवत्ता में भी सुधार करता है। इससे हृदय स्वस्थ रहता है और ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है। ब्लड प्रेशर आजकल बच्चों में यानी कि टीनेजर्स के बाद यानी 18-20 के बाद ही ब्लड प्रेशर की समस्याएं देखी गई हैं। इसीलिए अनुलोम विलोम का नियमित रूप से करना बहुत ज्यादा प्रभावशाली होता है। इससे गठिया, माइग्रेन और अवसाद जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। यह श्वसन विकारों जैसे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस में भी फायदेमंद होता है। यह शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बढ़ाता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, इससे वजन घटाने में भी मदद मिलती है। आजकल महंगे महंगे हम जिम जाते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी जो कि टैबलेट्स लेते हैं, शेक्स पीते हैं, जिससे हमारा वजन जो है वो घट जाए, लेकिन बिना पैसे थोड़ा सा जल्दी उठ करके अगर हम अपना टाइम दे दें अनुलोम विलोम को, तो हम घर बैठे ही अपने वजन को घटाने में मदद कर सकते हैं। कौन नहीं चाहता है कि हमारी जो त्वचा वो सुंदर और चमकदार हो। तो साथ ही साथ ये भी बता दें कि महिलाओं का सबसे लोकप्रिय यानी कि महिलाओं का सबसे प्रिय जो एक योग है वो है अनुलोम विलोम, जिसको लगातार करने से हमारी त्वचा चमकदार और खूबसूरत बनती है। इससे इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत होता है। स्टूडेंट्स लाइफ में यह जरूर करना चाहिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें तो यह अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। इसका फायदा उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को और बूस्ट करने में मदद करता है। यह साइरन्स और खराटे जैसी समस्याओं से भी राहत मिलती है। बिल्कुल, अगर घर में कोई भी है, जैसे मम्मी है, पापा है, भाई है, भाभी है या फिर हस्बैंड, तो फिर जब हम उनके साथ में लेटते उठते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे खराटे। एक को खराटे आते हैं और दूसरे को नहीं, तो साथ ही साथ में नींद तो खराब होती ही है, साथ ही साथ चिड़चिड़ा और गुस्सा भी आता है। तो आइए अनुलोम विलोम के फायदे हमने आज जाने, साथ ही साथ आज हमने आपको अनुलोम विलोम के वो फायदे बताए हैं जो कि अमूमन सभी के घरों में यह समस्याएं होती ही आती हैं। तो अनुलोम विलोम से जुड़े इनके फायदों को जानें और उसके बाद योग करें और खुश रहें। इसी के साथ नए एक और योग की फायदे लेकर के आपकी योगिनी समता आएंगी। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। नमस्कार दोस्तों, मैं समता, योगा एक्सपर्ट, आपकी योग पाठशाला में आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि आप अपना ख्याल खुद से भी ज़्यादा, पहले से भी ज़्यादा अपनों का और आपका रखते होंगे। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्राणायाम की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं एक प्राणायाम जो कि आज हम आपको उस प्राणायाम के अंतर्गत ऐसी कई चीज़ें हैं जो हम स्वयं करेंगे और आप भी हमारे साथ उस प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। आइए आज हम अपने ईश्वर, अपने ईष्ट, अपने अल्लाह, अपने गॉड को याद करते हुए एवं अपने माता पिता, अपने गुरु को याद करते हुए अपने मन एवं चित्त की सारी व्यक्तियों को एकाग्र करते हुए पूर्ण रूप से उन्हें अपने आप को समर्पित करते हुए ध्यान अपने गुरुवर में लगाते हुए पूरा अपना शरीर अपने वश में रखकर मानो हम पूर्णता इस पृथ्वी को सारी शक्तियों को एकत्रित करके अपने में संचित कर रहे हैं और ध्यान को और विस्तार में अपने आप में विस्तृत कर रहे हैं। दोस्तों ध्यान एक मुद्रा है जिसे हम जितना भी विस्तृत करें वह कम है, क्योंकि ध्यान एक ऐसी चीज है जिस भी चीज पे हम लगाएंगे वह विस्तृत होती जाती है। जैसे यदि हम किसी वस्तु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय होते होते अंततः निष्क्रिय होती जाती है। उसी प्रकार इसका उल्टा, यदि हम प्रभु में ध्यान लगाएंगे तो वह सक्रिय के साथ साथ और विस्तृत होती जाएगी। हमें उनका
पूर्ण रूप से बोध और अपने आप में हमें आत्मा का बोध होने लगेगा और अंततः एक दिन ऐसा आएगा कि हम अपने प्रभु में लीन होकर हम अपने आप को पहचान लेंगे और एक दिन हम अपने प्रभु के चरणों में बैठकर अपनी सारी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखेंगे। यह एकमात्र ध्यान से ही संभव है, क्योंकि ध्यान ऐसी चीज है, या हम कहें ऐसी अवस्था है, जिसे हम करने से पूर्व कुछ ऐसी बातों का, कुछ ऐसे नियमों का ध्यान रखते हैं, जिसे करने के लिए हमें पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों, आज हम अपना पहला प्राणायाम यानी भस्त्रिका प्राणायाम शुरू करते हैं, जिसको करने के लिए हमें स्वतः पहले एकाग्रचित हो करके हम कहीं पर भी, जैसे यदि हम जमीन पे बैठे तो हम चद्दर या मैट, या हमें योगा मैट होगी, हम उस पर बैठकर आराम से सुखासन, सिंहासन, पद्मासन की स्थिति में कर, यदि हमें इन आसन में बैठने में कोई परेशानी हो रही है तो हम स्वतः जिस भी तरीके से बैठ सकते हैं नॉर्मल पलथी मारकर हम बैठ जाएंगे। उसके बाद हम मुद्रा लेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी पहली उंगली, पहली मुद्रिका अंगूठे के नीचे दबा करके पीठ सीधी और पेट अंदर की तरफ, पीठ बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी, अपने मुखमंडल पर एक भीनी सी मुस्कान, जैसे मानो हमें सामने अपने ईश्वर, अपने इष्ट देव के दर्शन हो रहे हों, और इस तरीके से अपने आप को पूर्णतः समर्पित करते हुए एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके जमीन पर जब हम बैठ चुके, अपना आसन ले चुके, उसके बाद मुंह बंद रखकर एक नासिका से, यानी हमारी नासिका के दो छिद्र हैं दायां और बायां, तो हमें दाएं और बाएं दोनों से आराम से, जैसे आपको कोई परेशानी ना हो, लंबी गहरी सांस ऐसे भरेंगे जैसे मानो वह सांस हमारे फेफड़ों में जाकर समावित हो रही है और उसे भरा जा रहा है। जिस तरीके से हम सांस भरेंगे, तो आइए हम अपना प्राणायाम अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओम का उच्चारण कुछ इस तरह

अपनी अपनी सारी मन की चित्तियों को शांत करते हुए, श्वासों को एकत्र करते हुए, अपना पूरा ध्यान आती जाती पर लगाते हुए, एकाग्रचित हो करके लंबी गहरी सांस भरेंगे पुनः और एक मिनट का होल्ड करके, एक मिनट रोक करके सांस को फेफड़ों में भरेंगे। फेफड़ों में भरने के बाद आपका पेट जैसे मानो फूल गया हो, इस तरीके से आपको प्रतीत होगा। पुनः करेंगे

जिस गति से हम श्वास लेंगे उसी गति से हम श्वास को छोड़ेंगे भी। प्रारंभिक अवस्था में हम यह ध्यान रखें कि हम श्वास को लेते समय कोई भी जल्दबाजी ना करें और कोई भी लापरवाही ना करें, क्योंकि यदि हम असावधानी से करेंगे

नमस्कार श्रोताओं, सुबह के आध्यात्मिक शो में आप सभी का स्वागत करती है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हम हर सुबह को एक नई सोच, एक नई रोशनी के साथ जीने का तरीका सिखाते हैं, सीखते हैं और कुछ नए प्रयास से उन्हें ढूंढते हैं। और आज का विषय है मोर पंख। क्या कभी आपने गौर किया है उस मोर पंख के बारे में, जिसे हम किताबों में रखते हैं, मंदिरों में सजाते हैं या श्री कृष्ण के मुकुट में देखते हैं? वो सिर्फ एक सुंदर पंख नहीं, एक आध्यात्मिक संकेत है, एक संदेश है प्रकृति की ओर से अपने जीवन को हर रंग से सजाने के लिए।

मोर पंख, मयूर, पिकॉक, मोर, कितने खूबसूरत नाम हैं इस सुंदर से पक्षी के। जितना खूबसूरत ये दिखता है उतने ही खूबसूरत फायदे इसके पंखों के भी हैं। हमारे देवी देवताओं को ये अत्यंत प्रिय हैं। माँ सरस्वती, श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी, इंद्रदेव, कार्तिकेय, श्री गणेश, सभी को मोर पंख किसी न किसी रूप में प्रिय हैं। पौराणिक काल में महर्षियों द्वारा इसी मोर पंख के कलम बनाकर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। मोर के विषय में माना जाता है कि ये पक्षी किसी भी स्थान को बुरी शक्तियों और प्रतिकूल चीजों के प्रभाव से बचा कर रखता है। यही वजह है कि अधिकांश लोग हमारे अपने घरों में मोर के खूबसूरत पंखों को लगाते हैं। मोर पंख की जितनी महत्ता भारत के लोगों के लिए है शायद ही किसी अन्य देश के लोगों के लिए हो। हमारे यहाँ माना जाता है कि मोर नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सबसे प्रभावशाली है। हालांकि 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पश्चिमी देशों के लोग मोर पंख को दुर्भाग्य का सूचक मानते थे, लेकिन मोर पंख की शुभता का अनुभव होने के बाद उसे शुभ चिन्ह के रूप में स्वीकार कर लिया गया। आज हम बात कर रहे हैं मोर पंख की। ग्रीक पौराणिक कथाओं के अनुसार मोर को हेरा के साथ संबंधित किया जाता है। मान्यता के अनुसार आगर्स

को बांसुरी के साथ घर में रखने से रिश्तों में प्रेम रस घुल जाता है। एशिया के बहुत देशों में मोर के पंखों को आध्यात्म के साथ संबंधित किया जाता है। क्वान यिन, जो कि एक आध्यात्म का प्रतीक है, का मोर से खास रिश्ता माना गया है। क्वान यिन प्रेम, प्रतिष्ठा, धीरज और स्नेह का सूचक है, इसलिए संबंधित देशों के लोगों के अनुसार मोर पंख से नजदीकी अर्थात क्वान यिन से समीपता मानी गई है। मोर पंख के विषय में और मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले ये प्यारा सा भजन।

आज हम चर्चा कर रहे हैं मोर पंख पर। बौद्ध धर्म के अनुसार मोर अपने सारे पंखों को खोल देता है, इसलिए उसके पंख विचारों और मान्यताओं में खुलेपन का ही प्रतीक माना जाता है। ईसाई धर्म में मोर के पंख अमरता, पुनर्जीवन और आध्यात्मिक शिक्षा से संबंधित हैं। इस्लाम धर्म में मोर के खूबसूरत पंख जन्नत के दरवाजे के बाहर अद्भुत शाही बगीचे का प्रतीक माना जाता है। और हाँ, एक बात और, आपने गौर भी किया होगा कि घरों में मोर पंख रखने से कीड़े मकौड़े घर में दाखिल नहीं होते, यानी इसके बारे में जितनी भी चर्चाएं हैं कि ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है, बिल्कुल सही है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं पहली किरण, जहां हर सुबह एक नई सोच, एक नई ऊर्जा के साथ आपका स्वागत करती है। आज की सुबह हम एक ऐसे पंख की बात कर रहे हैं जो ना तो उड़ता है ना ही बोलता है, फिर भी हजारों दिल में रंग भर देता है। जी हाँ, मोर पंख, जिसमें इंद्रधनुष छुपा है, शांति छुपी है और एक पूरी आध्यात्मिक दुनिया बसी है। कभी श्री कृष्ण के सिर का ताज बनता है तो कभी किसी संत की पिछी, कभी आंखों को सुकून देता है तो कभी मन को गहराई देता है। मोर पंख हमें सिखाता है, चुप रहो फिर भी चमको, झुको फिर भी मुकुट बनो, त्याग करो फिर भी सबसे सुंदर दिखो। तो चलिए, आज की पहली किरण के साथ हम जीवन के उन रंगों को अपनाएं जो सिर्फ आंखों को नहीं बल्कि आत्मा को सजाते हैं। आप तैयार हो जाएं एक ऐसी उड़ान के लिए जो पंखों से नहीं सोच से भरी है, मोर पंख जैसी, बिल्कुल हर रंग से भरी हुई सोच। चलिए अब आपको एक और कहानी की ओर लेके चलते हैं, एक मोर पंख और भगवान। एक बार एक छोटा बच्चा था, नाम था आरव। बहुत चंचल, बहुत जिज्ञासु, लेकिन मन बेचैन रहता था। वो रोज भगवान से सवाल करता, भगवान आप मुझसे बात क्यों नहीं करते, कहाँ हो आप, क्यों मुझे समझ नहीं आता कि मैं कौन हूँ। एक दिन वो पास के जंगल में गया और रास्ते में उसे एक चमत्कारी मोर पंख मिला और रास्ते में उसे एक चमकदार मोर पंख मिला। उसने उसे उठाया और अपने बैग में रख लिया। रात को सपना आया, एक तेज प्रकाश हुआ और उसी मोर पंख से भगवान की आवाज आई, बेटा जिस मोर पंख को तू सिर्फ एक सुंदर चीज मानकर बैग में रख लाया है, उसी में तुझे तेरे सारे सवालों के उत्तर मिल सकते हैं। आरव चौंका, सुबह उठते ही वो ध्यान में बैठ गया और मोर पंख को निहारने लगा। वो सोचने लगा, हर रंग है पर कोई शोर नहीं, मतलब बिना बोले भी अपनी उपस्थिति का प्रमाण दो, मौन में भी प्रभाव होता है। दूसरी बात आरव के जहन में आई, पंख झड़ता है पर मोर रोता नहीं, मतलब जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं, त्याग के बाद भी सुंदरता बनी रह सकती है। फिर आरव ने सोचा, सभी रंग मिलकर ही बनते हैं सुंदर, कोई एक नहीं चमकता, मतलब सामूहिकता, सहयोग और संतुलन, यही जीवन का मूल है। श्री कृष्ण ने मुकुट पर उसे जगह दी क्योंकि वो हल्का था, सुंदर था और अहंकारी नहीं था, यानी ईश्वर उन्हीं को सिर पर बिठाते हैं जो सरल और समर्पित होते हैं। आरव ने उस दिन के बाद से ईश्वर से सवाल पूछना बंद कर दिया। अब वो मोर पंख को देखता और मुस्कुरा देता क्योंकि अब उसे समझ आ गया था, ईश्वर किसी रूप में नहीं पर हर रंग, हर पंख, हर मौन में मिलते हैं। जैसे मोर पंख सिर झुकाकर मुकुट बनता है, वैसे ही जीवन में नम्रता और समर्पण ही असली शोभा है।

अपना सुबह का आध्यात्मिक शो पहली किरण, जिसमें आज मैं बात कर रही हूँ आपसे मोरपंख की। तो चलिए मोरपंख के और भी गुणों से आपको रूबरू कराते हैं इस प्यारी सी कहानी के माध्यम से। हिंदू धर्म में मोर के पंख का विशेष महत्व है। मयूर पंख से माना जाता है कि नवग्रह की विपत्तियां जो होती हैं सारी दूर हो जाती हैं। मोर के पंखों में सभी देवी देवताओं और सभी नवग्रहों का वास होता है। ऐसा क्यों होता है? हमारे धर्म ग्रंथों में इससे संबंधित कथा है। वो कथा ये है कि भगवान शिव ने माँ पार्वती को पक्षी शास्त्र में वर्णित मोर के महत्व के बारे में बताया और कहा कि प्राचीन काल में संध्या नामक एक असुर हुआ था। वह बहुत शक्तिशाली और तपस्वी असुर था। गुरु शुक्राचार्य के कारण संध्या देवताओं का शत्रु बन गया था। संध्या असुर ने कठोर तप कर शिवजी और ब्रह्मा को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी और शिवजी ने प्रसन्न होकर असुर को कई सारी वरदानी शक्ति प्रदान की। शक्तियों के कारण संध्या बहुत शक्तिशाली हो गया। शक्तिशाली संध्या भगवान विष्णु के भक्तों को सताने लगा था। असुर ने स्वर्ग पर भी आधिपत्य कर लिया था। देवताओं को बंदी बना लिया था। जब किसी भी तरह देवता संध्या को जीत नहीं पा रहे थे, तब उन्होंने एक योजना बनाई। योजना के अनुसार सभी देवता और सभी नौ ग्रह एक मोर के पंखों में विराजित हो गए। अब वह मोर बहुत शक्तिशाली हो गया था। मोर ने विशाल रूप धारण किया और संध्या असुर का वध कर दिया। तभी से मोर को भी पूजनीय और पवित्र माना जाता है। तो ये तो थी नौ ग्रहों की कहानी। अब चलिए सुनते हैं एक प्यारा सा भजन। अब चलते हैं मोर पंख के उन सभी रंगों की ओर जो अपने अंदर जीवन के हर एक सार को समेटे हैं। सबसे पहला रंग नीला, जो है शांति और भगवान श्री कृष्ण का प्रतीक, और इससे ये समझ आता है कि ये रंग सत्य, असीमता और भक्ति का प्रतीक है। मोर का मुख्य रंग नीला श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। फिर आता है हरा, जो कि प्रकृति और समृद्धि का प्रतीक है। ये रंग जीवन संतुलन और करुणा को दर्शाता है। दिल के चक्र यानी हार्ट चक्र से जुड़ाव रखता है हरा रंग। बैगनी रंग यानी आध्यात्मिक ऊर्जा और रहस्य का प्रतीक। ये ध्यान, अंतर्ज्ञान और आत्मिक ऊंचाइयों का प्रतीक माना जाता है। सुनहरा यानी गोल्डन रंग दिव्यता और जागरूकता का प्रतीक। ये ब्रह्म ज्ञान, तेज और दिव्यता का प्रतीक है। आत्म प्रकाश की अनुभूति कराता है सुनहरा रंग। पीला रंग बुद्धि और ऊर्जा का प्रतीक। मानसिक स्पष्टता, सूर्य की तरह आशावाद और आत्मबल का रंग माना जाता है पीला रंग। भूरा व ताम्र रंग स्थिरता और धरती से जुड़ाव का प्रतीक माना जाता है। ये संतुलन और वास्तविकता को दर्शाता है। रूट यानी जड़ चक्र से जुड़ाव रखता है। अब आते हैं काले रंग की ओर। इसको गहरा नीला रंग भी बोला जाता है। रहस्य, शक्ति और मौन का प्रतीक। ये आत्मनिरीक्षण और गहराई का प्रतीक है। अज्ञात की सुंदरता है। तो कितने सारे रंगों को अपने एक छोटे से, हल्के से और सुंदर से पंख में समाहित करता है मोर। अब जान लेते हैं कि इन सभी रंगों का हमारे किन चक्रों से जुड़ाव है। मूलाधार चक्र, जो भूरे रंग या ताम्र रंग से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र, जो नारंगी रंग से संबंधित है। मणिपुर चक्र, जो पीले रंग से संबंधित है। अनाहत चक्र, जो हरे रंग से संबंधित है। विशुद्ध चक्र, जो नीले रंग से संबंधित है। और आज्ञा चक्र, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, जो कि संबंधित है बैगनी रंग से। सहस्त्रार चक्र, जो सुनहरे या फिर उज्ज्वल प्रकाश से संबंधित है। तो इस तरह से हमारी पूरे जीवन को, पूरे ब्रह्मांड को और हर एक रंग को अपने आप में समाहित करके रखता है मोरपंख, जो देखने में तो एक साधारण सी वस्तु जैसा है, पर ये जीवन, आत्मा और ब्रह्मांड के रंगों का अद्भुत संगम है। इसमें हर रंग छिपा है और हर रंग हमें एक नई दिशा देता है।

मोर पंख। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मोर पंख को भारतीय संस्कृति में अत्यंत शुभ, पवित्र और आध्यात्मिक प्रतीक माना गया है। अलग अलग धर्मों और परंपराओं में इसका अलग अलग महत्व भी है। हिंदू धर्म में मोर पंख भगवान कृष्ण का आभूषण है। कृष्ण के मुकुट में मोर पंख होता है, जो प्रेम, करुणा और सौंदर्य का प्रतीक है। इसे पहनकर वे प्रकृति और जीवन से जुड़ाव दिखाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा का नाशक माना गया है मोर पंख। मोर पंख को घर में रखने से बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। वास्तु दोष निवारक है मोर पंख। वास्तु शास्त्र में मोर पंख का प्रयोग दोषों को दूर करने में होता है। विशेषतः मुख्य दरवाजे पर मोर पंख लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है। ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है मोर पंख। सरस्वती माता के वाहन मोर को कई किंवदंतियों में माना जाता है कि सरस्वती माता का वाहन हंस के अलावा मोर भी है। इसलिए मोर पंख ज्ञान और कला का प्रतीक भी माना गया है। बौद्ध धर्म में मोर पंख का महत्व बुद्धि और करुणा का प्रतीक माना गया है मोर पंख। जी हाँ, बौद्ध धर्म के अनुसार मोर को करुणा और ज्ञान का प्रतिरूप माना जाता है। इसका पंख सज्जनता और विवेक का प्रतिनिधित्व करता है। विष को अमृत में बदलने की शक्ति रखता है मोर पंख। बौद्ध धर्म में ये भी कहा गया है कि मोर सांप यानी विष को खा जाता है और फिर भी सुंदरता में रहता है। ये बौद्ध शिक्षाओं के अनुसार नकारात्मकता और सकारात्मकता के अनुसार नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने का प्रतीक है। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म की। जैन धर्म में मोर पंख का महत्व अहिंसा के प्रतीक के रूप में माना जाता है। जैन संत मोर पंख से बनी पिच्छी यानी झाड़ू का प्रयोग करते हैं ताकि किसी भी छोटे जीव को हानि न पहुंचे। ये करुणा और जीव दया का प्रतीक माना गया है। सिख धर्म में प्राकृतिक सौंदर्य और संतुलन का संकेत माना गया है मोर पंख। सिख धर्म में मोर पंख का कोई विशेष धार्मिक विधान नहीं है, परंतु गुरु गोविंद सिंह जी की पोशाक और शस्त्र सज्जा में कभी कभी मोर पंख दिखते हैं, जो सौंदर्य और वीरता के प्रतीक के रूप में माना जाता है। तो अगर इन सभी के सारांश के रूप में जानेंगे तो हिंदू धर्म में श्री कृष्ण नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा और वास्तु उपायों के लिए अपनाया जाता है मोर पंख, जिसको आध्यात्मिकता, प्रेम और सुरक्षा की दृष्टि से जोड़ा गया है। बौद्ध धर्म के अनुसार करुणा विषहरण क्षमता रखता है मोर पंख, जिसे विवेक और परिवर्तन का प्रतीक माना गया है। जैन धर्म में पिच्छी यानी अहिंसा उपकरण के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, जो करुणा और जीव दया का प्रतीक माना जाता है। सिख धर्म के अनुसार इसका प्रयोग बहुत ही सीमित माना गया है, परंतु सौंदर्य और वीरता का प्रतीक माना गया है मोर पंख। तो मोर पंख हर एक धर्म के अनुसार बहुत ही उपयोगी माना गया है। आपने देखा होगा कि इस्लाम धर्म में मुहर्रम के पहले या दौरान कुछ लोग मोर पंख को कपड़ों के साथ पहनते हैं। आपके जहन में भी ये सवाल आया होगा कि आखिर ऐसा क्यों है। तो मेरे भी जहन में ऐसा ही कुछ आया और फिर मैंने खोजबीन की, जिस पे मुझे निष्कर्ष रूप में ये पता चला कि ये परंपरा विशेषकर सिया मुस्लिम समुदाय और भारतीय उपमहाद्वीप की स्थानीय सांस्कृतिक आस्था से जुड़ी है। आइए इसके बारे में थोड़ा विस्तार से समझते हैं। इस्लाम धर्म और मुहर्रम की पृष्ठभूमि की ओर चलते हैं। मुहर्रम इस्लामी वर्ष का पहला महीना है, लेकिन सिया मुस्लिमों के लिए ये शोक का महीना होता है। 10वीं तारीख को यौमे आशूरा आता है, जिस दिन हजरत इमाम हुसैन, जो पैगंबर मोहम्मद के नवासे थे, करबला के मैदान में शहीद हुए थे। ये दिन त्याग, बलिदान, सत्य और अन्याय के खिलाफ खड़े होने की मिसाल है। अब मोर पंख का इससे क्या संबंध है? मोर पंख करबला के प्रतीक के रूप में सांस्कृतिक परंपरागत तौर पे माना गया है। भारत, पाकिस्तान और कुछ अन्य एशियाई देशों में सिया मुसलमान अलम यानी ध्वज लेकर जुलूस निकालते हैं। अलम के साथ जो झंडियां या कपड़े लगे होते हैं, उनमें अक्सर मोर पंख या मोर पंख के आकार के तावीज या सजावट दिखाई देती है। हजरत अब्बास से जुड़ी मान्यता के अनुसार
हजरत अब्बास इमाम हुसैन के भाई थे, जिन्हें बाबुल हवाज और शेरे करबला भी कहा जाता है। मान्यता है कि उनके अलम यानी झंडे की शान को मोर पंख से सजाया जाता है, जो बहादुरी, वफादारी और इज्जत का प्रतीक है। इसलिए मुहर्रम के पहले लोग मोर पंख को कपड़े या टोपी के साथ पहनते हैं, जो श्रद्धा, शोक और प्रतीकात्मक इज्जत के रूप से जुड़ा हुआ है। अब जानते हैं कि मोर पंख पहनने के भावार्थ क्या हैं। मोर पंख शांति, साहस, सुंदरता और पवित्रता का प्रतीक है। काले या हरे रंग के कपड़े के साथ में इसको धारण करने से माना जाता है कि ये शोक यानी काला, इमामों की विरासत यानी हरा, इस रूप में दिखाया जाता है। पहनना या लगाना, इसको धारण करना एक श्रद्धांजलि और करबला के बलिदान की याद माना जाता है। पर गौर करने की बात यह है कि इस्लाम में मोर पंख पहनने की कोई धार्मिक अनिवार्यता नहीं है। ये अधिकतर स्थानीय संस्कृति, सिया परंपरा और इज्जत की निशानी के रूप में उपयोग किया जाता है। मुहर्रम में मोर पंख का पहनना एक सांस्कृतिक श्रद्धांजलि है, हजरत अब्बास की बहादुरी और करबला की पवित्रता को सम्मान देने के प्रतीक के रूप में।

अब मैं आपको एक और कहानी की ओर लेके चलूंगी, जो कि मोर पंख पर ही आधारित है। एक सुंदर, भावनात्मक और शिक्षाप्रद कहानी, जिसे आप अपने रेडियो पर सुनने वाले हैं, उसी शो में जो आपका पसंदीदा है। जी हाँ, भक्तिमय कार्यक्रम पहली किरण, मेरे यानी आरजे आकांक्षा के संग। तो चलिए इस कहानी को सुनते हैं। कहानी का नाम है मोर पंख वाला उपहार। सादगी, श्रद्धा और ईश्वर से जुड़ाव देखेंगे हम इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है वृंदावन के एक छोटे से गांव से, जहां एक नन्हा बालक कृष्ण प्रेम में डूबा रहता था। उसका नाम था नंदू। नंदू बहुत गरीब था। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे ना खिलौने, लेकिन उसके पास था एक मोर पंख। हर दिन वो पंख अपने माथे पे लगाकर खुद को कान्हा समझकर नाचता, मुस्कुराता और मंदिर जाकर कृष्ण भगवान से ढेरों बातें करता। लोग कहते पागल हो गया है, पर नंदू कहता, मोर पंख वाला कन्हैया मेरा दोस्त है और दोस्त से तो बात होती है ना। एक दिन गांव में बड़ा त्योहार आया, जिसका नाम है जन्माष्टमी। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर मंदिर में पहुंचे। नंदू के पास कुछ नहीं था, बस वही पुराना पंख। उसने उसे सजाया, साफ किया और भगवान के चरणों में रख दिया। वो बोला, कान्हा, सब लोग तुम्हें सोना चांदी चढ़ाते हैं, मेरे पास कुछ नहीं है, बस ये पंख है, लेकिन ये मेरा सबसे प्यारा दोस्त है, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तभी मंदिर के पुजारी ने देखा, भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सिर से मुकुट गिर गया था और वहाँ वो नंदू वाला पंख खुद ब खुद उड़कर जाकर टिक गया। लोग चकित रह गए। पुजारी बोले, ये चमत्कार नहीं, श्रद्धा का प्रताप है। उस दिन से मंदिर में हर साल उसी मोर पंख की प्रतिकृति भगवान को पहनाई जाने लगी। नंदू अब भी वैसे ही है, सादा, मासूम, पर भगवान के सबसे करीब। ईश्वर को चढ़ावा नहीं चाहिए, ना सोना ना चांदी, उन्हें चाहिए भक्ति भाव और सच्चा प्रेम, और मोर पंख उसका प्रतीक है। तो चलिए फिर बांके बिहारी लाल को याद करते हैं और सुनते हैं ये बांके बिहारी वाला भजन।

अब जरा जानते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मोर पंख का क्या महत्व है। वैज्ञानिक कारण है कि मोर पंख के रंग वास्तव में रंग द्रव्य यानी पिगमेंट के कारण नहीं होते, बल्कि एक विशेष तकनीक से बनते हैं जिसे कहते हैं स्ट्रक्चरल कलरिंग। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। मोर के पंखों की सतह पर माइक्रोस्कोपिंग स्ट्रक्चर सूक्ष्म रचनाएं होती हैं, जो प्रकाश को परिवर्तित यानी रिफ्लेक्ट और अपवर्तित यानी रिफ्रैक्ट करती हैं। जब सूर्य की किरणें इन सतहों पर गिरती हैं, तो अलग अलग कोणों से अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, जैसे नीला, हरा, सुनहरा, बैंगनी आदि। इसलिए जब आप मोर पंख को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो रंग बदलते हैं, और ये इंद्रधनुषी प्रभाव कहलाता है। अब चलते हैं प्रकृति की दृष्टि से जानते हैं मोर पंख का महत्व। मोर पंख रंग बिरंगे इसलिए होते हैं क्योंकि ये मोर की पहचान और आकर्षण का माध्यम है, खासकर जब वह नाचता हो। नर मोर अपने रंग बिरंगे पंखों से मादा मोर यानी मोरनी को आकर्षित करता है। ये एक प्राकृतिक चयन का हिस्सा है। ये रंग सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि प्रभाव और संदेश देने के लिए भी होते हैं, जैसे जानवरों में ताकत, सुंदरता या उपस्थिति दिखाना। अब चलते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण की ओर और जानते हैं कि मोर पंख का क्या महत्व है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण के अनुसार मोर पंख के ये विविध रंग जीवन के हर भाव का प्रतीक है, जैसे नीला रंग शांत व कृष्ण का प्रेम, हरा रंग समृद्धि व प्रकृति का प्रतीक, सुनहरा रंग दिव्यता व ज्ञान देने वाला, बैंगनी रंग रहस्य और ध्यान में गूढ़ता लाने वाला। कहा जाता है कि मोर पंख में सातों चक्रों यानी एनर्जी चक्रास के रंग समाहित हैं, जिससे ये संपूर्ण ऊर्जा का संतुलन बनाए रखता है। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने मोर पंख को अपने सिर पर सजाया। ये सौंदर्य, विनम्रता, ज्ञान और प्रकृति से एकता का प्रतीक है। तो इस प्रकार विज्ञान के तौर पे अगर हम देखें तो मोर पंख स्ट्रक्चरल कलरिंग से प्रकाश का खेल है। प्राकृतिक रूप से देखें तो आकर्षण और संकेत के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, और आध्यात्मिक रूप से देखें तो सातों चक्रों और जीवन के रंगों साथ ही साथ में आत्मिक संतुलन बनाने में पूरी तरह से उपयोगी है मोर पंख।

अभी हमने बात की मोरपंख की, अब थोड़ी और गहराई में उतरेंगे और मंथन करेंगे। मोरपंख हमें सिखाता है कि जीवन के हर रंग को अपनाओ, चाहे वह सुख का हो या संघर्ष का, क्योंकि जब सभी रंग एक होते हैं तभी आत्मा इंद्रधनुष बनती है। कभी आपने मोरपंख को गौर से देखा है? उसमें कोई एक रंग नहीं, दर्जनों रंग होते हैं, नीला, हरा, सुनहरा, बैगनी और जाने कितने। पर क्या ये सब रंग रंगों की दवात से आए हैं? नहीं, ये रंग आते हैं प्रकाश के खेल से, जो हमें सिखाते हैं कि जीवन का असली रंग हमारी दृष्टि में होता है। विज्ञान कहता है ये स्ट्रक्चरल कलरिंग है, बिना रंग लगाए भी ये प्रकृति की ऐसी

पेंटिंग है जो हर कोण से नया रूप दिखाती है। प्रकृति कहती है, ये एक संदेश है, आकर्षण का, चयन का, जीवन का। मोर इन रंगों से न केवल खुद को सुंदर बनाता है, बल्कि प्रकृति के साथ संवाद करता है। आध्यात्म कहता है, मोर पंख वो है जिसमें सभी चक्रों के रंग छुपे हैं। ये नृत्य करता है तो लगता है ब्रह्मांड की ऊर्जा बोल रही है। इसलिए श्री कृष्ण ने इसे अपने मुकुट पर सजाया, क्योंकि ये सिर झुकाकर सिर सजाता है। क्या हम भी अपने जीवन को ऐसे ही नहीं जी सकते? सोचने वाली बात है। रंगों की कहानी है, पंखों की जुबानी है। ये मोर का उपहार नहीं, खुद ईश्वर की निशानी है। ना रोशनाई ना कूची, ना रंग की पहचान, फिर भी हर रंग बोले, मैं हूँ इस जीवन का ज्ञान। कभी नीला बनकर शांति दे, कभी हरा बनकर संजीवनी, कभी सुनहरा बनकर जगाए प्रकाश की प्रेरणा। ये पंख नहीं, जीवन के रंग हैं, जो हमें हर रूप में अपनाना सिखाते हैं। तो चलिए अपने जीवन को इन सभी रंगों से भरते हैं, एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण होते हैं और आगाज करते हैं एक नई सुबह का। तो आइए अब इस मोर पंख से मंथन की ओर चलें, एक ऊर्जावान विचार और एक ऊर्जावान संदेश की ओर, जो सुनने वाले के दिल दिमाग को झकझोर देने वाला है और उसमें भर देने वाला है रोशनी। किस तरह की? कई सारे रंगों की, जो आपके जीवन में हर तरह से होती ही है। कभी खुशी, कभी गम, कभी गुस्सा, कभी प्रेम, कभी नाराजगी, कभी मुस्कुराहट और कभी आंसू के रूप में। तो ये सारे रंग जब हम अपने जीवन में उतारते हैं तो वो क्या हो जाता है? सदाबहार रूप में महक उठता है। शायद आपको ये जानकर झटका लगेगा कि जिस मोर पंख को हम इतनी श्रद्धा से सिर पर सजाते हैं, वो पंख खुद मोर के लिए दर्द का प्रतीक होता है। जी हाँ, हर साल जब पंख झड़ते हैं तो मोर चुपचाप उस बिच्छोह को सहता है। किसी से शिकायत नहीं, कोई चीख नहीं, क्योंकि वो जानता है, जिसे आज मैं छोड़ रहा हूँ वो कल किसी के लिए प्रेरणा बन जाए। क्या हम भी उस मोर की तरह त्याग कर सकते हैं? क्या हम भी अपने दुख को किसी और की ताकत में बदल सकते हैं? बिल्कुल, सोचने वाली बात है। कभी कभी तुम्हारा सबसे सुंदर रूप तुम्हारे सबसे कठिन त्याग के बाद सामने आता है ना? तो आज का मंथन बस इतना कहता है, जीवन को रंग दो, मगर अहंकार से नहीं, विनम्रता से। दिखो सबसे सुंदर, मगर सबसे शांत रहकर। और जब समय आए त्याग का, तो मोर की तरह मुस्कुराकर छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा त्याग किसी और के मुकुट की शोभा बन सकता है। तो किसी की मुस्कान बने, किसी के मुकुट की शोभा बने, किसी के जीवन को आसान करें। अभी आप सुन रहे थे अपना रेडियो आध्यात्मिक कार्यक्रम, जिसका नाम था पहली किरण। मैं थी आपकी रेडियो साथी आरजे आकांक्षा। अब मुझे दें इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ में। आज का विषय था मोरपंख, जो हमें सिखाता है बहुत सारे रंगों को अपने जीवन में आत्मसात करना। इन सभी रंगों के साथ हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और मुझे आज्ञा दें। राधे राधे, अल्लाह हाफिज, रब रखा।

के हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

में बड़े को भी छोटे को भी खरे को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
1: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंक। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
2: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।

0: क्या बात है भाई, मोहम्मद रफी साहब की आवाज में तुमसा नहीं देखा, ये गाना सुनना अपने आप में ही गजब का है। वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान आपके गुड मॉर्निंग गोंडा शो में। सो भाई, आज का थॉट ऑफ द डे क्या है? क्योंकि आज वेंसडे है और वेंसडे का थॉट ऑफ द डे क्या हो सकता है, कोई अंदाज़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, हम बताते हैं कि आज का थॉट ऑफ द डे क्या है और आपके लिए वेंसडे स्पेशल क्या लेकर के आया है सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग वाले शो में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो आज वेंसडे स्पेशल थॉट कहता है कि किसी भी रिश्ते में पास होने से ज्यादा जरूरी है पास महसूस होना। किसी भी रिश्ते में पास होने से ज्यादा जरूरी है पास होना महसूस होना। कितनी प्यारी बात कह दी। रिश्ता चाहे जो भी हो, चाहे जिसका भी हो, हम आस पास रहते हो ये तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश भी इंसान ही करता है, ट्रांसफर भी ले लेता है, कहता भी है कि हम अपने परिवार या अपने लोगों के बीच में हम रहेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा जरूरी होता है पास महसूस होना। क्योंकि आप एक दो तीन नहीं, ऐसे शायद सैकड़ों हजारों एग्जाम्पल्स चाहते हैं जहां लोग रहते साथ में लेकिन दिल से पास नहीं हो पाते हैं। दैट्स वाई ये थॉट कहता है कि किसी भी रिश्ते में पास होने से ज्यादा जरूरी है पास होना महसूस होना। यानी पास आप रहते हैं, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पास होना महसूस होना, दिल से एक जुड़ाव होना, और तभी तो शायद उसको हम रिश्ता कह भी पाते हैं, अदरवाइज हम कैसे कह सकते हैं, राइट? और यही बात कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे यही बात कह रहा है। आई होप कि ये थॉट आप तक जरूर आया है और आप इस थॉट को समझ पा रहे हैं। और अब कहीं पे भी किसी भी रिश्ते में आप हैं तो आप पास रहने से ज्यादा पहले जो तवज्जो देंगे, आप जो पहली प्रायोरिटी देंगे, जो पहली प्राथमिकता होगी आपकी, वो होगी कि पास होने से ज्यादा पास होना महसूस हो। तब तो रिश्ता है, क्योंकि आपने फील किया है। कई बार मीलों की दूरी होती है, लोग आजकल तो मोबाइल यूज करते हैं, इससे पहले लोग खत भेजा करते थे। तो जमाना कोई भी रहा हो, दूर भी रह करके लोग दिल के हमेशा करीब रहे हैं, और ऐसा भी होता है कि पास रहकर भी नहीं हो पाते, ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं। तो शायद इसीलिए ये थॉट कहता है। तो इसलिए कोशिश रहनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को महसूस करें जो हमें अपनेपन के एहसास दिलाती हैं, चाहे इंसान दूर ही क्यों ना हो, और वही अपने आप में बड़ी ही खूबसूरत सी बातें हैं, है ना? चलिए, सो आज का थॉट ऑफ द डे कैसा लगा आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। और फिलहाल हम आपको ले चलते हैं एक बेहतरीन सा नगमा सुनाने के लिए। सो क्या आप रेडी हैं? चलिए, आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम रेडियो।

रनस्थल 89.6 FM, यही है आपके गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम चलेंगे पुराने गोल्डन एरा में, ऐसे क्लासी सॉन्ग्स जो हमारे पूर्वज तो सुनते आए थे, हम भी लगातार सुनते जा रहे हैं। स्टे ट्यून ओनली ऑन गोंडा FM 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: भंवरे की गुंजन सुनाई पड़ गई आपको, क्योंकि सुबह हो गई है, इसी बात से अंदाजा हो गया। एक बार वापस से आपका इस्तकबाल करते हैं आपके अपने गुड मॉर्निंग गोंडा शो में, मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे अदनान।

हाँ जी, तो भाई अब चलिए बताते हैं आपको कि क्या कुछ लिख भेजा है आपने। आपका वेलकम है फ्रिक्वेंसी से सुनते वक्त भी, और रेडियो गार्डन से अगर आपने ट्यून किया है तो भी आपका स्वागत करते।

और साथ ही साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 9.6 एफएम की एप्लीकेशन से आपका भी वेलकम है। चैट बॉक्स पर हम आ गए हैं और काफी सारे मैसेजेस नजर आ रहे हैं। तान्या का है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद सविता दुबे जी लिखती हैं, सुप्रभात सुप्रभात आपको भी। आशु मिश्र जी लखनऊ से, गुड मॉर्निंग सर जी, गुड मॉर्निंग टू यू। प्रीति शुक्ल जी बहराइच से है, सर जी मॉर्निंग टाइम पर थॉट आ गया, वेरी नाइस। ज्योति मौजूद हैं, ज्योति ने भी लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू सर, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड आशु मिश्र जी लिखती हैं, सब कुछ होते हुए भी अंदर से खाली महसूस करना, सबके बीच रह कर भी अकेला महसूस करना, ये वो दर्द है जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता, बस महसूस किया जा सकता। थैंक यू सो मच टू यू। साथ ही आपने थॉट को लेकर के भी अपना रिएक्शन दिया है, वेरी नाइस थॉट सर जी, थैंक यू सो मच कि आपको थॉट पसंद आया। ज्योति ने भी लिखा है सुपर आउटस्टैंडिंग थॉट, थैंक यू सो मच। प्रीति जी लिखती हैं, सत्य बयां करता हुआ जानदार थॉट, पूर्वज ये वचन सत्य ही कह गए हैं कि दूर के डोल सुहावने। ओके सो बहुत शुक्रिया आप लोगों को, थॉट आज का पसंद आया। एंड थॉट मुझे भी पसंद आया कि किसी भी रिश्ते में पास होने से ज़्यादा ज़रूरी होता है पास होना, महसूस होना, क्योंकि रह करके भी महसूस नहीं होता है। ऐसे न जाने कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं, और दूर रह करके भी हम पास महसूस करते हैं, ऐसा हमारी लाइफ का खुद भी ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जो बात है ये अपने आप में बिल्कुल सच है। एंड आई होप कि आपको भी ये उतनी ही गहराई से अच्छी लगी होगी, जिस गहराई के साथ किया, जिसके अंदर मायने समाए हुए थे। इसके बाद लौट कर आ रहे हैं आपकी सिटी अपडेट की तरफ, क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट गोंडा से है, जिसका इंतज़ार एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, छः सालों से था। सो क्या है वो बताते हैं आपको आपके मॉर्निंग वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा FM 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉकर जयतनान।

भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप है आईफोन यूजर तो आपको जाना है एप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। और जैसा कि हमने कहा था, आने के बाद बताने वाले हैं कि भाई गोंडा में क्या कुछ चल रहा है, सिटी अपडेट, और 6 साल का इंतजार कैसे हुआ है खत्म। सो लेट्स गो।
1: नाउ यू आर लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

पहले तो जो आंधी बारिश हुई उसकी वजह से जो नुकसान हुआ उसको लेकर, क्योंकि आंधी के दौरान पेड़ और दीवार गिरने से जो है 3 लोगों की जान भी गई, और वजीरगंज, नवाबगंज, बिलसर में हादसे हुए हैं। ये सड़क और रेल यातायात भी घंटों इससे जो है अफेक्टेड रहा था। सो हमको पता है कि भाई सोमवार की जो रात तेज़ आंधी आई थी उसने तबाही काफ़ी ज़्यादा मचा दी थी। अलग अलग एरियाज़ में पेड़ और दीवार गिरने से लोगों की जान भी गई। आंधी के दौरान केबल की चपेट में भी आकर के एक शख्स ने दम तोड़ दिया था। इसके अलावा जो जानवर थे उनके भी जन हानि की बात बताई जा रही है। साथ ही साथ रेलवे ट्रैक पर सड़क मार्ग पर भी बाधित हुआ था, क्योंकि आंधी में पेड़ गिरने से नवाबगंज मनकापुर जो रेल मार्ग है वहाँ मालगाड़ी रात भर खड़ी रही। कटरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक जो है वो बाधित होने से सुबह तक रेल संचालन जो है प्रभावित रहा। इसके अलावा कटरा, बस्ती, नवाबगंज, मनकापुर, तरफगंज और अयोध्या गोंडा जो रास्ता है उस पर कई जगह पेड़ गिरने से यातायात भी ठप हो गया। सो फिलहाल JCB की और स्थानीय लोगों की मदद से रास्ते को क्लियर कराया गया। इसके अलावा आपको हम बताते हैं, चूँकि प्रशासक की भूमिका में 1183 प्रधान को जोड़ा गया है। ज़िले में 1192 ग्राम पंचायतों में 1183 में ग्राम प्रधानों का जो कार्यकाल है वो मंगलवार को यानी कल पूरा हो गया। इसके बाद बुधवार से इन पंचायतों में निर्वर्तमान प्रधानों को ही बतौर प्रशासक कार्यभार की जिम्मेदारी सौंपी गई। सो मुख्यमंत्री के निर्देश पर लिए गए इस फैसले का ग्राम प्रधानों ने स्वागत करते हुए ऐतिहासिक बताया। ज़िले में कुल 16 ब्लॉक्स में 1192 ग्राम पंचायतें, इसमें वजीरगंज ब्लॉक के साहिबापुर, परसिया, मोहनपुर, बल्लीपुर, रामपुर, खरंठा, तरबगंज की सरामा, खानपुर और नवाबगंज की बहादुरा, जलालपुर ग्राम पंचायतों को छोड़कर बाकी 1183 पंचायतों में निर्वाचित प्रधानों का जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है। अधिकारियों के हिसाब से इन पंचायतों का कार्यकाल 19 जून को समाप्त होगा। जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे ने बताया कि नियुक्त प्रशासक सिर्फ सामान्य प्रशासनिक कार्य का ही निर्वहन कर पाएंगे, उन्हें किसी भी प्रकार के नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार नहीं होगा और अत्यावश्यक परिस्थितियों में नीतिगत प्रस्तावों के लिए जिला अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक होगी। शासन स्तर से जल्द ही प्रशासकों के कामों की विस्तृत निर्धारण की सभी को अवगत कराया जाएगा। इसके अलावा CDO ने मेडिकल कॉलेज का कल निरीक्षण भी किया। मुख्य विकास अधिकारी दयानंद प्रसाद ने कल मंगलवार को मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करके कई सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके तीमारदारों से बात करके स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान CDO ने न्यू OPD विभाग, पीकू वार्ड, इमरजेंसी वार्ड, दवा वितरण काउंटर, रजिस्ट्रेशन काउंटर, आइसोलेशन वार्ड, क्षेत्रीय निदान केंद्र, सर्जिकल वार्ड, पोषण पुनर्वास केंद्र की व्यवस्था देखी। इन्होंने संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों को हॉस्पिटल में साफ सफाई और मेडिसिन की अवेलेबिलिटी, मरीजों का उपचार, बाकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए निर्देश दिए। मरीजों का वक्त से उपचार और ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। इस मौके पर CMO डॉक्टर संतलाल पटेल, CMS डॉक्टर अनिल तिवारी और डॉक्टर DN सिंह, डॉक्टर अनिल वर्मा सहित कई लोग मौजूद भी रहे। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ, और अगली जो अपडेट है वो भी आपके गोंडा से ही आ रही है। फिलहाल आज शाम गांधी पार्क में ताइक्वांडो एसोसिएशन की तरफ से खिलाड़ियों का प्रशिक्षण दिया जाएगा शाम 5:30 बजे। इसके अलावा NCC कैडेट्स को दिया गया ड्रोन का प्रशिक्षण। सो सिसुआ में मौजूद आश्रम पद्धति स्कूल में NCC प्रशिक्षण शिविर में कल मंगलवार को कैडेट्स को पहली बार ड्रोन टेक्निक का प्रशिक्षण दिया गया। कैंप कमांडेंट कर्नल सुनील कपूर के नेतृत्व में प्रशिक्षकों ने कैडेट्स को ड्रोन संचालन का जो गुर है वो सिखाया। कर्नल कपूर ने बताया कि युद्ध में ड्रोन की बढ़ती उपयोगिता के वजह से NCC में इसे अनिवार्य कर दिया गया है। भविष्य में इसके जरिए बिना जनहानि के दुश्मन के ठिकानों को नष्ट किया जा सकता है। शिविर में कैडेटों को टेंट लगाने और उसके खोलने जोड़ने का प्रशिक्षण भी दिया गया। प्रतियोगिता के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल गौरव तिवारी ने कैडेटों

या इस कार्यशाला में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संजय त्रिपाठी एमडी मेडिसिन ने मधुमेह की वजह से लक्षण बचाव और आधुनिक उपचार की पद्धतियों पर बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अनियमित दिनचर्या, तनाव, गलत खान पान की वजह से युवाओं में डायबिटीज तेज़ी से बढ़ रहा है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। डॉक्टर सुषमा त्रिपाठी ने मधुमेह से मौजूद संबंधित रक्त जांचों की उपयोगिता और वक्त पर जांच की आवश्यकता पर भी बताया। सो ये एक चिंता का विषय है जिसमें बताया जा रहा है कि भाई अब ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा लो वोल्टेज की प्रॉब्लम को लेकर के जो कंज्यूमर्स हैं उनकी परेशानी भी सामने आ रही है। सो ओवरलोड के चलते ईस्ट और बलरामपुर फीडर से जुड़े 29 गाँव के उपभोक्ताओं को लो वोल्टेज की प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं। बेलवा करमडीह निवासी आशीष ने बताया भी है कि सोमवार की रात गांव में लो वोल्टेज की पूरी प्रॉब्लम बनी रही। वहीं कृषक बालिका इंटर कॉलेज के पास लगे ट्रांसफार्मर में लगातार स्पार्किंग होती रही, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। सो ज़िले को वैल्यू एडिशन हब बनाने की कवायद भी हो रही है, बलरामपुर की ये बात है। ज़िले में विजन 2030 में आकांक्षा से एक्शन रीइमेजिंग बलरामपुर अभियान की धार देने की कवायद तेज़ हो गई है। जिलाधिकारी विपिन कुमार जैन ने इस रणनीति रोड मैप से साल 2030 तक ज़िले की जीडीपी को वर्तमान 16,108 करोड़ से बढ़ाकर 40,605 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को जो आयोजित हुई बैठक में जिलाधिकारी ने बताया भी कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम में देश का पहला स्थान प्राप्त करने के बाद अब बलरामपुर आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है। इसके साथ ही साथ जो मेन खबर है जिसको लेकर हमने कहा था कि भाई 6 साल का इंतज़ार अब ख़त्म हो गया है, चलिए इसको लेकर के भी आपको बताते हैं। तो दरअसल 6 साल से बंद थी गोंडा डालीगंज पैसेंजर, यानी गोंडा लखनऊ पैसेंजर, जो कि कल 26 मई से जिसका संचालन शुरू कर दिया गया है। सो कोरोना काल मार्च 2020 से बंद नकहा जंगल डालीगंज यानी लखनऊ पैसेंजर 6 साल बाद मंगलवार को फिर से पटरी पर दौड़ने लगी। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने गोंडा जंक्शन से हरी झंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किया। ट्रेन का संचालन दोबारा शुरू होने से गोंडा समेत आसपास के ज़िलों के सैकड़ों जो रोज़मर्रा के यात्रियों को राहत मिलेगी। गोंडा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को फूल से सजाया गया। स्टेशन परिसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री समेत जनप्रतिनिधियों ने आम जनता के लिए बड़ी राहत बताया। इसके अलावा सदर विधायक सहित कई संख्या में लोग मौजूद रहे और ट्रेन से उन्होंने सफ़र भी किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि रेल मंत्री से ट्रेन का दोबारा संचालन करने का अनुरोध किया गया था। सो नकहा जंगल से चलकर गोंडा, बुढ़वल और बाराबंकी जंक्शन होते हुए डालीगंज यानी लखनऊ तक जाने वाली ये पैसेंजर ट्रेन बंद होने के बाद यात्रियों को बसों और निजी जो साधन हैं उससे महंगा और असुविधाजनक सफ़र करना पड़ रहा था। ट्रेन दोबारा शुरू होने से कम किराए में लखनऊ तक का सफ़र आसान हो गया है। कार्यक्रम में जो है मंडल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल, मनकापुर विधायक रमापति शास्त्री, महनोन विधायक विनय कुमार द्विवेदी, गौरा विधायक प्रभात कुमार वर्मा सहित कई लोग जो है वो मौजूद रहे। इसके अलावा लोगों ने काफ़ी ज़्यादा खुशी भी जाहिर की कि भाई जिस तरह से ये ट्रेन का संचालन शुरू हुआ है, यानी 6 साल बाद लखनऊ पैसेंजर ट्रेन दोबारा पटरी पर लौटने से कई लोगों को अब राहत मिली है। सो लंबे वक्त से इसका चूंकि लोग इंतज़ार भी कर रहे थे और अब जाकर के ये मुमकिन हो पाया है और अब से जो है ट्रेन यानी ये पैसेंजर ट्रेन लगातार चलती चली आ रही है। सो ये रही एक बड़ी अपडेट जो कि गोंडा से थी और राजधानी लखनऊ से जोड़ने वाली पैसेंजर ट्रेन की, क्योंकि छोटे छोटे स्टेशंस पर ऐसे कई बार ग्रामीण होते हैं जिनको वहाँ से पकड़ना होता है। अब जाहिर सी बात है जो दूर रहता है, लगभग अगर कोई मान लीजिए कठोला, मैजापुर, कस्तूरी इसके पास में या फिर उसके आगे जो बाराबंकी के या बहराइच के कुछ स्टेशंस पड़ते हैं, तो छोटी छोटी जगह से उनको मेन मार्केट तक का आना खर्चा, फिर वहाँ से कोई मेन बस या कोई भी ऐसा साधन पकड़ना, वो काफ़ी ख़र्चा था। अब क्या है कि उनके एरियाज से होके गुजरेगी ट्रेन्स, तो जिससे उनके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। आई होप कि गोंडा अपडेट आज आपको ज़रूर पसंद आई होगी। फ़िलहाल वक्त है आगे बढ़ने का और एक बेहतरीन सा नगमा आप तक पहुँचा देने का।
चलिए सुनते हैं इस खूबसूरत से गाने को आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा।

क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस

0: एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: अब हर शाम महसूस होती है और भी खास, जब होती है गोंडा की हस्तियों से आपकी मुलाकात। हर शाम हम आपसे करवाते हैं उन हस्तियों की मुलाकात जो होते हैं अपने क्षेत्र के खास। सुनना ना भूले प्रोग्राम गोधुली हर शाम 5 बजे सिर्फ और सिर्फ रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
5: ओ यार एक गल्लस।
6: हाँ पूछो पाजी। ये लोगा साड़ी पत्नी नू धर्म पत्नी कहंदे सी, तो साड़े साले नू धर्म साला क्यों नहीं कहंदे? पूछदा है भारत।

0: इतने में तो आदमी बन ही जाएगा। फिलहाल एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गुंडा एफएम 89.6 एफएम। ये है आपकी अपने गुंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग चौक आरजे अदनान। सो इसी में आपको एक बात बतानी है क्योंकि आपकी परवाह हमको भी रहती है। सो एक परवाह यानी कंसर्न जो है वो शो किया है WHO ने। सो WHO ने क्या कहा है जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसका ख्याल रखा जाना काफ़ी ज़्यादा। सो ये एक अलर्ट है और इसमें हमें अलर्ट होना पड़ेगा। क्या है और किस विषय में है, चलिए बताते हैं आपको मॉर्निंग वाले शो में जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो क्या है भाई आज का ये अलर्ट जो हम बता रहे हैं, WHO की तरफ से है और ये है इबोला वायरस को लेकर के। जी हाँ, इबोला वायरस को लेकर के सरकार का फैसला है, WHO ने घोषित किया है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। सो भारत सरकार का एक कदम है। सो ग्लोबल अलर्ट के बाद भारत सरकार ने एक्शन लेते हुए नागरिकों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है और नागरिकों को डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा और साउथ सूडान की गैर ज़रूरी यात्रा से बचने की सख्त सलाह दी गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इस पूरे मामले और वैश्विक हालातों पर नज़र बनाए हुए है। सो एडवाइजरी जारी की गई है चूँकि कहीं ना कहीं बताया गया था भाई कि ये जो इबोला वायरस है ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। स्पेशली अगर हम बताएं तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा, साउथ सूडान, ये सब ऐसे देश हैं जहां पर इबोला वायरस तेज़ी से पैर पसार रहा है, जिसको लेकर WHO ने इसे ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी घोषित की है और इसी को देखते हुए सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, ट्रैवल एडवाइजरी, कि अगर आप भी कहीं जाने का सोच रहे हो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, युगांडा या साउथ सूडान, तो यहाँ बहुत ज़्यादा इमरजेंसी ना हो तो ना ही जाएं, क्योंकि इबोला वायरस का जो ख़तरा है वो इन कंट्रीज़ में ही सबसे ज़्यादा फ़िलहाल है और इसको लेकर के ख्याल रखना है। सो अगर कहीं पे भी इबोला वायरस को लेकर के कंसर्न है वहाँ से बचने की हिदायत दी गई है। इबोला वायरस भी काफ़ी ख़तरनाक है और स्पेशली इसीलिए कहा जाता है कि जब बाहर निकले हम तो साफ सफाई का, और अगर कोई इन्फेक्शन है तो हम खुद भी अपना एक मास्क लगा कर निकले ताकि वो इन्फेक्शन लोगों तक स्प्रेड ना हो। आई होप कि ये एडवाइजरी भी आप तक पहुंच गई होगी और आप भी समझ गए होंगे। आइए अब चलते हैं आपको और

और काफ़ी कुछ बताने को है जो कि हम लौटेंगे इस म्यूज़िकल ब्रेक के उस पार, और लगातार आपसे हम बातचीत भी करते रहने वाले हैं, क्योंकि भाई आज वेंसडे मॉर्निंग स्पेशल शो है और वेंसडे में काफ़ी कुछ हम लेकर आए हैं जो आप तक पहुंचाना है, जो कि आपके काफ़ी ज़्यादा काम की भी चीज़ें होने वाली हैं। एंड ये ऑब्वियस सी बात है, हो ही जाती है, क्योंकि हम जब बताते हैं तो आप कहते हैं वाह अच्छा इसकी भी जानकारी है, ये तो पता ही नहीं था। खैर कोई बात नहीं, नहीं पता तो उसकी चिंता नहीं, क्योंकि हम हैं और हम हैं तो बताते रहेंगे आपको कहाँ पे क्या आपके लिए जो चीज़ें हैं वो ज़रूरी हैं जो आप तक पहुँच जानी चाहिए। फ़िलहाल चलिए भाई चलते हैं, किशोर साहब की आवाज़ में एक खूबसूरत सा नगमा सुनते हैं अपने आज के इस मॉर्निंग शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा, और नगमे की लाइन से आओ झूमे गाएं। तो चलिए भाई, दिन होता ही है झूमने गाने के लिए।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। डिलीशियस
2: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
1: और क्या क्या है खास?
2: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
1: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवन नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45। मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
4: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
5: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
6: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर।

0: हाँ जी, एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening, Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

चक दे इंडिया से लेकर स्कैम 1992 तक अपनी सादगी और दमदार अभिनय की छाप छोड़ने वाले अभिनेता रमाकांत दायमा साहब का 69 साल की उम्र में निधन हो गया है। जी हाँ, और ये कहीं ना कहीं आपने इनके बारे में ज़रूर सुना है, ज़रूर जाना है, क्योंकि इनका जो अभिनय रहा है वो बेहद दमदार रहा है। सादगी से इन्होंने किया है हमेशा, थिएटर की ये पहचान रहे हैं और थिएटर से लेकर ओटीटी तक शानदार सफ़र तय करने वाले दिग्गज अभिनेता रमाकांत दायमा का 69 साल की एज में निधन हो गया। सो फिलहाल रमाकांत दायमा साहब ने स्कैम 1992 में हर्षद मेहता के फादर शांतिलाल मेहता का किरदार अपनी खास पहचान बनाई थी। इसके अलावा वो चक दे इंडिया ऑफ कोर्स फेम मूवी, कौन नहीं जानता शाहरुख खान की चक दे इंडिया, और उसमें से लेकर के फर्जी, राम सेतु, मुंबई सागा और कई सारी फिल्मों, वेब सीरीज़ में भी ये नज़र आए थे। सो ये थिएटर की दुनिया से जुड़े रहे और अपनी सहज एक्टिंग और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस के लिए भी जाने जाते हैं। अभिनेत्री शुभांगी लाटकर समेत कई कलाकारों ने इन्हें श्रद्धांजलि भी दी और CINTAA ने भी इनके निधन पर शोक जताया है। फिलहाल कुछ ऐसी पर्सनालिटीज़ होती हैं जो दुनिया से जाती हैं तो ज़्यादा शोरगुल तो नहीं होता, या इवन शायद कई लोग जान तक भी नहीं पाते इस तरह से, लेकिन होते बड़े ख़ास हैं। उसमें से एक रमाकांत दायमा भी रहे हैं, जिनकी एक्टिंग, जिनकी सादगी आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि हाँ, इनको तो देखा हुआ। अगर आप इवन सर्च करते हैं अभी गूगल पर रमाकांत दायमा, तो एक ऐसा फेस नज़र आएगा जो कई सारी मूवीज़ में आपने इनको बहुत ख़ास तौर पर देखा और इतने अच्छे और सादे रोल में देखा है कि आप इनको देखते ही पहचान लेंगे कि हाँ हाँ, ये शक्ल तो देखी हुई है। फ़िलहाल वो शक्ल अब हमेशा हमेशा के लिए हमसे दूर जा चुकी है और इनका निधन हो गया है। रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM अभिनेता रमाकांत दायमा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। और साथ ही साथ ऐसे सहज और सरल अभिनेता को वापस से तो चूंकि नहीं पाया जा सकता, लेकिन जो आज के एक्टर्स हैं, जो आज के अभिनेता हैं, वो इनसे इनकी सादगी के गुर ज़रूर सीख सकते हैं, ताकि ये सादगी हर दौर में, किसी भी एरा में हम जाए तो ज़रूर पाए एक्टिंग में। क्योंकि जब एक्टिंग में सादगी मिल जाती है तो ऐसा लगता है ये किरदार कोई मूवी का नहीं बल्कि ये मेरा किरदार है, ये आपका किरदार है। इतना ज़्यादा अपनापन महसूस होता है ना जी? हाँ, बेशक होता है। आइए इस गाने को सुनते हैं। 89.6 FM के मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गुंडा में आपके मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान के साथ। क्या है?

0: हर साल लाखों लोग जलजनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जलजनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियां, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियां वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जलजनित बीमारियां हैं कॉलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।
1: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की

0: हाँ जी, सो फिलहाल आप तक भी ये बात ज़रूर आई होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा विस्तार से हम बता देते हैं कि फाइनली धर्मेंद्र साहब को मिला है पद्म विभूषण पुरस्कार। सो पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो धर्मेंद्र जी को मिला है, झंडेबाजी को मरणोपरांत। सो इसके बारे में आइए कुछ जानकारी हम आप तक पहुँचा देते हैं।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

सो अपने डायलॉग से भाई बॉलीवुड में छा जाने वाले और विलेन को कपा देने वाले धर्मेंद्र पाजी अभी जल्द ही में हमारे बीच से रुखसत हो चुके हैं, लेकिन अब उनको मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार जो है वो मिला है। सो सोशल मीडिया पर इस पल की कई तस्वीरें साझा करते हुए उनकी वाइफ यानी हेमा मालिनी जी ने लिखा, ये मेरे लिए बेहद खुशी और गर्व का पल था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे धर्म जी खुद वहाँ आसपास मौजूद हैं और मेरा हाथ थाम कर मुझे मंच की तरफ ले जा रहे हैं। सो हेमा ने आगे लिखा, जब राष्ट्रपति योग्य हस्तियों को पुरस्कार दे रही थी तब मैं वहाँ धर्म की प्रतिनिधि बनकर बैठी थी। उनके साथ बिताए साल फिल्मों में सह कलाकार के रूप में काम करना और फिर उनकी पत्नी बनने की सारी यादें मेरे आंखों के सामने आ गई, मेरी आंखें भर आई। वो एक बहुत ही प्यार करने वाले पति, अच्छे पिता, दादा और एक सच्चे मार्गदर्शक थे। उन्होंने जानने वाला हर शख्स उनसे बेहद प्यार करता था। सो फैंस ने भी शुक्रिया जताया। अंत में हेमा मालिनी ने भी, उन्होंने ये सम्मान अपने पूरे परिवार और धर्मेंद्र साहब के करोड़ों फैंस और शुभचिंतकों की तरफ से स्वीकार किया और उन्होंने शुक्र अदा करते हुए लिखा कि वो धर्मेंद्र की यादों को अपनी आखिरी सांस तक संभाल कर रखने वाली है। फिलहाल धर्मेंद्र जी की जो भी मूवी आपने देखी है, जाहिर सी बात है आप ज़रूर फैन हैं, और धर्मेंद्र साहब का अपना एक अंदाज है। जब हम अपने अलग अलग अंदाज की बात करते हैं तो बॉलीवुड में धर्मेंद्र साहब का अंदाज काफ़ी अलहदा नज़र आता है, यानी काफ़ी अलग नज़र आता है, और वो अंदाज हम उनके जीते जी उनकी मूवीज़ में देख चुके हैं। और आज तक अगर कहीं किसी भी मंच पर कोई परफॉर्म करने को कहा जाता है या अचानक कोई गेम आप खेल रहे हैं और कहा जाए चलो कुछ मूवीज़ के डायलॉग्स बोलो, तो धर्मेंद्र पाजी के ऐसे कई सारे डायलॉग्स हैं स्पेशली शोले मूवी के भी, जो आपको बरबस ही याद आ जाते हैं, आपकी जुबा पर छाए रहते हैं, क्योंकि ये तरीका जो था वो धर्मेंद्र साहब का था। इससे इतर एक पर्सनैलिटी के रूप में अगर देखा जाए तो वो फैमिली के लिए तो बहुत ही प्यार करने वाले शख्स थे, साथ ही साथ उनकी सादगी, उनका लोगों को सम्मान देना, अपने गुरुओं को हमेशा से मानते रहना, ये उनकी अलग पहचान बनाता है। धर्मेंद्र पाजी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहने वाले हैं।

0: बीते साल 2023 में 1,73,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी न चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: अरे सुना
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
3: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
4: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
5: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
4: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
6: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88403395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या बात है, तुम जब साथ हो अपने तो भाई हम सब कुछ कर सकते हैं। कहते ना कि कुछ लोग कुछ ऐसी स्ट्रेंथ होते हैं आपके कि जितना भी आपको कोई दूर करना चाहे लेकिन अगर वो पास है तो फिर आपके पास आपकी सारी की सारी स्ट्रेंथ है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गुड मॉर्निंग गोंडा वाला शो। गुड मॉर्निंग गोंडा।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite Ajay Khan.

सो हमने जो मैसेजेस पढ़े थे उसके बाद भी काफ़ी सारे मैसेजेस आ गए हैं, किसने क्या कुछ लिखा ये बताते हैं। सो यस, रेखा कुशवाहा जी मौजूद हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग टू यू, आपका वेलकम करते हैं। धर्मेंद्र मोहन जी फ्रॉम आवास विकास, अदनान सर जी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग आपको भी। मुस्तफ़ा ने लिखा है गुड मॉर्निंग टू यू। सविता दुबे जी को गाने बहुत पसंद आए, थैंक यू सो मच। धर्मेंद्र जी लिखते हैं अच्छा सॉन्ग, अदनान सर जी थैंक यू सो मच। अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य संबंधी महामारियों की जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आयुष तिवारी आपका वेलकम करते हैं, गोंडा से मौजूद हैं आप। इसके अलावा हमारे उन्नाव से आए हैं विकास जी, और विकास तिवारी जी लिखते हैं गुड मॉर्निंग अदनान सर, नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच कि विकास जी आपको भी पसंद आया। आप लोग जुड़े और इतना सारा प्यार दिया, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। फिलहाल अब हम आपसे बाद में मुलाकात करते हैं, लेकिन आप ज़रूर बने रहिए अपने 89.6 FM के रेडियो पर, क्योंकि यहाँ लगातार चलता रहेगा एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंड एंटरटेनमेंट।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346। मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब?
1: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
3: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
4: श्वेता, देख रही हो क्या हो रहा है?
5: क्या हो रहा है? हवा चल रही है?
4: नहीं, रमेश भैया आ गए हैं, ड्राइवर जी हमारे।
5: ओके।
4: और कितनी जोर से हॉर्न बजा रहे हैं, जरा उनको बोलो ना कि आ रही हूँ, बोलो।
5: रमेश भैया रुको जरा, हम आते हैं। और हाँ, आज गाड़ी में ज्यादा लोग जाने वाले हैं घूमने के लिए गाँव।
4: हाँ बिल्कुल, हम कुछ नए लोगों को चल रहे हैं लेकर के। अच्छा ये बताओ श्वेता, गेस करो।
5: जी।
4: एक कोई मेरा बहुत बहुत बहुत खास, मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड चल रही है, बताओ कौन से फ्रेंड हो सकते हैं?
5: वो गाँव वाली चाची क्या?
4: नहीं यार,
5: गाँव वाली में क्यों जाएंगे?
4: हाँ।
5: यानी यहीं से आप किसी को ले जा रही हैं?
4: और अच्छी बात क्या है कि वो पहली बार गाँव जा रही हैं और मेरे साथ जाने को तैयार हो गई।
5: जो इतने दिनों से कह रही थी। हाँ। कि तुम लोग अकेले अकेले चले जाते
4: करो,
5: हो।
4: गेस करो।
5: गेस करना है तो उनका नाम है गीता दीदी।
4: यस, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, बिल्कुल सही। लो आ गई दीदी।
6: क्या तुम लोग क्या आपस में बात कर रहे हो?
5: वाओ, हमने सुना है कि आज हमारे साथ आप भी चल रही हैं गांव घूमने।
6: हाँ तो इतने दिन से तुम लोग जो है टाल मटोल लगाए हुए थे ना।
4: नहीं
6: आज
4: दीदी,
6: तो मैंने जिद पकड़ ली कि मैं जा के ही रहूंगी।
4: आज ये मान के चलिए कि आप पहली बार गांव जा रही है ना।
6: जी।
4: तो आप चलेंगी तो आपको कितना मजा आने वाला। और गीता दी, आपने तो साड़ी डाल रखी ग्रीन कलर की, बहुत बहुत प्यारी लग रही है, बिल्कुल जैसे चंदा।
6: अरे देखो, गांव में बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं ना।
4: हाँ हाँ हाँ।
6: तो उनके सामने थोड़ा साड़ी में जाना अच्छा लगता है, ये हमारी संस्कृति है।
4: क्या बात, क्या बात।
6: और जो तुमने कहा ये चंदा जैसी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं हूँ चंदा जैसी नारा।
4: क्या बात, क्या बात, क्या

0: श्वेता
1: जी जी,
0: अरे ये डिब्बा तुम रखो यार, पैक करो इसको।
1: इस डिब्बे में क्या है बताया नहीं आपने?
0: इसमें मैंने आलू के पराठे रखे हैं और गीता जी भी लेकर के आई हैं। क्या लाई गीता जी, आप बताइए जरा।
2: आज तो मैं खीर बना के लाई हूँ।
0: क्या बात, मजा आ जाएगा। तो हम लोग गाँव चलते हैं और ये सारे सामान उठाकर तुम फटाफट गाड़ी में रखो।
1: ओ, गाँव के साथ साथ आज खाने को भी यम्मी यम्मी मिलेगा।
0: और गीता जी आप एक काम करिए, आइए आगे आइए और आगे वाली सीट पे आप बैठ जाइए। रमेश भैया जरा सा उधर के सकिए।
2: ये क्या भाई, मुझे आगे वाली सीट पे बिठा रहे हो? हम तो आप लोग के साथ बैठना चाहते हैं।
0: तो ठीक है, कोई बात नहीं श्वेता, इनको हम लोग पीछे बिठा लेते हैं अपने साथ। आइए आइए।
1: तो डिब्बे को आगे रख दे क्या?
0: अरे अभी भैया रामकरण भैया भी मिलेंगे आगे।
1: अच्छा हाँ, वो भी तो जाएंगे हमारे साथ।
0: उनको भी तो लेना है। तो तुम जरा से किसको यार शिफ्ट हो जाओ उधर से।
1: अच्छा अच्छा, जरा सकती हूँ।
0: हाँ किसको? गीता दी
2: जी जी,
0: आइए, मैं शिफ्ट हो गई इधर। आइए आप भी।
2: बस बस बस, इतनी जगह मेरे लिए, हाँ इतनी जगह काफी है।
0: क्या बात है। तो ये बताइए जी कि लगता है जीजा जी बहुत पैसे कमाने लगे हैं अब।
2: ये कैसे कहा आपने?
0: इसलिए कि आप इतनी बढ़िया साड़ी पहन के आई हैं। आपकी ये साड़ी जहाँ तक मुझे लगता है, क्यों श्वेता?
1: हाँ बिल्कुल।
0: एक गेस करो कितने की होगी साड़ी है?
1: ये कम से कम 1000 के तो ऊपर होगी ही,
0: है ना? हाँ। तो मुझे तो लगता है सिल्क की है, तो ये 4000 मान के चलो,
1: 5000 तक। हाँ। होगी।
2: ये तो भाई गलत बात है, आप लोग मेरी साड़ी को इस तरह से जज कर रहे हैं कि जैसे मैं करोड़पति लखपति हूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल दी, क्यों नहीं। हम तो भैया यही कहेंगे कि भैया कमाए आपके हस्बैंड नोट और आप ऐसे ही ऐश करें, क्या बात।
2: चलिए आपकी शुभकामनाएं हमारे साथ है।
0: बिल्कुल है, बिल्कुल है मैम।

0: बैठी दीदी, बैठ गई ना?
1: बिल्कुल आराम से।
0: तो आइए चलिए चलते हैं। श्वेता,
2: हाँ हाँ
0: दी, बहुत प्यारी लग रही है ना।
2: अरे ये तो हम लोगों ने जब गाड़ी में नहीं बैठे थे हम तभी ये बात सोच रहे थे, और हम दोनों सहेली आपस में कितना कह रहे थे कितनी हाँ, प्यारी लगती है गीता दीदी, और ऊपर से ये साड़ी क्या जच रही है।
0: ये जरा पूछते हैं इनके हस्बैंड के बारे में।
2: हाँ हाँ
3: क्या तुम लोग बात कर रहे हो,
2: आपने हमारी बात सुन ली क्या?
3: बिल्कुल बिल्कुल।
0: दीदी ये बताइए जीजा जी कैसे हैं?
3: अब कहा तो जाए हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है।
0: अरे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है श्वेता।
2: कोई नहीं, हमने तो गाना सुना हम काले हैं तो क्या हुआ, दिल वाले तो दिल उनका बहुत अच्छा है, ये अलग की बात है।
3: ये तो जोड़ियां ऊपर बनती है, और मुझे भगवान ने बहुत गोरा बना दिया और आपके जीजा जी को काला बना दिया, तो क्या किया जाए।
0: ओ माय गॉड, कोई नहीं जी, मन अच्छा होना चाहिए, दिल अच्छा होना चाहिए, गोरे काले की तो कोई बात ही नहीं है।
2: तो एक गाना मुझे याद आ रहा है।
0: कौन सा गाना?
2: मैं गोरी सैया काले मिले तो क्या बात? गाते हुए चलते हैं।
0: चलिए दीदी ये गुनगुनाते हुए हम लोग गांव पे चलते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।

0: रमेश भैया, हाँ हाँ हाँ, बस बस बस यही रुकी यही रुकी। श्वेता देखना, यही गांव है ना?
1: हाँ लग तो रहा है, और गांव कितना हरा भरा लग रहा है। चलिए उतरते हैं।
0: कितनी साफ सफाई है दी।
2: बिल्कुल बिल्कुल, मेरा मन तो जैसे मयूर हो गया है कि अभी मैं यहाँ पर घूमूंगी फिरूंगी नाचूंगी गाऊंगी भी।
0: क्या बात है, क्या बात है श्वेता।
1: और पूरा साथ देगी आपकी आज श्वेता?
2: बिल्कुल।
0: अच्छा ये भी बात है, आप श्वेता अपने आप को आरजे भी बताने लगी है। जरा देख लीजिए मैम, क्या होता है कि मैम हो गई है, आरजे मैम हो रही है भाई। क्या बात है, तरक्की होनी चाहिए, अच्छी
2: तो
0: बात।
2: उसकी आवाज इतनी प्यारी है कि वो आरजे लायक है भी।
0: तो खुद ही कह रही है गीता दी, वो खुद ही कह रही है आरजे श्वेता। ओए हेलो।
1: हाँ मेरा ध्यान तो इस गांव को देखने में लगा हुआ है। चलिए पहले जो करने आए हैं वो करते हैं, बातें तो हम गाड़ी में बैठते करेंगे।
0: तो नौकरो नौकरो देखो कोई है घर में क्या? दरवाजा बंद है।
3: नमस्ते मैडम।
0: नमस्ते चाची, कैसी हैं आप?
3: ठीक है भाई। नहीं अपन बताओ।
2: ये वही कजरी चाची जिनकी हाँ, बात कर रही थी।
0: वाती बहुत यही है कजरी चाची।
3: कजरी मैडम जी।
2: नमस्ते चाची जी।
3: नमस्ते नमस्ते
0: चाची। ये सब हमारी सखियां हैं, श्वेता को तो आप जानती हैं।
3: हाँ, नमस्ते चाची जी।
4: हाँ नमस्ते बहनी, नमस्ते। तो हमेशा आवती।
0: और ये जो है हमारी स्पेशल दीदी है, गीता दीदी है। और चाची ये पहली बार आई हैं गांव।
2: आपके बारे में मैंने बहुत सुन रखा कि आप बहुत सुरीला गाती हैं।
0: हाँ बहुत अच्छा गाती हैं चाची हमारी, और ढोलक भी पीट पीट के गाती हैं भाई।
1: बहुत दमदार गायकी है हमारी चाची।
0: हाँ जबरदस्त चाची है हमारी ये। और चाची आपकी बहू कहाँ है जो बहुत प्यारी सी है?
3: बुलाए विक्रू को, बहनी बुलाई थे। सुनीता।
5: हाँ माँ जी।
3: आओ तो नहीं देखो, मेहमान लोग आए हैं।
5: प्रणाम चाची।
0: खुश रहो खुश रहो।
2: कितनी प्यारी बहू है ना।
0: हाँ हाँ दी, ये भी बहुत अच्छा गाती है, थोड़ी पढ़ी लिखी है, गांव में है।
3: अरे बहनी हमारे बहुआ बहुत पढ़े लिखे ही।
0: हाँ
3: गांव से ना ही, शहर से ही।
0: कौन से शहर से है चाची ये?
5: हम बरेली।
0: बरेली से हैं।
2: हाँ, आवाज कितनी प्यारी है इसकी ना,
1: जैसे लग रहा है लता दीदी बोल रही
0: हाँ,
1: है।
0: सच्ची कह रही हो सच्ची। पर ये तो चाची हमेशा कहा करती थी कि हमारी बहू की जो है वो जुबान बिल्कुल कैंची जैसी है और बहुत बोलती है। हाँ चाची क्या?
3: अरे तो कहा करी बहनी, सहरिया तो है ही, तो सहरिया वाला काम है, जुबान लड़ावा कर थी।
0: हाँ नहीं पढ़ी लिखी है, ऐसा नहीं है। क्यों क्यों अनीता भाभी?
5: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है।
0: आपका नाम अनीता है भाभी की? सुनीता।
5: सुनीता है।
0: अच्छा सुनीता है। कितना पढ़ा आपने भाभी?
5: मैंने बीए कर रखा है।
0: बीए कर रखा, तो कोई आगे कुछ नहीं करना चाहती?
5: जी कर रही हूँ बीएड।
0: बीएड कर रही हैं। तो आप ये बताइए गांव में आपको कैसा लग रहा है?
5: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: साफ सफाई बहुत रहती है ना?
5: जी।
0: गांव की साफ सफाई देखकर क्यों दी आप बताइए कुछ अपने?
2: बस मैं तो इसकी बातों में खो गई हूँ ना।
0: हाँ।
2: इतना प्यारा बोल रही है कि इसकी आवाज इतनी मीठी लग रही है, लगता सुनते ही जाएं।
0: और मेरी चाची क्या कहती है दी? मेरी चाची क्या कहती है कि इसकी जुबान तो पूरी कैची है।
2: देखिए किसी बात का तर्क देना कैची नहीं कहलाता है, वो लगता है उनको कि ये बराबर बोल रही, लेकिन वो तर्क देती है।
0: हाँ, अपनी बात रखती है
2: और
0: तो इसलिए कैची से जुबान होना कोई बुरा नहीं।
3: लेकिन बहनी ये तो कहा करती कि मेरी कैची से जुबान रुकती ही नहीं।
0: हाँ गाने भी गाती है। तो चलो भाई एक सुनीता की आवाज में गाना भी सुन लेते।
1: हो जाए भाई, हो जाए गाना।
0: बिल्कुल हो जाए।

0: दुल्हन दुल्हन तने चावा हुआ लाओ, मैडम जी को लोग का सत्कार करो।
1: जी माँ जी लाई, लीजिए आप दे दीजिए इन लोग को।
2: नहीं नहीं नहीं, नहीं आप ही लेकर आइए भाभी, आप ही लेकर आइए। आपसे मिलके अच्छा लग रहा है। और आपने जो ये खेती पाती आपने खुद लगाया, ये सारे पौधे आपने लगाए हैं?
1: जी मेरी माँ जी ने लगाए।
2: अच्छा चाची।
1: हाँ
2: आप पे लगे बालिका।
0: हाँ बहनी, पूरा दिन खलिए तो रही थे करी का, लड़के बच्चे कोनो है ना है कि बहन साथ खेली
2: नहीं तो
3: बड़ा अच्छा लग रहा है। बाग बगीचा इतने सुंदर सुंदर आपने फूल लगा रखे हैं, मन खुश हो रहा है देख कर।
2: ये हरियाली कितनी अच्छी लग रही है दीदी।
3: और देखिए शहर में है, हम लोग गमलों में थोड़े से फूल लगा लेते हैं, लेकिन यहाँ देखिए कितना हरा भरा एकदम बगीचा बना रखा है हमारे, ये क्या नाम है इनका, कजरी चाची।
2: हाँ कजरी चाची, कजरी चाची।
1: हाँ हाँ बहनी बोलो।
2: आपकी बहुत बहुत आपकी बड़वर्गी कर रही है हमारी गीता दीदी।
3: नहीं नहीं ये सच है। हाँ। नहीं मैं कोई बड़ाई नहीं कर रही हूँ, आपने बहुत अच्छा काम कर रखा, आपने अपना आंगन बहुत अच्छे से सजा रखा है।
2: और जानती है दी, इन्होंने मच्छर देखिए, मच्छर ना इसके लिए छिड़काव कर रखा, जाली जैसा लगा रखा, ये देखिए।
0: बहुत मच्छर रहती है मामा, तो हम सब तनी संभाल के सुरक्षित रही थे। देख
2: हाँ, तो चाची जानती नहीं इससे मलेरिया हो जाता है क्यों दीदी, बताइए।
3: बिल्कुल
2: तो
3: बिल्कुल। और ये जो आपने उपाय कर रखा ये बहुत अच्छा, हमारे शहरों में लोग नहीं जानते हैं इसको।
2: हाँ आजकल देखिए कितना फीवर चल रहा है।
3: बिल्कुल है, अब ये मलेरिया का सीजन ही आ रहा है।
2: मलेरिया का सीजन है और टाइफाइड बुखार हो रहा है आजकल, पानी वानी पीने में। और ये घड़े में आपने पानी भर के रखा है?
0: हाँ बहनी।
2: अच्छा इसमें कुछ डाल भी रखा है, फिटकरी वगैरह जिसे डालते हैं?
0: हाँ बहनी, अरे वो आज दुल्हनिया रखी सी तो पूछो इसका डारी सी।
2: तो ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, आपकी बहू बहुत अच्छी है।
3: और घड़े का पानी तो हमें बेहद पसंद है, हम लोग बचपन में जब अपने गांव जाया करते थे तो ऐसे ही घड़े हमारे यहाँ रखे रहते थे। और श्वेता कितना अच्छा लगता है ना, सोंधापन होता है।
4: मेरा तो मन करता है कि मैं फटाफट सेल्फी ले लूं सभी के साथ।
2: लो, कर लो।
4: क्योंकि हम ना बचपन में फ्रिज के पास जब आता था नया नया फ्रिज घर में, तो फ्रिज के पास लोग फोटो खिंचाते थे।
2: हाँ,
4: ये घड़े के साथ तो कोई फोटो नहीं लेता है,
3: घड़े के साथ खिंचाते हैं हम लोग,
2: बिल्कुल खिंचाएंगे बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है चाची, आपका ये द्वारा मोहारा और आपका ये घर और ये गाँव बहुत बहुत मतलब पीसफुली हवा जो कहते हैं,
4: शांति
2: शांति। और कितना मतलब मुझे क्या कहूँ, मेरा मन करता है मैं यहीं रह जाऊँ।
3: हाँ तो बिल्कुल, गांव में कितना कोलाहल होता है, एकदम शोर शराबा।
1: आप लोग यहीं रुक जाइए कुछ दिन के लिए।
2: अरे भाभी कैसे रुक सकते हैं, आपने तो कह दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
4: लेकिन कोशिश करेंगे हम आया करेंगे बीच बीच में, लेकिन अभी गाना सुन लिया जाए।
0: हम सब तो हंसे बोले थे, तुम्हें कहा होगा मुँह का बनाए हो।
1: माँ जी हमने आपसे कहा था ना कि मेरे लिए एक चुनरी मंगा दीजिए। अरे
2: काहे, क्यों भाई काहे ऐसा करती हैं आप काम, आप कहीं होती तो हम ही लोग ले आते, क्यों श्वेता?
4: और क्या, हमारे पास तो बहुत बड़ी बड़ी मार्केट है चुनरी
2: की। आपको कैसी चुनरी चाहिए, किस तरह की चुनरी?
1: जैसे ये पहनी हुई है ना, एकदम चमकीली।
2: अच्छा
3: मेरी साड़ी देख करके।
2: हाँ चुनरी कह रही है। चलिए चलिए, ये पक्का वादा है, अगली बार जब आऊंगी तो आपके लिए रेड कलर की बहुत प्यारी सी चुनरी लाऊंगी। और तब तक आ जाएगा नवरात्रि का त्योहार,
3: और तब तक ये वाला गाना गुनगुना दीजिए ना।
2: कौन सा?
3: ये चुनरी वाला गाना जो आप गाती थी।
4: हाँ किरण दीदी गा दीजिए।
2: अरे हम का चुनरी बिना तर सौले बलवा,
4: क्या बात, हो जाए मजा ये गाना।
3: बहुत मजा आ गया।

0: चाची।
1: हाँ बहनी।
0: ये बताइए कि ये जो आपका बिटवा है कितना कमाता है महीने में?
1: अरे बहनी 2-4 हजार जोन कमाए ले खेती बेड़ी से।
0: अच्छा, तो ये आपकी बहू संतुष्ट है उससे?
2: अरे जी, मैं संतुष्ट हूँ।
0: संतुष्ट है आप
2: जी?
0: तो अच्छी बात है, क्योंकि
3: बिल्कुल।
1: अरे चाची, अरे बहनी तेरे मुँह कहा थी बदिया हमसे लड़ा थी।
0: काओ कहती हैं, काओ कहती हैं।
2: नहीं चाची, ऐसा कुछ बात नहीं है।
0: हाँ,
2: अब जैसा जो है वैसे तो हैंडल करना।
3: चाची, आवाज से तो नहीं लगता है कि आपकी बहू लड़ती होगी।
0: सही कहा श्वेता।
1: नहीं बहनी, बदियम कहा थी कि पैसा सब यहाँ बाहर उड़ाए देते हैं और इनके मन के काम ना आए होते हैं।
0: तो ये सुनिए, आप ये गाना सुनिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। भाभी जी, आप भी सुनिएगा ये गाना।
2: कौन सा?
0: अब आप सुनिए फिर आप बताइएगा कैसा है।

0: कैसा लगा चाची जी आपको ये गाना कैसा लगा?
1: अरे बहुत नीक लाग बहनी, इनका हाँ। समझाओ कुछ, अब समझ गए हुई हैं।
0: अच्छा भाभी जी आप भी गाती हैं गाना वरना?
1: जी।
0: क्या गाती हैं?
1: भजन वगैरह।
0: अच्छा भजन।

0: बहुत प्यारा गाया आपने, बहुत प्यारा गाया।
1: क्यों? आवाज तो मतलब हम तो दीवाने हो गए इनकी आवाज।
0: अच्छा गीता दी एक बात बताइए, आप हमारे साथ गाँव आई, आप गांव में घूमी भी हैं, अभी चाची हमारी घुमा के लाई हैं।
2: कितना अच्छा नाश्ता खाया हमने। हाँ,
0: बहुत अच्छा भाई, भाभी बहुत अच्छा। कैसा आपको कैसा फील?
1: बहुत अच्छा, बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा था कि पुराने समय में जब हम अपने गांव जाया करते थे,
0: हाँ,
1: नानी के घर, तो ऐसा ही हमने खाना खाया। और ये बहुत दिनों बाद हमें इस तरीके का खाना आज फिर खाने को मिला।
0: क्या बात। तो अब जब मैं आपसे कहूंगी कि गीता दी गाँव चलना है,
1: बिल्कुल तैयार एकदम।
0: क्या बात है श्वेता,
3: एकदम। फिर तो हम तीनों की जोड़ी भी मजेदार हो जाएगी, और अच्छे अच्छे नाश्ते के साथ गाने बजाने, और देखिए फोटोज कितनी अच्छी अच्छी हमने निकाली है।
0: और ये चाची, ओ चाची।
4: हाँ बहनी।
0: क्या कर रही है, इतने इतने लग गई, घर वर साफ करने लगी? अरे रुक जाइए,
3: अरे तो शाम हो गया है ना, हम लोग अभी हमें इजाजत दीजिए चाची,
0: हम निकलने वाले। और एक बात आपको और बताएं कि आपकी बहू ने जो अभी सब साग वाग मिक्स करके ना खेत से तोड़ के लाई है, जो मिक्स करके पकौड़े खिलाए, वो हमारी गीता दीदी को और श्वेता को हम लोगों
1: ने बहुत अच्छे लगे,
4: धन्यवाद।
0: और अच्छी बात ये है,
3: ये चटनी,
0: चटनी से बट्टे की पीसी है श्वेता,
3: यम यम, बहुत अच्छी चटनी।
0: मजा आया भाई बहुत।
3: और चाची अगर हो तो थोड़ा डिबियम पैक कर दीजिएगा।
0: ये बस ऐसी ही है, जब इसको कोई चीज अच्छी लगती तो मांग ही लेती है।
4: हाँ। बिल्कुल बहनी, अपने से मने ही मांग ही लेते है, और अपन समझती तो मांग लेती।
0: चाची एक बात और बताएं, एक बात और कहें आपसे।
4: हाँ बहनी,
0: अभी आम का सीजन गया, आपने खटाई जरूर डाली होगी, क्यों दीदी?
1: बिल्कुल अरे गांव का आम का अचार
0: तो दीदी थोड़ा लिया जाए, है
4: बिल्कुल बिल्कुल दुल्हन जाओ तो नहीं डब्बा ले आओ, ठीक है ला रही हूँ।
0: हाँ एक छोटे छोटे उसमें जो है बांध दीजिए, हम तीन जगह, हम तीन थोड़ा, क्यों श्वेता?
3: आप दो ही रखिए, आप बनाइएगा, हम खुद ही खाने आ जाएंगे आज।
0: चलिए ठीक है, हमारी गीता दीदी बनाने में एक्सपर्ट है। और भाभी आपको मैं बुला रही हूँ, और मैं चाची आपको बुला रही हूँ, जैसे आप लोग आई है ना
4: जी,
0: आप लोग आएंगी क्योंकि हम लोग आए हुए हैं गांव घूमने के लिए, ऐसे आप लोग शहर आइए, हमारा शहर देखिए, और आपको हमारे यहाँ भी मजा आएगा। हम लोग भी साफ सफाई रखते हैं, लेकिन अब ये है कि आपकी तरह तो नहीं है,
4: बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप लोग खूब अच्छे से।
0: हाँ तो जैसे हमारे पास सुविधाएं होती है और आपके पास सुविधाएं नहीं है, क्यों दीदी?
1: बिल्कुल, अब देखिए गांव में भी कितनी सुविधाएं होने लगी,
0: अब धीरे धीरे होने लगी। अब मिट्टी का घर है, कितना अच्छा, इसको गोबर से सैत वैत के रखा है, कितना प्यारा लग रहा है,
3: चिकना चिकना
0: चिकना, और ये बाहर द्वारा मोहर, और ये फूल पौधे कितना बढ़िया लग रहा है।
3: इतनी शांति शहरों में कहाँ होती है,
4: और गांव शहर में यही तो अंतर है।
0: और एक भी मच्छर काटे तुमने?
3: एकदम नहीं। और वो आम का पेड़ देखिए,
0: हाँ तो मच्छर ही मच्छर होता है। तो सुनिए, आपकी बहू को कृष्ण के गाने बहुत पसंद है, और चाची आपको भी बहुत पसंद है।
4: हाँ
0: तो एक गाना मुझे भी याद है, और हमारी दीदी को भी याद है, और श्वेता को भी याद है, तो चलते चलाते क्योंकि चलने का टाइम है। हाँ हाँ, खटाई यही रख दीजिए भाभी, खटाई यही रख दीजिए,
4: लीजिए रख देते हैं
0: दीदी, रख लीजिए आप।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो एक गाना दीदी जो हम लोग गाते नहीं थे जन्माष्टमी में, ओ मुरली वाले जादूगर यमुना से निकल कर आ जा रही।
4: अरे बहनी बोलिए, इतना नहीं है गाय तो तनी मन कह दिए।
0: तो यही गनवा आपको सुना के और फिर हम लोग चले चलते हैं
4: जी।
0: अच्छा भाई, सबको राम राम,
3: राम राम चाची,
1: राम राम चाची, और बहू को ढेर सारा आशीर्वाद।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450 944 999।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
3: नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। खड़ी में वक्त हो चला है आपके अपने प्रोग्राम स्वास्थ्य संगिनी का। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली, गोंडा शहर की धड़कन। स्वास्थ्य संगनी, जिसको हम लेकर आते हैं स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानस्थली के खूबसूरत पहल के तहत, और इस कार्यक्रम में बात होती है आपके सेहत की। और आज हम जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं, वो है इस गर्मी और इस कड़कती धूप में एक ऐसी प्रॉब्लम जो हर इंसान फेस कर रहा है। यूं तो हम कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन आजकल एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे हर कोई टैकल कर रहा है, और वो है हेयर फॉल का इशू। किसी के बाल झड़ रहे हैं तो किसी के बाल पूरे हाथ में निकल रहे हैं, और हम कंफ्यूज होते हैं ये सोचकर कि गर्मियों में जो हेयर फॉल है वो हेयर फॉल है या हो रहा है हेयर शेडिंग, और दोनों में हम काफी ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। क्या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, किस वक्त में जाना चाहिए और ये कब रुकता है? कई बार ऐसा होता है कि स्टार्टिंग ही, यानी कि मई की गर्मी आते ही बालों का झड़ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और नवंबर आते आते, यानी कि सर्दियां शुरू होते होते, ये अपने आप से रुक भी जाता है, और हमें लगता है भाई ये क्या हो रहा है। पसीने की वजह से, गर्मी की वजह से, धूल मिट्टी और बहुत ज़्यादा ऑयल की वजह से कई बार हमारे बाल बहुत तेज़ी से झड़ते हैं, और वक्त आते आते ये रुक भी जाते हैं। बट कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लोग हैं जिनके बाल 12 महीने लगातार झड़ते हैं, जिसे हेयर फॉल इशू कहा जाता है, जिसमें उनके बाल पतले होते जा रहे हैं, और अब डर इस बात का है कि क्या मैं गंजा तो नहीं हो जाऊंगा। लड़कियों में स्पेशली डर रहता है कि भाई अगर बाल नहीं रहेंगे तो गंजे हो जाएंगे, और क्या कुछ करना पड़ेगा। दुनिया भर के सीरम्स ट्राई कर लिए हैं, दुनिया भर की सप्लीमेंट्स ले लिए हैं, हेयर ऑयलिंग कर लिया है, न जाने कितनी तरह के तेल बदल दिए हैं, इसके बाद भी आपके बालों का झड़ना नहीं रुक रहा है, तो भाई ये संकेत देता है कि आपके शरीर में कुछ तो कम है और आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी हेयर फॉल और हेयर शेडिंग के बीच में छोटे से डिफरेंस की, और समर्स में ये हेयर फॉल इतना ज्यादा क्यों बढ़ जाता है, इसको कैसे टैकल किया जाता है, आपके अपने स्वास्थ्य संगनी में। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं आपको बताते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संगनी, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। स्टे ट्यून्ड।

0: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली की खूबसूरत पहल के तहत हम लेकर आते हैं आपके लिए स्वास्थ्य का कार्यक्रम जिसका नाम है स्वास्थ्य संगिनी। तो आज हम बात कर रहे हैं बालों के झड़ने के इश्यू को। बालों के झड़ने को ज्यादातर लोग हेयर लॉस का ही नाम दे देते हैं, हालांकि कभी कभी हेयर शेडिंग की वजह से भी बाल झड़ने लग जाते हैं और इसके बीच में एक आम इंसान फर्क करना भूल जाता है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल और अनबैलेंस डाइट के कारण कई लोगों का हेयर फॉल बहुत तेजी से बढ़ रहा है और लोग हेयर फॉल का शिकार बहुत तेजी से होते जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों में बाल टूटना काफी आम हो गया है। यूं तो डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर 50 से 100 बाल आपके दिन में टूटते हैं तो ये नॉर्मल है, बट जब बहुत सारा बाल आपको अपने हाथ में दिखाई पड़ने लग जाते हैं, शावर में दिखाई पड़ने लग जाते हैं, या फिर आप सोकर उठे और आपके तकिए पर न जाने कितने बाल दिखाई पड़े, तो ये एक चिंता की बात हो जाती है और हर इंसान का दिल बैठा जाता है कि भाई अब तो वक्त आ गया है गंजे होने का। तेजी से झड़ते बालों और आपकी जितनी भी हेयर प्रॉब्लम्स हैं उसका पहला संकेत माना जाता है। यानी कि अगर आपका डाइजेशन भी इशू चल रहा है, आपके बॉडी में पानी की कमी है, तो भी कहीं ना कहीं आपके बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं और कई बार आपके झड़ते बाल आपके अंदरूनी समस्याओं को भी बताते हैं। इवन आपके स्कैल्प से जुड़ी न जाने ऐसी कितनी ही इश्यूज हैं जिसमें सबसे पहले जो सिम्टम आपको नजर आता है वो होता है हेयर फॉल। तो भाई आइए जानते हैं कि जो आपके बाल झड़ रहे हैं क्या वो हेयर लॉस है या फिर वो हेयर शेडिंग हो सकती है और इन दोनों में क्या फर्क होता है। जी हाँ, इन दोनों का मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, इसीलिए आपको हम बताने जा रहे हैं हेयर लॉस और हेयर शेडिंग में अंतर। हेयर शेडिंग बालों की एक आम प्रक्रिया है। हेयर शेडिंग में अक्सर दिन भर में लगभग 50 से 100 बाल यानी कि 1% बाल झड़ जाते हैं। हालांकि हेयर शेडिंग में भी बालों के टूटने की संख्या बालों की हेल्थ पर निर्भर करती है। मई में यानी कि गर्मियां जब बढ़ जाती हैं तो हेयर शेडिंग भी इंक्रीज हो जाती है और आपके 100 से ज्यादा बाल भी दिख सकते हैं और इसीलिए वो आपको विजिबल होने लग जाते हैं। जब भी आप शावर लेने जाते हैं यानी कि आप नहाने जाते हैं, बाल धोते हैं, तो आपके बहुत ज्यादा बाल आपको फ्लोर पे दिखाई पड़ते हैं, आपके हाथों में नजर आते हैं, दीवालों पर नजर आते हैं और आपको लगता है कि बाल अचानक से झड़ना शुरू हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, बस हाँ अब फर्क इतना है कि हेयर शेडिंग पहले जो 50 से 100 दिन में हो रही थी वो अचानक से थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है और अब आपको वो नजर आने लगी है, क्योंकि जब हमें पसीना आता है, स्कैल्प में बहुत ज्यादा तेल आके रुकता है, गंदगी मिक्स होती है और उस पर हम हैवी ऑयलिंग और कर लेते हैं तो हमारे बाल और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से जब भी हम हेयर वॉश करते हैं तो काफी ज्यादा बाल हमें हाथ में दिखाई पड़ जाते हैं। वैसे तो थोड़े बहुत बाल लगभग सभी के टूटते हैं, मगर अगर ज्यादा तेजी से आपका वजन घटा है, आपने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया है, या फिर बालों में आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो, या फिर मौसम में बहुत तेजी से बदलाव हो रहा है, तो ये वो सारे कारण होते हैं जिससे हेयर शेडिंग शुरू हो जाती है। आइए जानते हैं कि अब हेयर लॉस का मतलब क्या होता है। हेयर शेडिंग के विपरीत हेयर लॉस एक गंभीर प्रॉब्लम है। हेयर लॉस शुरू होने के हेल्थ से जुड़े कई कारण हो सकते हैं। वहीं हेयर लॉस में हर दिन 100 से ज्यादा बाल झड़ते हैं और जहां बाल झड़ते हैं वहां दोबारा बाल कभी नहीं उगते। यानी कि आप देखते हैं कि आपके क्राउन एरिया, आपके टेम्पल एरिया में जब बाल बहुत तेजी से झड़ रहे हैं तो वहां पर दोबारा नए बाल उग नहीं रहे हैं। वहीं हेयर शेडिंग में जब भी बाल झड़ते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि बाल वहीं से दोबारा उगने वाले हैं, यानी उसके नीचे कुछ बाल हैं जो झड़ते ही निकल आएंगे। बट हेयर लॉस में होता है इसका उल्ट। हेयर लॉस में सिर्फ आपके बाल झड़ते हैं और वहां से नहीं उगते और इसी से आपको आगे जाकर कुछ समय बाद गंजापन देखने को मिल जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि गर्मियों में बाल झड़ने की समस्या इतनी ज्यादा क्यों बढ़ जाती है। इसकी खास वजह है तेज धूप, पसीना, स्कैल्प में गंदगी, शरीर में पानी का कमी होना। एक्सपर्ट्स के अनुसार गलत हेयर केयर, पोषण की कमी, तनाव, ये सारे कारण भी हो सकते हैं जो आपके हेयर फॉल को इंक्रीज करते हैं। गर्मी का मौसम अपने साथ कई समस्याएं लेकर आता है। गर्मी में कई लोगों का हेयर फॉल इशू बढ़ता है तो कई लोगों को स्कैल्प में इचिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कई लोग होते हैं जिन्हें स्किन रिलेटेड इश्यूज होने लग जाते हैं, या फिर अगर वो तेज धूप में निकल जाए तो उनको एलर्जी हो जाती है, कहें तो दाने निकल आते हैं, रैशेज हो जाते हैं। वहीं पर जब आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा खुजली होती है, उसकी एक वजह ये होती है कि आपके स्कैल्प में बहुत ज्यादा पसीना इकट्ठा हो रहा है, आपका पसीना आकर बालों में रुक रहा है और वहां पर अब गंदगी भी मौजूद है। इसकी वजह से आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और बहुत तेजी से झड़ने लगते हैं। अक्सर लोग इसे केवल मौसम का असर समझकर नजरअंदाज भी कर देते हैं। और अगर आपके बाल भी बहुत तेजी से झड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा बाल आपके गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं पिलो पर, शार में, या फिर जब आप नहाते हैं उस वक्त, आप कंघी करते हैं उस वक्त अगर आपको बहुत ज्यादा बाल दिखाई पड़ रहे हैं, तो भाई इसको सीरियस लेने का वक्त भी आ चुका है। चलिए बात करते हैं कि गर्मियों में ऐसा क्यों होता है और एक्सपर्ट्स क्या सलाह देते हैं। हेयर एक्सपर्ट्स के अनुसार गर्मी में बाल झड़ने के पीछे कई वजह हो सकती है। पहला, तेज धूप, पसीना, धूल, स्कैल्प में ऑयल का बढ़ना, आपकी गलत हेयर केयर का रूटीन और भी ज्यादा बालों को कमजोर बना देता है। अगर आप गर्मियों में बहुत हैवी ऑयलिंग करते हैं तो आपके बाल पहले से जो बहुत कमजोर हो चुके होते हैं पसीने की वजह से, ऑयलिंग की वजह से, वो और भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, यानी कि और भी ज्यादा उनमें नुकसान पहुंचता है और जो तेल आप अपने बालों को मजबूत करने के लगाते हैं वो उन्हें खराब करता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेज धूप और गर्म हवाएं भी बालों की सेहत पर असर डालती हैं। लंबे समय तक सूरज की यूवी किरणों के संपर्क में रहने वालों के बालों की नमी कम होने लगती है, जिससे वे ड्राई और बेजान हो जाते हैं। जब बालों में नमी कम होती है तो वे जल्दी टूटने लगते हैं, खासकर जिन लोगों के बाल पहले से ड्राई या केमिकल ट्रीटेड होते हैं, उन्हें यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है। इसके अलावा शरीर में पानी की कमी भी हेयर फॉल का एक बड़ी वजह मानी जाती है। गर्मियों में शरीर से पसीने के जरिए ज्यादा पानी निकलता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं और पोषण नहीं लेते हैं तो इसका भी असर आपके बालों में पड़ता है। इसका असर बालों की जड़ों पर हो सकता है और आपके कम पोषण की वजह से, जिसमें आयरन, प्रोटीन, बायोटीन और विटामिन डी जैसे तत्व शामिल हैं, अगर ये कमी आपके शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो आपके बाल भी बहुत तेजी से झड़ना शुरू कर देते हैं। डॉक्टर्स का साफ कहना है कि अगर बाल जरूरत से ज्यादा झड़ रहे हो, स्कैल्प में लगातार खुजली हो रही हो या बाल पतले होते दिखाई दे रहे हो तो डर्मेटोलॉजिस्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए। डॉक्टर्स ये भी मानते हैं कि अगर आप बहुत ज्यादा तनाव रखते हैं या फिर आपकी लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा खराब है तो भी आपके बालों की झड़ने की समस्या बढ़ सकती है। नींद का पूरा ना होना, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना और आपके खान पान की आदत आपके बालों की ग्रोथ की साइकिल को पूरी तरह से प्रभावित करता है। कई बार लोग गर्मियों में हेयर स्टाइलिंग प्रोडक्ट्स और हीट टूल्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिससे बाल और ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि गर्मियों में माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना चाहिए, मतलब कि वो शैम्पू जिनमें बहुत ज्यादा खुशबू, बहुत ज्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल ना किया गया हो, जो सल्फेट और पैराबेन फ्री हो, जो आपके बालों को जाकर बेजान ना करे, जो इससे आपके बाल रूखे ना हो, क्योंकि आपके बाल पहले से ही नमी कम होने के कारण रूखे हो जाते हैं। और अगर आप इस तरह के केमिकल वाले ट्रीटमेंट्स लेते हैं या केमिकल वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो आपके बालों पर, आपके स्कैल्प हेल्थ पर इसका सीधा असर पड़ता है, जिससे आपके बाल और भी ज्यादा कमजोर हो जाते हैं और टूटने लगते हैं। गर्मियों में स्कैल्प को साफ रखना, एक हल्का हेयर ऑयल लगाना और धूप में निकलते समय अपने बालों को कवर करना आपके लिए सबसे फायदेमंद माना जाता है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ये आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। पानी के साथ साथ ज़रूरी होता है कि आप जब भी कुछ खाते हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन, आयरन, और अगर आप इनकी कमी पूरी नहीं कर पा रहे हैं खाने के माध्यम से, तो ज़रूरी है कि फिर आप सप्लीमेंट्स लें। आइए लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आप अपने बालों की केयर गर्मियों में कर सकते हैं। तब तक के लिए सुनते रहिए स्वास्थ्य संगिनी अपनी आर चुनौती के साथ आपके अपने एफएम रेडियो कैनस 99.6 एफएम पर।
1: नमस्कार श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है सेहत सही लाभकारी कार्यक्रम में। और आज हमारे बीच में हमारी यानी आपकी और हमारी सभी की प्यारी वो स्वास्थ्य कर्मी हैं जो हमारे हर एक रोग का इलाज करती हैं। हमारे बीच मौजूद हैं हमारी डॉक्टर साहिबा। पहले इनका हम स्वागत करेंगे और इन्हीं से इनका परिचय जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका।
2: धन्यवाद आकांक्षा जी आपको यहाँ बुलाने के लिए। आज हम बात करेंगे कुष्ठ रोग पे और मेरा नाम है आभा सिंह, कुष्ठ रोग स्पेशलिस्ट।
1: बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त हम तक पहुंचाने के लिए और हमारे स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने के लिए। सबसे पहले मैम, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि आखिर ये कुष्ठ रोग है क्या और इसकी पहचान कैसे करें।
2: कुष्ठ रोग को नॉर्मल भाषा में कहा गया है लाल चकत्ता सुन निशान, कुष्ठ रोग की यही पहचान।
1: इसको प्लीज थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में हमारे श्रोताओं को बता दें।
2: इसका मतलब है शरीर में लाल चकत्ते बढ़ना
1: जी,
2: और जब लाल चकत्ते पड़ते हैं अगर वो कुष्ठ रोग है तो वहाँ पे आप कुछ भी करेंगी, कोई भी एक्टिविटी वहाँ करेंगे तो वो सुन्न होगा एरिया, वहाँ पे आपको कुछ भी महसूस नहीं होगा।
1: ओके, तो मैम अभी मैं आपसे एक सवाल और जानना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश और बिहार आज भी उन राज्यों में है जहाँ कुष्ठ रोग के मामले सामने आते हैं, आपके जिले की स्थिति क्या है और किन इलाकों पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है?
2: देखिए आकांक्षा जी, ये सच है
1: जी
2: कि कुष्ठ रोग अब पहले से बहुत कम है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। ग्रामीण इलाके, घनी आबादी वाले क्षेत्र और वह जगह जहाँ स्वास्थ्य सेवाएं तक पहुँच कम है वहाँ जोखिम ज़्यादा रहता है। हमारा मुख्य फोकस है जल्दी पहचान और समय पर इलाज ताकि फैलाव रोका जा सके।
1: अब मैम ये बताइए कि राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सरकार 2027 तक कुष्ठ रोग खत्म करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, यूपी बिहार जैसे बड़े राज्यों में ये कितना व्यवहारिक है?
2: लक्ष्य चुनौतीपूर्ण जरूर है आकांक्षा जी, लेकिन पूरी तरह संभव है क्योंकि कुष्ठ रोग का इलाज पूरी तरह मुफ्त है और उपलब्ध दवा से मरीज पूरी तरह ठीक हो सकता है
1: जी।
2: इलाज शुरू होते ही बीमारी फैलना बंद हो जाती है। सबसे जरूरी है डर भेदभाव खत्म करना।
1: ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। अब मैम मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आज भी कई गांवों में लोग कुष्ठ रोग को लेकर दवा की बजाय झाड़ फूंक या घरेलू उपाय से ठीक करने लगने मतलब ठीक करने की उसकी कोशिश करते हैं, ये कितना खतरनाक है?
2: आकांक्षा जी, यह बहुत गंभीर खतरा है
1: जी।
2: कुष्ठ रोग में देरी से इलाज करने पर हाथ पर सुन्न हो सकते हैं
1: जी,
2: घाव बन सकते हैं और अस्थाई विकलांगता हो सकती है। झाड़ फूंक से बीमारी नहीं जाती लेकिन समय जरूर चला जाता है जो सबसे बड़ा नुकसान है।
1: कहीं ना कहीं वो जो एक छोटा सा लाल धब्बा वो एक सड़न का रूप ले लेता है, उसके बाद में जब हम बहुत हानिकारक स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो हमें वो दृश्य देखने को मिलेगा जो कोई भी सोच भी नहीं सकता है।
2: जी जरूर
1: जी। अभी एक और सवाल है हमारे बीच में कि कई लोग डर और बदनामी के कारण जांच नहीं कराते, खासकर छोटे गाँव में, स्वास्थ्य विभाग इस भरोसे को कैसे मजबूत करता है?
2: आकांक्षा जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया
1: जी।
2: हम पूरी गोपनीयता रखते हैं, आशा और स्वास्थ्य कर्मी घर घर जाकर समझाते हैं, मुफ्त जांच करवाते हैं
1: जी,
2: सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करते हैं
1: जी।
2: हम साफ कहते हैं कुष्ठ रोग छूने से नहीं फैलता
1: जी,
2: और इलाज से पूरी तरीके से ठीक हो जाता है।
1: अब ये बताइए कि यूपी और बिहार में आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करती हैं, कुष्ठ रोग की पहचान और इलाज में उनकी भूमिका कितनी अहम है?
2: आकांक्षा जी, उनकी भूमिका सबसे अहम है
1: जी।
2: यही बहने त्वचा पर सुन्न दाग पहचानती हैं, मरीज को जांच तक लाती हैं और दवा पूरा करवाने में साथ देती हैं
1: जी।
2: कह सकते हैं कि कुष्ठ उन्मूलन की असली ताकत जमीनी स्तर पर आशा दीदी ही है।
1: मैम अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज कई बीमारियां पूरी तरह से ठीक होने वाली हैं, इलाज मुफ्त भी हैं, फिर भी लोग झोला छाप या ओझा तांत्रिक के पास क्यों जाते हैं, इसका कारण क्या है?
2: देखिए खानसा जी
1: जी,
2: इसकी सबसे बड़ी वजह है डर, अज्ञानता, आदत। लोग सोचते हैं कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो खर्च होगा
1: जी,
2: बदनामी होगी या बीमारी फैल जाएगी। इस व्यवहार को बदलने के लिए हम गांव-गांव अपनी आशा को भेजते हैं
1: जी,
2: वो जागरूक करती हैं, सफल इलाज के लिए प्रेरित करती हैं, स्थानीय भाषा में समझाती हैं और लोग इससे जागरूक भी हो रहे हैं और अपना इलाज करवाने अस्पताल पहुंच भी रहे हैं।
1: बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब कोई अपना आदमी हम सभी को कुछ समझाता है तो बात दिल तक आसानी से पहुंच जाती है। अब मैम एक और सवाल आपसे मैं करूंगी कि सामाजिक बहिष्कार, काम से निकाल देना, बच्चों को स्कूल ना भेजना, ये सब आज भी यूपी और बिहार में दिखता है, इससे आखिर में हमारे समाज पे क्या फर्क पड़ता है?
2: आकांक्षा जी, बहुत सही सवाल है आपका
1: जी।
2: व्यक्ति टूट जाता है, आत्मविश्वास खो देता है और समाज में डर फैलता है।
1: बिल्कुल,
2: और समाज का नुकसान ये कि लोग बीमारी छुपाने लगते हैं जिससे बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ जाता है।
1: बिल्कुल,
2: याद रखिए बीमारी से नहीं गलत सोच से समाज बीमार होता है।
1: बहुत बड़ी बात और बहुत गहरी बात आपने कह दी। उम्मीद है कि हमारे जो भी श्रोता हमें सुन रहे होंगे उनको आज एक बहुत ही गहरी बात समझ में आ रही होगी
2: जी। आकांक्षा जी
1: जी, मैम आपसे एक और सवाल है मेरा कि आज सरकार इतनी सारी दवाइयां दे रही है, लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता कि सिर्फ मरीज नहीं पूरा परिवार सुरक्षित रहना बहुत ज्यादा जरूरी है।
2: जी आकांक्षा जी, कुछ लोग नहीं समझते हैं क्योंकि बीमारी एक इंसान तक सीमित नहीं रहती। अगर समय पर दवा ली जाए, सावधानी बरती जाए, तो पूरा परिवार सुरक्षित रहता है।
1: जी,
2: दवाइयां डर खत्म करती हैं, लेकिन तभी जब लोग समय पर आगे आए। इलाज छुपाने से नहीं, इलाज अपनाने से सुरक्षा मिलती है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मैम। इलाज के बाद भी समाज उसी नजर से देखता है, क्या वाकई मरीज से कोई खतरा रहता है इलाज के उपरांत भी?
2: नहीं आकांक्षा जी, ये सिर्फ सामाजिक डर है, गलतफहमी है। जो व्यक्ति इलाज पूरा कर चुका है वो पूरी तरह सामान्य जीवन जी सकता है। काम, परिवार, समाज, सब खतरा बीमारी से नहीं, भेदभाव से है।
1: जी, अब चलते चलते मैं मैम आपसे ये जानना चाहूंगी कि यूपी और बिहार के गांवों के लिए आपका सीधा संदेश क्या होगा?
2: देखिए आकांक्षा जी,
1: जी
2: मेरा संदेश बहुत साफ है।
1: जी,
2: बीमारी छुपाइए मत, डरिए मत, जांच कराइए, ओझा तांत्रिक पर भरोसा मत करिए, डॉक्टर पर भरोसा करिए।
1: जी,
2: और सबसे जरूरी, इंसान को इंसान की तरह देखिए। जब सोच बदलेगी तभी बीमारी जड़ से खत्म होगी।
1: बिल्कुल सही कहा आपने मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला।
2: जी धन्यवाद मैम आप।
1: तो दोस्तों याद रखिए, इलाज से बीमारी ठीक होती है और समझदारी से समाज। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।
3: अरे सुना
1: क्या,
3: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ,
3: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
4: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग 1 चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: हां जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञानसली की खूबसूरत पहल के तहत हम लेकर आते हैं आपके लिए इस खूबसूरत से प्रोग्राम को, जिसमें बात करते हैं आपकी सेहत की, आपके अपनों की सेहत की। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM रेडियो ज्ञानसली, आपकी अपनी गोंडा शहर की धड़कन। और आज हम बात कर रहे हैं बालों की, बालों के झड़ने की समस्या जो गर्मियों में खास तौर पे बढ़ जाती है। भैया बात कर लेते हैं कि हेयर केयर करना कैसे है समर्स में। तो गर्मियों में ना सिर्फ त्वचा बल्कि बालों का भी खास देखभाल की जरूरत होती है। तेज धूप, गर्म हवाएं बालों को पहले ही रूखा और बेजान बना देती हैं, जिससे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाते हैं। स्कैल्प में होने वाला सनबर्न बालों के झड़ने के कारण भी बनता है। ऐसे में बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आप कुछ आसान से टिप्स फॉलो करते हैं, जो आज हम आपको इस प्रोग्राम में बताने वाले हैं। सबसे पहला टिप है हेयर ट्रीटमेंट से बचें। गर्मियों में हेयर ट्रीटमेंट से दूरी बनाए रखना बेहतर होता है। स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर, केराटिन जैसे ट्रीटमेंट आपके बालों को और भी ज्यादा ड्राई और कमजोर कर देते हैं, जिससे आपके बालों की नमी खो जाती है और आपके बाल बहुत ज़्यादा बेजान हो जाते हैं, रूखे हो जाते हैं। और जब भी आप बाल काटते हैं यानी कि कंघा करते हैं, तो बहुत ज़्यादा टूटने लगते हैं या फिर आपके बाल दो मुहे हो जाते हैं। तो गर्मियों में स्पेशली आप हेयर ट्रीटमेंट से बचने की कोशिश कीजिए। दूसरा है बालों को धूप से बचाइए। गर्मी में बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए इन्हें धूप से बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। धूप में निकलते समय बालों को स्कार्फ, गमछा या टोपी से जरूर ढकें। इससे सूरज की हानिकारक किरणें आपके बालों को खराब नहीं कर पाती हैं और उन्हें डैमेज होने से भी बचाती हैं। हम आपको बता दें, सिल्क का स्कार्फ आपके लिए बेहतर ऑप्शन है, क्योंकि इससे बालों का उलझना कम होता है और बाल झड़ने की समस्या अधिक नहीं देखने को मिलती। बात करते हैं अब तीसरे टिप की, तो वो है कंडीशनर लगाना। बालों की सुरक्षा के लिए शैम्पू के बाद हमेशा कंडीशनर का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होता है। इससे बाल लंबे समय तक हाइड्रेट रहते हैं, साथ ही कंडीशनर से हेयर फॉल भी कम होता है। प्लस आपके बाल नीचे से दो मुहे नहीं होते। इसी के साथ आप हेयर मास्क लगाएं। हेयर फॉल और ड्राइनेस की समस्या से राहत पाने के लिए हेयर मास्क एक असरदार तरीका होता है। नेचुरल हेयर मास्क आपके बालों की जरूरत को पूरा करता है, आपको जरूरी नमी मिलती है। हफ्ते में एक बार DIY हेयर मास्क लगाएं। हेयर मास्क आपके बालों को सॉफ्ट रखता है, आपके स्कैल्प को क्लीन रखता है, प्लस आपके बालों की जरूरत की सभी नमी को पूरा करता है। और अब बात कर लेते हैं हेयर ऑयलिंग की। तो हम आपको बता दें भाई, गर्मियों में हेयर ऑयलिंग बहुत सोच समझ कर करने की ज़रूरत होती है। अगर आप बहुत भारी भरकम तेल लगा लेते हैं, जस्ट लाइक कैस्टर ऑयल, जो आप बहुत ज़्यादा चिपचिपा और बहुत ज़्यादा हैवी होता है, ये आपके बालों को लंबा तो करता है लेकिन गर्मियों में आपके बालों की झड़ने की समस्या भी बढ़ा देता है। तो भाई, गर्मियों में जो आप तेल का इस्तेमाल करेंगे वो कूलिंग हेयर ऑयल होने चाहिए, जिसमें गुड़हल, आंवला, करी पत्ता, नारियल आदि जैसे ठंडी जड़ी बूटियों से बने तेल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। करी पत्ता आप खा भी सकते हैं। हम आपको बता दें, अगर आप हेयर शेडिंग या हेयर फॉल के इशू को देख रहे हैं तो आप सुबह उठकर करी पत्ता की कुछ पत्तियां धोकर चबाकर खा सकते हैं और उसके बाद गर्म पानी पी सकते हैं। ये भी आपके बालों की झड़ने की समस्या को रोकने में कारगर साबित होता है। हम आपको बता दें, आंवला आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाल झड़ने से परेशान हैं तो आधा चम्मच आंवला पाउडर आप खा सकते हैं। अपने बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए आंवला को कैंडी या शरबत के रूप में ले सकते हैं। इसके अलावा आंवला के साथ भृंगराज और करी पत्ता को साथ में मिलाकर लगाने से आपके बालों की जड़ें भी मजबूत होती हैं और कहते हैं कि भाई आपके बाल सफ़ेद होना बंद हो जाते हैं। आप हफ्ते में एक बार एलोवेरा जेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हेल्थ और ब्यूटी के लिए एलोवेरा बहुत लाजवाब माना जाता है। आप बाल धोने से 30 मिनट पहले एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, ये आपके बालों को सॉफ्ट बनाने में मदद करता है। इसके बाद आप गुलाब और हाइबिस्किस की चाय यानी कि गुड़हल की चाय पी सकते हैं। सेहत के साथ ही बालों के लिए कुछ हर्बल टी काम आती है और उन हर्बल टी में नाम आता है गुलाब और गुलहर की बनी चाय की। चावल का पानी, हम आपको बता दें, जब से कोरियन ब्यूटी इंडिया में ट्रेंडिंग हुआ है तब से ही हर कोई चावल का इस्तेमाल करने लगा है। चावल का पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बालों में या फिर चावल का हेयर मास्क भी लगा सकते हैं। ये आपके बालों को सॉफ्ट करता है। बालों में आपको ये 20 से 30 मिनट लगाना है और सामान तापमान के पानी से बाल धो लेने हैं। इसी के साथ अब हमारी आखिरी चीज़ वो ये है कि योग करना। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, शीतली, शीतकरी ऐसे प्राणायाम शरीर को एक्स्ट्रा पित्त को कम रखने में मदद करते हैं, आपके दोषों को संतुलित करते हैं और आपके शरीर के तापमान को मेंटेन करते हैं, प्लस आपके ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि जब आप इस सारे नेचुरल फैक्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हों, नेचुरल चीज़ें कर रहे हों, तो उन्हीं के बीच में आप योगा का भी खास ख्याल रखें, जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है। अब बात कर लेते हैं खान पान की, यानी कि अगर बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं तो आप क्या खा सकते हैं और किस तरह के सप्लीमेंट्स आपके बालों के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। यूँ तो आपने कई बार सुना होगा विटामिन सी, आंवला खाने से बाल ठीक होता है, चुकंदर खाने से बाल ठीक होता है, बट क्या इसके अलावा कोई और भी चीज़ है? वो कौन से सप्लीमेंट्स हैं जिनकी आवश्यकता होती है आपके बालों को अच्छी ग्रोथ के लिए? फिलहाल इनको जानने से पहले आइए लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इस ब्रेक के उस पार आते हैं, फिर हम बताते हैं वो ज़रूरी विटामिन्स, वो ज़रूरी चीज़ें जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं एक अच्छी ग्रोथ और आपके अच्छे स्कैल्प के लिए। सुनते रहिए, बने रहिए आपके अपने रेडियो क्या नस्ती 10.6 FM, यही कोना शहर की धड़कन पर। मैं हूँ आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं स्वास्थ्य संगिनी। स्टे ट्यून्ड।
5: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
6: मतलब
5: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416 जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
6: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
8: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
0: हाँ जी, तो एक बार वापस से स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। रेडियो ज्ञान असली और स्मार्ट एनजीओ की खूबसूरत पहल के तहत हम लेकर आते हैं आपके लिए ये खास प्रोग्राम, जिसके अंदर बात करते हैं आपकी सेहत की। मैं हूं आपकी आरजी उन्नति और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपका अपना रेडियो ज्ञान असली, गोंडा शहर की धड़कन। हेयर केयर की बात कर रहे थे और हमने वो टिप्स जाने जो आपको करने हैं गर्मियों में, जिनका खास ख्याल रखना है। लेकिन इनके साथ ही एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्लस एक अच्छे बालों की ग्रोथ के लिए आपको जरूरी होते हैं कुछ विटामिन्स, जिनके इस्तेमाल से आप अपने बालों को और भी ज्यादा घना और भी ज्यादा लंबा कर सकते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बाल लहराएं और झड़े कम, तो भाई कुछ विटामिन्स हैं जिनकी आवश्यकता आपको पूरी करनी ही होगी। सबसे पहले विटामिन की जो बात करते हैं वो होता है बी विटामिन की कमी। बी विटामिन के अंदर कई सारे विटामिन्स आते हैं, जैसे कि B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। ये सारे बी विटामिन्स पानी में घुलनशील होते हैं और ऑक्सीजन को स्कैल्प तक लेकर जाते हैं, जिससे सही न्यूट्रिशन मिलता है और बालों की ग्रोथ होती है। इसीलिए आइए जान लेते हैं कि बी विटामिन से युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं। हम आपको बता दें, इसके लिए आपको होल ग्रेन फलियां, केला, अंडा, दूध, मीट, पत्तेदार सब्जियों का आप सेवन कर सकते हैं, जिससे आपके विटामिन बी की कमी पूरी हो जाए। और अगर इसके बाद भी आपके विटामिन बी की कमी पूरी नहीं होती है या आपकी डाइट में ये सारी चीजें नहीं शामिल हैं, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके सप्लीमेंट्स भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं विटामिन ई की। तो विटामिन ई बालों के लिए सबसे जरूरी माना जाता है। ये बालों की ग्रोथ को बूस्ट करता है। मार्केट में विटामिन ई की कैप्सूल्स भी मौजूद हैं, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि आप विटामिन ई की पूर्ति अपने खाने के जरिए से ही करें। विटामिन ई वाले फूड्स में अनाज, मांस, अंडे, फल, सब्जियां, बादाम आदि शामिल होते हैं। अगर आप ये सारी चीजें नहीं खाते हैं या नहीं खा सकते हैं, तभी आप मार्केट में मिलने वाले सप्लीमेंट्स की तरफ जाएं। तीसरा विटामिन है विटामिन सी। विटामिन सी भी पानी में घुलनशील होता है। कोलेजन बनाने के लिए इसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा होती है, जिससे बालों की सेहत अच्छी रहती है। विटामिन सी वाले फूड आइटम्स में अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको खट्टे फल जैसे नींबू, संतरा, आंवला आदि में मिलता है। तो अगर आप अपने बालों की ग्रोथ अच्छा चाहते हैं, आप अपनी स्किन को अच्छा चाहते हैं, तो विटामिन सी की कमी अपने शरीर में जरूर पूरा करें, जो आपको खट्टे फलों से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दूसरे विटामिन की, जो आपको मॉइस्चर देने का काम करता है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए बालों को मॉइस्चर देने का काम करता है और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ में भी मदद करता है। इसीलिए विटामिन ए वाले फूड्स को अपने डाइट में जरूर शामिल करें। विटामिन ए वाले फूड्स हैं गाजर, दूध, टमाटर, शकरकंद, तरबूज, लाल शिमला मिर्च, अंडा, मछली आदि। अब बात कर लेते हैं एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत हाइप वाले प्रोटीन की। आपने भी सुना होगा भैया, आजकल हर दूसरा इंसान आपको प्रोटीन लेने की सलाह देता है। कोई कहता है 100 ग्राम लो, कोई कहता है 120 ग्राम लो। बट सही मायने में आपको अपने वजन के अनुसार दिन में, यानी कि प्रतिदिन आपको प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। हम आपको बता दें कि भाई प्रोटीन आपके बालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बालों की ग्रोथ को अगर आप अच्छी रखना चाहते हैं, तो आपको प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है। साथ ही अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा रूखे हो चुके हैं, बेजान हो चुके हैं, तो इसमें भी प्रोटीन की कमी पाई जाती है। अगर आप अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा रखते हैं, तो आपके बाल मुलायम रहते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, प्लस आप एनर्जाइज भी फील करते हैं। तो भाई बालों को टूटने से बचाना है, बालों में आई समस्या को रोकना है, तो अपने खाने में प्रोटीन वाली चीजें जरूर शामिल करें, जिसमें अंडा, नॉनवेज, पनीर, टोफू, बादाम, नट्स, चने आदि शामिल होते हैं। तो आप इनका सेवन कर सकते हैं और अपने शरीर में प्रोटीन की कमी को पूरा कर सकते हैं। मार्केट में प्रोटीन के सप्लीमेंट्स भी आते हैं, तो अगर आप अपने खाने के जरिए प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो आप उन सप्लीमेंट्स की तरफ जा सकते हैं। पर कोशिश कीजिए कि आप अपने खाने से ही, यानी कि आप दिन में जो भी खाना लेते हैं, जो भी डाइट लेते हैं, उससे से ही अपने प्रोटीन की कमी को पूरा करने की कोशिश करें। अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आखिरी, जिसका नाम है आयरन, यानी कि आयरन की कमी। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि बालों के झड़ने का मुख्य कारण है शरीर में आयरन की कमी, इसीलिए आयरन युक्त फूड का सेवन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आपको बता दें, आयरन की कमी से ही आपको अनीमिया होता है, जो कि खून की कमी की बीमारी होती है। अगर आपके शरीर में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो इससे सिर्फ आपके बाल नहीं झड़ते, इसके और भी ज़्यादा बीमारियाँ आपको घेर लेती हैं। थकान होना, कमज़ोरी होना, चिड़चिड़ा होना, सांस फूलना, खून की कमी होना, ये सारे भी लक्षण होते हैं जब आपके शरीर में आयरन की कमी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आयरन की बात करें तो पालक, बीन्स, मटर, फलियां आदि में आयरन शामिल होता है। इसी के साथ हम आपको बता दें, जब भी आप आयरन के टैबलेट्स ले रहे हों या आयरन के फूड आइटम्स ले रहे हों, तो उनके साथ विटामिन सी को ज़रूर शामिल करें। विटामिन सी आयरन के अब्जर्वेशन को बढ़ाती है और आपके शरीर में आयरन जल्दी अब्सॉर्ब होता है। तो ये वो सारे विटामिन्स और वो सारे मिनरल्स थे जिनकी जरूरत होती है आपको, आपके शरीर को, आपके बालों को प्रतिदिन। अगर इनमें से कोई भी एक चीज कम होती है तो भाई आपके बालों का झड़ना तय होता है। आप आयरन नहीं लेते हैं, प्रोटीन नहीं लेते हैं, आप विटामिन्स नहीं लेते हैं, बी कॉम्प्लेक्स नहीं लेते हैं, तो भाई आपके बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं और आप हेयर फॉल का शिकार हो जाते हैं, जिससे आपके बाल रूखे भी होते हैं, बेजान भी होते हैं, स्कैल्प की हेल्थ भी खराब होती है और गर्मियों में बाल बहुत ज्यादा नजर भी आते हैं। तो भाई इन सबको पता कैसे करना है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके शरीर में कौन से विटामिन की कमी है या फिर किस

0: होते हैं, आप पर्याप्त मात्रा में पानी पी रहे हैं, आप हर एक चीज कर रहे हैं, तो फिर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाने की ही सलाह दी जाएगी। फिलहाल आई लेते एक छोटा सा ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। और इस ब्रेक के उस पार हम आपको बताते हैं भाई कि आज हमने किस किस पर बात कर ली है। स्टे ट्यून्ड।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
3: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
4: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
5: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
6: नमस्कार श्रोताओं, मैं आपकी अपनी आरजी आकांक्षा और आज हमारे बीच में आई हुई हैं आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखने वाली हम सभी की प्यारी आशा बहन जी। और सबसे पहले मैं इनका स्वागत करना चाहूंगी। नमस्ते दी, कैसी हैं आप?
7: जी नमस्ते, मैं बहुत अच्छी हूं और धन्यवाद आपको, आपने हमें यहाँ बुलाया।
6: अब हम जानेंगे कि आज ये हमसे कौन सी जानकारी साझा करना चाह रही हैं, लेकिन उससे पहले हम इनका परिचय जानना चाहेंगे ताकि हमारे श्रोता जो हमें सुन रहे हैं वो ये जान पाएं कि आप हैं कौन।
7: जी हमारा नाम रेनू सिंह है, मैं गोंडा नगर से हूँ
6: जी।
7: और आज हम बात करेंगे टीबी और कुष्ठ रोग बीमारी के बारे में।
6: जी बहुत बहुत शुक्रिया दी। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके क्षेत्र में टीवी मरीजों में कमजोरी या वजन कम होने की समस्या कितनी आम है और आप इसे पहचानने के लिए क्या संकेत देखती हैं?
7: जी हमारे क्षेत्र में ये समस्या आम तो नहीं कह सकते क्योंकि धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं
6: जी,
7: और इसका इलाज भी पूरी तरीके से संभव है अब। लेकिन क्षेत्र भ्रमण के दौरान कभी कभी देखने को मिलता है टीबी के मरीज में अक्सर शरीर में कमजोरी, थकान, धीरे धीरे वजन कम होना, लगातार बुखार या रात में पसीना आना, भूख का कम लगना और रोजमर्रा के कामों में मन ना लगना।
6: जी तो जैसा दीदी अभी आपने बताया कि भूख ना लगना, तो जब आप कोई टीवी मरीज का इलाज शुरू करती हैं तो उस वक्त उसके खाने पीने को लेकर क्या सलाह देती हैं, खासकर ताकत और वजन बढ़ाने के लिए?
7: जी जब कोई मरीज इलाज शुरू करता है
6: जी,
7: तो मैं उसे तुरंत संतुलित पौष्टिक आहार लेने की सलाह देती हूँ। रोज भोजन में दाल, दलिया, दूध, दही, अंडा, सोयाबीन जैसे प्रोटीन युक्त पदार्थ शामिल करने को कहती हूँ। साथ ही हरी साग सब्जियाँ, मौसमी फल लेने को बोलती हूँ और साबुत अनाज लेना जरूरी है। थोड़ी थोड़ी सही, वर्ष दिन में कई बार खाएं, पानी भरपूर मात्रा में पीना, तला भुना या बहुत मसालेदार भोजन कम करना या ना करने की सलाह देती हूँ और मरीज को समझाती हूँ कि डॉक्टर द्वारा दी गई दवाएं सही समय और नियमित रूप से खाना बहुत जरूरी है।
6: मतलब आप सभी के स्वास्थ्य का पूरा पूरा ख्याल रखती हैं।
7: जी आज दीदी
6: क्या बात है। अभी मैं आपसे ये जानना चाहूंगी दीदी कि क्या टीबी मरीजों और उनके परिवारों को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन, निश्चय पोषण योजना आदि मिल पाती है? इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है आपके क्षेत्र में, जब आप जाते हैं तो दिक्कत कहाँ देखने को पाते हैं?
7: हाँ टीबी मरीज और उनके परिवार को सरकारी पोषण सहायता जैसे राशन और निश्चय पोषण योजना मिलती है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत जानकारी की कमी की होती है। कई मरीजों को यह पता ही नहीं होता कि यह सुविधा मिल सकती है। कुछ जगहों पर कागजी प्रक्रिया जटिल होती है, बहुत कठिन होती है
6: जी।
7: कई बार आधार या बैंक खाते की समस्या के कारण पैसा समय पर नहीं पहुंच पाता है, जिससे मैं अपने क्षेत्र में जाती हूं तो लोगों को सही जानकारी देकर सरकार द्वारा जो उनको राशि मिलती है और राशन है, निश्चय रोग के जो पोषण तत्व हैं, जो सहायता मिलती है उसकी उनको जानकारी देती हूँ
6: जी,
7: और ये सुविधा उन तक पहुँचाने की पूरी पूरी कोशिश करती हूँ।
6: क्या बात है भाई, आप कहीं ना कहीं वो कड़ी हैं जो हमारे सरकार और हमारी जनता के बीच में एक संपर्क स्थापित करती हैं।
7: जी दीदी
6: जी, इसके लिए आप बधाई की पात्र।

0: हैं। अब आपसे एक और सवाल है मेरा कि आपके अनुभव में बेहतर खाना या सही पोषण मिलने से टीवी मरीज के इलाज और ठीक होने में क्या फर्क पड़ता है?
1: मेरे अनुभव में सही पौष्टिक भोजन मिलने से टीवी मरीज के इलाज में साफ फर्क पड़ता है। इससे शरीर की ताकत बढ़ती है, दवाएं बेहतर असर करती हैं और मरीज जल्दी ठीक होने लगता है, वजन बढ़ता है और कमजोरी कम होने लगती है और बीमारी से लड़ने की क्षमता मजबूत होती है।
0: तो दोस्तों, टीवी सिर्फ एक बीमारी नहीं, एक सामाजिक जिम्मेदारी है। डॉक्टर, आशा दी और आप तीनों मिलकर ही इसे हरा सकते हैं। सुनते रहिए अपना सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ जो होगी आपके लिए बहुत लाभकारी। धन्यवाद।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
2: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
5: डिलीशियस
6: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
5: और क्या क्या है खास?
6: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
5: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
7: हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने कार्यक्रम स्वास्थ्य संगिनी में। स्मार्ट एनजीओ और रेडियो ज्ञान असली सेहत सही लाभ के बैनर के तले लेकर आए इस खूबसूरत सी पहल को, जिसमें हम बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। और आज हमने बात की थी आपके बालों की, आपके स्कैल्प हेल्थ की और बालों के झड़ने की समस्या यानी कि हेयर फॉल और हेयर शेडिंग, दोनों में आपको फर्क भी हमने समझाया था। मैं हूं आपकी आरजे उन्नति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम, यह गोंडा शहर की धड़कन। आई होप आपको हेयर फॉल और हेयर शेडिंग के बीच का फर्क समझ में आया होगा। चलिए एक बार वापस से मैं आपको बता देती हूं। हेयर फॉल तब होता है जब आपके बाल झड़ रहे हों और वहां से दूसरे बाल ना होंगे। 100 से ज्यादा बालों का झड़ना और जहां से बाल झड़ते हैं वहां पर बालों का दोबारा ना उगना हेयर फॉल का इशू माना जाता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा पतले हो रहे हैं और आपको लगता है कि आपके सर की जो स्कैल्प है वो दिखने लगी है, बाल बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं, वॉल्यूम कम हो गया है, तो उसे हेयर थिनिंग कहते हैं। हम आपको बता दें, हेयर शेडिंग का मतलब होता है जब आपके बाल झड़ते हैं लेकिन वहां से दूसरे बाल उग भी आते हैं। 50 से 100 बाल दिन के सभी के झड़ते हैं लेकिन ये वहां से दोबारा निकल भी आते हैं, उग भी आते हैं और इसी की वजह से आपको उस एरिया में कभी भी बालों की कमी या फिर गंजापन महसूस नहीं होगा, तो उसे कहते हैं हेयर शेडिंग। हेयर शेडिंग गर्मियों में बढ़ जाती है क्योंकि गर्मियों में बहुत ज्यादा पसीना आता है, आपके स्कैल्प में तेल रुकता है, बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाती है, तो उसकी वजह से भी हेयर शेडिंग बढ़ जाती है। फिलहाल एक और कारण है जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल इशू होता है, वो है डैंड्रफ और बालों में खुजली होना। अगर आपके बालों में बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ज्यादा है, आपको डैंड्रफ बहुत ज्यादा नजर आ रहा है, आपके बालों में बहुत ज्यादा खुजली हो रही है, दाने निकल रहे हैं, तो ये भी एक कारण होता है कि आपके हेयर फॉल का इशू आपको देखने को मिलता है। फिलहाल इसी के साथ हमने बात की थी उन कुछ विटामिन्स की, कुछ मिनरल्स की जो आपके शरीर में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं आपके बालों के लिए, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन्स आते हैं, प्लस जिसमें हमने बात की विटामिन ई की, विटामिन ए की, आयरन की, प्रोटीन की। और इसी के साथ हम आपको बता दें कि भारत जैसे देश में 70% लोगों के अंदर विटामिन डी की कमी होती है। जिसकी वजह से भी उनके बाल बहुत तेजी से झड़ते हैं और उनकी हड्डियां कमजोर होती हैं। विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कोशिश कीजिए कि आप उन्हें भी पूरा करें। आप टेस्ट करवा सकते हैं, अपने खान पान को सुधारिए, पानी का इंटेक बढ़ाइए और इससे आपके बाल अच्छे हो जाएंगे और यकीनन आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब भाई लोग कहेंगे कि हमें स्ट्रेस इस बात का है कि बाल बहुत झड़ रहे हैं, और बाल इसलिए झड़ रहे हैं क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो ऐसा होता है। फिलहाल के लिए कोशिश कीजिए कि आप भरपूर मात्रा में नींद लें, स्ट्रेस कम लें और इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आई होप आज का शो आपको पसंद आया होगा। अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। रखिए अपना ख्याल, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM, यही गोला शहर की धड़कन पर प्रोग्राम चल रहा था आपका स्वास्थ्य संगिनी। आपका अगला कार्यक्रम है सेहतिया सिंह, जिसमें आएंगी सेहतिया भैया और टेकन भाभी आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें। सुनना मत भूलिएगा। रखिए अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।
8: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
9: मतलब
8: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
10: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर।
1: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा। लेकिन आज सच कहूं तो आवाज में जोश कम और गर्मी ज्यादा है दोस्तों। अभी मैं स्टूडियो में बैठी हुई हूं, एसी भी चल रही है, फिर भी ऐसा लग रहा है जैसे कोई अंगीठी के सामने बैठी हुई हूं। सुबह जब घर से निकली तो लगा कि आज का दिन तो थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ा तो लगा कि आज तो हालत खराब होने वाली है। अभी घड़ी में सिर्फ और सिर्फ 10 बज रहे हैं और लग रहा है कि जैसे दोपहर सिर पर खड़ी है। दोस्तों, पहले गर्मी सिर्फ मौसम हुआ करती थी, लेकिन अब ये जैसे एक मुसीबत बन गई है यार। समझ नहीं आता कि ये सिर्फ गर्मी है या कुछ और भी गड़बड़ चल रही है हमारे आसपास।
2: अरे आरजे दीदी, इतनी घबराहट क्यों? गर्मी है तो पसीना आएगा ही। लेकिन आपकी बात भी गलत नहीं है, इस बार की गर्मी वाकई कुछ ज्यादा ही तेज है। और जो आप महसूस कर रहे हैं ना, वो सिर्फ आपकी परेशानी नहीं है, पूरे देश में लोग यही महसूस कर रहे हैं।
1: हाँ टीकन भाभी, अब आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि ये सिर्फ गर्मी बढ़ गई वाली बात नहीं है, इसके पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। लेकिन एक बात अब भी समझ में नहीं आ रही मेरे, क्या ये सिर्फ मौसम का उतार चढ़ाव है या फिर हम इंसानों की भी इसमें कोई भूमिका है? सच बताऊं अब ये गर्मी डराने लगी है मुझे, पहले जैसे नहीं रहा।
2: देखिए आरजे, आपने बहुत सही सवाल पूछा है, असल में इसके पीछे कई परतें हैं। सबसे पहले तो प्रकृति का अपना एक सिस्टम होता है। जब उत्तर पश्चिम भारत, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक हाई प्रेशर एरिया बन जाता है तो वह हवा को ऊपर उठने नहीं देता बल्कि नीचे की तरफ दबा देता है। अब होता ये है कि जो गर्म हवा है वो जमीन के पास ही फंस जाती है, बाहर निकल नहीं पाती। और जब ऊपर से बादल भी नहीं होते, बारिश नहीं होती, तो सूरज की किरणें सीधे जमीन को तपाती रहती हैं, जमीन सूख जाती है, उसमें नमी नहीं रहती और फिर वो गर्मी को और तेजी से पकड़ती है। जैसे तवा गर्म हो जाता है वैसे ही।
1: तो इसका मतलब ये है कि हम जो महसूस कर रहे हैं वो सिर्फ धूप नहीं बल्कि ऊपर आसमान से लेकर नीचे जमीन तक सब कुछ मिलकर ये गर्मी बन रही है।
2: बिल्कुल सही समझी आप, ये एक पूरा सिस्टम है, हवा, जमीन, सूरज और बारिश सब मिलकर काम करते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, इसमें एक और बहुत बड़ा कारण जुड़ चुका है, जलवायु परिवर्तन। अब जो हम देख रहे हैं, जैसे गर्मी का जल्दी आना, लंबे समय तक टिके रहना और पहले से कहीं ज़्यादा तेज होना, ये सब उसी का असर है। पहले लू मई जून में चलती थी, लेकिन अब तो मार्च से ही उसके तेवर दिखने लगते हैं।
1: मतलब ये सिर्फ आज की परेशानी नहीं है, ये आने वाले समय की एक चेतावनी है और शायद हालात और भी कठिन हो सकते हैं, क्यों भाभी?
2: हाँ आरजे, यही सच्चाई है। और सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ता है जो सबसे कम सुरक्षित हैं, जैसे खेत में काम करने वाले किसान, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चलाने वाले जो पूरे दिन धूप में रहते हैं, साथ ही बच्चे, बुजुर्ग और जो पहले से किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उनके लिए ये गर्मी और भी खतरनाक हो जाती है।
1: तो भाभी अब ये बताइए, ये लू क्या होती है? लोग अक्सर कहते हैं कि लू लग गई, लेकिन असल में शरीर के अंदर क्या होता है ये तो आज तक किसी ने ना सोचा और ना ही किसी ने प्रश्न किया इस पर। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर में लू हमारे शरीर पर कैसा असर डालता है।
2: जी देखिए, लू कोई साधारण गर्मी नहीं है। ये एक ऐसी स्थिति होती है जब शरीर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और शरीर खुद को ठंडा नहीं कर पाता। आमतौर पर हमारा शरीर पसीने के जरिए खुद को ठंडा करता है, लेकिन जब बहुत गर्मी होती है और शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो पसीना आना भी बंद हो जाता है। उस समय शरीर का कूलिंग सिस्टम फेल हो जाता है और यहीं से लू लगने की शुरुआत होती है। इसके लक्षणों में तेज सिरदर्द, चक्कर आना, उल्टी होना, त्वचा का सूख जाना, तेज बुखार और कभी कभी बेहोशी भी शामिल है।
1: मतलब ये तो बहुत गंभीर बात है, क्या ये जानलेवा भी हो सकता है?
2: हाँ बिल्कुल, अगर सही समय पर ध्यान ना दिया जाए तो यही लू हीट स्ट्रोक में बदल जाती है, जो एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसमें शरीर का तापमान 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ सकता है। कई बार इससे व्यक्ति बेहोश हो जाता है, बोलने में दिक्कत होने लगती है या शरीर के कुछ हिस्से काम करना बंद कर सकते हैं। इसलिए लू को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये सिर्फ गर्मी लगना नहीं बल्कि शरीर के लिए एक गंभीर खतरा है।
1: ओहो भाभी, तो फिर इससे बचने का तरीका क्या है? क्योंकि अब तो ऐसा लग रहा है कि ये खतरा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं है बल्कि हम सबके लिए है। घर में हो या बाहर, हर कोई इससे प्रभावित हो सकता है।
2: देखिए आरजे, घबराने से ज्यादा जरूरी है समझदारी से काम लेना। सबसे पहला और सबसे जरूरी उपाय है पानी। हमें बार बार पानी पीना चाहिए, भले ही प्यास लगे या ना लगे। कई बार हम इंतजार करते हैं कि प्यास लगे तब पानी पिए, लेकिन तब तक शरीर में पानी की कमी शुरू हो चुकी होती है। इसलिए बेहतर है कि थोड़ा थोड़ा करके हर कुछ देर में पानी पीते रहें। इसके साथ ही छाछ, नींबू पानी, नारियल पानी, लस्सी, ये सब शरीर को ठंडा रखने में बहुत मदद करते हैं और कमजोरी भी नहीं आने देते।
1: भाभी, आपने पानी, छाछ, नींबू पानी की बात तो बताई, लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ORS भी बहुत जरूरी होता है। ये ORS क्या होता है और कब लेना चाहिए?
2: बहुत अच्छा सवाल है आरजे
1: जी।
2: ORS यानी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये एक ऐसा घोल होता है जो शरीर में पानी की कमी के साथ नमक और जरूरी मिनरल्स की कमी को भी पूरा करता है। जब हमें बहुत ज्यादा पसीना बहता है तो सिर्फ पानी ही नहीं शरीर से नमक और इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं। ऐसे में सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता, ORS बहुत मदद करता है।
1: मतलब ये सिर्फ बीमारी में नहीं बल्कि गर्मी में भी काम आता है।
2: बिल्कुल, अगर कोई व्यक्ति धूप में काम कर रहा है, बार बार पसीना आ रहा है, कमजोरी लग रही है या चक्कर जैसा महसूस हो रहा है तो ORS बहुत फायदेमंद होता है। इसे छोटे छोटे घूंट में पीना चाहिए और अगर घर में ORS का पैकेट ना हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं। घर पर भी घोल बनाया जा सकता है।
1: अरे वाह, ऐसा भी कुछ है भाभी?
2: बिल्कुल, 1 लीटर साफ पानी में 1 चम्मच चीनी और 1 चुटकी नमक मिलाकर ये भी शरीर को संभालने में मदद करता है।
1: वाह, मतलब ये तो बहुत आसान है और हर घर में बन सकता है। सच में छोटी छोटी जानकारी कितनी बड़ी मदद कर सकती है ना भाभी?
2: बिल्कुल आरजी, गर्मी में पानी के साथ ORS दोनों है जरूरी डोज। अगर शरीर को समय पर ये मिल जाए तो बड़ी परेशानी से बचा जा सकता है।
1: हाँ ये तो सही बात है, अक्सर हम काम में लगे रहते हैं और पानी पीना ही भूल जाते हैं, लेकिन क्या बाहर जाने से भी बचना चाहिए?
2: जी बिल्कुल, खासकर दिन के सबसे गर्म समय में सुबह 10 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक बाहर निकलने से जितना हो सके बचना चाहिए। अगर बहुत जरूरी हो तभी बाहर जाएं और जब भी निकले तो सिर को ढक कर निकले, चाहे गमछा हो, टोपी हो या छाता। हल्के रंग के, ढीले और सूती कपड़े पहने ताकि शरीर को हवा मिलती रहे और गर्मी कम लगे।
1: और भाभी, खाने पीने में क्या बदलाव करना चाहिए, क्योंकि गर्मी में खाना भी कभी कभी भारी लगने लगता है, या फिर मैं यूं कहूं कि आजकल मैं अगर अपना पर्सनल बोलूं भाभी, तो मुझसे तो खाना खाया ही नहीं जाता। थाली में लेके बैठती दो रोटी, और एक रोटी खाते ही ऐसा लगता कि मन भर गया है, और भूख भी लगी रहती है, फिर भी हम नहीं खाना खा पाते। और सेम चीज़ कहीं ना कहीं पानी के साथ भी होता है कि गला सूखा सूखा लगता है, पेट भरा लगता है। तो मतलब खान पान में हमें क्या बदलाव करना चाहिए?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, अक्सर ये घटना सभी व्यक्तियों के साथ गर्मियों में होती है। गर्मी में हमें अपने खाने पर भी ध्यान देना चाहिए। भारी, तला भुना और ज्यादा मसालेदार खाना शरीर में और गर्मी पैदा करता है, इसलिए इसे कम करना चाहिए। इसके बजाय हल्का और आसानी से पच जाने वाला खाना खाएं। साथ ही ऐसे फल और सब्जियां ज्यादा लें जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है, जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरा आदि। ये न सिर्फ शरीर को ठंडा रखते हैं बल्कि पानी की कमी भी नहीं होने देते।
1: भाभी, ये तो हम अपने जैसे लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन जो लोग दिन भर बाहर काम करते हैं, जैसे मजदूर, किसान, रिक्शा चालक और अन्य लोग, उनके लिए तो ये और भी मुश्किल होगा। उनका क्या होगा फिर भाभी?
2: बिल्कुल, मुश्किल तो है। आपने बहुत जरूरी बात उठाई है। ऐसे लोगों के लिए सबसे अहम है कि वे अपने काम का समय थोड़ा बदलें। कोशिश करें कि सुबह जल्दी काम शुरू करें और दोपहर की तेज धूप में आराम करें। बीच बीच में पानी पीते रहें और जहां भी छांव मिले वहां थोड़ी देर रुककर शरीर को ठंडा कर लें। लेकिन सिर्फ उनकी जिम्मेदारी नहीं है, समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों के लिए पानी और छांव की व्यवस्था हो। अगर हम अपने आसपास किसी को धूप में परेशान देखते हैं तो कम से कम पानी देने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।
1: मतलब हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि ये समस्या सबकी है।
2: बिल्कुल, खासकर बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं, ये लोग ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। इनका विशेष ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जल्दी लू की चपेट में आ सकते हैं।
1: और अगर किसी को सच में लू लग जाए तो उस समय क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार लोग घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते हैं कि आखिर में प्राथमिक उपचार क्या हो। मतलब हम बड़े उपचार की तो बाद में सोचेंगे, प्राथमिक उपचार भी दिमाग काम नहीं करता है ऐसे समय पे जब हमें लू लग जाती है।
2: जी, ऐसी स्थिति में सबसे पहले उस व्यक्ति को तुरंत धूप से हटाकर छांव या ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए और उसके शरीर पर ठंडा पानी डालें या गीला कपड़ा रखें ताकि शरीर का तापमान कम हो सके। अगर पंखा या हवा का इंतजाम हो सके तो और अच्छा है। और सबसे जरूरी बात, जितनी जल्दी हो सके उसे डॉक्टर या नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र तक पहुँचाना चाहिए, क्योंकि देरी खतरनाक हो सकती है।
1: भाभी, ये तो थी हम इंसानों की बात। अब एक और बात, ये गर्मी ने तो हम लोगों को वाकई बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, लेकिन क्या जानवर भी इससे उतने ही प्रभावित होते हैं जितने हम मनुष्य?
2: अरे आरजे
1: जी,
2: जानवर भी उतने ही परेशान होते हैं,
1: है ना?
2: बल्कि जी, लेकिन कई बार हमसे भी ज्यादा, क्योंकि वे अपनी परेशानी बता नहीं पाते। गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी इस गर्मी से प्रभावित होते हैं। उन्हें भी ठंडी जगह, छांव और साफ पानी की जरूरत होती है। अगर उन्हें ये सब ना मिले तो उन्हें भी हीट स्ट्रोक या डिहाइड्रेशन हो सकता है। इसलिए गर्मियों में हमें उनके लिए भी पानी और छांव का इंतजाम करना चाहिए। ये भी हमारी जिम्मेदारी है।
1: तो भाभी इसका मतलब ये है कि हमें सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि उन बेजुबान जानवरों की भी चिंता करनी चाहिए जो बोल तो सकते नहीं लेकिन इस गर्मी को उतना ही झेल रहे हैं जितना कि हम।
2: बिल्कुल आरजे, और कई बार तो उनसे भी ज्यादा, क्योंकि उनके पास अपने बचाव के साधन नहीं होते। अगर हम अपने घर के बाहर या आंगन में एक बर्तन में पानी भर कर रख दे तो वह किसी प्यासे पक्षी या जानवर के लिए जीवनदान बन सकता है। ये छोटा सा काम लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है और यही असली इंसानियत है।
1: साथियों, आज की इस बातचीत ने हमें एक बात बहुत ज़रूरी बताई कि गर्मी अब सिर्फ एक मौसम नहीं रही, ये एक चुनौती बन चुकी है। लेकिन अच्छी बात ये है कि अगर हम थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा समझदारी दिखाएं, तो इससे बचना बिल्कुल संभव है। हमें बस अपनी रोज़मर्रा की आदतों में बदलाव लाना होगा, वो भी छोटा छोटा, जैसे समय समय पर पानी पीना, तेज धूप से बचाव करना, हल्के और सूती कपड़ों को पहनना और अपने शरीर को आराम देना, और सबसे ज़रूरी अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखना, चाहे वो कोई बुज़ुर्ग हो, कोई बच्चा हो, कोई मजदूर हो या फिर कोई बेजुबान जानवर, क्योंकि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना ही असली ताकत होती है। याद रखिए, पानी पिए बार बार, लू से रहें हम सब तैयार। और एक बात और कि धूप से बचाव है ज़रूरी, तभी रहेगी सेहत पूरी। भाभी, आपकी बातें सुनकर एक बात समझ में आ रही है कि अगर हम लापरवाही करें तो ये गर्मी बहुत खतरनाक हो सकती है। क्या आपने ऐसे कोई मामले को देखा है जहां लापरवाही बहुत भारी पड़ गई हो?
2: हाँ अर्जे, और ये बात मैं बहुत भारी दिल से बता रही हूँ। हमारे ही पास के एक गांव में पिछले साल एक छोटा सा बच्चा था, सिर्फ 5 साल का। उसके माता पिता दोनों खेत में काम कर रहे थे। एक दिन बहुत तेज गर्मी थी लेकिन वे बच्चे को भी अपने साथ ले गए। धूप तेज थी और बच्चे को बार बार प्यास लग रही थी, लेकिन उन्होंने सोचा कि थोड़ी देर में पानी दे देंगे। धीरे धीरे बच्चा चुप हो गया, खेलना बंद कर दिया।
1: फिर क्या हुआ भाभी?
2: और फिर उसे चक्कर आने लगे। जब तक वे समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने तक बच्चा बेहोश हो चुका था और डॉक्टर ने बताया उसे गंभीर डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक हुआ था।
1: ये तो बहुत दुखद है भाभी।
2: हाँ अर्जे, और सबसे दुख की बात ये है कि ये रोका जा सकता था। अगर समय पर पानी दिया जाता, अगर उसे धूप से बचाया जाता। यही वजह है कि हम बार बार कहते हैं गर्मी को हल्के में मत लीजिए, खासकर बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने भाभी। तो साथियों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक सीख है। एक छोटी सी लापरवाही एक मासूम की जान ले सकती है, इसलिए आज से ही तय कर लीजिए अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को और खुद को इस गर्मी से बचाना है।
2: और अंत में बस इतना कहना चाहूंगी, लू को कभी भी हल्के में मत लीजिए। ये सिर्फ गर्म हवा नहीं, ये शरीर पर सीधा हमला है। अगर हम समय रहते सावधान हो जाए तो खुद को और अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं। जागरूक रहना ही सबसे बड़ा बचाव है।
1: इसी के साथ दोस्तों, हम अपना आज का प्रोग्राम यही खत्म करते हैं, पर जाने से पहले लेंगे हम सब अपनी सेहत की शपथ।
0: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
0: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
1: मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा आपसे लेती हूँ विदा। फिर मिलेंगे इसी शो यानी कि सेहत सही और लाभ कई में, क्योंकि अगर सेहत होगी सही तो लाभ भी तो होंगे कई, एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद और याद रखिए, पानी पीते रहिएगा, छांव में रहिएगा और हमेशा स्वस्थ रहिएगा। अपना भी और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा और बेजुबान और बुजुर्गों का थोड़ा ज्यादा खास वाला ख्याल रखिएगा। टेक केयर। Fine.

0: फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
1: पैरों में सूजन, बुखार, थकावट, ये हो सकते हैं फाइलेरिया के लक्षण, लेकिन घबराइए मत, बचाव मुमकिन है।
0: हर साल एक बार खाओ दवाई प्यार से, फाइलेरिया दूर भगाओ, स्वस्थ जीवन अपनाओ। फाइलेरिया की दवा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। ये दवा सुरक्षित है बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी के लिए।
1: बस याद रखिए, जब आपके गांव या मोहल्ले में स्वास्थ्य कार्यकर्ता आए तो दवा जरूर लें और दूसरों को भी दिलवाएं।
0: फाइलेरिया से डरना नहीं, दवाई से लड़ना है। एक छोटी गोली सेहत में बड़ी जीत।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है, तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं,
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 बजे से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है, बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें। संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: डिलीशियस
4: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
4: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर, कम फॉर फूड स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
5: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
6: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें, तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
5: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं, तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
6: अधिक व्यायाम ना करें, तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
5: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
6: सावधानी अपनाएंगे, हीट वेव को हराएंगे।
5: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
8: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
9: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आज समता इन साथ में आज अंशिका। क्या हाल है भाई आप सभी का? जल्दी से चैट बॉक्स में आ जाएं, क्योंकि आज वेनसडे है और आज सभी को पता है कि आज एक्चुअल में सुन सहेली का प्रोग्राम, सुन सहेली एग्जैक्टली आज होने वाला है। उसका कारण है, बहुत बड़ा कारण है, वो कारण भी हम आपसे बताएंगे, लेकिन वो कारण क्या रहेगा वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि आज के दिन हम स्पेशली विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम लेकर के आते हैं। भाई हर दिन हम कुछ ना कुछ नया तो विमेन्स के लिए लेकर के आते ही आते हैं, लेकिन आज की जो मेन और ख़ास बात ये है कि आज के दिन हम पूरा प्रोग्राम सेटअप करके आते हैं केवल और केवल महिलाओं के लिए। तो आपका पसंदीदा प्रोग्राम शुरू हो चुका है, जिसका नाम है सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका। एंड प्यारी सी दोपहर में आइए एक साथ एक ही फ्रेम में क्या बोलेंगे,
10: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और बिल्कुल सही कहा अभी मैम ने कि आज का दिन तो सजेगी आज की बात, क्योंकि आज रहेगा हमारी महिलाओं का साथ, यानी कि हमारी फीमेल लिसनर्स का साथ, वो आज हमारे साथ होंगी। वैसे तो हमेशा रोज ही हमारे साथ होती है मैम, लेकिन आज थोड़ा सा इसलिए क्योंकि जब हम किसी स्पेशल दिन को सेलिब्रेट करते हैं ना, जैसे फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, तो होता है कि आज स्पेशल फादर्स का ही दिन है। तो जब स्पेशल किसी एक स्पेसिफिक वे में एक दिन होता है ना किसी का, तो वो कुछ अलग ही बात होती है। तो आज भी स्पेशल है हमारी फीमेल लिसनर्स के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे मेल लिसनर्स की एंट्री नहीं है, वरना वो ये समझ लें कि हमारी फीमेल लिसनर्स को कहा जा रहा है तो क्या हम नहीं आ सकते? नहीं, आप भी आ सकते हैं, आपका भी स्वागत है। और वैसे भी मैम हम तो ऐसी चीजें बताते हैं जो कि दोनों के लिए मतलब अच्छी
9: हाँ,
10: रहती है।
9: बिल्कुल, लेकिन कहते हैं ना कि 100 दिन सास के एक दिन नहीं, 100 दिन बहू के एक दिन सास का कहते हैं ना। तो भाई बस वही आज है कि आज एक दिन सास का है, यानी कि आज विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम में आज बुधवार के दिन स्पेशली हम विमेंस के लिए कुछ खास और बहुत खास लेकर के आते हैं। तो जैसे कि हमारे प्रोग्राम की औपचारिकता, आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले एक बहुत ही प्यारी सी एक पोयम लेकर के आते हैं और लेके आते हैं रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ।
10: बिल्कुल बिल्कुल, पोयम को लेकर के आते हैं, लेकिन आज कुछ स्पेशल लाइन से इस पोयम को इंट्रोड्यूस होगी, क्योंकि पोयम लेकर के आई हैं आपकी बहुत ही फेवरेट वाली और हम सभी की फेवरेट, यानी कि आज समता। तो भाई जब पोयम इतनी क्यूट सी, प्यारी सी, अच्छी सी हमारी मैम लेकर के आई हैं, तो इंट्रोड्यूस भी कुछ अलग अंदाज में होना चाहिए।
9: अच्छा, ये है?
10: ये है।
9: ओके,
10: तो इंट्रोड्यूस कराने के लिए दो लाइन बोलती हूँ और होप करती हूँ कि मैम को पसंद आ जाएगी।
9: जी, जी, जी,
10: और अगर नहीं पसंद आएगी तो फिर वो
9: नहीं, अगर नहीं पसंद भी आएगी तो कल की तरह भंडारा खाने चलेंगे।
10: हाँ,
9: अरे आज बहुत अच्छी सी बात बतानी है, लेकिन पहले पोयम बता देंगे।
10: ओके, तो सितारों से सजी होती है हर एक रात, सितारों से सजी होती है हर एक रात, और आज आपकी अपनी आरजे समता करेंगी इस प्यारी सी पोयम की शुरुआत।
9: ओहो वाह,
10: कैसी रही?
9: बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब कहते हैं ना कि जब हम किसी के ऊपर बहुत गुस्सा होते हैं, बट वो अगर कोई ऐसी चीज़ें कोई इंसान बोल देता है तो वो फटाक से गुस्सा छू हो जाता है।
10: अच्छा, मतलब
9: मैं किसी के ऊपर थी नहीं, तुम्हारे ऊपर नहीं।
10: अच्छा,
9: मैं नहीं। किसी और के ऊपर थी गुस्सा, बट ऐसी पोएम्स को सुनने के बाद में ना मन जो है वो बाग बाग हो गया।
10: चलिए, तो बाग बाग से हम चलते हैं और बागों से फूल लेकर के आते हैं, जो की है एक प्यारी सी पोएम।
9: और चढ़ाना कहाँ पे है? लिसनर्स को।
10: लिसनर्स को
9: चलिए
10: प्रसन्न करते हैं।
9: आज की पोयम जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तो एक शेरो शायरी में क्या पहले क्या बोलते हैं, अर्ज है?
10: इरशाद, इरशाद,
9: इरशाद, इरशाद, इरशाद। तो चलिए शुरू करते हैं। नारी शक्ति और उसका हौसला। आज की पोयम का जो मेन शीर्षक है वो शीर्षक है नारी शक्ति और उसका हौसला।
10: शीर्षक किसी की तरह बहुत दमदार है आज। हाँ मैम, सुनाइए।
9: दमदार,
10: आई मीन टू से बहुत अच्छा, वर्ड्स पे मत जाइए, भावनाओं पे जाइए ना। मेरे कहने का ये मतलब था कि शीर्षक में बहुत वो नहीं कहते हैं,
9: बातों में दम है।
10: हाँ।
9: तो चलिए।
10: हाँ।
9: सागर सी गहरी अंबर सी विशाल है, सागर सी गहरी अंबर सी विशाल है, हर रूप में ममता की बहती एक धारा है, त्याग की मूरत साहस की परिभाषा है, नारी के बिना अधूरा यह जहान सारा है, यह चुनौती को डटकर सामना करती, हर चुनौती का डटकर सामना करती, मुश्किलों से वो कभी नहीं डरती है, बुलंद हौसलों की वो मिसाल बन जाती, हर घर को वो प्रेम से स्वर्ग बनाती, कभी बेटी तो कभी माँ का फर्ज निभाती, अंधेरे में भी वो रोशनी की किरण लाती, वक्त आने पर चंडी का रूप वो धर ले, वक्त आने पर चंडी का रूप वो धर ले, उसके आगे कोई भी तूफान ठहर न सके, कोमल है कमजोर नहीं ये शक्ति है अपार, नारी के कदमों में ही झुका है यह संसार, नमन है उस नारी के अटूट विश्वास को जो बदल दे इस दुनिया के इतिहास को, नमन है उस नारी के अटूट विश्वास को जो बदल दे इस दुनिया के पूरे इतिहास को।
10: वाह, मतलब बहुत ही प्यारी। और जैसे कहते हैं ना कि जब हम कोई चीज़ करते हैं या पढ़ते हैं तो जैसी जिसकी वाइब होती है वैसी वाइब्स उस पोयम में भी आ जाती है। तो जैसे मैम की वाइब ही बहुत अच्छी सी है और वैसे इस पोयम में भी आ गई, मतलब इतनी प्यारी, इतनी स्वीट, और कितने चुन चुन के शब्द हैं आपने देखा, मतलब एक वाकई में एक नारी के ही कदमों में सारा संसार झुका हुआ होता है, और कितने प्यारे शब्द, कितने अच्छे से आपने उसको ब्रीफ किया, बहुत अच्छी लगी
9: क्योंकि
10: मुझे।
9: पता है अंशिका, एक जो बात बता दूं कि जो एक नारी होती है, मतलब जैसे हम लोग घर में काम करते हैं, एग्जैक्टली हम हमेशा से सोचते हैं ना कि अगर एक औरत घर को संवार सकती है, एक स्वर्ग बना सकती है, तो कहीं ना कहीं एक औरत उसी घर को नर्क भी बना सकती है।
10: बिल्कुल,
9: कैसे बना सकती है? अपने विचारों से, अपने शब्दों से, अपने चाल चलन से और अपने बिहेवियर से। तो अगर हम स्वर्ग

0: दूध हमने निकाला फिर से, और दूध को जब हम गैस पे चढ़ाया और वो उसको बॉयल करने गए तो दूध
1: फट जाता है।
0: अब सोचो कि अगर उस महिला ने थोड़ी सी आलस को त्याग करके अगर ये काम कर लिया होता, रात में ही उबाल करके उसको रूम टेम्परेचर पे रख दिया होता तो शायद वो दूध बच जाता।
1: बिल्कुल
0: है ना, पर वो भी क्या करे, वो भी थक जाती है और उसने क्या किया, फ्रिज में डाल दिया और सुबह जैसे हुआ तो दूध फट गया। तो यही कारण है कि जेंट्स ने आकर के क्या किया, दूध दे दिया और बोला कि इसको बॉयल कर दो, पर वो जो औरत वो सारा दिन थकी हुई वो थक गई, उसने भी इसने रख दिया और वो दूध फट गया। तो इस कहानी से इस बात को बताने का जो सेंस निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि छोटी छोटी ऐसी कई चीजें होती हैं जिसको औरतें जो हैं वो घर को संजो के बैठी हुई हैं।
1: हाँ,
0: है ना, मान लो कि
1: हर चीज का कहीं ना कहीं ख्याल रखना, कोई भी चीज मिस नहीं होती।
0: हाँ,
1: है
0: कोई भी, अब जैसे आपने हफ्ते भर का महीने भर का राशन मंगवा लिया, अब वो रखे हैं कुछ डब्बे में, अगर हम उसकी देखभाल नहीं करेंगे तो किसी में कीड़े लग जाते हैं। हाँ, कभी किसी दालें सड़ जाती हैं,
1: सीलन भी सीलन मतलब हो लग जाती है,
0: खराब हो जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि एक औरत ही है जो घर को संभाल के और संजो करके बैठी है।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम, क्योंकि कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जैसे पुरुष जो होते हैं, मतलब ऐसा नहीं जरूरी है कि पुरुष है तो, लेकिन कहते हैं ना कि आप किसी पुरुष के घर में जाइए जहाँ पे महिला ना हो। जैसे नॉर्मली ये मान लीजिए कि हम किसी कुंवारे के घर पे जाते हैं और उनकी शादी नहीं हुई होती है तो हम देखते हैं कि पूरा घर अस्त व्यस्त है, कपड़े कहीं पड़े हुए हैं, चीजें कहीं पड़ी हुई हैं।
0: हाँ,
1: तो लोग कहते हैं ना अरे यार शादी कर लो, कोई संभालने वाली आ जाएगी तो सब कुछ सही सही रहेगा। यह मैंने तो देखा है, मतलब घर पे अपने और भी लोगों को, मैम मामा उमा को देखा है कि एक चीज अगर वो ढूंढते रहेंगे और वो वही होगी लेकिन वो उन्हें नहीं मिलेगी। हाँ, और मामी से वो कहते हैं कि अरे लाओ जरा निकाल, वो तुरंत निकाल के दे देती है क्योंकि वो संभाल के रखती हैं। यहाँ ये कहने का सेंस नहीं है कि पुरुष केयरलेस होते हैं या वो अपना घर नहीं संभाल सकते, नहीं संभाल सकते हैं, बट जो एक महिला जिस जतन से जिस लगाव से संभालती है वो एक पुरुष कहीं ना कहीं उतने डेडिकेशन से मुझे लगता है वो नहीं संभाल पाते।
0: और मुझे तो एक बहुत अच्छी वाली एक महिला के डेडिकेशन पे याद आ गई एक बात कि पीछे कोविड आया था जब,
1: जी,
0: और उस टाइम पर ये हुआ था कि सरकार द्वारा ये कहा गया था कि 500 के कुछ नोट जो है वो नहीं चलेंगे।
1: हाँ,
0: उसे जल्दी से निकालिए और उसको बैंक में जमा करिए। तो वही औरतों का डेडिकेशन इतना ज्यादा था
1: कि बैंकों में लाइन बढ़ गई थी,
0: घरों से तो दो दो लाख तीन तीन लाख रुपए निकले। हाँ, कहाँ से निकले, दाल के डब्बे से, चावल के टीन में से,
1: और
0: कहाँ से तो कहीं कहाँ से वो 500 के
1: कुछ
0: नोट निकले,
1: पैसे जो मतलब मिलते हैं लोग रखे रहते
0: रख देते हैं। तो यही डेडिकेशन है। और जब वही पैसे हस्बैंड को दिए गए कि भाई ये लो नोट, हमको इसकी नोटबंदी हो जाएगी, इसको फटाफट, और रात में ये मैसेज आया था टीवियों में और सुबह जो थी वो सब जगह पर लाइनें लग गई थी। तो भाई ऐसा भी डेडिकेशन है औरतों का कि सालों चीजें पुरानी वो संजो के रखती हैं अपने पास। तो ये है औरत, और औरत को कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए क्योंकि एक शक्ति का नाम ही नारी है।
1: बिल्कुल, शक्ति का नाम ही नारी है जैसा कि मैम ने कहा, और नारी शक्ति को हमारा बहुत बहुत नमन है क्योंकि कहते हैं ना कि नारी बिना संसार नहीं होता है, वो है तो संसार है, और अच्छे से आपका घर संसार चलता रहे इसलिए पत्नी की हर बात मानते रहे ये भी जरूरी है। सुखी संसार की एक बहुत ही अच्छी सी चाबी है ये। जैसे कहते हैं ना हर रोज हम टिप ऑफ द डे देते हैं मैम, तो आज का ये हमारा टिप ऑफ द डे था कि अगर आप सुखी संसार,
0: इनडायरेक्टली इसने अपने लिए बात कही है, मैं आपको बता दूं कि ये जहां जाएंगी तो ये अभी से उनको ये सुनाने की कोशिश कर रही है कि आप जहां पे भी हैं कान खोल के सुन लें कि पति की आज्ञा में रहें तो सुख है, वरना दुख है, नरक है।
1: नहीं, मैं तो ये मतलब मैं तो कह रही हूँ, मतलब इसमें मुझे कोई वो नहीं है एडमिट करने में कि मैं तो अपने हस्बैंड से कहने वाली हूँ कि देखो मेरी हर बात माननी पड़ेगी आपको, आपके पास कोई चॉइस नहीं।
0: ऐसी बात नहीं है, मतलब वो अगर उनके घर में माँ होगी बहन होगी तो क्या उसकी नहीं सुनेगा वो?
1: नहीं, उसकी भी सुने, बट कुछ मेरी भी सुने, मतलब मेरी भी सुननी चाहिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आप अपनी मम्मी की अपनी बहन की ना सुने, उनकी सुने और थोड़ी सी मेरी भी सुने। ये वाला जैसे बताए वो वाला एडजस्टमेंट वाला कि 50% उधर 25% इधर तो 23% इधर भी, वो वाला और बाकी तो मैनेज है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है। खैर वो तो जब होगी तब बात करेंगे, फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि अभी आपने बहुत ही प्यारी सी पोइट्री सुनी और अब पोइट्री के बाद हम आपको कुछ बताने वाले हैं। लेकिन क्या बताने वाले हैं लिसनर्स, थोड़ा सा सोचिए कि हम पोइट्री के बाद हर रोज़ आपको क्या बताते हैं। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के एक प्यारा सा जवाब आप देंगे और फिर हम आपको बताएंगे, तो आएगा जवाब?
0: बिल्कुल,
1: हमारे लिसनर्स का जवाब आएगा ना मैम?
0: हाँ,
1: देखते हैं कि आता है कि नहीं।
0: हाँ, पहले आप बोले।
1: यस, तो चलिए रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ हम आपको बताते हैं कि आज का

0: का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ जो है वो ये है कि 90% जो होता है वो हमारी लाइफ में जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में होने वाली होती हैं उन पे हमारा जो कंट्रोल होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता है। कहीं ना कहीं 10% भी हमारा कंट्रोल जो हमारे साथ होने वाला है उस पे नहीं होता है। जैसे कि अचानक बारिश होती है, गाड़ी पंचर हो जाती है, या कोई गिर जाता है। मतलब आप मान लीजिए आप रोड पर चल रहे हैं आराम से और आप गिर गए, तो उस पर आपका कंट्रोल नहीं है, 10% भी नहीं है, क्योंकि वो होना था, वो लिखा हुआ था आपकी डेस्टिनी में कि आप गिरेंगे, या एक्सीडेंट होता है कई बार। कहने का सेंस ये कि आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ ये कहता है कि 10% भी हमारा कंट्रोल उन चीज़ों पर नहीं है जो हमारे साथ होने वाली हैं, लेकिन 90% हमारा इस बात पे पूरा पूरा कंट्रोल है कि हम रिएक्ट कैसे करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं कि ये साइकोलॉजी का नियम भी है। साइकोलॉजी कहती है 90/10, 90% आपका रिएक्शन होता है और 10% जो आपके साथ हुआ होता है।
1: अच्छा
0: जी मैम, ये साइकोलॉजी का नियम है जो कहता है 90/10, यानी कि 10% जो आपके साथ होने वाला है और हो चुका है मान लीजिए, और 90% की आप उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए हम चल रहे हैं, हम गिर गए, तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना। गिरना तो हमारी डेस्टिनी था, गिर गए, लेकिन हम उठ रहे हैं या फिर हम उसी पे बिल्कुल वहीं पे गिरे हुए हैं, ये तो हमारा रिएक्शन क्या आता है ये तो हम पे डिपेंड करता है। तो आज का रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ है वो आपसे ये कहता है कि हमेशा अपने रिएक्शन को चेंज करिए, क्योंकि हम अपने इंसिडेंट्स को चेंज नहीं कर सकते, जो हमारे साथ होना होगा वो होगा, लेकिन हमें अपने रिएक्शन को चेंज करना चाहिए। जितनी लाइटली, जितनी धीरे आप रिएक्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा कम हो जाती है। मान लीजिए, अच्छा एक इंसिडेंट, ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं मैम, कि मान लीजिए आप बहुत गुस्से में हैं, ऐसा मान लेते हैं, मतलब आपको मैं ये नहीं कहूँगी, मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया कि मान लीजिए बहुत गुस्से में हैं और कोई ऐसी बात किसी ने कह दी है जिसकी वजह से हम बहुत गुस्से में हैं। अगर हम उससे वहीं उठकर लड़ने चले जाते हैं तो हमारी बहुत तेज लड़ाई होती है, लेकिन वहीं अगर हम ये सोचते हैं अरे हटो, उस जगह से जब हम हट जाते हैं तो कुछ टाइम बाद माइंड रिलैक्स हो जाता है, मतलब वो बात टल गई, बहुत झगड़ा होना था बट नहीं हुआ। तो ये बात है कि अगर आप धीरे रिएक्ट करते हैं किसी भी बात पे तो चीज़ें अच्छे से सॉल्व होती हैं। और गुस्से में कभी भी किसी से बात ना करें, जब भी आपको किसी भी स्पेसिफिक इंसान पे या किसी भी चीज़ पे गुस्सा हो तो उस टाइम उस इंसान से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम आप कुछ बोल देंगे, वो कुछ बोल देगा, तो वो चीज़ें खराब ही होंगी। थोड़ा सा शांत होने के बाद आराम से बात करें। तो आज के रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ से सीखिए कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप उसे कैसे हैंडल करते हैं वो आपके कंट्रोल में है। तो हमेशा हैंडल करने के तरीके पर काम करें, न कि प्रॉब्लम पे। तो आज का ये था हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा और मैम को भी अच्छा लगा होगा।
1: बिल्कुल, बहुत ही अच्छा से हैं। और समता जी, अंशिका जी, गुड आफ्टरनून। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं
0: गुड आफ्टरनून। धर्मेंद्र जी
1: गुड आफ्टरनून। एंड मुस्तफा जी गुड आफ्टरनून। नव्या जी गुड आफ्टरनून। एंड एंड एंड कौन आया है अभी, एंड एंड तान्या आई है।
0: हेलो तान्या जी, गुड आफ्टरनून।
1: तो चलिए यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम फिर से कुछ नया और अच्छा आप तक पहुँचाने के लिए। तब तक आप सुनते रहें हमारे साथ सुन सहेली शो, जो कि लेकर के आती हैं आपकी आरजे समता एंड आरजे अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे के एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404-3395। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन,
1: गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
3: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली और वापस आ गई हैं आपकी सहेलियां आपसे फिर से बातें करने के लिए और आपको कुछ बहुत ही ज़रूरी यानी कि आपकी हेल्थ को रिलेट करते हुए बताने के लिए।
4: बिल्कुल, तो चले शुरू करते हैं। आज कुछ सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात करेंगे जो कि महिलाओं की हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है एक घर के लिए। अभी हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक पे यही उठाया था कि अगर एक घर है, एक मकान है, एक मकान को एक घर एक औरत ही बनाती है, तो अगर उसमें महिला ही अस्वस्थ है, किसी कारण से वो परेशान है, तो घर का सारा जो ट्रैक्चर होता है ना, वो बिगड़ सकता है,
3: पूरा बिगड़ जाता है।
4: ठीक है, तो उसको किस तरीके से हमें ठीक ठाक रखना है, तो आज उसी पे कुछ बात करेंगे। जो कि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो गर्मी के लिए आज एक ऐसा डिसऑर्डर हम लोग लेकर के आए हैं जिसको कहा जा रहा है समर डिप्रेशन। मतलब समर डिप्रेशन मैंने जब सुना था तो मुझे लगा था कि यार ये कहीं ऐसा तो नहीं हम लोगों के अंदर है, लेकिन ये सभी के अंदर होता है। ये कोई ये नहीं कह सकता है कि मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। सभी के, जब आप पॉइंट सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि अरे ये तो हमारे अंदर भी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डिप्रेशन में हैं। इसका मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हो रही हैं, है ना?
3: जी मैम।
4: तो समर डिप्रेशन कहा जाता है, ये एक मेंटल हेल्थ है जो कि हर साल गर्मियों के मौसम में मई जून में शुरू होता है और ठंड आते ही ये ठीक हो जाता है। ये ऐसा वाला डिप्रेशन,
3: बिल्कुल,
4: मतलब 2 महीने में होता है ये। ठीक है, तो कोई ये कोई सामान्य उदासी नहीं है, और बल्कि ये मौसम के बदलाव से जुड़ा हुआ डिप्रेशन एक ऐसा गंभीर रूप है जो सर्दियों के डिप्रेशन से लोग ज़्यादा सोते हैं, वही गर्मियों के डिप्रेशन से लक्षण कुछ उल्टे होते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, नींद नहीं आना दिन में, भूख कम लगना, ये तो सबके साथ होता है।
3: ये मुझे भी हो रहा है, मतलब मुझे भी हो गया है क्या?
4: नहीं, ऐसा नहीं, ये सभी के साथ है। अभी आयुषी बैठी थी बाहर, वो भी यही कह रही थी मुझे भूख नहीं लग रही है,
3: ये तो मेरे साथ भी हो रहा है।
4: ये सभी के साथ होता है क्योंकि इसमें वेदर जो है इसका एक साइंटिफिक रीजन मैं बताती हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगी कि समर डिप्रेशन क्या है।
3: जी,
4: उसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जब गर्मियाँ बहुत होती हैं तो ये कहा जाता है कि हमारी जो पेट की गर्मी होती है जो कि हमारे पाचन को पचाने का काम करती है, ये पता है ना?
3: हाँ।
4: तो उसमें क्या होता है कि गर्मी में ये ज्यादा उष्णता के कारण से ये जो गर्मी है ये और बढ़ जाती है।
3: ओके।
4: तो आप थोड़ा भी खाएंगे आपको पेट लगेगा भरा भरा।
3: हाँ।
4: ऐसा होता है,
3: ऐसा ही होता है।
4: पानी पी लो तो तुम्हें लगेगा अरे यार अब तो कुछ खाने का मन
3: हाँ,
4: नहीं कर
3: कुछ
4: रहा है,
3: मन ही नहीं कर रहा है बिल्कुल।
4: और सुबह भले आपने 2 रोटी खा ली है, 1 रोटी खा ली,
3: लेकिन
4: अब जब आप यहाँ से घर जाओगे तो लगेगा, मन करेगा कि भूख लग रही है,
3: बट वो खाना देख के ही मन,
4: खाना जैसे आ रहा है सामने जैसे लग रहा है कि अरे यार ये कैसे खत्म करेंगे, कब होगा, कैसे होगा।
3: मैं तो 2 दिन से पानी पी पी के नाश्ता कर रही हूँ।
4: ठीक है, हाँ, कि मुंह में रखो और पानी
3: डालो, वो,
4: है ना?
3: मतलब वो ना करना पड़े,
4: मतलब ज्यादा चबाना नहीं।
3: हाँ।
4: पड़े। तो ये चीजें इसलिए होती हैं क्योंकि जो पेट की गर्मी होती है जो हमारे पाचन तंत्र को नियमित रूप से ठीक करती है, वही पाचन अग्नि गर्मी के आपकी बॉडी जब हीट होने लगती है तो वो गर्मी ज्यादा बढ़ा देती है।
3: okay.
4: जिसके कारण से आपको भूख कम लगेगी, नींद कम आएगी, चिड़चिड़ापन रहेगा, उदासी रहेगी, यही सारे लक्षण होते हैं एक डिप्रेशन के, जो कि ये मई जून तक रहता है एंड जुलाई अगस्त आते आते सब जो की है खास करके महिलाएं फिर से जो है नॉर्मल होने लगती है।
3: तो मैम, हाँ मैम, समझ
4: तो तुम नॉर्मल हो।
3: हाँ, मतलब मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं नॉर्मल।
4: डिप्रेशन वैसे कुछ नहीं है, ठीक है।
3: वैसे तो भी दूसरों को डिप्रेशन दे देते हैं, हमें कहाँ डिप्रेशन होगा।
4: कौन?
3: कोई नहीं,
4: मतलब तुम डिप्रेशन देती हो सबको।
3: अरे मैं तो मजाक कर,
4: तुम्हारा डिप्रेशन लेता कौन है मुझे ये बता दो केवल।
3: कोई नहीं लेता।
4: चलो, तो सबसे पहला जो एक पॉइंट है वो समर डिप्रेशन के लिए, तो ये गर्मी के डिप्रेशन के कुछ ऐसे जो छोटे मोटे जो हैं सिम्टम्स हैं वो है इंसोनीमिया, है ना? इंसोनीमिया, जो कि रात को नींद ना आना और बहुत कम आना।
3: हाँ, मुझे भी कल रात को लेट से आई थी नींद।
4: ठीक है, भूख कम लगना यानी कि खाना खाने की इच्छा खत्म होना और वजन घटना। ओके,
3: आज मैं चेक करती हूँ वजन घटा है कि नहीं।
4: अच्छा, बेचैनी, हर समय चिड़चिड़ापन। हाँ। गुस्सा और तनाव रहना,
3: ये तो हो रहा है।
4: ये तो हमें भी हो रहा है,
3: इसका मतलब
4: एंजाइटी, घबराहट और किसी अनजाने डर का एहसास होना।
3: हाँ, ये भी हो रहा है।
4: सच्ची वाला
3: मैम,
4: घबराहट हो रही है पर किसी अनजाने डर का एहसास
3: नहीं, जैसे वो फील होता है ना, जैसे थोड़ा सा अजीब जैसा,
4: जैसे हाँ कि कुछ हो तो नहीं गया,
3: नहीं कुछ होने वाला है, जैसे वो
4: हेल्थ को लेकर,
3: कभी कभी इंट्यूशन होता है ना, जैसे कुछ होने वाला है
4: हेल्थ को लेकर के।
3: हाँ,
4: कि कभी कुछ ऐसा तो नहीं, कुछ हो गया है, कुछ
3: ऐसा कुछ इंट्यूशन टाइप का।
4: तो ये चीजें तो हाँ, महिलाओं में ये ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि रिसर्च के मुताबिक ये देखा गया है कि पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं में समर डिप्रेशन होने की संभावना 4 गुना बढ़ जाती है, ज्यादा होती है। उसका पहला पॉइंट मैं आपको बताऊंगी एंड सेकंड पॉइंट आपको अंशिका बताएंगी। तो पहला पॉइंट है कि हार्मोनल बदलाव, ठीक है। तो हार्मोन्स जो होते हैं वो अच्छा ठीक है इट्स कुमार जी, तो सुनिए क्या होता है। हार्मोन्स जो होते हैं वो चेंज होते हैं महिलाओं के शरीर में पीरियड्स, प्रेगनेंसी या मीनोपॉज के कारण हार्मोन्स का उतार चढ़ाव ज्यादा होता है, लगातार होता रहता है। और गर्मी की वजह से जब दिमाग के केमिकल्स बदलते हैं तो ये हार्मोन्स असंतुलन डिप्रेशन को तुरंत ट्रिगर कर देता है।
3: यानी यहाँ भी ट्रिगर है। तो मैम ने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट बताया, उन्होंने ब्रीफ भी बहुत ही अच्छे से आपको किया कि किस तरीके से हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो हमारी बॉडी में समर डिप्रेशन को कहीं ना कहीं एक बढ़ा देते हैं, या महिलाओं में ये बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जो कि सेकेंड पॉइंट हमारा है कि बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है हमारी बॉडी में वो बिगड़ जाती है। यानी कि गर्मियों के दिन लंबे होते हैं और ज़्यादा धूप भी रहती है। इससे क्या होता है कि जब हमारी बहुत ज़्यादा रोशनी के संपर्क में हम आते हैं तो उससे क्या होता है कि सभी के, मतलब हम ये नहीं मानेंगे कि महिला और पुरुष दोनों के शरीर की जो आंतरिक घड़ी होती है वो बिगड़ जाती है ज़्यादा रोशनी आने से। और इससे क्या होता है कि इससे जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन्स होता है उसका हमारी बॉडी में एक बहुत ही अहम रोल होता है।
4: नींद का हार्मोन।
3: हाँ, नींद का हार्मोन्स।
4: किसका?
3: नींद का हार्मोन्स, जो हमारी बॉडी में बिल्कुल एक क्लॉक की तरह काम करता है। जैसे क्लॉक होती है ना, इधर जाती
4: है, तुरंत हम ट्रिगर करते हैं, ये तुरंत अलर्ट हो जाती है। किसका? नींद का।
3: हाँ, तो मतलब मैंने उसको सुधार लिया मैम। तो नींद का हार्मोन्स जो हमारी बॉडी में होता है वो ये बिगड़ जाता है इसका संतुलन।
4: हाँ,
3: और जिसकी वजह से
4: 100% है कि सबसे ज्यादा नींद पे प्रभाव पड़ता है।
3: बिल्कुल।
4: हाँ।
3: और कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि सर्दियों में भी इसका प्रभाव पड़ता है। सर्दियों में ये उल्टा हो जाता है कि बहुत नींद आती है, मन करता है दिन भर सोते रहे। और गर्मियों में ये इसका मतलब विपरीत हो जाता है, आपको बिल्कुल नींद नहीं आती है। तो मेलाटोनिन से हमारी बॉडी की एक क्लॉक जो होती है वो पूरी तरह चलती है, और जब वो क्लॉक बिगड़ जाती है तो फिर ये डिप्रेशन हो सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स को यूज़ करें जिससे कि आपको नींद आए।
4: एंड नेक्स्ट पॉइंट है कि बॉडी इमेज का तनाव हमेशा से बना रहता है, ठीक है। वो होता है कि गर्मियों के आते ही कपड़ों और शारीरिक बनावट को लेकर सामाजिक दबाव बढ़ता है, और इस मौसम में परफेक्ट दिखने के लिए कैश डाइटिंग या फिर अत्यधिक कसरत करने का जो एक चलन है वो महिलाओं में ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण से महिलाओं में एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ा देता है।
3: यानी कि हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये फीमेल्स में तो आई थिंक बहुत ही ज्यादा होता है मैम, सही बताया आपने। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो इसका फोर्थ पॉइंट होता है कि घरेलू जिम्मेदारियों का बोझ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये महिलाओं में तो बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि गर्मियों में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती हैं और फिर मेहमानों का आना जाना भी बढ़ जाता है। और हमारे इंडियन कल्चर में तो ये होता है कि कहीं ना कहीं एक घर की जो महिला होती है उसे ही सबकी देखभाल करनी होती है, सबकी पसंद नापसंद, घर में क्या बनेगा, दिन भर क्या होगा, मतलब मुझे लगता है सुबह से लेकर कि एक रात तक पूरा एक मैनेजमेंट जो घर का होता है वो महिला को ही देखना रहता है कहीं ना कहीं, जिससे कि उन्हें खुद के लिए टाइम नहीं मिलता है। और जो बर्नआउट होता है, यानी कि जो एक मेंटली थक जाना जिसे हम कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा होता है, और जिससे धीरे धीरे ये बर्नआउट ही डिप्रेशन का रूप ले लेता है।
4: बिल्कुल। और एक पॉइंट है जो कि है स्लीप हाइजीन, यानी नींद का समय जो है वो रोज़ एक ही समय तय करें, एक समय पर सोएं और एक समय पर उठें, रात को देर तक जागने से बचें, क्योंकि नींद की कमी डिप्रेशन का सबसे बड़ा ट्रिगर होता है।
3: बिल्कुल। और एक चीज़ और पॉइंट एक बताना चाहेंगे कि अपने कमरे में एसी या कूलर से अपने कमरे को हमेशा ठंडा रखिए। सोते समय ब्लैकआउट का मतलब है कि ऐसे काले पर्दे तो बिल्कुल भी कमरे में नहीं लगाएं, लेकिन थोड़ा सा मोटे कपड़ों के लगाएं जिनसे कि धूप जो है वो आपके कमरे में सीधी ना जाए। सोते वक्त ब्लैकआउट का मतलब होता है कि हमारा कमरा बिल्कुल अंधेरा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, ताकि हमें मेंटल पीस के साथ नींद आए। और एक नींद नींद आए। और एक बात और कहना चाहूंगी कि ऐसी कोई भी चीज, ये आप साइंटिफिकली प्रूव्ड पाएंगे कि ऐसी कोई भी चीज मैम जो आपकी किसी भी मेमोरी को, नेगेटिव मेमोरी को ट्रिगर करती है, वो अपने कमरे में कभी नहीं रखनी चाहिए। कोई भी फोटो, कोई भी कुछ भी, एनीथिंग जो आपकी नेगेटिव मेमोरी को ट्रिगर कर जाए, मतलब जिसको देखकर आपको वो नेगेटिव चीजें याद आ जाए, ऐसी कोई भी चीज कभी अपने कमरे में बिल्कुल ना रखें। ये बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि जब वो ट्रिगर हो जाती है उसके बाद हमें नींद बिल्कुल नहीं आती है, माइंड में वही चीजें कहीं ना कहीं सर्कल करने लगती हैं, घूमने लगती हैं, तो ये भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है।
4: जी, तो अब हम इसके निवारण बताएंगे, लेकिन उसके लिए हम लेंगे यहाँ पर ब्रेक, और ब्रेक के उस पार आएंगे हम समर डिप्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, ये सब चीजों पर बात करेंगे, लेकिन एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।
3: तो आइए लिसनर्स, चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा वाला शो जो कि है सुन सहेली। सुन सहेली और वापस आ गए हैं हम, और सीधे चलते हैं हमारे कंटेंट की तरफ, जो कि हम दोनों ही अभी आपको ब्रीफ कर रहे थे, बता रहे थे। कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, कुछ पॉइंट्स मैम ने आपको बताए कि किस तरीके से समर डिप्रेशन जो है वो इन गर्मियों में हमें परेशान करता है। वैसे परेशान करने वाले तो कुछ लोग भी होते हैं, क्यों मैम? होते हैं ना। लेकिन उससे पहले हम इस डिसऑर्डर की बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें होती
6: हैं। परेशान करने वाले लोग होते हैं, पर वो परेशान कर नहीं पाते हैं।
5: नहीं, वो उसमें ये होता है ना कि कोई होता, मतलब जैसे वो करना
6: कोशिश कर रहे हैं पर
5: वो
6: नहीं,
5: असर नहीं हो रहा,
6: असर नहीं कर पा रहे। चलो, तो अब हम आते हैं उनके प्रिकॉशन पे और उनके निवारण पे आते हैं।
5: उनके निवारण पे,
6: उनके निवारण पे, यानी कि समर डिप्रेशन के।
5: डिप्रेशन के निवारण,
6: तुम्हें क्या लग रहा है कि उनको निवारण नहीं करते हैं हम? अभी आपने सुना नहीं हरिओम ने क्या बोला था कि मैं निवारण नहीं करती हूँ, मैं निवारण ही कर देती हूँ।
5: नहीं नहीं मैम, निवारण नहीं करती है, फिर इसके लिए दूसरा वर्ड है, लेकिन अब वो ऑन एयर।
6: मैं निवारण नहीं करती हूँ, मैं सफाई करती हूँ।
5: सफाया,
6: घर की सफाई करती हूँ। फिर
5: निवारण नहीं होता है, यहाँ वो हो जाता है। अब ये थोड़ा मतलब
6: जैसे वो सुना है ना कि आपका काटा हुआ पानी नहीं मांगते, कुछ ऐसा।
5: हाँ,
6: कुछ
5: सांप का काटा हुआ पानी, ऐसे कुछ ऐसा।
6: हाँ, तो बस ऐसे ही है। तो
5: चलिए हम टॉपिक पर चलते हैं, वरना ये हमारी सांप बिच्छू और सारी जो है पॉइंट्स हैं वो यहीं पर हो जाएंगे। तो आपका पहला पॉइंट, अगर हम बचाव की तरफ चलें, तो वो ये होता है कि सबसे अच्छी होती है प्रोफेशनल हेल्प। प्रोफेशनल हेल्प बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, और प्रोफेशनल हेल्प में जो सबसे पहला पॉइंट हमारा होता है वो होता है CBT। CBT एक बहुत ही अच्छी थेरेपी है, जिसे कहते हैं साइकोलॉजिकल में टॉक थेरेपी या कनेक्टिविटी बिहेवियरल थेरेपी। ये क्या है, ये मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देती हूँ। बिहेवियरल थेरेपी का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को हम हमारे बिहेवियर से चेंज कर सकते हैं। CBT में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम हमारी बिहेवियर से चेंज कर सकते हैं।
6: ओके, तो ये हमारे समर डिप्रेशन के वो हैं।
5: हाँ, यस मैम। तो कुछ चीज़ें ऐसी जो कि आप बिहेवियर से, अब आप सोचेंगे कि हम बिहेवियर से कैसे चेंज करते हैं, तो बिहेवियर से चेंज करने का मतलब होता है कि जैसे हम ये जान लें कि कौन कैसा है, और फिर अगर उस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे तो यही कहलाती है बिहेवियरल थेरेपी। यानी कि जैसे हम किसी किसी को जानते हैं ना कि वो मान लीजिए किसी को हम जानते हैं कि ये हल्की सी भी बात होगी तो वो गुस्सा हो जाएंगे, तो हम उनसे उस तरह की बात ही नहीं करते हैं कि वो गुस्सा हो जाए। या फिर हम किसी को जानते हैं कि अरे यार इनसे, जैसे कोई कोई इंसान होता है तो हम कहते हैं अरे यार उनसे मजाक मत करना, वो सीरियस ले लेते हैं बातों को। या कोई बहुत सीरियस बिहेवियर का होता है तो हम कहते हैं नहीं इनसे मजाक मत करो, वो बहुत सीरियस हैं, वो नहीं तुम्हारे मजाक को समझेंगे। ये बिहेवियर है कि हम जिस तरीके से जिसका बिहेवियर देखते हैं उसी तरीके से हम खुद को चेंज कर लेते हैं।
6: और सेकंड पॉइंट है कि दवाइयों का तालमेल। अगर आप पहले से डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं तो गर्मी शुरू होने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह लेकर दवा की खुराक को थोड़ा एडजस्ट जरूर करवाएं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि अगर जो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो इस चीज़ की दवा लेते रहते हैं, तो सबसे पहले तो वो खुराक आपको चेंज करवानी है। उसके बाद आता है लाइफस्टाइल को में बदलाव, क्योंकि जैसे अभी अंशिका ने बताया था कि ठंडा या फिर अंधेरे वाले कमरे में ही में मतलब सोना चाहिए, ये हाँ। तो आप बताई दी। एंड स्लीप हाइजीन यानी नींद का नियम जो है वो आपको बना लेना चाहिए। रोज एक ही समय आपको सोना है और एक ही समय आपको उठना भी है, इससे भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। एंड सबसे मेन इम्पॉर्टेंट डाइट को अपने आप में संतुलित करना है, क्योंकि डाइट अगर आपकी संतुलित रहेगी तो आपको कोई डिप्रेशन विप्रेशन नहीं होगा। सिर्फ ये एक मानसिक सोच होती है कि हमें ये हो गया, हमको वो हो गया, अरे हम अब क्या करेंगे, कैसे जीवित रहेंगे, ये वो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये सोच का मामला होता है और कुछ भी नहीं। अगर आपने अपने आप को सोच लिया कि आप बीमार हैं तो वो असर आपके अंदर दिखने लगेंगे। अगर आप अपने आप को सुंदर मानेंगे तो वो सुंदरता आपके अंदर दिखने लगेगी। आप जैसा खुद को बनावट करने लगते हैं वैसे ही आप बनने लगते हैं। सबसे पहले तो डाइट आपकी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि गर्मियों में सभी को ये नीड होती है कि हम पानी जैसे पेय पदार्थ ज्यादा लें
5: जी।
6: जिसमें आपने लेना है, जिसमें बेल का शरबत लेना है, बहुत सारे लोगों ने क्या होता है कि नारियल पानी लेना शुरू कर देते हैं,
5: छाछ ले सकते हैं
6: नींबू पानी। छाछ को तो आपने एक अपने मतलब नाश्ते के टाइम पर एक आपने दही वाला कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो रूटीन बना लीजिए। आपने अगर ज्यादा भूख नहीं लग रही है ना और अगर आपने एक ग्लास छाछ ले लिया, मतलब पतला छाछ, बहुत ज्यादा गाढ़ा वाला छाछ नहीं, पतला छाछ, और उसके बाद में आपने एक रोटी अगर ले ली ना तो आपकी दिन मतलब 2 बजे तक आपकी पूरी प्रॉपर डाइट समझ लीजिए हो गई। फिर आपका मतलब नहीं है कि आपने 2 रोटी ली है या 1 रोटी ली है, 1 रोटी 1 गिलास पूरा छाछ आपको पूर्ण रूप से प्रोटीन गर्मियों में दिला सकता है।
5: बिल्कुल। और अपनी डाइट में आप ले सकते हैं, जैसे मैं अगर आपको बता दूं तो आप आम पन्ना भी ले सकते हैं।
6: हाँ।
5: आम पन्ना भी बहुत टेस्टी होता
6: लेकिन
5: है,
6: वो फिर आपको दिन में लेना है आम। हाँ। पन्ना खाली पेट सुबह नहीं,
5: खाली पेट सुबह नहीं, आप दिन में, जैसे कि बहुत लोगों को होता है ना कि मुझे कुछ ऐसे चाहिए तो आप उसको ले सकते हैं, या बहुत तरह के जूस भी बनाए जाते हैं, मतलब तो आप घर पे बना सकते हैं, जैसे वाटरमेलन का हो गया, अनार का जूस हो गया। कहने का सेंस ये कि ज्यादातर गन्ने का रस हो गया। हाँ। ज्यादातर ऐसी चीजों को ले जो लिक्विड मात्रा में आपकी बॉडी में जाए, क्योंकि गर्मियों में हमारी बॉडी में 90% जो आप देखते हैं ना, हीट स्ट्रोक हो गया, हीट वेव हो गई, लू लग गई, या कोई भी, बहुत लोग कंप्लेन करते हैं अरे चक्कर खा के गिर गए, वो 90% जो होता है वो डिहाइड्रेशन के कारण होता है, क्योंकि हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं कि आपकी जब भी हमारी बॉडी में कोई मेंटली हमें प्रॉब्लम होती है, जैसे कि कोई मेंटल डिसऑर्डर होता है, तब भी ये माना जाता है कि अगर आपके मस्तिष्क में, हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, जितने भी हार्मोन्स का श्राव मैम हमारी बॉडी में होता है, वो तभी असंतुलित हो जाता है जब हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है।
6: मेनली एग्जैक्टली होता यही है कि पानी की कमी के कारण ही ये सारी चीजें होने लगती हैं।
5: बिल्कुल। और बॉडी का 70% भी पानी होता है, मतलब जो हिस्सा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जल ही जीवन है, ये बिल्कुल सही है, और जल को थोड़ा सा आप जो है अपनी बॉडी में लीजिए।
6: और अंशिका, अभी किसी ने ये बोला था कि मतलब आधे घंटे में एक गाना हुआ है तो यानी 1.5 घंटे में 3 गाने होंगे, तो हम उनकी इस मनसा को हटाते हुए मैं सोच रही हूँ कि गाना हम लोग सुना देते हैं, उसके बाद फिर से एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
5: बिल्कुल है? तो चलिए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे सॉन्ग की तरफ। बस यूं गए और यूं आए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840 3395 84। अब सपने होंगे साकार।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद ही पसंदीदा शो सुन सहेली और वापस आ गए हम। और वापस आ करके पहले एक बात करनी है आप लोगों से, वो बात मैं करूंगी और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कैफ मोबाइल जी की, जिन्होंने अभी भी मैसेज किया था। सबसे पहले तो आप एक रिस्पेक्टेड जगह पे हम बैठे हुए हैं और आप हमारे लिसनर्स हैं, तो आपको इतनी एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए कि अगर आप किसी भी आरजे का नाम लिख रहे हैं तो आगे मैम आरजे कुछ लगा करके आप लिखें। तो ये एक अपनी मतलब रिस्पेक्ट होती है, अपनी एक वो होती है। और दूसरी बात कि आपका ये कहना कि आपने तो दिल पे ले लिया और आप तो गाने पे गाने चलाए जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारे लिसनर जो रेगुलर लिसनर्स हैं वो जानते हैं कि हमारा डेली का रूटीन है कि हम 2:30 बजे 2 गाने प्ले करते हैं।
6: बिल्कुल, और उसी रूटीन के हिसाब से चलते हैं। और ना ही हम क्योंकि ये हमारा जो प्रोग्राम है सुन सहेली में, इसमें हम लोग किसी की बातों को और फरमाइश पे हम लोग नहीं हम लोग प्ले करते हैं। उसके लिए केवल हम लोग सैटरडे का प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हम लोग गेम, वो भी गेम के

0: कोई बात नहीं, ऐसे कभी कभी मिस्टेक्स हो जाती हैं, बट आप लोग आपस में बात कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम लोग शो को कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इट्स ओके कैप जी, इट्स ओके, डोंट नीड टू सॉरी। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि हमारा टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा वाला, फिर से विमेन के लिए, जो कि उनकी हेल्थ को एक टारगेट करता है, ट्रिगर करता है, या फिर उनके लिए कुछ ऐसे प्रिकॉशंस।
1: बिल्कुल प्रकॉशंस हैं, क्योंकि गर्मियों में देखिए ऑफिस की भागदौड़ जो होती है वो कहीं ना कहीं, आज हम उन महिलाओं की बात करें जो कि वर्किंग वूमेन है और उनको ऑफिस जाना ही जाना होता है, काम करना ही करना होता है, जस्ट लाइक मैम और आप मुझे भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि हमें भी ऑफिस जाना ही जाना है, काम करना है, क्योंकि वो वाला डेली का रूटीन है, हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं कि जैसे कहा जाता है अरे 10 बजे से 4 बजे तक आप
0: नहीं, 12 बजे से 4 बजे तक नहीं निकलना है, 9 तक चल रहा है, ये है वो है। तो ये उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी, स्पेशली केवल महिलाओं के लिए नहीं, मैं उनके लिए भी बोलना चाहूंगी जो जेंट्स हैं कि वो लोग भी तो बहुत ज्यादा धूप में घूम रहे हैं, क्या सब काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि जो है बॉडी है वो सभी की सेम जैसी होती है, लेकिन अब जिनका काम ही मजबूरी है, जिनको निकलना ही निकलना है, तो उनके लिए तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, उसके लिए हम अपनी हेल्थ को थोड़े से प्रिकॉशन के साथ अगर चलेंगे तो ये जो गर्मी का मौसम है ना, ये थोड़ा सा हम पर कम असर दिखाएगा।
1: बिल्कुल, अब आते हैं कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। तो पहला पॉइंट ये है कि आप ऑफिस में भी हैं, मतलब ऑफिस में आप हैं तो हर घंटे अलार्म लगाकर पानी पीने की आदत डालें, फोन में रिमाइंडर जरूर लगाइए, और साथ ही साथ में ऑफिस की डेस्क पर हमेशा कांच की बोतल में या स्टील की बोतल में पानी भर करके जरूर रखें अपने पास, और पानी हर घंटे पीते रहें। अब आप सोचेंगे कि अलार्म लगाने की क्या जरूरत है या रिमाइंडर लगाने की क्या जरूरत है, तो ये उनके लिए है जो बहुत ज्यादा पानी नहीं पीते हैं। मतलब मुझे लगता है सब लोग ऐसे नहीं होते हैं कि वो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, किसी किसी को कहना पड़ता है कि अरे आप बॉटल भर के जैसे लाए थे वैसे ही बॉटल भर के, आप पानी नहीं पीते हो क्या?
0: नहीं, ये भी है, ये भी पॉइंट है, लेकिन इसको पॉइंट को हम काटेंगे अंशिका को कि ऐसा नहीं होता है कि हम लोगों को आदत नहीं होती है। ये अलार्म का मतलब ये होता है कि हम काम में बहुत बिजी हो गए, ठीक है, हम काम में बहुत बिजी हो गए और हमें ध्यान नहीं होता है कि 1 से 2 घंटे हम अगर स्क्रीन पे बैठ गए हैं, काम कर रहे हैं, मोबाइल पे काम कर रहे हैं या फिर अपने सामने लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, हम इतना बिजी हो जाते हैं कि हमको फिर टाइम का पता ही नहीं चलता है। खास करके वो महिलाएं, वो पुरुष जो ऑफिस वर्क करते हैं, जो शॉप पे हैं या फिर आप घर से बाहर निकल रहे हैं काम के लिए, तो अलार्म का मतलब होता है कि आपकी मोबाइल जब बजेगी आपकी, और आजकल तो वॉचेस आने लगी हैं, उसमें भी अलार्म आने लगे हैं, तो अगर आपकी वॉच है तो उसमें भी आप अलार्म सेट कर सकते हैं कि 1 घंटा जैसे वो आपका अलार्म बजा, और उसमें आपने साफ साफ लिख देना है कि हमें पानी पीना है, या आप जिस भी लैंग्वेज में लिखना चाहें, तो उससे क्या होगा कि ये अलर्ट हो जाएगा कि आपको पानी पीना ही पीना है, और जितना भी इमरजेंसी अलार्म बजेगा तो आपको एक आदत हो जाएगी कि हाँ 1 घंटा हो गया और अब मुझे पानी 1 गिलास पीना ही पीना है। तो इसलिए कि आपने ये बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है, इसको अगर आप लोग अपनाएंगे तो कभी भी आपकी बॉडी जो है वो हाइड्रेशन से नहीं परेशान होगी, हमेशा से आपकी हाइड्रेशन बॉडी रहेगी।
1: अब इसी पर मुझे कुछ कहना था लेकिन वो मैं नहीं कहूंगी। मैम आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया, बहुत अच्छे से ब्रीफ किया,
0: थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट पॉइंट हल्का लंच।
1: हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है कि हमेशा हल्का लंच का मतलब है कि दोपहर के खाने में दाल चावल रोटी के साथ दही या रायता ज़रूर होना चाहिए। भारी और ऐसे ऑयली खाने जिनसे कि सुस्ती और एसिडिटी होती है वो आपको नहीं खानी चाहिए, यानी कि इसमें आता है हमारा जंक फूड, जैसे कि समोसा, पिज्ज़ा, नूडल्स,
0: ये तो गर्मियों में
1: इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, पकौड़ी, मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो तेल जिसमें ज़्यादा हो वो अवॉइड करनी चाहिए। और इसके बाद में हमारे पास एक पॉइंट और है जो कि है हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स, जो कि मैम आपको बताएंगी।
0: नहीं बताइए, आप बताइए,
1: आप बताइए मैम,
0: आप बताइए
1: क्यों
0: ऐसे
1: ऐसे नहीं, आप
0: मुझे नहीं आता है।
1: अरे आपको सब आता
0: ना,
1: है
0: ना, ना, मुझे नहीं आता है।
1: ये किसने कह दिया?
0: क्योंकि मैं बड़ी बुजुर्ग हूँ ना, इसलिए मुझे नहीं आता है।
1: अरे नहीं, बड़े बुजुर्गों को तो उल्टा ज्यादा आता है।
0: तो आपने मान लिया कि मैं बड़े बुजुर्ग हूँ, साथ में चलोगी ना तो सब तुम्हें बोलेंगे आंटी, मुझे कोई नहीं बोलेगा, इतना जान लेना।
1: कोई बात नहीं, मैं आंटी सुन लूंगी।
0: तो नहीं,
1: क्योंकि आंटी हैं तो कहीं पर
0: नहीं, तो तुम्हें आंटी अंकल सुनने की अगर इच्छा है तो फिर ठीक है सुनो, पर ये एक फिजिक्स की बात हो रही है अगर कि अगर हम कहीं जाएंगे तो मैं बड़ी बुजुर्ग तो बाद में लगूंगी, लेकिन आंटी और तुम्हें बोला जाएगा, इतना जान लेना।
1: ओके ओके।
0: हाइड्रेशन ड्रिंक्स में सबसे पहले तो आपको अपने बैग में ORS, ग्लूकोज, पानी, नारियल पानी जरूर रख लेना है, चाय कॉफी की जगह छाछ नींबू का पानी, ये सब चीजें आपको अपनी डाइट में शामिल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आने जाने के दौरान सावधानी जरूर बरतनी है जिससे

0: आपको धूप और लू से बचने के लिए ट्रैवलिंग के समय ये आदतें जरूर अपनाएं, खास करके महिला। सनस्क्रीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है इस समय। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से निकलने से 20 मिनट पहले कम से कम SPF जो 30+ वाला सनस्क्रीन आता है वो चेहरे, गर्दन और हाथों पर ज़रूर से लगाएं। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज कि कवरेज टूल्स, सफ़र के दौरान हमेशा चेहरे को सूती स्कार्फ से या दुपट्टे से धूप से ज़रूर से बचाएं। धूप का चश्मा और छाता हमेशा अपने बैग में रखें, जो कि मैं लेके चलती हूँ। ट्रैवलिंग ट्रैवल टाइमिंग जो है, यदि संभव हो सके तो 12 से 4 के बीच सीधी धूप सफ़र करने वाले से बचें। ऐसा बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, ये हो ही नहीं सकता है, हम लोग का टाइमिंग ही 12 से 4 है, तो ये तो बिल्कुल कट कर देते हैं। एंड टू व्हीलर्स या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते समय ग्लूकोज का पानी अपने साथ रखें। हाँ जी बिल्कुल, पानी हमारे साथ में रहता है जिसके कारण से हमें थोड़ी सी असुविधा कम लगती है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्लॉथ्स कैसे होने चाहिए।
1: क्लॉथ्स में हम आपको बता देते हैं कि फैब्रिक की अगर हम बात करें तो केवल और केवल कॉटन होना चाहिए। लिनन के आप खादी कपड़े भी पहन सकते हैं और सिंथेटिक नायलॉन या पॉलिस्टर के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये पसीने को सोखते नहीं है और इनसे स्किन इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। इसलिए कपड़ों में आप, जहाँ तक गर्मियों की बात अगर हम करें मैम, तो कॉटन ही ज़्यादा प्रेफर करने चाहिए।
0: फैब्रिक जो है कॉटन का ना, वो आपके पहले बात तो स्वेटिंग जिसको बहुत ज़्यादा होती है, तो स्वेटिंग को ना वो सोख लेता है। एंड कभी भी गर्मियों में मेरा मानना पर्सनल ऐसा है कि फिटिंग्स और रंग का इस्तेमाल ज़रूर सही चुनाव करना चाहिए। ऑफिस के लिए थोड़े ढीले लूज कपड़े पहनने चाहिए, और जैसे कुर्ता प्लाजो हो गया, ट्राउजर्स हो गया, कॉटन, अगर जो लोग साड़ियाँ पहनते हैं तो कॉटन साड़ियाँ हो गई, एंड हल्के रंग जिसमें सफ़ेद पेस्टल लाइट ब्लू पहने, क्योंकि गर्मी को ये कम गर्मी में ये पसीने को सोखते हैं और आपको गर्मी कम देते हैं।
1: बिल्कुल। अब आते हैं, बात करते हैं फुटवेयर्स की। तो फुटवेयर्स में अगर बात करें तो हाई हील्स या बंद चमड़े के जो जूते होते हैं, मतलब मेल्स के लिए, तो मतलब पुरुषों के लिए, वो बंद चमड़े के जूतों की जगह आप आरामदायक और हवादार जो फुटवेयर्स होते हैं, जो कि मोजरी हो गई, सैंडल हो गई, इस तरह की चीज़ों को पहने, जिससे क्या होता है ना कि गर्मियों में बहुत हाई हील तो नहीं पहननी चाहिए और गर्मियों में ज़्यादा बंद जूते नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि हमारे पैर में पसीना होता है और अगर वो बंद आप जूते पहनेंगे तो वो, जैसे कुछ लोग शिकायत करते हैं ना मैम कि उंगलियों में सफ़ेद सफ़ेद है या पसीने की वजह से इन्फेक्शन हो गया है, तो वो तभी होता है क्योंकि बंद जूते जब हम पहनते हैं तो पसीना रुक जाता है, और जब आप सैंडल वगैरह पहनते हैं तो थोड़ी हवा आती जाती रहती है, ओपन रहता है वो, तो उसकी वजह से इन्फेक्शन नहीं होता है पैरों में।
0: लास्ट बट नॉट लीस्ट पॉइंट है कि मेंटल रिफ्रेशमेंट और वर्क लाइफ स्टाइल को ज़रूर से अपनाएं। कूलिंग बैग्स में ऑफिस में लगातार स्क्रीन के सामने बैठने से बचें। हर 2 घंटे में स्क्रीन से हटकर आंखों पर ठंडा पानी ज़रूर, उनके छींटे ज़रूर मारें। एंड जो है, नो एक्स्ट्रा बर्डन, घर हो या ऑफिस हो या आपका कार्यक्षेत्र जो भी हो, उसका जो बर्डन है वो आप ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर ना लें, क्योंकि अगर ज़्यादा बर्डन रहेगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी, और गर्मी आजकल ज़्यादा है, आपका दिमाग वैसे ही गर्म रहता है, मतलब हम सभी का रहता है, तो ज़्यादा गर्म होगा तो इसका सीधा असर हमारे अपने और किसी खास पर पड़ता ही पड़ता है।
1: ऐसा होता है
0: में, हाँ।
1: अच्छा, घर में, थैंक गॉड,
0: ठीक है,
1: तो घर में पड़ता है,
0: यहाँ तो पढ़ ही नहीं सकता है ना, चाहे जितना बोलो, जिसको भी कोई पढ़ ही नहीं सकता है। तो चलिए हम लेते हैं यहाँ पर आपसे अब अलविदा। कल गुड न्यूज़ ये है कि कल मिलूंगी मैं आपसे मॉर्निंग में, और अंशिका आएंगी दोपहर में, और कुछ हमारी खास सहेलियाँ भी आएंगी जो कि नई सहेलियाँ हैं। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे कल मॉर्निंग में, गुड मॉर्निंग गोंडा में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय
1: बाय बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला, यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: अरे सुना?
9: क्या?
8: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
9: वाओ!
8: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियाँ, सूट, कुर्तियाँ और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
7: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
7: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
9: संपर्क करें 9125707093 और 9696674006। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
10: श्रोताओं, आप सभी के बीच में हाजिर हो गई है फिर से एक बार आपकी अपनी आरजे आकांक्षा लेकर के आपका फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा। और आज थोड़ा सा फालतू होने का मन कर रहा है मेरा, यानी अपन का यानी आपकी अपनी आरजे आकांक्षा का। मैं चाहती आप भी थोड़ा सा फालतू हो जाए। वैसे फालतू कोई है नहीं इस धरती पे, हर कोई अपने अपने काम में मशरूफ है, और मशरूफियत के चलते भी आप आते हैं और शो में अपनी हाजिरी दर्ज कराते हैं, अपने सॉन्ग्स की डिमांड करते हैं, डेडिकेशन करते हैं। और आज भी वक्त हो गया, बिल्कुल से 3:06 हो रहे हैं स्टूडियो क्लॉक और शो स्टार्ट हो गया ब्रो। तो आ जाइए और लगा लीजिए अपने अपने गानों की होड़ और झरोखे से झांक करके थोड़ा सा कॉल मिला लीजिए। कॉल मिलाने के लिए नंबर वही है आपने ट्यून करके रखा हुआ रेडियो गाना सिटी 9.6 एफएम, और उसके स्टूडियो का नंबर है 6393316429 यानी कि 6393316429। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की पहली वाली डिमांड, और पहली वाली डिमांड है आज मेरा थोड़ा सा फुल्ली फालतू होने का। तो चलिए हमारे साथ में आप भी एंजॉय कर लीजिए इस वाले ट्रैक को जो लेके आ गई है आपके लिए आपकी अपनी आरजे आकांक्षा।

चाहे आपका कितना भी खराब मूड हो, कितना भी आप थक गए हो, ये गाना बजा लीजिए, आपका दिमाग किसी अलग जोनर में होता है, उसके बाद तो फिर धमाल होता है इस गाने की तरह। एंजॉय करिए इस ट्रैक को। आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके अमित कुमार जी की, आपके अपने कॉल इन शो यानी कि फोनी फरमाइशी कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा के साथ।

जी बॉस, मजा ही आ गया। फुल्ली फालतू होने में जो आनंद है वो किसी भी चीज में नहीं है। जिम्मेदारियां हमको काट खाती हैं और थोड़ा सा काम अगर एक्स्ट्रा हो जाता है तो हमको थकान आ जाती है, लेकिन अगर आप फुल्ली फालतू होते ना तो इतना आनंद कहीं नहीं है जितना आनंद है नथिंग में। यकीन मानिए, कभी करके देखिएगा फुर्सत से। फिलहाल अभी हम चलते हैं अमित कुमार जी की डिमांड की ओर, और ये हमारे शो का पहला डिमांड होगा। आपने अभी ये सॉन्ग जो आपने एंजॉय किया वो आपकी अपनी आरजे आकांक्षा की पसंद का था, और हमारे कुमार साहब का सिग्नेचर सॉन्ग है एमपी दीवा वाले। फिलहाल अभी चलते हैं इस डिमांड को भी, आप आनंद उठाइए इस डिमांड का। 3 से 4 के सफर में मैं आपके होस्ट एंड होस्ट आरजे आकांक्षा, फिर आएंगे मोहम्मद शाकिर साहब की डिमांड के साथ, फिर होंगे हमारे साथ में मोहम्मद मुजीम साहब। फिलहाल ये प्यारा सा रोमांटिक वाला गाना।

बात है भाई, आज तो हमारी प्लेलिस्ट में अगर हम बात करें तो हमारे रॉबिन हुड जी ने बाजी मार ली है, बड़े टाइमली उन्होंने कॉल कर दिया है। तो मोहम्मद मुजीन साहब के बाद में होंगे हमारे रॉबिन हुड जी आने के, राजू सलमानी जी, फिर होंगे हमारे आदिल जी, और फिर हथियागढ़ से मंगाए एक हाथी है मैंने लकड़ी का, लेकिन आज का गाना इन्होंने बहुत ही प्यारा भेजा है। फिलहाल एंजॉय करते रहिए लगातार आप। आज अमित जी ने थोड़े से हटके सॉन्ग भेजा है लेकिन बड़ा ही खूबसूरत है, एंजॉय करिए इस ट्रैक को। और अगर आपको भी कॉल करना मिला लीजिए 6393।

जैसे कि चोरी चोरी अगर काम करो तो बड़ा अच्छा लगता है, खास करके वो वाला जब आप रात में फ्रिज से कुछ चुरा के खा रहे हो, स्पेशली रखा गया आपके भाइयों द्वारा या फिर आपके बहनों द्वारा, मतलब उसका तो टेस्ट दोगुना हो जाता है बॉस, चोरी किए हुए सामानों का जब भाई बहन के हिस्से से चुराया जाए। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड किसी और की नहीं है, मोहम्मद शाकिर जी की है। आइए एंजॉय करते हैं इस गर्मी में। सावन वाला शब्द भी अगर कहीं आ जाता है बड़ा सुकून देता है, एंजॉय कर लीजिए, थोड़ा रोमांटिक है, ओवर रोमांटिक है।

ये ओवर रोमांटिक सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया हमारे मोहम्मद शाकिर जी की डिमांड पे। और इससे पहले कि मैं नेक्स्ट डिमांड को ट्यून करूं, मैं बता दूं कल है ईद। जी हाँ, और कुछ जगह पे आज भी, मतलब मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं, मुस्तफा जी अगर आप तक मेरी आवाज आ रही तो आप बताएं कि क्या सऊदी अरेबिया में आज ही मनाया जा रहा है या फिर कल मनाया जाएगा, प्लीज बताएं। तो भाई पहले उसकी आप लोगों को हार्दिक मुबारकबाद है। और कल का हमारा खेत खलियान का विषय भी इसी से रिलेटेड है, मुर्गी पालन। और विशेषज्ञ बहुत ही अच्छे वाले विशेषज्ञ हैं, उनसे आज बात करके मुझे बड़ा सुकून मिला, बड़ी अच्छी अच्छी जानकारी मिली। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, उससे पहले ले लेते हैं आप लोगों के मैसेजेस जो मुझे चैट बॉक्स में दिख रहे हैं। हमारे बीच में मौजूद है नव्या जी, मोस्ट वेलकम डियर, और आपकी हंसी बड़ी प्यारी है, खाली खिलखिलाते हुए दिख रही हैं आप, बहुत बहुत थैंक यू। मुस्तफा जी है सऊदी अरेबिया से, इट्स कुमार साहब एमपी रीवा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है, थैंक यू फॉर योर लवली वाला मैसेज, गुड आफ्टरनून डीडी नेशनल नंबर वन, थैंक्स अ लॉट। और इसके अलावा मैं बीच में है धर्मेंद्र मोहन भारती जी, ओके आपने भी बता दिया, धूम मचाले, मतलब ऐसा इनका कहना है कि आरजी आकांक्षा जी आएंगी धूम मचाएंगी, थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला मैसेज। और नेक्स्ट मैसेज में है भाई गुड मॉर्निंग का मैसेज लेके आ गए हमारे कैफ मोबाइल जी, बड़ा सुकून मिलता है आपका गुड मॉर्निंग मैसेज पढ़ के, थैंक यू सो मच। और अब्दुल मजीम साहब भी हैं, ईद मुबारक सभी को, आपको भी ईद मुबारक सर। और ये हमें सुनते हैं, कहाँ से सुनते हैं भाई, अहमदाबाद से सुनते हैं, याद है मुझे हाँ। और नेक्स्ट मैसेज में है, बड़ी तपिश है अपने गुनाहों की, ओहो बड़ी तपिश है अपने गुनाहों की, और सोचते हैं शहर का मौसम खुशगवार नहीं होता, दिन भर करते हैं नफरतें इंसानों से, और कहते हैं राजी परवरदिगार नहीं होता, क्या बात है, मजा आ गया, थैंक यू सो मच। और इसके बाद में नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास में सौरभ मौर्य जी का, जो हमें गुड़वा घाट से सुनते हैं, प्लीज सर आप कॉल कर लें क्योंकि आपका फोन इन फरमाइशी कार्यक्रम है, इसमें आपको कॉल करना पड़ता है, तो कॉलिंग का नंबर फिलहाल के लिए ऑपरेटर साहब ने आपको दे दिया है। इसके अलावा हमारे बीच में मौजूद है कुमार टेलर साहब गौरा चौकी से, आपको भी जय माता दी कुमार साहब, और उम्मीद है कि आप काफी स्वस्थ होंगे। और चलिए फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है अब्दुल मजीम साहब की, इनको सुननी है प्यारी से कवाली राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में, ताजदारे मदीना, ये एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

क्या बात है भाई, ताजदारे मदीना, ये कवाली अभी आपने एंजॉय किया है। बड़ी खूबसूरत सी कवाली थी अब्दुल मुजीब साहब की डिमांड पे, जो हमें अहमदाबाद से सुनते हैं। अभी बारी आ गई हमारे रॉबिन हुड जी के सॉन्ग को प्ले करने की, यानी कि राजू सलमानी जी के सॉन्ग को प्ले करने की, जो हमें सुनते हैं आवाज विकास कॉलोनी गोंडा से। आइए एंजॉय करते इस ट्रैक को, और पता नहीं किस खुशी में इन्होंने इस गाने की डिमांड की है, लेकिन प्ले तो हम करने वाले हैं। आइए आप भी सुनिए ये क्या सुनना चाहते हैं।

बताते बताते देर ना हो जाए इसलिए हमने बता दिया कि नेक्स्ट वाली डिमांड हमारे आदिल जी की जो हमें सुने हैं बरेली से। और क्या सुन रहे हैं आप भी सुन लीजिए 3 से 4 के सफर में। मैं हूँ आपके हुसैन दोस्त आजय कांक्षा और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो यानी कि फोनी फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। एंजॉय द ट्रैक। बड़े दिनों बाद ये गाना आप सभी तक पहुंच रहा है भाई हमारे आदिल जी की डिमांड पे जो हमें सुनने हैं बरेली से। उसके बाद दीपक जी आपका गाना रेडी हमारे पास में। फिर होंगे हमारे इंटरनेशनल लिस्ट यानी के मुस्तफा जी फ्रॉम सऊदी अरेबिया।

कुमार साहब आपने ही नहीं, हमने भी ना जाने कितने दिनों बाद ये गाने सुना। और पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि हार्ट ब्रोकन सॉन्ग नहीं है, मुझे लग रहा है टिली लिली चढ़ाने वाला सॉन्ग है। वाकई बीट बड़ी प्यारी लगी और काफी अच्छा सॉन्ग लगा। आदिल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमें बरेली से सुन रहे हैं और इतने प्यारे से सॉन्ग की डिमांड की आपने। अब चलते हैं हम दीपक जी के सॉन्ग की ओर, जो हमें सुनते हैं हथियागढ़ से। गाना बड़ा ही खूबसूरत है, 90s का वो गाना जो मुझे लगता है अगर जरा सा भी किसी का दिल धड़कता होगा तो उसने ट्यून जरूर किया होगा। आप भी धड़काइए ना अपने दिल को ट्यून करके। कौन सी धड़कन? गोंडा शहर की धड़कन, यानी कि 89.6 FM, और ये सॉन्ग आप सभी के लिए है।

भाई यहाँ पे राजा को रानी से प्यार होता है, लेकिन हम हैं कि हम हमको फिलहाल लोगों ने नाम दिया है तो मान लेते हैं कि एक पल के लिए कि हाँ महारानी को रानियों से प्यार हो गया है। और मैं भी इसमें मौजूद है हमारी मंगू जी यानी कि नेहा जी बहराइच से, आपका भी हार्दिक और स्वागत और अभिनंदन तीनों है। फिलहाल ये गाना सुनिए, बड़ा ही प्यारा सा है।

जी हाँ, अकेले हम अकेले तो मूवी से मनीषा जी और आमिर खान पे फिल्माया गया ये गाना, अभी आपने एंजॉय किया दीपक जी की डिमांड पे। और अभी हम बढ़ेंगे मुस्तफा जी के सॉन्ग की ओर और फटाफट से जल्दी जल्दी से आगे बढ़ते हैं, वरना 3:30 हो चुके हैं, मतलब आधा घंटा आधा शो खत्म हो गया है, बस आधा ही बचा है। हाउ सैड इज दिस। फिलहाल कोई बात नहीं, एंजॉय करिए इस नेक्स्ट वाले ट्रैक को, ये भी कुछ कम नहीं 90s हिट्स में से हमारे चीची जी पे फिल्माया गया, बड़ा प्यारा सा सॉन्ग। आहा, झूमे या नहीं तो फिर इसका बजना बेकार है, बड़ा ही प्यारा सॉन्ग है।

भाई इस हिसाब से बुलाया जा रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा आना है या जाना है। आना आना मतलब समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा द्वंद्वात्मक प्रतीत हो रहा है, आना है या जाना है। फिलहाल मिस्टर ऑप्टिकल जी आ गए हैं, यानी कि अजय मिश्रा जी हमारे बीच में आ गए हैं और इन्होंने भी हमें कह दिया गुड आफ्टरनून। मैम गुड आफ्टरनून आपको भी, आपको भी शुभ दोपहरिया। और नेहा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारी दावत के लिए। और जी हाँ एंजॉय करते हुए, बड़ा ही प्यारा सा गाना है हमारे मुस्तफा जी का। और फिर आएंगे नेक्स्ट डिमांड लेके हम अपने रितेश जी, रमेश कुमार जी महाराष्ट्र से, मोनू जी होंगे रेलवे क्रॉसिंग से, अजीज जी होंगे मुंबई से, फिर मिस्टर ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी और

गाना है बॉस, जादू भाई क्या बोलूं मैं, आप सभी को भी बेहद पसंद आया। दीपक जी हैं, इत्मान साहब हैं, नव्या जी हैं हमारी, नेहा जी हैं, मुस्तफा जी हैं, सभी को गाना पसंद आया, बहुत बेहतरीन उमदा वाला सॉन्ग। मैं कहती नहीं, हमारे चीची जी का कोई भी सॉन्ग बजा दीजिए, अगर आपको पसंद आया तो हमारा नाम बदल के कुछ भी रख सकते हैं आप। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट आई डिमांड की ओर, और ये डिमांड है हमारे प्यारे लिसनर यानी कि रितेश जी की, जो हमें सुनते हैं राधा कुंड गोंडा से। एंजॉय करिए।

0: इमोशन
1: भाई लगातार तीसरे गाने पे आप डांस करने वाले हैं, ये गाना भी बहुत बढ़िया है। और रीना जी हमें सुने रुड़की उत्तराखंड से, बहुत बहुत शुक्रिया फीडबैक देने के लिए, इनको भी गाना काफी पसंद आया। लगातार दो गाने आप बहुत एंजॉय करने वाले, थोड़ा सा ठुमक लीजिएगा क्योंकि ठुमकने वाला गाना है।

बड़ा ही धांसू पूछा है आपने कुमार टेलर साहब गौरा चौकी से, इनका पूछना है दोस्तों, सुनिएगा, जवाब भी आप देंगे, हम नहीं देने वाले हैं। आकांक्षा मैम, आज तक एक बात नहीं समझ में आई, जैसे म्यूजिक स्टार्ट होती है हमारा कमर और मुंडी क्यों हिलने लगती है, ऑटोमेटिक मोड पे कैसे चली जाती है, ठुमक ठुमक ठुमक वाली है ना, मुझे भी सेम होता है। और कहीं बेस्ट वाला सॉन्ग बज गया ना, बजने से पहले ही नाचने का मन करता है, मतलब मयूरी हो जाते हैं हम। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक। और हाँ, इस सवाल का जवाब आप सभी चैट बॉक्स वासियों से चाहती है, आपकी अपनी आरजे आकांक्षा 3 से 4 के सफर को आप एंजॉय कर रहे हैं और करते रहिए है।

होश खो भी दे तो बस है भाई, ऐसे गाने होंगे तो होश खोना बनता है। बहुत सर अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड आई हमारे पास में कहां से बताते हैं, रमेश कुमार जी की महाराष्ट्र से आई। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को भी, और थोड़ा सा और आप मस्ती की ओर बढ़ेंगे क्योंकि रोमांटिक सॉन्ग है भाई। और अभिजीत भट्टाचार्य और साधना सरगम की आवाज में अजय देवगन जी और करिश्मा जी पे फिल्माया गया फ्रॉम जिगर मूवी। अभी तो आप समझ गए होंगे कौन सा गाना है, नहीं समझे तो सुन लीजिए।

भाई हमारे सवाल का किसी ने जवाब नहीं दिया, वैसे ये सवाल हमारा नहीं था, कुमार टीले साहब का था गौरा चौकी से। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपका दिमाग कहीं भी कुछ ऐसा सुनता है या महसूस करता है जिससे उसे रिलीफ मिले, रिलैक्स मिले, तो वो उस ओर जल्दी भागता है, बस इतनी सी बात होती है। और अनकॉन्शियस माइंड भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहता है, तो आप म्यूजिक पे, म्यूजिक की बीट पे जो आपको पसंद होती हैं उस पे थिरकने लगते हैं। फिलहाल हमारे बीच में मौजूद है नीना जी, यानी कि हमारी चंगू जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

0: रमेश जी की डिमांड पे आपने खत लिखवा लिया है और ये खत लिखा गया है महाराष्ट्र से गोंडा के लिए जी। बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। ये है मोनू जी की डिमांड रेलवे क्रॉसिंग से। फिर आते हैं हम अपने सौरभ मौर्य जी की डिमांड की ओर, जो हमें सुनते हैं कोड़वा घाट से। फिलहाल ये गाना जी, कोई टेक्निकल इशू के कारण मोनू जी आपका सॉन्ग थोड़ा सा विलंबित होगा, मतलब कि जस्ट सौरभ मौर्य जी के सॉन्ग के बाद आपका सॉन्ग होगा। एंजॉय करिए।
1: 10-12 साल

हाँ जी, और ये अभी आपने एंजॉय किया खटोला टू हमारे सौरभ मौर्य जी की डिमांड पे, जो मैं सुनते हैं गुड़वा घाट से। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, जो कि हमारे मोनू जी की रेलवे क्रॉसिंग से आई हुई है। भाई पता नहीं कैसे टेक्निकल इशू हो गया था इनके गाने के साथ में, लेकिन हमने बजा दिया। देखिए बजा दिया।

और ये बात बिल्कुल सच है कि दर्द का नाम दवा है। अगर आप दीवाने हैं किसी की मोहब्बत में तो एक दफा आजमा के देखिएगा। अगर सच्ची मोहब्बत है, अट्रैक्शन नहीं रहा होगा या फिर ज्यादा जज्बात में बह के किसी के साथ नहीं गए होंगे, तो आपको अगर कोई छोड़ के भी चला जाएगा तो वो दर्द भी आपके लिए दवा का काम करती है। यही मोहब्बत है भाई, यही इश्क है और इसी में लोग फना होते हैं। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर। डिमांड है हमारे पास में अजीत साहब की और हमारे कुमार साहब का कहना है, भैया पहले हंसाओ, अच्छे अच्छे गाने बजाओ, फिर रुलाओ, हम नहीं खेलेंगे। भाई लाइफ के हर एक पैटर्न को एंजॉय करना चाहिए, बस इतना ही आपसे हम कहेंगे। और एंजॉय करते हैं फिलहाल के लिए बहुत ही प्यारी सी कूली मूवी से आया हुआ ये सॉन्ग और आप सभी के लिए खासम खास दुआओं से भरा हुआ।

जी दोस्तों, आप सॉन्ग एंजॉय करें अजीज साहब का, जो कि मुंबई से सुनते हैं। फिर होंगे हमारे अभी नेक्स्ट डिमांडर मिश्रा ऑप्टिकल से अजय मिश्रा जी, सहनवाज जी होंगे। फिर होंगी हमारी निशा जी, और निशा जी के बाद में जो हुए हैं वो है हमारी खुशी जी काशी राम आवास गोंडा से। उसके बाद नेक्स्ट सॉन्ग होगा हमारे पिंटू जी का। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं किसकी डिमांड है, क्योंकि 3:47 हो चुके हैं।

भी जाएगा प्लीज मेरा भी सलाम कहिएगा और हम सभी का सलाम कहिएगा, क्योंकि हम सभी अपनी अपनी लाइफ में बहुत मशरूफ हैं और जो जा पा रहा है वो बहुत ही भाग्यशाली है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड हमारे अजय मिश्रा जी की।

मुझे नहीं पता आप लोग गाने प्ले करवा के क्या करते हैं, बट मैं आप लोग का गाना बजाने के बाद में जो थिरकती हूँ कुर्सी पे बैठ के कि मुझे ही नहीं भरोसा होता है मैं शो कर रही हूँ या नाच रही हूँ। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है किसकी? शहनवाज जी की, भाई अहमदाबाद से, और आज इन्होंने नचाना है बंदर। आइए सुनते हैं इस गाने को, चीची जी का एक और सॉन्ग फ्रॉम मूवी, आप बताएंगे कौन सी है।

0: अंदर हीरो की खूबी कैसे आ सकती है, इमेजिन करने की बात है। फिलहाल ये मूवी है आंखें और बड़ी ही प्यारी मूवी है। और जब चींची जी की बात हो, गोविंदा जी की बात हो, हम बारी तो लेवल ही कोई और होता है। मजा आ गया वैसे आपका मैसेज पढ़ के नेहा जी, थैंक यू सो मच। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट ट्रैक लेके, जो कि होने वाला है हमारी निशा जी का गाना, बहुत पुराना वाला लेकिन सुन के बड़ा मजा आएगा। हाँ शादियों में बजता था एक दफा, आजकल थोड़ा कम बजता है लेकिन दिल में उतना ही उतरता है जब भी बजता है, क्योंकि इसमें एक खासियत है। खासियत क्या वो बताएंगे, लेकिन पहले ये गाना एंजॉय करिए।
1: एक बार फिर का, एक अब्रो का, एक मुझ का, एक धारी का, एक खाती का, एक पेट का, एक गेट का, बाकी इधर उधर का है। मदर बन्नो, मन्नो, पब्लिक।

0: लॉटरी लगाता है, अच्छे नंबर से बच्चा पास हो जाता है, आता है कितने काम, एक रुपया है दाम, वो भी महंगाई बढ़ गई यार से, वरना आठा ना खाना मुन्नू।
1: हाँ मुन्नू
2: भाई, गाना सुन के आप उम्मीद लगा सकते हैं कि गाना के ये मूवी कितनी मजेदार होगी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा आंखें मूवी गोविंदा जी की तो जरूर देखिए, आज ही देखिए मैं तो कहती हूँ। बड़ा ही मजेदार सॉन्ग रहा। और अभी बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, निशा जी की डिमांड की ओर। सुनिए भाई, इसमें एक ही बीट है जो मुझे बड़ी पसंद आती है, जब वो शीशा टूटता है ना छन्न से, वो आवाज आ क्या बात है।

माफ करिएगा, समय की कमी के कारण मैं ये गाना यहीं पे रोकती हूँ और आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट डिमांड की ओर। और ये डिमांड हमारे खुशी जी की फ्रॉम कहाँ से बता देते हैं, काशीराम आवाज गोंडा से। बड़े दिनों बाद ये गाना भी आप सुन रहे हैं, सुनिएगा है।

मैं यही रोकूंगी, माफ करिएगा। नेक्स्ट डिमांड लूंगी मैं पिंटू जी की, जो हमें सुनते हैं मनकापुर से। और पंडित जी बड़े लेट आए लेकिन दुरुस्त आए, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी।

जी हाँ, ये दिल ही तो है, बस ऐसा ही होता है, बड़ा मासूम सा होता है ना, बच्चे की तरह। उसको जो भी पकड़ा दो लॉलीपॉप वो मान जाता है लॉलीपॉप के साथ में। फिलहाल अब चलने का वक्त हो गया है, लास्ट डिमांड के साथ में मैं माफीनामा भी जारी करती हूँ। एहसान जी माफ करिएगा, सुरेंद्र यादव जी माफ करिएगा, और साथ ही साथ में देव प्रसाद जी, मोहम्मद अयूब जी, धर्मेंद्र मोहन भारती जी, अभिनव पांडे जी फ्रॉम गायत्रीपुरम गुंडा, और निब्बर जी रेलवे क्रॉसिंग से। आप सभी के सॉन्ग्स मुझसे छूटेंगे क्योंकि एक ही घंटा होता है दोस्तों, मैं क्या ही कर सकती हूँ, कोशिश कितना भी कर लूँ। अभी अगर मैं मुखड़ा मुखड़ा न बजाती तो भी दो गाने कट मारती। फिलहाल ये गाना एंजॉय करिए, और इसके साथ में लास्ट डिमांड पे हम आते हैं।

0: जी हाँ, दिल बहुत नादान है ऐसा कहना है पिंटू जी का, जो मैं सुनते मन का पूछो। अभी हम चलते हैं आज की लास्ट डिमांड की ओर, और ये लास्ट डिमांड हमारे पास में हमारे मुमताज अंसारी जी और शबा जी की ओर से, और उन सभी की ओर से जो वाकई खुदा से अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। बहुत प्यारी सी कवाली, एंजॉय करिए इसको और मुझे इजाजत दीजिए। और ये ट्रैक आप सभी के लिए, एक बार फिर से आप सभी को ईद मुबारक, खुश रहिए, दूसरों को भी खुशियां बांटिए और मुस्कुराते रहिए। सुनते रहिए रेडियो गाना 88.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। बाय बाय, टेक केयर।
1: जिसकी बिगड़ी आए नबी, तुम अंदर जाओ।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब
0: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद न आना, घबराहट, काम में मन न लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
3: और जेंट्स के लिए
2: स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
8: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
9: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

और आप सुन रहे हैं अपना 89.6 FM वाला शो ज्ञानस्थली बीट्स। शाम का 4:52 हो चुका है, लेकिन देखिए ना कितने जबरदस्त सॉन्ग लगातार आपके 89.6 FM पर चल रहे हैं। तो चलिए भाई सुनते हैं इसी गाने को।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला, होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं, और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now you're listening ज्ञानस्थली 99.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन, आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधूली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सो हर रोज गोधूली में गोंडा की प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी से आपकी मुलाकात कराते हैं, और हर रोज की पर्सनैलिटी में अपनी एक खास बात अलग होती है। तो आज भी जो हमारे बीच में खास मेहमान मौजूद हैं, उनकी भी अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। उनसे आज बहुत कुछ उनकी बात के जरिए जानने को समझने को मिलेगा, लेकिन जैसा कि हर गेस्ट के बारे में हम पहले की जिंदगी हुई बातों को करते हैं और उसके बाद उनके कार्यक्षेत्र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, उसी तरह आज हम अपने गेस्ट से जानने की कोशिश करेंगे उनकी जिंदगी के बारे में। तो आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एडुकेशन राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में जिसका नाम है गोधूली।
2: जी धन्यवाद, और आपको भी और पूरे ज्ञानस्थली परिवार को भी धन्यवाद कि आप लोगों ने इस तरीके का कार्यक्रम शुरू किया, और इस कार्यक्रम से पूरा जो गोंडा शहर है और जो पूरा जिला है इससे निश्चित रूप से प्रभावित होगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पे मोटिवेशन और मार्गदर्शन की बहुत समस्या होती है। तो मैं आपके कार्यक्रम मैंने सुना है, एक दो प्रोग्राम सुना है, उससे मुझे लगता है कि इस क्षेत्र के जितने भी लोग इससे जुड़ेंगे वो निश्चित रूप से उनको बहुत फ़ायदा होगा, उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा, और वो देखेंगे कि क्या क्या फील्ड हैं और उस क्षेत्र में कैसे करियर बनाया जा सकता है। तो इसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी और ज्ञानस्थली परिवार।
1: बहुत बहुत शुक्रिया मेरी साइड से भी और ज्ञानस्थली परिवार की तरफ से भी। और जैसा कि हमने अभी अपने श्रोताओं को बताया कि सबसे पहले हम आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो आप सबसे पहले ये बताइए कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, अपने माता पिता के बारे में, अपने भाई बहनों के बारे में और अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में।
2: सर मैं यही गोंडा जिले में एक गाँव है तिनौना मंगरावा करके, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था, काफ़ी बैकवर्ड एरिया है फिलहाल। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय में हुई थी, और उसके बाद मैंने जो माध्यमिक शिक्षा थी उसको गांव से थोड़ी दूरी पे था, 10 किलोमीटर की दूरी पे, वहाँ मैंने माध्यमिक शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद इंटरमीडिएट के लिए मैं मनकापुर चला गया, AP इंटर कॉलेज, तो वहाँ से इंटरमीडिएट के बाद मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए मुझे गोंडा आना पड़ा, और मैं चाहता था बाहर निकलूं और किसी अच्छे जगह से और अच्छी शिक्षा करूं, लेकिन उस तरीके की परिस्थितियां नहीं थी, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन इस तरीके की नहीं थी कि मैं गोंडा से बाहर जा पाता। तो मैं गोंडा आ गया और यहीं पर एडमिशन ले लिया LBS डिग्री कॉलेज में।
1: ओके, तो ये तो आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया, इस पे भी हम वापस अभी लौटेंगे। अपने माता पिताजी के बारे में बताइए, भाई बहनों के बारे में।
2: सर हम लोग 9 भाई बहन हैं, 6 बहनें हैं और 3 भाई हैं, एक मुझसे बड़े हैं, बड़े भाई, और माता पिता हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, खेती करते हैं, और पिताजी की भी बहुत अच्छी सर एजुकेशनल बैकग्राउंड हम लोगों की बहुत अच्छी नहीं है। पिताजी नहीं पढ़ पाए थे, वो कुछ उनकी परिस्थितियाँ उस समय रहीं,
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: लेकिन कक्षा 5 तक उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी जी। तो वो चाहते थे कि हम सब लोग पढ़ें और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, उच्च शिक्षा प्राप्त करें, और इसके लिए उन्होंने प्रयास किया, बड़े भाई को पढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते थे, और हाई स्कूल में वो फेल हो गए और उसके बाद छोड़ दिया उन्होंने पढ़ाई।
1: ओके,
2: तो फिर मेरा नंबर था, बहनें सभी बड़ी थी, उन लोगों की बहुत अच्छी शिक्षा नहीं हो पाई
1: जी,
2: कि उस समय गांव में उतनी सुविधा भी नहीं थी और उनको बाहर लोग भेजना नहीं चाहते थे लड़कियों को, तो प्राथमिक शिक्षा उन लोगों की हो पाई, और मैंने कोशिश की और अभी आगे बढ़ा और लगभग उच्च शिक्षा की उच्चतम डिग्री होती है वो मैं प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीएचडी मेरी चल रही है अभी।
1: क्या बात है, यानी आपने अपने घर में भी सबसे ज़्यादा आप ही ने पढ़ाई की है?
2: हाँ जी बिल्कुल। मैं ही पहला व्यक्ति हूँ जो घर में हाई स्कूल पास किया था।
1: ओके।
2: और इसके पहले कोई इस तरीके राउंड नहीं थी।
1: ओके। तो अभी तो नो डाउट मतलब आपके माता पिता आपके भाई बहनों को बहुत अच्छा लगता होगा आपको इस जगह देख के जहाँ पे भी अभी आप हैं। और साथ ही साथ अब आपके हम थोड़ा सा बचपने में बात करेंगे।
2: जी।
1: बचपन से आपका स्वभाव कैसा था? थोड़ा चुप चुप मिजाज के थे आप या शरारती थे, कैसे थे आप?
2: नहीं सर, मेरा जो अभी मिजाज है ऐसे पहले भी था, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आया है।
1: अभी थोड़ा तो मुस्कुराता चेहरा है आपका।
2: हाँ, मुस्कुराता चेहरा है और ऐसे मैं पहले भी था। लोगों से ज्यादा मैं घुल मिल नहीं पाता था, थोड़ा शर्मिलापन था और अभी भी है, उसको मैं फेस करने की कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे। चीजें मैं सोच रहा हूँ कि
1: अंतर्मुखी जैसे कहते हैं एक पर्सनालिटी थी क्या? अच्छा। So, श्रोताओं, हम भी आपसे ये कहना चाहेंगे कि गेस्ट के बारे में पूछने का हमारा सीधा सा मतलब ये होता है कि देखिए हमारे आपकी तरह ही ये होते हैं, कोई बहुत टॉकेटिव होते हैं ज़्यादा बोलने वाले, तो कोई अंतर्मुखी होते हैं जैसे कि आज के हमारे स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं वो हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जो भी पर्सनैलिटीज़ आती हैं वो अपने क्षेत्र में कोई बहुत अच्छा काम कर रही होती है। तो आज हमारे बीच में मालिक राम वर्मा जी हैं, उनसे हमारी बातचीत लगातार जारी है। तो आपने बताया कि आप थोड़ा सा शर्मिले किस्म के थे
2: जी,
1: लेकिन अभी तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं
2: जी,
1: बच्चों को न जाने कब से आप पढ़ा रहे हैं, तो आपका प्रोफेशन तो लोगों से बातचीत करने का है, वो भी इतने सारे बच्चों को एक साथ पढ़ाने का है।
2: नहीं सर,
1: ये कैसे दूर किया आपने?
2: क्लास में सर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है मुझे, ऐसे पर्सनली बात करने में थोड़ा दिक्कत होती है।
1: अच्छा।
2: क्लास में ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है और वहाँ पे मैं अच्छे से बच्चों को फेस करता हूँ और बच्चे मेरी टीचिंग स्टाइल से मुझसे बहुत काफी संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है।
1: मतलब आपको टीचिंग में प्रॉब्लम नहीं आती?
2: नहीं, टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक पब्लिक जो फेस करना होता है उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें मैं इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ।
1: बहुत अच्छी बात है। और पब्लिक फिगर तो आप ऑलरेडी हो गए हैं बच्चों के लिए, एक रोल मॉडल है भाई, एक आप प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर
2: जी।
1: आप ये हमको बताइए कि आप 9 भाई बहन थे
2: जी,
1: ठीक है, और आपने कहा आप थोड़ा शर्मिले किस्म के थे
2: जी।
1: मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने भाई खेल कूद तो बहुत सारे किए होंगे, कौन कौन से खेल आपने खेले?
2: गांव में सर उस समय कोई बहुत ज़्यादा खेल नहीं होता था, हम लोग जैसे जो गांव के खेल होते हैं कबड्डी होता है, कुश्ती होता है, गिल्ली डंडा, यही सब होता था और हम लोग बहुत खेलते थे बचपन में। सुबह गर्मियों की छुट्टी जब होती थी तो 10 बजे हम लोग निकल जाते थे घर से, बड़े बड़े बगीचे उस समय होते थे और पूरा शाम तक वहीं पर रहते थे, पूरा इंजॉय करते थे, उसके बाद शाम को आते थे। और कोई आधुनिक गेम जो इस समय हम लोग देखते हैं फुटबॉल क्रिकेट इस तरीके का, उस समय कोई वहाँ पे सुविधा नहीं थी, हम लोगों को पता भी नहीं था कि उस समय मेरे गांव में, अभी इलेक्ट्रिसिटी 2016-17 में आई है तो टेलीविजन भी नहीं था, तो इससे कोई जानकारी भी नहीं मिल पाती थी
1: आपको, जाहिर सी बात है। लेकिन आपने अभी कहा ना कि जो गांव के खेल थे, मैं ये कहना चाहूंगा गांव के खेल ही तो असली मजेदार खेल होते हैं
2: जी,
1: मतलब मजा तो उसी में आता है। बाकी तो दुनिया क्रिकेट पूरी दुनिया में खेले, लेकिन कबड्डी पूरी दुनिया नहीं खेलती है,
2: बिल्कुल
1: लच्छी दाढ़ी पूरी दुनिया नहीं खेलती है, ये अपने भारत के गांव में ये सारे गेम्स,
2: बिल्कुल
1: पाकिस्तान स्टोर हुआ और लुका छुपी हुई, ये सब तो बड़ा मजा आता है, बहुत अच्छा बचपन बीतता है। बचपन से पढ़ाई में कैसे थे आप?
2: पढ़ाई में सर मैं बहुत ब्राइट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और लेकिन ये था कि जो भी वर्क हमको मिलता था उसे मैं पूरा करता था और सारे टीचर्स पसंद करते थे इसके लिए और अच्छा था, एवरेज था।
1: अच्छा, तो मतलब टीचर्स आपको हमेशा से पसंद करते
2: जी सर, ये मेरे ऊपर पता नहीं क्या ईश्वर की कृपा है,
1: बिल्कुल
2: मैं जहाँ भी गया हूँ टीचर्स पसंद ही करते हैं और संपर्क भी मेरा उनसे व्यक्तिगत संपर्क भी हो जाते हैं।
1: क्या
2: तो जब इंटरमीडिएट कर रहा था तो वहाँ पे एक राम सुजन पांडे करके सर थे
1: जी,
2: तो उन्होंने काफ़ी वहाँ पे मेरी मदद करी। और यहाँ जब मैं आया तो डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर
1: जी, जी
2: और डॉक्टर BC HN के श्रीनिवास राव सर हैं, उनसे उन्होंने बहुत हेल्प करी हर तरीके से, गाइडेंस में भी और आर्थिक रूप से भी, हर तरीके से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से भी।
1: मानसिक, आपने बोला बौद्धिक रूप से, किस टाइप की आप प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे और कैसे आपके टीचर्स ने आपका साथ दिया?
2: सर मैं जैसे पहले ही बताया फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी।
1: जी जी।
2: तो मैं गोंडा आया उस समय और किसी तरीके से मेरी ग्रेजुएशन चल रही थी, मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई कर रहा था, बहुत कम पैसे होते थे, हम लोग घर से आते थे एक हफ्ते यहाँ पे रहते थे, पैसा ख़त्म हो जाता था फिर जाते थे फिर आते थे, तो थोड़ा बहुत मिलता था, ऐसे चल रही थी
1: जी।
2: तो मैंने एक समय ऐसा, ग्रेजुएशन मेरा फाइनल हुआ तो मुझे लगा कि अब आगे नहीं चल पाएगी पढ़ाई, तो मैंने पढ़ाई छोड़ने का भी डिसीजन कर लिया था, निर्णय ले लिया था।
1: ओके।
2: और उसके बाद एक दिन ऐसे सर से मुलाकात हो गई, सर से हम लोग पहले भी जुड़े हुए थे, NSSM में लिया था ग्रेजुएशन में,
1: तो सर की बात,
2: डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर से।
1: ओके।
2: तो वो मिल गए और उन्होंने पूछा ऐसे हालचाल पूछा, तो मैंने बताया कि ऐसी ऐसी बात मैं जा रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं मालिक तुम अभी जो है मैं कह रहा हूँ कि MA कर लो, उसके फिर देखा जाएगा, क्योंकि एक बार अगर तुम चले गए यहाँ से तो फिर वापस आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो लेकिन मैं उस समय सर को भी नहीं सुना, वापस चला गया और सर ने मेरा एक दोस्त था उससे फ़ोटो लेकर के और मेरा एडमिशन करवा दिया यहाँ पे।
1: ओके।
2: और उसके बाद मुझे बताया, तो फिर मैं फिर पढ़ने लगा और MA के बाद हमने BEd किया और सर ने ही कहा कि BEd कर लो और इसमें अच्छा स्कोप है, काफ़ी वैकेंसी आने वाली हैं। और तो मैंने BEd किया और 2011 में उसी समय TET शुरू हुआ था
1: जी।
2: और TET भी क्वालिफाई किया लेकिन उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया।
1: ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका सिलेक्शन नहीं हुआ
2: जी।
1: ओके। उसके बाद फिर आपने क्या किया?
2: उसके बाद ये था कि BEd को इससे प्राइमरी एजुकेशन से हटा दिया, प्राइमरी में टीचर नहीं बन सकता था BEd वाला, कुछ समय के लिए किया गया
1: जी।
2: तो ये हुआ कि अब क्या किया जाए। मैंने सर मेरा कोई ग्रेजुएशन तक कोई गोल सेट नहीं था कि करना क्या है। मैं जब BEd मैं कर रहा था तो मुझे लगा कि इस क्षेत्र में करियर बनाया जा सकता है, इस क्षेत्र में संभावनाएँ हैं, तो BEd मैंने बहुत अच्छे से किया। और फिर जब प्राइमरी में नहीं हो पाया उस समय तो मैंने फिर एजुकेशन किया MA में। उस समय कहा जाता था कि एजुकेशन से अगर आप MA कर लीजिए तो MEd के बराबर हो जाता है। तो खैर अब तो MA और MA एजुकेशन और MEd लगभग सेम हो गया है, एक डिसीजन आया हाई कोर्ट का। तो उसमें फिर मैंने MA किया एजुकेशन में और उसके बाद कुछ समय के लिए लखनऊ भी गया कि उस समय असल में मेरी सर चाइल्ड मैरिज हो गई थी।
1: ओके।
2: शादी बहुत बचपन में ही हो गई थी।
1: ओके।
2: तो एक वो भी प्रेशर था कि कुछ करना है,
1: हाँ, परिवार चलाना है
2: और लौट के घर जा नहीं सकता था।
1: सही बात
2: कि सबकी अपेक्षाएं थी कि यही पढ़ रहा है तो ये कुछ ना कुछ करेगा। तो मैं कुछ समय के लिए लखनऊ भी गया तैयारी करने के लिए लेकिन मुझे कोई फील्ड समझ नहीं आया, तो मैंने फिर वहीं से नेट के लिए तैयारी करनी शुरू कर दी। सेल्फ स्टडी करता था नेट के लिए, मैं जाता था कोचिंग वोचिंग ज्वाइन किया था लेकिन ज़्यादा मैं उधर ध्यान नहीं देता था। नेट मुझे अच्छा लगने लगा, उसका सिलेबस पढ़ा तो बहुत कुछ वो BEd से मिलता जुलता था एजुकेशन में जो नेट का सिलेबस है। तो फिर मैं नेट की तैयारी करने लगा और तीसरे अटैम्प्ट में मैंने नेट क्वालिफाई किया,
1: तीसरे
2: 2013 में।
1: ओके।
2: हाँ, उसके बाद मैं इधर नेट के बाद मैं वापस आ गया गोंडा और सर ने कहा कि अब अगर आप नेट हो गए हैं, डॉक्टर त्रिलोचन सिंह, मैं बता रहा हूँ बार बार उन्होंने मुझे पुश कर करके यहाँ तक पहुँचाया।
1: बिल्कुल।
2: तो सर ने कहा कि कहीं पे तुम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के लिए कहीं कॉलेज ज्वाइन कर लो
1: जी।
2: तो मैंने यहाँ पे ज्ञानस्थली में उस समय मैंने ज्वाइन किया था और अप्रूवल भी मेरा हुआ था। लगभग 1.5 साल मैं यहाँ पे पढ़ाया हूँ और जून 2015 में मैंने GRF के लिए क्वालिफाई किया। तो GRF जब हो गया तो मुझे रिसर्च के लिए जाना पड़ा और मुझे फिर मैं यहाँ से फिर रिजाइन करके PhD करने लगा। और इस बीच में तैयारी चली रही थी कम्पिटिटिव जो बेसिकली मैं टीचिंग जॉब की तरफ ही मेरा झुकाव था, तो उसी के लिए मैं तैयारी कर रहा था। और उसी 2014 में ये UP हायर एजुकेशन कमीशन का एक विज्ञापन संख्या 46 आया था 46, तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया और मेरा क्वालिफाई भी हो गया था, रिटर्न क्वालिफाई हुआ, लेकिन इंटरव्यू से मुझे वापस आना पड़ा वहाँ।
1: ओके, रिटर्न आपका क्वालिफाई हो गया था, आपको इंटरव्यू से वापस आना पड़ा।
2: जी
1: जी, फिलहाल अब वापस जाने का एक छोटा सा वक्त हो चला है, मतलब छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है
2: जी।
1: और अभी हमको ये जानना है कि आप चूंकि असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं राजकीय महाविद्यालय सिद्धार्थनगर में, उस पे भी हम जानेंगे कि अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही, लेकिन अभी चलते हैं फिलहाल इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के लिए। सो अपने श्रोताओं से हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: डिलीशियस
5: है ना, लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
4: और क्या क्या है खास?
5: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
4: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।
6: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है, आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। हमारे बीच में आज हमारे खुसूसी जो मेहमान हैं वो हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजकीय महाविद्यालय, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। अभी तक आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया, एक लफ्ज आया था इंटरव्यू।
7: जी,
6: इंटरव्यू में देखिए ज़्यादातर लोग रिटर्न भी निकाल ले जाते, लेकिन इंटरव्यू में चूंकि आपकी ऑल ओवर चीज़ें जो आपने लिखी होती हैं, पढ़ी होती हैं, पढ़ने के अलावा आपका उठने बैठने का ढंग, आपके बोलने का ढंग, सब कुछ देखा जाता है। और शायद कहीं ना कहीं वहां पे इसीलिए कहते हैं कि पूरी तरह से तैयार होके ही जाना होता है।
7: जी,
6: तो हम इस पे अभी आपसे बातचीत करने के बाद इस पे भी आएंगे, पूछेंगे कि एक इंटरव्यू में क्या क्या, कैसे कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, उसके लिए कैसी प्रिपरेशन होनी चाहिए। बहरहाल पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपका अब तक का सफर एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय सिद्धार्थनगर में कैसा रहा?
7: सर बहुत अच्छा रहा है, अभी बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है वहाँ पे, एक साल लगभग हो रहा है, और सारा टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, बहुत सपोर्टिंग है सब, और स्टूडेंट्स भी बहुत ही सपोर्टिंग है। वो पहले जो होती थी बच्चों में एक उच्छृंखलता होती थी, वो अब नहीं दिखती है बच्चों में, बहुत ही कोऑपरेट करते हैं, और बहुत अच्छा माहौल है सर, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अनुभव मिल रहा है राजकीय डिग्री कॉलेज में।
6: यानी आप,
7: लेकिन ये है सर, थोड़ा सा वहाँ पे संसाधनों का थोड़ा अभाव होता
6: है।
7: जो गवर्नमेंट कॉलेजेज होते हैं, और एक तो ग्रामीण क्षेत्र में है, तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हम लोग उसके साथ भी फेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, पूरी लगन के साथ लगे हुए हैं।
6: क्या बात है।
7: और मैं बता रहा हूँ कि जब मैंने ज्वाइन किया था तो वहाँ पे मेरे सब्जेक्ट में 15 बच्चे थे उस समय, और अभी इस समय 68 बच्चे हो गए हैं। अभी वहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम बच्चों ने दिया उन लोगों ने, तो 68 बच्चे हो गए हैं। तो मुझे लग रहा है अच्छा कर रहे हैं हम लोग, और सारे टीचर्स अच्छा कर रहे हैं, सब सहयोग करते हैं।
6: चार गुना से ज़्यादा नंबर है, आप कह रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। कहाँ 15 बच्चे, कहाँ 68, आप 68 बच्चों को बता रहे हैं, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, दिख रहा है बिल्कुल गैप।
7: असल में सर, जब मैं इससे पहले मैं गवर्नमेंट यहाँ पे किसान पीजी कॉलेज बहराइच में काम करता था।
6: जी।
7: तो यहाँ से मैं रिजाइन करके गया था गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में। तो एक बार एक सर ने पूछा कि कैसे चल रहा है मालिक वहाँ पे, तो हम कहे सर ठीक है, बस ये कि उतना अच्छा नहीं है, उतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का नहीं है, लेकिन ठीक है। तो उनकी एक बात बड़ी अच्छी लगी थी, उन्होंने कहा मालिक जहाँ पे सब कुछ अच्छा होता है वहाँ पे तो सब लोग अच्छा कर लेते हैं, जहाँ पे वहाँ पे फिर कुछ करना ही नहीं होता है, जहाँ पे चीज़ें बहुत विपरीत होती हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें नहीं होती, वहाँ पे आपका काम दिखेगा और आपको वहाँ करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो बहुत अच्छी लगी मुझे भी, और उस दिशा में प्रयास भी कर रहा हूँ।
6: बिल्कुल, ये सही कहा आपके गुरु ने, क्योंकि जहाँ नहीं होता वहाँ कुछ स्कोप होता है कि उसको किया जाए।
7: हाँ बिल्कुल,
6: और जहाँ ऑलरेडी चीजें मिली मिलाई हैं,
7: हाँ वेल एस्टेब्लिश्ड है जहाँ पे सब चीजें, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा, हालांकि आपके पास अपनी अलग यूनिक क्षमताएं होती हैं, आप अपना ऐड करते हैं हर जगह, लेकिन वहाँ जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहाँ पे आपको
6: स्कोप ज्यादा होता है,
7: स्कोप और आपको काम करने के लिए बहुत अवसर मिलते हैं,
6: अवसर मिलते हैं। बिल्कुल सही है आपने कहा
7: जी।
6: आपने बताया कि आपको सपोर्ट बहुत मिलता है, चाहे वो टीचर्स से मिलता हो, स्टूडेंट से मिलता हो
7: जी,
6: लेकिन जहां तक मैं जानता हूं कि अगर स्टाफ से मिलता है तो यानी आपका कोलैबोरेशन बहुत अच्छा है
7: जी,
6: आप रिश्तों को निभाते अच्छा हैं, आप डील अच्छा करते हैं। बच्चों से अगर बात किया जाए तो आपकी टीचिंग मेथड में इतना इफेक्टिव है तो ही आप बच्चों से जुड़े हुए हैं, तो आप जरा उन दोनों के बारे में बताइए कि टीचर के साथ आपका बिहेव आप कैसे रखते हैं, और बच्चों के लिए पढ़ाने के दौरान आप किन किन बातों का ध्यान रखते हैं।
7: मैं सर बिल्कुल फ्रेंडली रहता हूँ, हमारे सब जो भी टीचर्स वहाँ पे होते हैं सब वेल क्वालिफाइड हैं, यूपी हर्ज के यूपी लोक सेवा आयोग की परीक्षा फेस करके आए, सारे लोग अच्छे हैं, और आप उनके साथ अगर अच्छा बिहेवियर करेंगे, अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी आपको पूरा समय देते हैं, पूरा आपको सहयोग देते हैं, तो सारे लोग अच्छे हैं, तो मैं उसमें फिट हो जाता हूँ मैं भी, और मेरा भी ये व्यवहार ऐसे ही रहता है, मैं हमेशा सबके साथ मुस्कुरा के मिलना, और कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं मन में रखता नहीं हूँ किसी के प्रति भी, तो इसलिए चलता रहता है। और टीचिंग का मैं कोशिश करता हूँ बच्चों को बोलने की ज़्यादा ज़्यादा समय देता हूँ, तो उससे ये समझ में आता है कि बच्चे कैसे सीखेंगे, क्या उनका ज्ञान का स्तर क्या है, और किस तरीके से उनको पढ़ाया जा सकता है कि जिससे वो बेहतर लर्न कर सके, तो इससे फ़ायदा होता है जब आप बच्चे का स्तर जान जाते हैं तो उसके, और टीचर का काम होता है बच्चे के स्तर तक उतरना, जब आप उसके स्तर पर आ करके उससे बात करते हैं तो उसको अच्छा भी लगता है और समझ में भी आता है चीज़ें, तो इसलिए अच्छा चल रहा है।
6: ये बात तो समझ में आई कि आपने कहा कि उसके बच्चे के स्तर तक जाया जा सकता है, लेकिन स्तर पता कैसे करते हैं आपके कि किस बच्चे का क्या स्तर है, क्योंकि मेरे ख्याल से हर बच्चे का अलग अलग स्तर होता है
7: जी,
6: तो क्या एक आपकी मेथडोलॉजी होती है
7: बच्चों से? सर जैसे जब क्लास हम लोगों की जब शुरू होती है, जब सेशन स्टार्ट होता है
6: जी,
7: तो हम लोग बच्चों से बात करते हैं, व्यक्तिगत हर बच्चे से बात करते हैं, और जब टॉपिक हम शुरू करते हैं पढ़ाने के लिए तो भी बच्चों से रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं, तो उससे पता लगता है कि उनका क्या स्तर है, कितना उन्होंने, जो भी टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसमें उनका कितना ज्ञान है, तो इससे पता लगता है कि वो किस स्तर से उनको किस तरीके से उनको पढ़ाया जाए।
6: मैं आपसे यही जानना चाह रहा था, क्योंकि देखिए आपने बिल्कुल सही बताया कि आप पहले बात तो उस बच्चे के बारे में खुद बात करते हैं ताकि वो आप देखते हैं कि कितना बच्चा खुद के बारे में बता पा रहा है, यानी क्या लेवल है। दूसरा, आप जो टॉपिक चूज करते हैं पढ़ाने के लिए उसके इर्द गिर्द की बहुत सिंपल सिंपल बेसिक सी बातें करते हैं ताकि बच्चों का एक स्तर जान पाए कि कौन बच्चा कितना जानता है। ये तो मैं यही आपसे जानना चाह रहा था, और बिल्कुल सही आपने बताया, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे इस वक्त बहुत सारे शिक्षक भाई भी सुन रहे होंगे इसको, और उनको भी कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक बार समझ में आ रही होंगी कि हाँ वो भी अपने क्लास में इस तरह से इंटरवेंशन कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी आपने बात कही। अब बात करते हैं बच्चों की, ह्यूमन साइकोलॉजी होती, बच्चों की अपनी एक साइकोलॉजी होती है स्टूडेंट्स की
7: जी,
6: तो आपको क्या लगता है, क्योंकि आपका भी बहुत ज़्यादा तो एक्सपीरियंस आपने बताया यहाँ का नहीं, लेकिन अगर ऑल ओवर टोटल देखा जाए टीचिंग का एक्सपीरियंस तो आपको काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है, आपने काफ़ी कॉलेजेस जगहों पे पढ़ाया है।
7: हाँ, लगभग तीन चार साल का एक्सपीरियंस कह सकते हैं। मैंने लगभग 1.5 साल ज्ञानस्थली में टीचिंग किया है
6: जी,
7: और 8-9 महीने KDC बहराइच में
6: जी,
7: और अभी 1 साल से लगभग वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अक्टूबर 2021 में मैंने वहाँ पे ज्वाइन किया था, तो 1 साल 5-6-7 महीने हो गया वहाँ पे भी,
6: लगभग 4 साल का मोटा मोटा मान लेते हैं
7: जी जी।
6: तो आपने अलग अलग जगह के बच्चों को पढ़ाया, अलग अलग बच्चों को देखा है, आपको क्या लगता है कि बेस्ट मेथड क्या होता है बच्चों को समझाने का?
7: बेस्ट मेथड ये है सर कि आप बच्चे की जो सेंसेज हैं उसमें कितने सेंसेज को आप इन्वॉल्व कर पाते हैं, मल्टी सेंसरी जो आजकल तमाम सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, तो उसका उपयोग किया जा सकता है। हम लोग ब्लैक बोर्ड, चार्क डस्टर इसलिए उपयोग करते हैं कि उसमें उनकी कई सेंसेस एक्टिवेट होती हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत अच्छे से पकड़ पाते हैं, समझ पाते हैं। और अगर हमें लगता है कि बेसिक चीज़ें और जो टेक्नोलॉजी है उसको और मजबूत किया जाए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाए विद्यालयों में, तो बच्चे और अच्छे से समझ पाएंगे।
6: सेंसेस का क्या अर्थ होता है ये हमारे श्रोताओं को थोड़ा सा सरल भाषा में समझा दें।
7: सर, जैसे हमारी 5 सेंसेस होती हैं, सुनने की, देखने की, आँख, नाक, कान, त्वचा। तो जितनी चीज़ें हमारी जितनी सेंसेस एक्टिवेट होती हैं, अगर जैसे हम लोग एग्जांपल से इसको समझते हैं, आप मान लीजिए कोई मूवी देख रहे हैं,
6: बिल्कुल,
7: तो मूवी देखते हैं 3 घंटे तक और 3 घंटे की स्टोरी आपको याद हो जाती है, लेकिन आप एक किताब 3 घंटे तक बैठ के पढ़ते रहते हो, याद नहीं होती। तो उसमें चूंकि आप देख भी रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं और आप इमोशनली भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं, तो इसलिए वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो ये कोशिश होती है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा विजुअलाइज किया जा सके चीज़ें। तो उसके लिए खैर ज़्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन अभी टेक्नोलॉजी आ गई है और ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड जो भी है हम लोग यूज करते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से भी हम लोग पढ़ाते हैं। एक ऐप है, अभी मैं उसको जल्दी हमने शुरू किया है यूज करना, एड पजल करके है, तो उसमें आप क्लासेज अपनी बना सकते हैं। और बीच बीच में उसमें ये भी सुविधा दी गई है कि आप उसको क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि जब बच्चा वो वीडियो देखेगा तो एक कुछ समय तक चलने के बाद वो एक वहाँ पे आके पॉज हो जाएगा जहाँ पे आपको क्वेश्चन ऐड करेंगे, तो जब तक वो क्वेश्चन को आंसर नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी का मुझे लगता है उपयोग करके और अच्छी टीचिंग की जा सकती है।
6: मतलब आपका सीधा सही कहना है, बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक जितने भी मैंने टीचर से इस बात को लेकर बात की सबके अपने बहुत अच्छे रिप्लाईज आए हैं, लेकिन आज आपका जो रिप्लाई आया है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था और बहुत ही मुझे बहुत क्लियर समझ में आया कि अगर बच्चों को समझाना, तो आपने कहा उनके ज्यादा से ज्यादा सेंसेस इन्वॉल्व हों उस चीज को समझने में, वहां बच्चे ज्यादा समझते हैं। आपने एक एग्जांपल के तौर बताया एक बुक और एक मूवी की बात, यानी 3 घंटे की मूवी और एक बुक 3 घंटे में पढ़ी गई, उसमें मूवी ज्यादा ध्यान होती है क्योंकि उसको हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं और इमोशनली कनेक्ट होते हैं, लेकिन किताब में शायद हम उतने सेंसेस का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तो उतनी कह सकते हैं कि दिलचस्पी नहीं आ पाती है
7: जी।
6: और यही वजह है कि ज्यादा देर तक किताबों का ज्ञान नहीं याद रहता है। ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और आपने एक चीज ये भी बताया कि अभी जैसे जैसे दौर चेंज हो रहा है, वक्त मॉडर्न हो रहा है कह रहे हैं, तो उसमें स्मार्ट क्लासेस का आपने एक एग्जाम्पल दिया।
7: सर हाँ बिल्कुल, नई जो एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें एक ये भी प्रावधान है कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यहाँ पे कैंपस खोलेंगी इंडिया में
6: जी,
7: तो टीचर्स के लिए कंपटीशन बढ़ने वाला है ठीक है
6: टीचर्स के
7: तो
6: लिए।
7: हाँ, और उसके लिए हमको तैयार होना होगा उस तरीके से कि हम उनके साथ कम्पीट कर पाएँ फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, तो उस तरीके की हम लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। और जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है उसके साथ हम लोगों को हैबिचुअल होना पड़ेगा।
6: बिल्कुल सही बात है, लेकिन अभी आपने स्टार्टिंग बताया था कि वहाँ पे थोड़ा इंटीरियर है, यानी अभी संसाधनों का अभाव है
7: जी जी।
6: स्मार्ट क्लासेस अगर मान लीजिए आप क्या है, तो बिजली की समस्या भी आप फेस करते होंगे, कैसे मैनेज करते हैं फिर?
7: बिजली की समस्या सर है, ग्रामीण क्षेत्रों में है, लेकिन जो कस्बा है वहाँ पे तो खैर रहती है, लेकिन हम लोग यही समस्या हम लोगों के पास वहाँ पे है सर, बड़ी समस्या यही है कि वहाँ पे ये संसाधन अच्छे नहीं हैं, बिजली की अच्छी व्यवस्था नहीं है। आप अगर ऑनलाइन क्लास पढ़ाना चाहते हैं तो इंटरनेट कनेक्शन है बच्चों के पास तो स्पीड नहीं होती है,
6: स्पीड नहीं है।
7: बहुत सारे बच्चों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते हैं, लड़कों के पास होते हैं, विशेषकर लड़कियों के पास नहीं होते हैं। कई बार उनकी शिकायत आती है, मैं कोशिश करता हूँ, असल में जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है
6: जी।
7: तो हम लोग उसमें एग्जाम्स लगातार होते रहते हैं, तो ये प्रयास रहता है कि जब एग्ज़ाम चल रहा है तो मैं उनको ऑनलाइन पढ़ाऊँ बच्चों को
6: जी।
7: तो कोशिश की जाती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे जुड़ नहीं पाते हैं, और उनसे जब बात की जाती है क्यों नहीं जुड़ते हैं, तो कहते हैं कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, भैया के मोबाइल से जुड़ना, बाप पिताजी के मोबाइल से मैं जुड़ती हूँ। तो ये समस्या है सर वहाँ पे, इंटरनेट स्पीड नहीं है। तो इसमें सुधार की ज़रूरत है। सरकार प्रयास भी कर रही है और धीरे धीरे हो सकता है समस्याएं सॉल्व हों।
6: जी, आपने कहा प्रयास हो रहा है और शायद यहाँ पे ज़रूरत है इन चीज़ों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे और काम करने की। बिल्कुल सही आपने कहा। मैं आपके ऊपर आता हूँ, आपसे जानना चाहता हूँ, आप इतना शहर में रहें, आप गोंडा में रहें, सारे आपको सुविधाएं मिली, आप गए बहराइच में, वो भी आप मेन सिटी के अंदर रहें, वहाँ भी आपको सुविधाएं मिली, लेकिन अभी आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ आपके एंटरटेनमेंट का क्या साधन है? आप खुद को कैसे इंस्पायर करते हैं, खुद को कैसे चिल करते हैं? बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट्स नहीं है, घूमने की जगह नहीं है, कैसे करते हैं? मतलब
7: सर, मैं जैसे मैंने पहले ही बताया आपको कि मेरा मैं गांव में पला बड़ा हूँ, तो गांव मुझे अच्छा लगता है और जब वहाँ के लोगों से मिलो, बच्चों से मिलो, तो लगता है कि कोई अपना ही, उनसे एक अपना अलग लगाव होता है, बच्चों से एक जुड़ाव हो जाता है
6: जी।
7: तो इस तरीके से, और अपना एंटरटेनमेंट का सर, हम लोग 10 बजे से लेकर के लगभग 5 बजे तक कॉलेज में समय देते हैं
6: जी।
7: उसके बाद आते हैं, बच्चों को समय देते हैं, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनको होमवर्क कराना और तो उन सब में समय निकल जाता है।
6: मतलब बच्चों पे ही आपने अपना जीवन कह सकते हैं कि फिलहाल अभी उनके नाम कर दिया है।
7: हाँ सर, बच्चों पे और अपने स्टूडेंट्स पर भी, क्योंकि मैं जब भी सर कोई भी क्लास नहीं होती है तो उसके पहले मैं 2 घंटे कम से कम पढ़ के जाता हूँ। तो जब मैं कॉलेज से आता हूँ, बच्चों को, अपने बच्चों को होमवर्क कराता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको, और उसके बाद मैं अपनी तैयारी करता हूँ पढ़ाने के लिए। अक्सर फ़ोन आता है लोगों का, मैं बता रहा हूँ यार मैं पढ़ रहा हूँ, तो कहते हैं अभी तुम क्या पढ़ रहे हो यार अब तो तुमको नौकरी मिल गई। हमके ये जो जॉब है इसमें लगातार आपको अपडेट
6: रहना है,
7: हाँ सीखते रहना
6: है। सही बात है,
7: इस तरीके का ये नेचर है यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे टिक नहीं पाएंगे। क्लास में आप जब जाते हैं और बच्चों को उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर पाते हैं, उनके जो क्वेश्चन हो पाते होते हैं उनको आप अच्छे से आंसर करते हैं, तो आपको बहुत अच्छा एक सेटिस्फेक्शन खुद को मिलता है। और चीज़ें बदलती भी रहती हैं, कुछ नई चीज़ें आती हैं, कुछ पुरानी चीज़ें, तो वो सब जब आप स्टडी करते हैं घर पर, तैयारी करते हैं, तो वो बहुत बेटर हो जाती है और बहुत अच्छा अनुभव होता है जब क्लास से पढ़ा के निकलते हैं, तो अपने आप को अच्छा लगता है।
6: क्या बात है।
7: तो और ये सर मुझे लगता है बहुत यही तरीका भी है पढ़ाने का, रटा रटाया चीज़ें तो बच्चे पढ़ ही सकते हैं, किताब से पढ़ सकते हैं, और तमाम सारे आजकल इंफॉर्मेशन का दौर है, तो यूट्यूब, ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं।
6: जी
7: जी,
6: तो बिल्कुल आपने सही कहा कि अगर खुद अपडेट होके जाएंगे तो शायद बच्चों को एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ा पाएंगे, नई नई चीज़ें बता पाएंगे, बच्चों की भी दिलचस्पी जागेगी और आपकी भी, आपको काम करने में मज़ा आएगा, और वो काम अपने आप में नायाब होता है जिस काम में मज़ा आए।
7: जी,
6: तो वो आप पूरी तरह से फॉलो कर रहे हैं, हमारी आपके साथ बहुत सारे विषय हैं, आप और दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इस मामले में करते रहे, बच्चों का और प्यार पाते रहे, कम्युनिटी से और जुड़ाव होते रहे, ऐसी हमारी पूरी दुआ है। लेकिन इसके साथ साथ चूंकि अभी म्यूजिकल ब्रेक का टाइम हो चला है, तो अपने इस ब्रेक के आने के बाद, चूंकि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करके आप आज इस पद पे कार्यरत हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे कि आपकी तैयारी कैसी थी, आपने कैसे इसको क्रैक किया, आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी, इन सारी चीजों पर हम बात करेंगे। इसलिए अपने श्रोताओं से कहेंगे कि बात होने वाली है बहुत अहम, सो जाइएगा कहीं मत, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजी अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा, शहर की धड़कन। हमारे साथ आज स्पेशल गेस्ट के रूप में मौजूद हैं मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट, राजकीय महाविद्यालय, डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर। अभी हमने चूंकि जाने से पहले आपसे कहा था कि आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बताना है
5: जी,
4: तो बहुत सारे ऐसे इस वक्त हमारे लिसनर्स हैं जो तैयारी कर रहे होंगे और टीचर ही बनना चाहेंगे, क्योंकि आप खुद एक असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, इसलिए मैं इस पे ज्यादा फोकस आपसे बात करूंगा
5: जी।
4: तो आप मुझे पहले तो ये बताइए कि आपने यहाँ तक पहुँचने के लिए कौन कौन से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए?
5: सर, मैंने पहले बताया कि मैं पहला जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था
4: जी,
5: वो यूपी टेट था 2011 में
4: जी,
5: और क्वालिफाई किया था वो भी मैंने
4: जी।
5: उसके बाद यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का विज्ञापन 46 आया था, उसमें भी मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया
4: जी।
5: फिर यूपी लोक सेवा आयोग का एक विज्ञापन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, उसको भी क्वालिफाई किया और उसमें सिलेक्शन भी हुआ। फिर विज्ञापन 47 का ये जो यूपी हायर एजुकेशन कमीशन है, उसको भी क्वालिफाई किया है मैंने, उसमें भी सिलेक्शन मिला। 2019 में मैंने 20 में मेरा प्राइमरी में भी सिलेक्शन हुआ था
4: जी।
5: उसमें फिर से ऐड किया गया था बीएड वालों को कि प्राइमरी में जा सकते हैं, तो उसमें मैंने फिर से दिया, टेट दिया, सुपर टेट हुआ और उसके बाद प्राइमरी में भी फाइनल सिलेक्शन हुआ था। लेकिन चूंकि उस समय इसका भी रिजल्ट आ गया था यूपी हायर एजुकेशन कमीशन का, तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया प्राइमरी को। यहाँ पर मैंने एडेड कॉलेज ज्वाइन कर लिया बहराइच में, KDC बहराइच।
4: ओके, तो पहले तो हमारे श्रोताओं को बताइए कि टेट किस लिए होता है, सुपर टेट क्या होता है?
5: टेट सर एक पात्रता है, अगर आप प्राथमिक विद्यालय में टीचर बनने के इच्छुक हैं तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी एक वो पात्रता आपको होगी, तभी आप जा पाएंगे प्राइमरी में। एक मिनिमम कह लीजिए क्वालिफिकेशन है।
4: ठीक है, और ये सुपर टेट क्या है?
5: सुपर टेट उसके टेट के बाद एक कह लीजिए स्क्रीनिंग है।
4: Okay.
5: उसमें बहुत सारे विषयों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक तरीके से हम उसको सेमी फाइनल कह सकते हैं।
4: सेमी फाइनल कह सकते हैं, अच्छा।
5: टेट के बाद उसको क्वालिफाई करेंगे, फिर आपको सिलेक्शन मिलेगा प्राथमिक में।
4: ओके, तो आपने देखिए इतने सारे एग्जाम्स दिए और आपने सफलता भी पाई, आप असफल भी हुए
5: जी,
4: तो आप एक बेहतर तरीका समाज को बता सकते हैं कि किस तरह से आपकी स्ट्रेटेजी क्या रही, आपका अप्रोच क्या रहा? तो हम पहले तो आपकी स्ट्रेटजी के बारे में जानना चाहेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी क्या रही।
5: सर, मेरी स्ट्रेटजी सबसे पहली ये होती है कि मैं एग्ज़ाम का पैटर्न समझता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उसके लिए आपको जो पिछले वर्ष के क्वेश्चन पेपर हैं वो पढ़ने पड़ते हैं। और मैंने यही किया, जब मैं नेट के लिए तैयारी कर रहा था तो जितने पिछले 10 साल के जो भी प्रीवियस पेपर्स थे उनको मैंने पढ़ा, जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते थे उनको मैं लिख लेता था, नोट्स बनाया उसका, और उसमें सारे जो वैकल्पिक ऑब्जेक्टिव टाइप के बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी जो टीचिंग से रिलेटेड जॉब्स हैं, तो मैं बहुविकल्पीय क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते थे उनको, उन चारों ऑप्शंस को मैं पढ़ता था और उनके जो भी उनसे संबंधित जो भी जानकारी होती थी उनको मैं नोट्स करता था हर क्वेश्चन का। तो इसलिए एक मेरा बहुत बड़ा, बहुत मोटा सा नोट्स तैयार हो गया था सिर्फ प्रीवियस पेपर्स के लिए, और उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में मिल जाते हैं और आपको ये पता चल जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है, किस तरीके का क्वेश्चन आपके परीक्षा में आने वाला है, और तो उस हिसाब से आप तैयारी करते हैं। तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो पिछले साल के जो पेपर होते हैं उनको सॉल्व करें और उसके बाद फिर डिटेल स्टडी करें, तो बहुत अच्छे से समझ में भी आता है और आपको एक आइडिया आ जाता है कि कहाँ से क्वेश्चन, किस तरीके का क्वेश्चन बनने वाला है।
4: आपने बहुविकल्पीय में बताया कि चारों क्वेश्चंस के बारे में आप लिखते थे और डिटेल में जानकारी निकालते।
5: हाँ, उसको मैं अगर और सरल करना चाहूँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ये बना कि निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है, चार ऑप्शन उसमें दिए गए
4: जी,
5: समसा दे दिया गया, रमसा दे दिया गया, रूसा दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, तो आप उसमें मैं वो आंसर तो मैं समझ गया कि हाँ ये राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान से संबंधित है, तो समसा किससे संबंधित है उसको भी मैं नोट करता था कि समसा क्या है फिर वो सर्व शिक्षा अभियान है, तो रूसा क्या है उसके बारे में मैं डिटेल लिखता था कि ये हायर एजुकेशन का है रूसा, उच्च शिक्षा के लिए एक अभियान चलाया जा रहा सरकार के लिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो इस तरीके से मैं नोट्स बनाता था सारे चारों ऑप्शंस के बारे में समझने की कोशिश करता था।
4: तो ये बड़ा अच्छी आपकी स्ट्रेटेजी लगी कि लोग जो हैं वो सिर्फ आंसर देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसका ये आंसर है, लेकिन वही चीज अगला जो ऑप्शन उसमें है उसी के द्वारा भी उसको घुमा के पूछा जा सकता है, जैसा कि आपने कहा,
5: और उससे बहुत हेल्प मिलती है
4: जी।
5: कई बार वो क्वेश्चन रिपीट होके आ जाता है आपके पेपर में
4: जी,
5: तो ये मेरी यही कोशिश होती थी कि इन जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है उनके बारे में मैं जान लूं पहले
4: बिल्कुल सही आपने कहा, मतलब ये स्ट्रेटेजी मुझे प्रैक्टिकली बहुत समझ में आई कि आप ऐसा क्यों करते थे, ये बड़ी अच्छी बात रही। अभी बात कर लेते हैं कि इंटरव्यू की, जैसे कि आपने कहा एक बार आप असफल भी रहे और आपने कई ऐसे एग्जाम,
5: तीन बार सर मैं इंटरव्यू दिया हूँ, दो बार टीजीटी का दिया था
4: जी,
5: लेकिन उसमें भी सिलेक्शन नहीं हुआ था, और एक बार हायर एजुकेशन के लिए तो वहाँ भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। असल में इंटरव्यू में आपके रिटर्न के मार्क्स भी जुड़ते हैं और इंटरव्यू का भी होता है,
4: करेक्ट,
5: तो रिटर्न में अगर बहुत अच्छा होता है तो इंटरव्यू में मिनिमम भी मिल जाता है, मैं जो भी न्यूनतम उसका मार्क्स निश्चित किया गया वो भी मिल गया तो हो जाता है, लेकिन रिटर्न में अच्छा नहीं होता है तो फिर कितना भी मिल जाए इंटरव्यू में आप सिलेक्शन नहीं हो सकता है।
4: तो मान लीजिए रिटर्न में किसी का बहुत अच्छा निकल आया है और वो इंटरव्यू के लिए अब तैयारी कर रहा है, अभी आप इस टाइम चूंकि हमारी आपके टॉक शो चल रहा है, आप ऐसे बच्चों के लिए क्या बताना चाहेंगे कि इंटरव्यू में किस टाइप की चीजें ज्यादा पूछी जाती, कैसे सवाल ज्यादा होते हैं?
5: टीचिंग्स में सर सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे, जो भी आप जिस सब्जेक्ट से संबंधित हैं

0: आपने बताया अगर कोई टीचिंग के लिए जा रहा है और उसका इंटरव्यू है तो वो ज्यादातर अपने सब्जेक्ट पे कमांड करे, उससे रिगार्डिंग ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर कोई सचिव जैसे लोग अगर बैठे हैं पैनल में तो वो हो सकता है कुछ अलग की चीजें भी आपसे पूछे। मैं एक और बात आपसे पूछना चाहूंगा कि मान लीजिए कोई प्राइवेट जॉब भी करने जा रहा है तो एक इंटरव्यू एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है आपके चुने जाने के लिए, और बिना इंटरव्यू मुझे नहीं लगता है कि अब शायद बहुत ही कम ऐसी कंपनीज होगी जो ले लेती होगी, वो भी छोटी मोटी, क्योंकि अगर ठीक ठाक भी कंपनी तो वो इंटरव्यू कंडक्ट कराती है। उन बच्चों के लिए आप क्या बताएंगे कि इंटरव्यूज में कॉमनली कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस तरह से इंसान प्रिपेयर होके जाए और किन किन बातों का ध्यान रखें?
1: इंटरव्यू में सर आपको अपनी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपको कॉन्फिडेंट दिखना होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं दिखना होता है आपको, आपके बात करने का, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वो अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा अनुभवी होते हैं जो दूसरी तरफ बैठे होते हैं, तो उनको आप बहुत, आपका बात करने का तरीका विनम्रतापूर्ण होना चाहिए और बहुत सोच समझ के जवाब उनको दें, और ऐसा ना लगे उनको कि ये जो है बहुत ज्ञान बघार रहा है या बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना चाहिए वहाँ पे।
0: यानी कह सकते हैं जितना पूछा है पॉइंट टू पॉइंट बात,
1: पॉइंट टू पॉइंट, और अगर नहीं जानते हैं तो सीधे मना भी कर सकते हैं कि मैंने, मुझे नहीं आता है सर। अगर आप उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे तो फिर दिक्कत होगी, क्योंकि वो तो आपसे ज़्यादा अनुभवी हैं, वो जानते हैं क्या है सही उत्तर क्या होना चाहिए।
0: सही है,
1: तो आप ना कर सकते हैं लेकिन गलत उत्तर नहीं दे सकते हैं।
0: ओके, तो आपने पहले चीज़ तो ये कहा कि पहले तो आपको कॉन्फिडेंट दिखना है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट, दूसरी चीज आपने कहा कि सोच समझ के ही बात करना है।
1: सर मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक मेरे साथ एक मेरा दोस्त था, तो उसका पहले चयन हो चुका था एक जगह और मेरे साथ ही उसका इंटरव्यू था, तो वो गया वहाँ पे। उससे पहला क्वेश्चन यही पूछा गया कि आप यहाँ पे इस जॉब में क्यों आना चाहते हैं, तो उसने कहा पैसा,
0: सीधे पैसा।
1: तो इस तरीके से भी उत्तर नहीं देना है।
0: तो उनके साथ फिर क्या हुआ?
1: तो उनको सर मतलब ऐसे क्वेश्चंस वो बता रहा था कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछने लगे जिसमें मैं सब में फंसता चला गया। तो इस तरीके से इंटरव्यू खराब भी हो सकता है। तो बहुत आपके बोलने का तरीका, बोलने का लहजा और ये सब बहुत अच्छा होना चाहिए, विनम्रता पूर्ण आप दिखें वहाँ पे, आप एरोगेंट ना दिखें वहाँ पे, घमंडी अहंकारी टाइप के ना दिखें
0: जी,
1: बिल्कुल नॉर्मल आप दिखने की कोशिश करें जो हैं आप,
0: मतलब जितना सहज आप खुद फील करके जाएंगे उतना ही ज्यादा अच्छा आपका इंटरव्यू होगा
1: जी।
0: आप वहाँ पे सहज बन के बैठें
1: जी,
0: और जो कुछ आता उसका ईमानदारी से आंसर करें, जो नहीं आता उसको मना कर दें, और आपने कहा कि आपके लहजे में विनम्रता होनी चाहिए, ये बहुत अच्छी आपने बात कही, और कहीं ना कहीं शायद जो इंटरव्यू देने जाता है उसको अपने बारे में ज्यादा नॉलेज भी होना चाहिए। पहली बात तो वो कि अपना
1: जी, भी बिल्कुल
0: पता
1: अपने बारे में,
0: अपने बारे में क्या है
1: नीचे जी,
0: कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या रही है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, अपने बारे में आप अवेयर होने चाहिए, इंटरव्यूज की यही क्वालिटीज होती है। ये बात बिल्कुल सही कही। अभी चूंकि आपने अपने स्टार्टिंग में ही गुरुजनों का नाम बताया, और जैसा कि बताया कि आप तो पढ़ाई तक छोड़ चुके थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो उनका दोबारा से आपका नाम लिखवा देना बिना आपसे कहे, वापस में आपके पलट के आना और आज आप जिस जगह हैं, कहते हैं ना कि एक बहुत छोटी सी भी चीज़ पूरी की पूरी जिंदगी बदल देती है, कई बार बहुत अच्छा कर देती है, कई बार बुरा भी होता है, लेकिन इत्तेफाक से और भगवान के आशीर्वाद से कि आपके साथ बहुत अच्छा हुआ है,
1: बहुत अच्छा हुआ है।
0: तो मैं लास्ट में
1: इस मामले में मैं लकी हूँ।
0: इस मामले में आप लकी हैं, और आपकी स्माइल, आपका वो कॉन्फिडेंस बता रहा है कि आप सच में कितने ज्यादा लकी हैं। कहीं ना कहीं वो मुझे कनेक्शन आपका दिख रहा है आपके गुरु के साथ, तो इसी कड़ी में मैं जानना चाहूंगा कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देंगे?
1: सर सबसे जो, अगर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो डॉक्टर त्रिलोचन सिंह सर का है, और बाकी सारे गुरुजनों का हमको आशीर्वाद मिला, सब लोग गाइड करते थे, सब लोग किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट करते थे, समर्थन करते थे, मोटिवेट करते थे, और इसके साथ साथ माता पिता, और हमारी जो शादी भी बचपन में हो गई थी सर, तो पत्नी का भी बहुत सहयोग रहा, क्योंकि बच्चा भी था, और वो लोग भी, उन लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया, समर्थन किया।
0: देखिए ये तो हम बात बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, क्योंकि गुरुजन का आशीर्वाद होना बहुत बड़ी बात है, और बहुत ज़्यादा आप सफल भी होते हैं उनके आशीर्वाद से, लेकिन अगर वाइफ है और वो भी आपको समझ रही हैं, आपके काम को, आपको स्पेस दे रही हैं, तो आपकी वाइफ भी उतनी ही भागीदार हैं आपकी सफलता।

0: जितने आपके गुरुजन हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बात तो आपने सही कहा कि माँ बाप का भी रोल था, वाइफ का भी था, और गुरुजन का तो खैर था ही था, उसमें कोई शक की बात नहीं है। ये बहुत अच्छी बात आपने कही और बहुत अच्छा लगा आपसे आज बात करके। आज हमारे बीच में आप मौजूद थे, आपसे हमने पहले आपके बारे में जाना, उसके बाद आपके करियर के बारे में जाना, टीचिंग के बारे में जाना, इंटरव्यू स्किल्स के बारे में जाना, क्वेश्चनर्स कहते होते हैं ये हो जाना, कि आपकी स्ट्रेटजी क्या थी एग्जाम को क्रैक करने की, वो भी हमने जाना। और आपने सबका बहुत ही सरलता से और सहजता से उत्तर दिया, जिसके लिए हम आपके आभारी हैं।
1: थैंक यू सर।
0: और साथ ही साथ चूंकि जाने से पहले हर एक गेस्ट से लास्ट क्वेश्चन करते हैं कि आप बैठे हैं देवी पाटन मंडल और गोंडा के पहले रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, तो आपको क्या लगता है कि ये एफएम गोंडा वालों के लिए क्या वैल्यू ऐड करेगा?
1: बहुत ज़्यादा सर, मैंने पहले भी कहा था और मैंने कहा था गोंडा जैसे ग्रामीण क्षेत्र में गाइडेंस की, मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। और ये कार्यक्रम आपने जो भी एफएम ज्ञानस्थली 89.6 शुरू हुआ है, इसकी वजह से बहुत बहुत फ़ायदा होगा सर इस क्षेत्र के जितने भी लोग सुन रहे होंगे, क्योंकि आप अपने कार्यक्रम में ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो अपने क्षेत्र के बहुत एक्सपीरियंस्ड होते हैं। मैं नहीं होता
0: लेकिन बहुत सारे लोग है ना, अचीवमेंट है आपकी,
1: आते हैं तो उनके अनुभवों से सीखने को मिलता है। जो भी सुन रहा होगा वो उनसे मोटिवेशन ले सकता है कि इस तरीके से मैं भी कर सकता हूँ या इस क्षेत्र में मैं जा सकता हूँ, यहाँ करियर के ऑप्शन हैं। और बहुत अच्छा है सर। और एक चीज़ और इसकी ऐड कर सकते हैं आप, और हमें लगता है चल भी रहा होगा यहाँ पे, कि जैसे कोविड काल में हमने देखा सारे स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, पढ़ाई पूरी तरीके से बाधित हो गई थी, तो इस रेडियो ज्ञानस्थली का उपयोग आप शिक्षण में भी कर सकते हैं, टीचिंग में भी कर सकते, शायद कर रहे होंगे, और उसमें आप टीचर्स आ करके यहाँ कार्यक्रम रिकॉर्ड कर सकते हैं और जो भी बच्चे हैं उनको निश्चित समय पर बता सकते हैं कि समय कार्यक्रम आएगा, एक ये चैप्टर ये टॉपिक पे पढ़ाई होगी। तो ये सर बहुत अच्छा उपयोग होगा और बहुत बहुत वैल्यूएबल कार्यक्रम है सर यहाँ।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हाँ 12 बजे से दोपहर 1:30 बजे के बीच में ज्ञानस्थली लाइव प्रोग्राम होता है, जिसमें सरस्वती देवी नारी ज्ञानस्थली पीजी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर्स, डॉक्टर्स, मेंटर्स वो आते हैं, अपने सब्जेक्ट्स के बारे में बताते हैं और स्पेसिफिक टॉपिक पे ही चर्चा होती है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बिल्कुल आपने सही कहा। और इसमें हम और भी दिन ब दिन जैसे जैसे लोगों के सुझाव मिलते जाएंगे हम इसमें अपनी वैल्यू ऐड करते जाएंगे।
1: बिल्कुल।
0: से एक बार बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिर से कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने अपना कीमती वक्त दिया।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मुझे लगता है कि एक दिन आपका भी इंटरव्यू होना चाहिए कि आप भी गोंडा से हैं और बहुत कुछ हासिल किया है आपने, इस तरीके से आप एक फील्ड, आप ये भी बच्चों के सामने आ सकते हैं कि इधर भी करियर बनाया जा सकता है और उसमें आप गाइड कर सकते हैं कैसे करियर बनाया जाए।
0: बिल्कुल। तो यहाँ पे रेडियो जॉकी का वोकेशनल कोर्स में भी चल रहा है और हम बताते भी हैं कि जैसे मैं खुद एक रेडियो जॉकी हूँ, एक रेडियो को चलाने वाला, वैसे ही बच्चों को ट्रेन कर रहा हूँ। आने वाले टाइम में बहुत सारे आरजेज मुझे नहीं लगता है कि बड़े शहरों की तरफ देखना पड़ेगा गोंडा को, गोंडा के खुद के अपने बच्चे ही यहाँ के आरजे होंगे, बस इतना ही कहना चाहूंगा।
1: बिल्कुल।
0: बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि आज हमारे बीच में मौजूद थे मालिक राम वर्मा जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं एडुकेशन डिपार्टमेंट राजकीय महाविद्यालय डिस्ट्रिक्ट सिद्धार्थनगर, जिनसे आज हमने उनकी जिंदगी के बारे में जाना, पढ़ाई के बारे में जाना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को कैसे क्रैक किया जाए इसके बारे में जाना, इंटरव्यू स्किल्स क्या होती है और इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं इसके बारे में जाना। सो बहुत बहुत शुक्रिया आज उनका, वो हमारे स्टूडियो में। और आपसे भी हम यही कहेंगे कि सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे बीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
2: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
3: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
2: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
4: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।

अजनबी जब आवाजें देता है तो मन में डर तो लगता है कि ऐसा तो नहीं कोई लुटेरा हो। हाँ, और अजनबियों से डर के तो रहना चाहिए, लेकिन खुद से अजनबी बनना कहाँ तक सही है? बिल्कुल, आपको अपने आप से अजनबी तो नहीं होना चाहिए। तो फिलहाल अपने अंदर के जो इंसान की आवाज सुनिए और ट्यून करिए ज्ञान सिटी 9.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन, आरजे बीना आपके साथ है, आपकी फ्रिक्वेंसी को और सुरीला बनाने के लिए और आज आपको बताने के लिए कि आज सुरीली आवाज में बातें होंगी और ये सुरीली आवाजें आज गोंडा शहर में नहीं देश दुनिया में गूंजते हुए बताएंगी कि आप सबकी आवाज मुझसे कितनी बेहतर है। तो चलिए एंजॉय करते हैं आज की शाम, आरजे बीना के नाम होते हुए भी आपके नाम।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

ऐसे ही शायद आप लोग भी गुनगुनाने की कोशिश करते हैं और हंसने की कोशिश करते हैं, तो कभी कुछ बजाने की कोशिश करते हैं। पर कोशिश कर लेने मात्र से क्या सेटिस्फेक्शन आ जाता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है सेटिस्फेक्शन अपने अंदर ढूंढना या अपने किसी भी काम में मतलब फुल सेटिस्फाई होना। और सेटिस्फेक्शन जानते हैं कब आता है? जब कोई ये कहता है कि वाह यार तेरी आवाज कितनी अच्छी है, जब कोई ये कहता है कि यार तू म्यूजिक कितना अच्छा प्ले करता है, वाओ तुम कितना अच्छा बोलते हो। यानी कि जब तक हम खुद तक सीमित रहते हैं तब तक हम खुद को अच्छे नहीं लगते, लेकिन जब हम सबके सामने खुद को एक्सप्लोर करते हैं, अपनी अच्छी चीज़ों को बाहर लाते हैं, तो हाँ तालियों की गड़गड़ाहट चाहे ना सुनाई दे पर कहीं दूर से एक आवाज़ ये ज़रूर आती है कि यार यू आर द सुपर, आपका अंदाज अच्छा था, आपने बहुत अच्छा गाया। तो क्या लगता है आपको, क्या मेरा ये मानना या आपका ये मानना सही है या नहीं? बिल्कुल सही है। तो चलिए आपसे जानना चाहती हूँ कि आपके अंदर जो विशेष है क्या आपने कभी बाहर निकाला, क्या आपने अपनी लिखी हुई कविताएं किसी को सुनाई, क्या आप अच्छा गाते हो या आपके अलावा भी किसी को पता है, क्या आप अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करते हो, क्या ये किसी और को पता है? अगर नहीं तो आरजे बीना है ना बताने के लिए। वेरी गुड इवनिंग बंटी जी। सुलगती धूप हो या सर्द रातों का समा, रेडियो ऑन होते ही बदल जाता है जहां, वो फरमाइशें वो गाने वो हवाओं का सफर, एक छोटे से डिब्बे में सिमटा है सारा आसमां। वाओ क्या लिखा है मंटी जी, आप वाकई में बहुत अच्छी मतलब लाइंस इतनी अच्छी सिलेक्टिव चुनते हैं और उनको लिख के अंदाज में भेजते हैं, क्या बताऊं। जैसे कहते हैं ना कविताओं को शायरी को अगर हिंदी में ही परोसा जाए, मतलब लैंग्वेज उसी लैंग्वेज में लिख के भेजा जाए तो खूबसूरत लगती है ना। ये चीज़ मुझे हमेशा से पसंद आती है। कभी कभी हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश हो जाते हैं जो कि हमारे फीलिंग्स को थोड़ा सा मतलब कहते हैं ना कि अनप्रोफेशनल सा या कह सकते हैं बहुत टची नहीं बनाती। सो आप लोग को बता दूं कि आज 27 मई है और आज ही के दिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमें अलविदा कहा था। स्वतंत्र भारत के प्रथम और सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यानी कि 1964 में इनका जो कार्यकाल था प्रधानमंत्री का पूरा हुआ था और ये सेलेक्ट हुए थे 1947। बहुत लंबा कार्यकाल, तो मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान हो सकता है। तो कोई इंसान लोगों का फेवरेट होगा तभी तो इतने दिन तक देश को संभालेगा। और बताइए आप लोग आज अंताक्षरी खेलने वाले हैं या फिर कुछ नया? और मैं चाहती हूँ कि आज आप लोगों से मैं चाहूँ कि अंताक्षरी को कैसे मॉडिफाई किए जाएं, कुछ सजेशंस। जैसे लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को कविताओं का थोड़ा सा दिया था चैलेंज कि आपको इनकी इनकी कविताएं सुनानी है, तो इस बार आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब क्या नया किया जाए आज की अंताक्षरी में? कहते ना कुछ तूफानी करते हैं, क्योंकि तूफानी करेंगे तभी तो गर्मी दूर जाएगी। तो आप लोग बताइए कि आज कुछ तूफानी कैसे कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो जल्दी से मुझे भी बताइए। और आपको पता है आज 27 मई है तो बहुत सारी कंट्रीज में आज चिल्ड्रंस डे भी मनाया जाता है, और कंट्री जैसे कि नाइजीरिया और बहुत सारी कंट्रीज में इसे एज अ चिल्ड्रंस डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे यूथ और
यूथ की एनर्जी को प्रमोट करने के लिए ये जो डे है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये रही कुछ आज से जुड़ी स्पेशल बातें, और आज एक और खास दिन है। किसको पता है आज कौन सा खास दिन है, जल्दी से बताइए सोच के। आप सोचेंगे तो आपको याद भी आएगा, और नहीं सोचेंगे तो ऐसे ही सोचते रह जाएंगे। नव्या, गुड इवनिंग फॉर कप ऑफ टी, थैंक यू सो मच। एंड मुझे पता है कि आप लोग भी कभी कभी सोचते होंगे ना कि आरजे बिना आज कितनी सारी नई नई चीज़ें हम लोग को बता रही है। देखिए, नई चीज़ें बताना और नई चीज़ों को सीखना हमेशा से हमारे लिए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहा है, क्योंकि अगर हम नहीं सीखेंगे तो चीज़ें फिर से परेशान करने वाली रही। वही वाला फिर से कीजिए मैम, एक मिनट में जितने सॉन्ग गाए जाए। ओके, थैंक यू सो मच। तो नव्या लड़कियों की टीम से आ गई हैं और कमल जी लड़कों की टीम से हैं, तो एक छोटा सा म्यूज़िकल ब्रेक लेते हैं और आप लोग फटाफट से अपनी अपनी टीम का नाम बता दीजिए। टीमें जैसा कि हमेशा से लड़कियों की रहती है और टीम भी लड़कों की रहती है, तो बंटी एंड कमल लड़कों की टीम से दिख रहे हैं चैट रूम में मुझे, और लड़कियों की टीम से नव्या एंड आरजेबीना तो है ही। वैसे मैं दोनों की टीम को सपोर्ट करती हूँ, तो कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मैं बायस जो रही हूँ, लड़कियों की टीम में जा रही हूँ। मैं दोनों ही टीम में इक्वल सपोर्ट करती हूँ, यानी कि रूल्स बनाने का काम करती हूँ। सो चलिए एक छोटा सा कहते हैं ना कि एनर्जी बढ़ाने वाला गाना सुन लेते हैं। कमल जी वेरी गुड इवनिंग, एंड चाय आ चुकी है, चलिए एक कप चाय आप भी उठा लीजिए और एंजॉय करिए आज की शाम की वाइब। और ये वाइब सुरीली होने वाली है और सुरीली होते होते लाउड होने वाली है, तो इस लाउड इवनिंग को और लाउड करते हैं इस प्यारे से गाने के साथ।

हुणे हुणे हुई मुटियार और मुंडिया तो बच के रही, क्योंकि कुड़ी और मुंडे का जमाना है। और मैं आपको बता दूं, जिसे ना बताओ, लड़कों को पंजाबी में मुंडे और लड़कियों को कुड़ी कहा जाता है। और हर भाषा के अपने अपने स्वैग है और हर भाषा में सबको अलग अलग नाम से जाना जाता है। फिलहाल अंताक्षरी को अंताक्षरी के नाम से ही चिल्लाते हुए हम लोग बात करेंगे। और आप सभी को बता दूं कि अब टाइम शुरू हो चुका है अंताक्षरी का, तो मैं एक आपको गाना सुनाऊंगी और उस गाने से जो एंड होगा लेटर, उसी से आपको गाना सुनाना है। फर्स्ट राउंड लेटर राउंड ही रहेगा, हमेशा से मैं लेटर राउंड ही रखती हूँ, तो इस बार भी लेटर राउंड रखेंगे और इस लेटर राउंड से हम आगे बातें करेंगे। और चलिए आज मैं एक पंजाबी गाने से शुरुआत करूँगी, मतलब आज शुरुआत थोड़ी सी हुई है फास्ट, तो मैं तो गाना भी पंजाबी सुनाऊँगी। एक बहुत पुराना सा गाना है और ये गाना फिर मूवी आई थी ट्विस्ट, उसमें गाया गया था, तो उसी मूवी का गाना, लेकिन पहले जब गाया गया था मैंने तभी बचपन में सीखा था। तो चलिए मैं गाना सुनाती हूँ और इसका लास्ट लेटर आपको चुनना है, क्योंकि अंताक्षरी तो तभी शुरू हुई जब दोनों लोग, यानी कि आरजे और आपके प्यारे लिसनर्स, यानी कि मेरे प्यारे लिसनर्स, आप सभी साथ में गाएंगे, तभी तो मज़ा आएगा। तो अभी बहुत सारे मुझे दिख नहीं रहे पर आवाज़ सुन के मेरी आ जाएंगे, क्योंकि जब मैं जब भी बुलाऊंगी और आप लोग आ जाते हैं और आप लोग ये भी कहते हैं कि तुमने बुलाया और हम चले आए, हथेले पहले आए हैं। तो चलिए मैं आपको गाना सुना देती हूँ, मज़ा आएगा आपको। आप लोगों ने शायद मुझे पंजाबी गाने गाते अभी कमी सुना होगा, पर चलिए सुनाती हूँ। ट्राई करने में क्या ही जाता है।

0: के दुख सुख फोलवे ना जिंद साड़ी रोलवे।
1: तो लेटर जो खत्म हुआ है इस गाने का वो है व। तो व से आपको गाना सुनाना है और व से जो टीम सबसे पहले कॉल कर देगी उसी से आगे शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला कॉल किसकी टीम से आता है, लड़कों की टीम से आता है या लड़कों की टीम से। मैं तो एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कौन सी टीम ज़्यादा एक्टिव है। मुझे पता है दोनों ही टीमें नंबर डायल करने में लगी होंगी। नंबर अभी भी मैं जो नए लिसनर्स हैं उनको बताना चाहती हूँ 6393316429 6393316429 ये आपका अपना फेवरेट कॉलिंग नंबर है और आप इसी नंबर से अंताक्षरी भी खेलते हैं, फरमाइशें भी करते हैं और बहुत सारी बातें भी करते हैं, है ना? Am I right? तो चलिए कॉल आ चुका है और सबसे पहला कॉल किसकी टीम का है तो आवाज सुनने के बाद पता चलेगा।
2: हेलो
1: हेलो गुड इवनिंग। तो मुझे इस बात की खुशी है कि लड़कियों की टीम ने शुरुआत की है, भले चैट रूम में नहीं दिख रही है लेकिन सुन रही है। आशु जी कैसी हैं?
2: बहुत अच्छी
1: है। तो वह से गाना सुनाना है आपको सबसे पहले।
2: वादा न तो तेरी जवानी तड़पे
1: क्या बात है। और काफी दिनों बाद इतना सुरीला ये वाला गाना सुन के मजा आ रहा है। मतलब मुझे लगता है काफी दिनों से मैंने इस गाने को सुना नहीं था पर आपने याद दिला दिया। थैंक यू सो मच अनाशु जी। लास्ट लेटर क्या है? मूना मोड़ ना अड़ा अड़ा। ओके क्या गजब फंसाया आपने, क्या बात है। तो लड़कों की टीम को अड़ा से गाना गाना, यार रड़ा से कोई गाना हो सकता है? क्या बात है, मतलब मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोचती थी कि अड़ा से गाना आ जाएगा। तो चलती है देखते हैं लड़कों की एनर्जी कहाँ तक जाती है, क्योंकि मुझे पता है कुछ देर तक गाना सुनाने नहीं वाले तो मैं म्यूजिकल ब्रेक भी लूंगी। अड़ा से गाना गाना है, अड़ा से। हाँ मैं चैट रूम में भेज देती हूँ, इसको तो बोलने में भी बड़ा वो हो रहा है कि आधे लोग रह रहा समझे। अड़ा अड़ा जो होता नहीं है वो वाला, मोड़ में जो अड़ा आता है वो वाला। तो चलिए लड़कों की टीम से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कौन गाने वाला है। ओह माय गॉड आज तो मतलब मज़ा आ जाएगा। वैसे मैं मज़ा मुझे दोनों ही टीमों में आता जिसके ऊपर अड़ा आता, क्योंकि अड़ा आने के बाद सब फ्रीज हो जाते हैं, मैं तो नहीं गा पाती गाना अगर अड़ा आ जाता। आप लोगों से जानना चाहती हूँ कि आप लोग गा पाएंगे या नहीं, ये तो आप लोग की आवाज़ बताएगी। फिलहाल आप लोगों से ही जानना चाहती हूँ कि आप लोग कितने तेज़ हैं, और इसीलिए मैं चैट रूम में लिख के भेज भी रही हूँ कि आपको किस लेटर से गाना है, जिससे कि किसी को किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई भी कन्फ्यूज़ होके ये सोचे कि आरजे बिना ने तो बताया ही नहीं लेटर कौन सा था हमारा। तो मैंने आप लोगों के लिए, देखिए आशु जी हमारे साथ आ चुकी हैं, तो मैं आपके लिए लेटर लिख के भेज दे रही हूँ जिससे कि मेरे लड़कों की टीम को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो। सो बॉयज बी रेडी, और हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं क्योंकि अड़ा से गाना सोचने के लिए आपको काफी पन्ने पलटने पड़ेंगे। लड़कियों की टीम को आता है तो वो सुना सकेंगी, लेकिन जब मैं बताऊंगी तब, क्योंकि अभी मैं इनको पूरे एक गाना मतलब प्ले करके एक म्यूजिकल ब्रेक का टाइम देती हूँ कि आप लोग सोच के फटाफट से रिप्लाई भेज दें। तो चलिए देखते हैं कोई गा पाता है या फिर ऐसे ही ये शाम इंतजार में रह जाएगी। तो चलिए एक और हाई बीट गाना सुनते हैं और आपकी अड़ा से गाने का इंतजार करते हैं।

0: आएगा।
1: तो लड़कों की टीम से मुझे लगता है कॉल आ गया है, चलिए आवाज सुनते हैं किसकी। हेलो
2: सुरेश कुमार।
1: सुरेश जी नमस्कार, शुभ संध्या, कैसे हैं?
2: नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या।
1: तो अड़ा से गाना सुनाना है।
2: अड़ा से ये मूवी शतरंज का है, शतरंज मूवी है, महमूद के ऊपर फिल्म आया गया है।
1: जी जी,
2: शतरंज राजेंद्र कुमार, वहीदा रहमान
1: जी,
2: महमूद, शतरंज मूवी है।
1: शतरंज
2: तो मुझो को मुझकोड़ी आया, और प्यार में जो ना चाह वो भी मुझे करना पड़ा। अयो अयो मुझकोड़ी आया, और प्यार में जो ना चाह वो भी मुझे करना पड़ा। अयो अयो, धन्यवाद।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश जी अपनी टीम को बचाने के लिए, और अगर आप कॉल ना करते तो शायद कोई भी इस गाने को गाना पाता। बहुत बहुत शुक्रिया।
2: क्या है तो इस सफरन की मूवी ये गीत सुन सकती हैं?
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा ये गाना है। थैंक यू सो मच। तो सुरेश जी ने बहुत मशक्कत के साथ गाना ढूंढा और गाना सुनाया। हाँ गाना उसी से एग्जैक्ट नहीं शुरू हुआ, लेकिन हाँ स्टार्टिंग में ये म्यूज़िक आता है अड़ा अड़ा करके, फिर उसके बाद गाना शुरू होता है। एंड ही इज़ करेक्ट, और इसी के साथ लड़कों की टीम को पॉइंट मिल जाता है। मुझे नहीं पता था कि लड़कों की टीम में इतने बड़े बड़े दिग्गज हैं जो अड़ा से गाना भी सुना सकते हैं। थैंक यू सो मच सुरेश जी। और इसी के साथ हम अगले यानी कि कैंडिडेट का इंतज़ार करते, देखते लड़कियों की टीम ने गाना ध्यान से सुना या नहीं। अब आपको सुनाना है गाना जिस गाने से हमारे सुरेश जी ने गाना ओवर किया। तो लड़कियों की टीम का इंतज़ार करते हैं, आखिर ध्यान से तो सुना ही होगा, आपका लेटर है आपको पता ही होगा। तो चलिए सुनते हैं ये गाना जो हमारा छूट गया था, इसके बाद के कुछ एनर्जी वाले हाई बीट सॉन्ग्स।

0: तो लड़कियों की टीम से चलिए सुनते हैं आवाज किसकी है। हेलो
1: हेलो मैम, मैम किस शब्द से आया लास्ट में लेटर कौन सा आया मैम?
0: ये तो आप लोग को सुनना था, ये तो मैं बार बार थोड़े ना बताऊंगी।
1: मैम मैं सुन ही नहीं पाई, कौन गाया मैम?
0: सुरेश जी ने गाया है।
1: सोच
0: के बताइए, शतरंज फिल्म का गाना था।
1: नहीं लास्ट में मैम इसे कौन सा वर्ड आया?
0: वर्ड नहीं लेटर।
1: वही कौन सा लेटर आया मैम?
0: रा
1: मैम, रा से रा, रात रात रा से मैम।
0: जी
1: रा से। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई।
0: क्या बात है, और थैंक यू सो मच। अब लड़कों की टीम को भी ध्यान से सुनना पड़ेगा कौन सा।
1: मैम मैं सुन नहीं पाई मैम, मैं पौधों में पानी डालने लगी थी, थोड़ा ठंडा मौसम
0: इसलिए। सो लड़कियों की टीम से भी कॉल आ गया है, लड़कों का पॉइंट 20 अभी और 40 पॉइंट लड़कियों का हो गया। लड़कियों ने गाना सुना दिया है और चलिए देखते हैं लड़कों की टीम को पता है किस लेटर से गाना गाना है या नहीं।

0: हेलो
1: हेलो, गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग आपका।
1: मैं अमित कुमार बोल रहा
0: हूँ। अमित, अमित किस लेटर से गाना गाना है आपको?
1: ई।
0: ओके, स्वागत है।
1: नो मैम।
0: जी जी बिल्कुल।
1: इमली का बूटा बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे बेर, इस जंगल में हम दो शेर।

0: अच्छा, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना।
1: जितनी चाबी भरी थी राम ने, उतना ही चले खिलौना। और फिलहाल यहाँ चाबी नहीं, फ्रिक्वेंसी ट्यून करनी है, क्योंकि आरजे बीना के साथ हमारे लिसनर्स भी लाइव है। थैंक यू सो मच सविता जी, और बाकी सारे लिसनर्स को बता दूं, आप सुन रहे हैं अपनी फ्रिक्वेंसी 39.6 एफएम पर आरजे बीना के साथ शो गोंडा, मैसेज मसाला आरजे बीना वाला। और अगला कॉल चलिए सुनते हैं किसका है। हेलो
2: जी मैम,
1: अगेन हमारे साथ अमित जी की आवाज सुनाई दे रही है। अमित जी, किस लेटर से आपको गाना गाना है?
2: ना
1: ना से। ओके।
2: नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, ओ हो तुम।
1: क्या बात है, क्या बात है। तो इसी के साथ लड़कों का और लड़कियों का पॉइंट एकदम इक्वल इक्वल इक्वल चल रहा है। तो चलिए देखते हैं अब किसका कॉल आता है और किसकी आवाज़ सुनने को मिलती है। हेलो।
3: हेलो,
1: गुड इवनिंग
3: जी। पूनम तिवारी बोल रही हूँ
1: जी। आपका नाम?
3: पूनम तिवारी बोल रही हूँ, गोंडा से।
1: पूनम जी, काफी दिनों बाद, कैसी हैं आप?
3: हम ठीक हैं, आप बताइए कैसे हैं?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। किस लेटर से आपको गाना गाना है, आपने सुना? सुनाइए।
3: मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम यूं इकरार करोगे, तुम मुझसे प्यार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम।
1: क्या बात है पूनम जी, बहुत अच्छा आपने गाया, मजा आ गया, क्या बात है। तो भाई लड़कियों की टीम और लड़कों की टीम में एनर्जी ओ माय गॉड लेवल की सुनाई दे रही है, और मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि अलग अलग आवाज़ें सुनने को मिल रही है। मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि जितनी ज़्यादा हो सके उतनी आवाज़ें मैं ऑन एयर कर पाऊँ, सबको सबकी आवाज़ें सुना पाऊँ, सबको सब तक पहुँचा पाऊँ। एंड यस, इस मामले में हमारी फ्रिक्वेंसी 39.6 FM गोंडा शहर की धड़कन बनने के साथ साथ हर किसी को हर किसी तक पहुँचाने का काम कर रही है। और गाना तो आपने सुना होगा, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। पर मैं आपको बताऊँ, किसी को प्यार मिले या ना मिले, लेकिन आरजे बीना की शाम में मौका हर किसी को मिल जाता है, बस टाइमिंग आपकी सही होनी चाहिए। चलिए सुनते हैं ये पुराना वाला गाना आप लोग के साथ।

0: सुनते हैं, देखते किसकी आवाज़ है। हेलो,
1: हाँ गुड इवनिंग मैम।
0: गुड इवनिंग अनिल जी, फाइनली आपकी आवाज़ सुनने को मिल गई शाम होते ही। कैसे हैं, शुभ संध्या।
1: आप भी कैसी हैं? ठीक है,
0: बिल्कुल मैं सही हूँ। और किस लेटर से आपको गाना गाना है,
1: आपको बताया ना कौन सा शब्द से?
0: हाँ, किस लेटर से गाना था, आपने सुना होगा ना, पूनम जी ने एक गाना गाया था
1: तो म से था।
0: जी जी बिल्कुल सही,
1: म से ही है।
0: हाँ हाँ म से ही है।
1: तो मैं सुना था
0: बिल्कुल।
1: मैं कहीं

0: मैं कहीं कभी न बन जाऊं। धन्यवाद।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में ओ कविता, क्या बात है। तो चलिए देखते हैं, अब लड़कों की टीम तो गा चुकी है, लड़कियों की टीम से कौन कॉल करता है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज सब गा रहे हैं और बहुत सुरीला गा रहे हैं यार, गाने बड़े अच्छे अच्छे चुन के ला रहे हैं, मज़ा आ गया। तो चलिए सुनते हैं अगली आवाज़ किसकी है। हेलो
2: हेलो
1: वापस, मुझे लग रहा है कि मैं पूनम जी को सुन पा रही हूँ।

0: बिल्कुल, हमें बहुत अच्छा लगा ना आपका प्रोग्राम, इसलिए मैंने फिर मिला दिया।
1: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। त से आपको गाना गाना है, आपको पता है, सुना आपने? त से सुनाइए।
0: तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना, तेरा रे सच होते होते हो गया अपना मेरा रे साथिया, तेरे प्यार में डूबी रे।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। और भाई सब लोग बहुत अच्छे अच्छे गाने आज, मतलब गानों का सिलेक्शन कितना अच्छा आप लोग कर रहे हैं, मज़ा आ गया। रह से गाना है लड़कों की टीम को, तो चलिए देखते हैं कौन सा इंसान कॉल करता है सबसे पहले। और वैसे कॉल करने भी क्या हुई, क्या ही कहूँ, कभी कभी क्या होता है कि कॉल रिसीव तो होती है लेकिन आवाज़ ही नहीं आती, नेटवर्क का थोड़ा सा इशू हो जाता है। और प्रॉब्लम जानते हैं क्या होता है कभी कभी, चलिए मैं आपसे आज इस बारे में बात कर लेती हूँ कि आप कॉल करते हैं लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉल करने के बाद कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता है।
2: हेलो, आवीना जी,
1: वापस सुरेश जी आपकी आवाज का स्वागत है। र से आपको गाना सुना जी।
2: अच्छा, तुम्हें गीत सावन जाए हाय रातों में। सुना है ये छोड़
1: दो पंक्तियां में जाओ और सुनाए आप, बहुत प्यारा गाना है ये।
2: अच्छा अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू मैम,
1: थैंक यू सो मच, स्वागत है। तो सुरेश जी ने गाना सुना के धन्यवाद कह दिया, लेकिन मैं तो चाह रही थी कि सुरेश जी आगे भी सुनाएं। रिमझिम के गीत सावन गाए हाय हाय, कितना प्यारा गाना है ये। और मैं सच्ची बता रही हूँ, आज के गाने सुन के ना मुझे लग रहा है मेरी प्लेलिस्ट फीकी पड़ जाती है। आप लोग इतने खूबसूरत गाने ढूंढ ढूंढ के गा रहे हैं। एंड आप लोग को बता दूँ, दोनों ही टीमों के 100-100 पॉइंट्स हो चुके हैं। और इसी के साथ अब नेक्स्ट राउंड की ओर हम लोग रुक करेंगे, यानी कि इसके बाद नेक्स्ट राउंड में आपको पहले ही बता देती हूँ क्या है। नेक्स्ट राउंड में आपको मैं एक मूवी का नाम बताऊँगी और आपको उस मूवी का कोई भी गाना गाना होगा, लेकिन कंडीशन ये होगी जो सबसे पहले गाना गाएगा उसकी टीम को पॉइंट मिल जाएगा। आप ध्यान से सुनिए, मैं किसी भी मूवी का नाम ले सकती हूँ और मैं अब आपको बता दूँ कि मैं हर दौर की मूवीज़ का नाम लूँगी, इधर की नई मूवीज़ बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा नई मूवीज़ के गाने हमें भी याद भी नहीं हुए। क्या होता है, गाने याद करने में हमें कई बार 3-4 बार 10 बार सुनना होता है, तब 2-3 लाइन मतलब याद होती है। गुड इवनिंग धर्मेंद्र मोहन जी, आप कैसे हैं, स्वागत है आपका भी। तो आप लोग ध्यान से सुनिए कि अब नेक्स्ट राउंड शुरू होने जा रहा है, 100-100 पॉइंट्स लड़कियों की टीम के और लड़कों की टीम दोनों के हैं। और इसके बाद अब एक म्यूज़िकल ब्रेक लूँगी मैं, और मैं आपको इसके बाद आपको एक मूवी का नाम दूंगी। फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया धड़कन मूवी का नाम, तो आपको धड़कन मूवी का कोई भी गाना जो आपको आता है एट द मोमेंट सबसे पहले कॉल करके सुनाना है। जिसकी टीम सबसे पहले कॉल कर लेगी उसकी टीम को सबसे पहले 50 पॉइंट्स मिल जाएंगे। है ना आसान, मतलब मूवी का नाम बस ये है कि आपने वो मूवी देखी होगी तो गाने याद हो जाएंगे। तो बहुत ईजी, पहले तो हम थोड़ा सा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। लास्ट में मतलब मैं 5 मूवीज़ के ही नाम लूँगी, टोटल 5 मूवीज़ में ये डिसाइड होगा कि कौन कितनी ज़्यादा मूवीज़ मतलब गेस करके उसमें गाने गा पाता है। तो इस बार पहले आओ पहले पाओ वाला सिस्टम है, टाइमर शुरू तो नहीं हो सकता, लेकिन हाँ जो सबसे पहले कॉल करेगा उसकी टीम को मतलब कह सकते हैं कि गाना गाने का मौका मिल जाएगा। एक जो शिकायत मुझे हमेशा मिलती है कि ऑन एयर बोलने से, जो कहते हैं ना कि हमारे लिसनर्स जो फ्रीक्वेंसी भी सुन रहे होते हैं उनके पास मैटर थोड़ा 1-2 सेकंड लेट में जाता है, सॉरी जो एप्लीकेशन से सुन रहे होते हैं, फ्रीक्वेंसी वालों को तो तुरंत मेरी आवाज़ पहुँच रही होगी, करंट पैरेलल जा रही होगी, लेकिन जो एप्लीकेशन से सुन रहे हैं उनको 1-2 मिनट बाद शायद पहुँचती है। तो 1-2 मिनट नहीं, 30-35 सेकंड मतलब मुझे ऐसा लगता है। एनीवे मैं आपको चैट रूम में ही पहले मूवी का नाम दे दूंगी और बाकियों के लिए मैं ऑन एयर बोल दूंगी जो फ्रीक्वेंसी पे सुन रहे होंगे। तो मतलब 1-2 सेकंड पहले मैं चैट रूम में भेज दूंगी, उसके बाद मैं अनाउंस करूंगी, जिससे दोनों को इक्वली ही टास्क मिलेगा, तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। तो नेक्स्ट राउंड के लिए थोड़ा सा कमर कस लीजिए, कान थोड़े से अलर्ट कर लीजिए, मोबाइल बिल्कुल खाली रख लीजिए, नेटवर्क में आगे बैठ जाइए क्योंकि कॉल होगा। त तभी आप सुन पाएंगे। तो मेरा फेवरेट वाला गाना मैं प्ले कर रही थी लेकिन सुना नहीं पाई, तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना आप लोग के साथ, जानबाज फिल्म का, मुझे बहुत पसंद है, आपको भी पसंद आएगा।

0: सो दैट दोनों ही गानों ने आप दोनों को, मतलब आप दोनों को मतलब टीम ए और बी दोनों को एंटरटेन किया होगा और आपकी मेमोरी शार्प करने में मदद ज़रूर की होगी। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं कि जैसा कि मैंने वादा किया था कि मूवी का नाम मैं सबसे पहले चैट रूम में भेज दूंगी, तो वो काम मैं पहले करूंगी, फिर मैं अनाउंस करूंगी कि किस मूवी से आपको गाना गाना है। तो मुझे पता है कि रूल मैंने पहले ही बता दिया, तो आप लोग को ये तो एकदम से समझ आ गया होगा कि करना क्या है अभी। तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं, और सबसे पहले जो मैं आप लोग को मूवी देना चाहती हूँ, एक ओल्ड मूवी दूंगी जो बहुत ओल्ड भी नहीं होगी, पर हाँ आपको गाने उसके ज़रूर याद होंगे। तो चलिए, एक मूवी थी जिसका नाम था, पहले मैं जैसा कि वादा किया है मैंने कि मैं चैट रूम में पहले भेजूंगी, मूवी का नेम जो है वो पहले चैट रूम में जाएगा, उसके बाद ही आप लोग को मैं ऑन एयर बताऊंगी। तो मूवी का नेम मैं चैट रूम में भेज रही हूँ, और जल्दी से जितने मेरे चैट रूम वाले लिसनर्स हैं ध्यान दें, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि इस मूवी का कौन सा गाना है। तो मूवी का नाम है नया दौर, ये एक मतलब पुरानी मूवी है, काफ़ी पुरानी मूवी है, ब्लैक एंड वाइट मूवी है, जिसको याद होगा वो गाना ऑन एयर जल्दी से कॉल करके सुना पाएगा। सबसे ज़्यादा मतलब टाइमिंग का इसमें खेल है, जिसकी टीम सबसे पहले कॉल कर देगी उसी की टीम को पॉइंट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कॉल आ गया है, कौन गाना सुनाता है ये भी देखना है।
1: हेलो
0: हेलो,
1: शुभ संध्या मैम।
0: शुभ संध्या। सविता जी, नया दौर फिल्म का गाना सुनाना है जो 1957 में आई थी।
1: जी, जब जब जुल्फे तेरे, और जब जब जुल्फे तेरे, कवारियों का दिल मचले, कवारियों का दिल मचले जिंद मरिए।
0: क्या बात है, वाह, पुराने गानों में भी आप लोग माहिर है, महारत लिया है। तो लड़कियों की टीम ने पहले आके बाजी मार लिया है, लेकिन मैं ये कहूँगी लड़के और लड़कियों को दोनों को इसमें बैलेंस बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा और स्कोरिंग राउंड हो सकता है आपके लिए। बस आपको एक कॉल करना है, वो भी बहुत टाइम से, अगर आप टाइम से कॉल कर लेंगे तो आप बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी मुझे लगता है कि गाना सुना लेंगे। तो आई होप आप सभी को पता है कि कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जिसके गाने हमें एकदम मुंह पे ज़बानी याद थे, और उन्हीं में से ये मूवी भी थी। बस जिसको याद रहा होगा उसने तुरंत कॉल कर दिया। तो अगली मूवी का नाम भी मैं आपको चैट रूम में भेज रही हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग फटाफट से गेस कर लेंगे। और सबसे पहले तो मैं चैट रूम में ही भेजूँगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे पास कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंसी पे और एप्लीकेशन पे जाने का थोड़ा सा टाइम इशू है, तो हम किसी से कम नहीं, ये मूवी है इसका गाना आपको सुनाना है। हम किसी से कम नहीं, ये बहुत पुरानी नहीं है, बहुत नई भी नहीं है, हाँ जिसको आता होगा वो सुना लेगा। चलिए देखते हैं किसका कॉल है। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: नमस्ते, आपका नाम?
1: निशा।
0: निशा बोल रही है, ओके। निशा, आपको हम किसी से कम नहीं मूवी का गाना सुनाना है, पता है आपको?
1: मैं ये मूवी का नहीं सुनी,
0: पता है मैम। ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो चलिए दूसरे कॉलर को मौका देते हैं, देखते कौन है हमारे साथ।
2: हेलो।
0: हेलो,
2: हाँ मैम।
0: अनिल जी, मूवी नेम
2: आपने देख लिया? हाँ,
0: 1977 वाली।
2: अच्छा, वही पुराना ना है, हम किसी से कम नहीं।
0: हाँ, हाँ।
2: तो इस पिक्चर का गाना है
0: जी।
2: है अगर दुश्मन दुश्मन जमाना, हम नहीं गम नहीं कोई आए, कोई आए, कोई आए, कोई आए, हम किसी से कम नहीं है अगर दुश्मन दुश्मन। धन्यवाद।
0: क्या बात है, और मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि कोई टीम इससे गाना गा पाएगी, क्योंकि दो हम किसी से कम नहीं मूवी हैं, और इस मूवी के गाने तो फेमस है लेकिन किसी को पता नहीं होता कि ये इसी मूवी का गाना है। सो थैंक यू सो मच अनिल जी, थैंक यू सो मच। तो अनिल जी और क्या कहते हैं अनिल जी की वजह से लड़कों की टीम का पॉइंट और लड़कियों की टीम का पॉइंट दोनों ही टीमों का पॉइंट 150-150 है। मज़ा आ रहा है मुझे कि आप लोग को नई पुरानी मूवीज़ देख के और मज़ा मतलब एकदम बड़ी अच्छी सी वाइब आ रही है। तो चलिए अब मैं थोड़ा सा नया वाला देती हूँ, आई होप आप लोग इसको भी गेस कर लेंगे। तो क्योंकि हर दौर के मूवीज़ हर किसी ने नहीं देखी होती तो मैं हर एज की मूवीज़ दूंगी जिससे कि किसी को भी ये ना डाउट हो कि यार ये वाला तो मेरे टाइम का है ही नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, मैंने तो कभी सुना नहीं। तो इसलिए अब मैं थोड़ा नया वाला दूंगी और आई होप आप लोगों ने ये मूवी देखी हो कभी या गाना तो ज़रूर सुना होगा। तो चलिए मैं देती हूँ, मूवी का नेम है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। तो जल्दी से आपको गाना सुनाना है, आप जल्दी से आरजबीना को कॉल करें और सुना दें रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मूवी का गाना। अगर आपने सुनी होगी या देखी होगी तो आपको पता होगा। फिलहाल दोनों ही टीम काफ़ी अच्छा खेल रही है, मज़ा आ रहा है और देखते कौन गाना सुनाता है। हेलो
3: हेलो हेलो मैम,
0: गुड इवनिंग। फाइनली गीता जी हमारे साथ हैं, कैसी हैं गीता जी?
3: ठीक है मैम, गुड इवनिंग।
0: देखिए आप मुझे भूल जाती लेकिन मैं आपकी आवाज़ नहीं भूलती।
3: नहीं नहीं मैम, भूलते नहीं है, बस बिजी रहते हैं तो जिस दिन टाइम निकाल के आप आते हैं आ जाते हैं।
0: ओके फाइन, आपको रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का कोई गाना सुनाना है?
3: मैम थोड़ा सा मुझे आप एक तो वो गाना है, अरे तुम जो तुम क्या मिले,
0: गाना सुनाना पड़ेगा, गैस नहीं करना है।
3: एक मैम उसका वो है वे कम लिया वाट झुमका, मैम मुझे गाने तो उसके काम आप सही तीन तो बता दी लेकिन मुझे शायद आगे बहुत कमी आता हो।
0: बस मुखड़ा सुनाना पड़ेगा नहीं तो पॉइंट्स चले जाएंगे। सोच लीजिए, मैं आपको सोचने का टाइम दे देती हूँ, सोचने का टाइम।
3: क्या मिले, अरे क्या मिले जिंदगी से प्यार, तुम क्या मिले जिंदगी से प्यार हो गया, तो कुछ गाना है।
0: मैं आपको जानती हूँ आप सुरीला गाती हो तो इसमें तो पॉइंट नहीं दूंगी मैं।
3: अरे मैम गाने के बोल तो याद आ जाए।
0: चलिए सोचिए आप, मैं आपको टाइम दे रही हूँ एक मिनट का। अब लगता है कि मतलब अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि नई गाने नई मूवीज के भी गाने सुन ही लेने चाहिए ना।
3: अरे मैम हम सुनते हैं लेकिन सुनते हैं हमें बोल याद भी हो जाते हैं।
0: जहाँ तक मुझे याद है कि आप सुनती हैं और आप अक्सर सुनाती भी हैं, कई ऐसे गाने आप गेस कर लेती हैं जो कोई नहीं कर पाता।
3: और उसके बाद जैसे हम मतलब 24 घंटे बीते हम याद किए हुए बोल भी भूल जाते हैं, पता नहीं क्यों मेरे साथ नए गानों के साथ ये होता है।
0: ये नए गानों के साथ सबके साथ होता है, पता नहीं क्यों नए गानों में ऐसा क्या है। क्योंकि कम सुनते हैं, कम सुनते हैं हम लोग। ओके ओके,
3: नहीं नहीं उसके बोल कुछ अजीब होते हैं ना कि वो अपने आप छोटे से हम लोग रेडियो पे किसार में सब में रंगोली में वो गाने सुनते आए हैं
0: और बार बार सुनते आए हैं मुझे ऐसा लगता है।
3: तो बस वही इसीलिए वो नहीं याद हो पाता है। ठीक है मैम किसी और को मौका दीजिए।
0: ओके तो भाई देखिए हिंट तो दे दिया गीता जी ने, अब इनकी टीम वाले आगे आए या किसी और की टीम वाले अभी उनकी प्रॉब्लम है। तो फिलहाल तीन मूवीज़ हो चुकी हैं और तीसरी मूवी के लिए दावेदार का कॉल आना बाकी है, किसी का कॉल अभी आया नहीं है लेकिन मैं इंतज़ार अभी भी कर रही हूँ। चलिए देखते कौन आके अपनी बाजी आजमाता है। वैसे मुझे अच्छा लगा कि आप लोग गेस करने में बहुत ही मतलब इंटेलिजेंट है। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का गाना अभी किसी ने भी नहीं सुनाया है और इतना टाइम काफ़ी होता है किसी गाने को याद करने के लिए। आप लोग तो मतलब मुझे लगता है गूगल वूगल कर ही रहे होंगे लेकिन आप लोग सुना नहीं पाए, क्यों कितनी स्लो मोशन में आप लोग चल रहे हैं। मतलब ये राउंड भी मज़ेदार लगा मुझे क्योंकि आप लोग जब कुछ थोड़ा फंसते हैं ना तो मुझे मतलब लगता है कि हाँ थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा आप लोग का। यूपीएससी का यूपीएससी की तरह तो नहीं मैं बढ़ा दूंगी कि आप लोग को एआई वो समझ लूँ, जेमिनी और ChatGPT और पेपर बना के दे दूँ आप दिमाग से आंसर निकाल के छाप दें, लेकिन हाँ मुझे ये बताएं कि आप लोग सोचने समझने में बहुत एक्सपर्ट हैं। तो फिलहाल कॉल किसी ने नहीं किया, क्या समझें इसके 0-0 पॉइंट्स माने। तो चलिए इस मूवी के लिए मैं किसी को कोई पॉइंट नहीं दूंगी, क्योंकि किसी ने कोई गाना नहीं सुना और इतना मैं वेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे नेक्स्ट राउंड यानी कि वन मिनट राउंड भी शुरू करना है। तो नेक्स्ट मूवी है आप लोग के लिए, जल्दी से आप लोग अपने चैट रूम को स्कैन करें आँखों से। और इस मूवी के बहुत अच्छे अच्छे गाने थे वैसे तो, रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मैं आपको सुना दूंगी थोड़ी देर बाद, लेकिन चलिए अभी के लिए नेक्स्ट मूवी आप लोग ले लीजिए। तीन मूवीज आपकी जा चुकी है, ये दो मूवीज और बची हैं और मूवी का नाम है राजनीति। एक मूवी आई थी राजनीति, आपको उसी मूवी का गाना सुनाना है और बड़े फेमस बढ़िया बढ़िया गाने इस मूवी के हैं, आई होप आप लोग को पता होगा। तो जल्दी से कॉल करिए और सुनाइए, मैं तब तक के लिए गाना आप लोग के लिए बजा देती हूँ, सुनते रहिए और एंटरटेनमेंट जिससे रुके नहीं। और कॉल आ चुका है भाई, मेरे को जाने का मौका ही नहीं दिया गया। हेलो
4: हेलो
0: हेलो
4: ओके
0: पूनम जी, राजनीति मूवी का गाना सुनाइए।
4: सास में तेरी सास मिली तो मुझे सास आई, मुझे सास आई।
0: ये राजनीति मूवी का गाना नहीं है,
4: ये राजनीति का ही है, कैटरीना कैफ है।
0: कैटरीना कैफ है लेकिन मुझे जहाँ तक पता है सांस में तेरी सांस मिली तो ये इस मूवी का गाना नहीं है।
4: ये उसी का है, बाहों में आग और उसी का है शायद,
0: शायद से बात नहीं बनेगी। सो प्लीज आप लोग ध्यान से सोचिए फिर गाने सुनाइए। सो सांस से तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, ये गाना जब तक है जहाँ मूवी का है, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से सोचा करें और फिर कॉल क्या करें। हाँ ये बात तो सही है कि राजनीति मूवी में कैटरीना कैफ हैं लेकिन ये गाना जब तक है जहाँ मूवी का है जिसमें शाहरुख खान है साथ में। तो मैम मैं गाना नहीं सुनती हूँ। ओ कोई बात नहीं, नहीं सुनते हैं, इट्स ओके, कोई दुख की बात नहीं है। फिलहाल अगले कॉलर को मौका देते हैं और देखते हैं, लगता है राजनीति मूवी का भी आप लोगों को कोई गाना नहीं याद आ रहा है। ओह माय गॉड, ये तो बड़ी आसान सी मूवी है। तो चलिए आप लोग सोचते रहिए और एक आखिरी मूवी का इंतज़ार और करिए, नहीं सुना पाएंगे तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो चलिए सुनते हैं एक प्यारी सी मूवी का गाना जो कि मुझे बहुत पसंद है और आपको भी पसंद आएगा, और ना पुराना है ना नया है, बट हाँ कुछ दिनों तक सुना नहीं होगा तो इसीलिए नया लगेगा, मज़ेदार लगेगा। तो चलिए सुनते हैं तेरे नाम मूवी से लगन लग गई वे।

अरे भाई, लगन लगी या नहीं लगी, लेकिन आप लोग को लग रहा है कि इस राउंड में हालत खराब करने वाली लगन जरूर लग गई है। कॉल नहीं लग रही है मैम, क्यों नहीं लग रही है? नेटवर्क तो पूरा है और कॉल तो सबके आ रहे हैं। आप 63 93 31 64 29 नंबर डायल करिए और कॉल तो सभी के आ रहे हैं। तो प्लीज़ चलिए मैं आप लोग को बता देती हूँ कि इस मूवी का बिल्कुल अच्छा सा गाना है मोरा।

नहीं। बहुत प्यारा सा गाना था और इसी गाने की उम्मीद में मैंने ये मूवी का नाम दिया था। तो चलिए कोई बात नहीं, आप लोग नहीं गेस कर पाए तो अगली मूवी के लिए तो तैयार रहिए। और अब मैं मूवी दूंगी थोड़ी आसान, लगता है कि आप लोग के लिए बहुत टफ हो जा रहा है, लेकिन ये बहुत कॉमन मूवीज़ मैंने आप लोग को दी थी, पर आप लोग कैसे गेस नहीं कर पाए मुझे नहीं पता। फिलहाल मैं आपको नेक्स्ट मूवी दे रही हूँ और जल्दी से आप लोग गेस करिए, मूवी है आप लोग के लिए परदेश। परदेश मूवी का गाना जिसको भी आता है वो जल्दी से ऑन एयर आके कॉल करे और अपनी टीम को पॉइंट दिलाए। बड़ा मज़ेदार ये लग रहा है कि दोनों ही टीमें बराबर एक जगह एक पायदान पे खड़ी है। वेल गीता जी, अगर आप कॉल कर देती तो आपकी टीम 50 पॉइंट्स आगे हो जाती। कैसे कॉल नहीं लग रहा है, मतलब क्या हो गया है, कॉल क्यों नहीं लग रहा है? नेटवर्क्स तो है अभी भी, और जहाँ तक मुझे लगता है कॉल आना चाहिए, फुल नेटवर्क है यहाँ पर। तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, आप लोग ट्राई करिए फिर से, बाकी आप कॉल करके गाना गेस कर सकते हैं जल्दी से।

0: चलिए कॉल आ गया है, चलिए सुनते हैं आवाज किसकी। हेलो
1: जी मैम, मेरी कॉल लगने नहीं थी, अभी आपने कुछ ठीक किया है तब लगी है।
0: मैंने बस फ्लाइट मोड ऑन करके फिर वापस से सिस्टम को सेट कर दिया है, बस इतना काम किया है, जहाँ तक है कि नेटवर्क तो पूरा ही था। फाइनली अगर ऐसा करने से
1: तो मैम परदेश मूवी का वो सॉन्ग है ये, अरे ये दुनिया एक दुल्हन दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ओ लव माय इंडिया।
0: थैंक यू सो
1: मच मैम। राजनीत मूवी का भी मुझे वो सॉन्ग आ रहा था, मोरा पिया मुझे बोलत नहीं द्वार जिया के खोलत नहीं,
0: बट अनफॉर्चुनेटली कॉल नहीं लगा। चलिए कोई बात नहीं,
1: कॉल नहीं लगा,
0: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट राउंड। रोजली आई नो एवरी सॉन्ग बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गेम मैम, इट्स ओके रोजली, यू जस्ट लिसन द सॉन्ग, सो आप इंजॉय करिए गाना सुन सुन के। और इसी के साथ हमारे बाकी टीम मेंबर्स इंजॉय करके गाने भी सुनाएंगे। और अब टाइम हो चुका है नेक्स्ट राउंड का, यानी कि 1 मिनट राउंड का, तो कोई ब्रेक ना लेते हुए हम 1 मिनट राउंड शुरू कर देते हैं। और 1 मिनट राउंड शुरू करने के पहले चलिए ये गाना जो हम सुन रहे थे जवानी जाने मन आशा जी की आवाज़ में, ये सुन लेते हैं। और मैं एक एक मिनट का टाइम दोनों ही टीमों को दूंगी, यानी कि लड़कों की टीम को और लड़कियों की टीम को, और दोनों की टीम अगर ज़्यादा गाने गा लेती है, देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो दोनों ही टीमें जीत सकती हैं। तो एक एक मिनट का टाइम दूंगी, लेकिन इस गाने के बाद, आशा जी का गाना शुरू हुआ था जवानी जाने मन, तो मैं चाहूँगी ये गाना हम उनके ही याद में सुन लें, क्योंकि इसी वर्ष वो हमें छोड़ के गई हैं। तो ऐसे ही कोई जाता है तो दिल कहते ना कि मानता ही नहीं उस इंसान को याद किए बिना, तो मैं इस गाने को सुने बिना जा नहीं सकती, तो इस गाने को सुनते हैं और इसके बाद एक एक मिनट का टाइम दोनों ही टीमों को मैं दूंगी। पहले टीम ए या टीम बी, जो भी चाहे वो पहले कॉल कर सकती है, अदरवाइज़ आप लोग अपनी मतलब अपनी सुविधा अनुसार कॉल करेंगे। और इसी के साथ ये गाना एंजॉय करिए आशा जी की आवाज़ में, जवानी जाने वाली।

0: तो ये गाना हो चुका है ओवर और अब आपकी बारी है अपनी आवाज में सुनाने की कई सारे गाने एक साथ बिना किसी ब्रेक ओवर। हाँ, बिना ब्रेक के सुनाएंगे तभी तो जीतेंगे ना। तो चलिए देखते हैं किसकी टीम से। सबसे पहले तो चलिए चैट रूम में ही बता दीजिए कौन सी टीम सबसे पहले कॉल करने वाली है। और आई नो सारी टीमें बहुत एनर्जी के साथ दिख रही हैं, तो जल्दी जल्दी कॉल करके बताइए कौन सबसे पहले कॉल करेगा और कौन सबसे पहले आके अपनी टीम को पॉइंट दिलाएगा। गुड इवनिंग आयुष। आयुष, आपका गाना जाने के पहले प्ले हो जाएगा, सो बिल्कुल डोंट वरी हो जाइए और सुनते रहिए आरजे बीना के साथ शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला। एंड यस, सबसे पहला कॉल किसका आता है, चलिए हम इंतज़ार कर सकते हैं और इंतज़ार का फल मीठा होता है। एंड यस, देखते हैं कौन है जो सबसे पहले कॉल करता है। मुझे लग रहा है कल मतलब अभी फिर से नेटवर्क इशू हो गया है क्या। जहाँ तक मुझे पता है अभी तक तो बिल्कुल सही सही सही था और अभी मैं आपके कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ। तो कॉल आ चुका है, आवाज़ सुनते हैं किसकी है। हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो
1: जी मैम।
0: जी, आपका नाम?
1: आयुष तिवारी।
0: सो आयुष, आप अंताक्षरी खेलने के लिए एक मिनट में कितने गाने गा सकते हैं? आप कितने गाने गा सकते हैं मैक्सिमम?
1: जितना आप बताएं।
0: नहीं, आपको एक मिनट में गाना है अपनी टीम को जिताने के लिए, तो लड़कों की टीम से गाने के लिए आप तैयार हैं?
1: जी।
0: सो आर यू रेडी फॉर, मैं टाइमर शुरू कर रही हूँ, आपको एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा गाने गाने होंगे। एक मिनट में ज्यादा से ज्यादा गाने गाने होंगे।
1: जी।
0: आपका टाइम शुरू होता है, अब स्टार्ट करें। अरे ये क्या, टाइम स्टार्ट होने के पहले कॉल ही डिस्कनेक्ट हो गया। ओ माय गॉड। नहीं आशू जी, अभी कॉल लग रहे हैं क्योंकि कॉल अभी इसके पहले एक हमारी फीमेल लिसनर का आया था जिनसे बात पूरी नहीं हो पाई, उसी के बीच एक और कॉल आ गया जिसमें एक लड़के यानी कि आयुष का कॉल है, पर वो मतलब मुझे लगता है कि चुनौती से थोड़ा सा डर के चले गए। फिलहाल आपकी आंखों में कुछ महके, अरे वाह क्या बात है। आती पहले फरमाइश आप लोगों ने शुरू कर दी, लेकिन अभी तो मैं कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ, देखते कौन सबसे पहले कॉल करता है लड़कों के या लड़कियों की टीम से। और लेट्स सी, इंतज़ार कर सकते हैं हम लोग। और कॉल नहीं लग रहा है, अभी तो कॉल आया है तुरंत तुरंत, तो एक कॉल आ चुका है, चलिए देखते हैं किसकी आवाज़ होने वाली है। हेलो
1: मैम।
0: ओके फाइन, आशु जी आई हैं और एक मिनट।
1: मैम बहुत देर से मैम लगा रहे हैं और लग नहीं रहा मैम।
0: नहीं अभी उसके बाद से तो कॉल रेगुलर लग रहे हैं क्योंकि कॉल आ रहे हैं मेरे पास ना, तो अभी दो कॉल ऑन एयर हुए थे। तो चलिए मैं आपका टाइमर शुरू करती हूँ अब।
1: बिल्कुल मैम।
0: यस।
1: फूल कहीं बन जाए ना अंगार, फूल मांगू ना बाहर, बारो फूल बरसा फूल हिस्सा पे ए फूलों की रानी, तुमने दिल मेरा तोड़ा ए लड़की को देखा तो ऐसा, ले जाएंगे ले भैया यशोदा, माई माई दुनिया बनाने वाले, चले दुनिया से दुआ हर कर्म अपना कर, तू वादा ना तो सुन सही बात सुन, मुझे तेरी मोहब्बत क्या खूब लगती हो, धीरे धीरे बोल कोई दो हंसों का जोड़ा, कसम से छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो बाबुल प्यारे दिल लगा लिया यशोदा मैया, सत्यम शिवम सुंदरम सुख के सब साथी श्याम, तेरी बंसी राम रामा ओ रामा, गंगा मैया में जब तक पानी रहे, रामचंद्र कह गए सिया तो लो आ गई उनकी यार, महबूब मेरे बेदर्दी बाल माते उनसे मिली नजर मेरे।
0: स्टॉप स्टॉप स्टॉप। और अभी आपने कितने गाने गाए आपको पता है?
1: मैम
0: 32 गाने आपने पूरे गाए हैं। 32 गाने, ओ माय गॉड, क्या बात है क्या बात है। मतलब मैं तो सोच रही थी अरे बाप रे कहाँ से, और गाने के बाद तुरंत गाना आ रहा, सोचने का बिल्कुल कुछ है ही नहीं। मतलब आप लोग कैसे ऐसे तैयार कर लेते, मैं तो गा ही नहीं पाती इतना फास्ट।
1: मैम मन से जब गाइए तो निकलता चला जा रहा, चाहे जो गाना निकलता चला जाता है।
0: क्या बात है क्या बात है, कुछ गाने तो ऐसे मैं सोच रही हूँ पूरा सुन लूँ क्या। थैंक यू सो मच। तो लड़कियों की टीम ने रिकॉर्ड बना लिया है, 320 पॉइंट का 32 गाने गा दिए हैं और इसी के साथ लड़कियों के हो जाते हैं दो 520 पॉइंट। वाओ क्या बात है। बारी लड़कों की टीम की, तो लड़कों की टीम से कौन कॉल करने वाला है, कौन दिग्गज ऐसा है जो अपनी टीम के लिए एक मिनट में बिना सांस लिए गाना गाएगा। जल्दी से अपने मतलब आवाज का जो कहते हैं ना जोर दिखाइए और अपनी टीम को जिता के जाइए। और आपको जीतने के लिए चाहिए सीधे सीधे तौर पर अच्छे खासे पॉइंट्स, यानी कि 320 तो एक चाहिए ही चाहिए, प्लस 50 पॉइंट और चाहिए, यानी कि 370 पॉइंट आपके पास होंगे तब आप जाके जीतेंगे। 370 क्यों, 10 एक्स्ट्रा होंगे तब जीतेंगे। 380 पॉइंट्स के साथ आप जीत पाएंगे। तो आपको मान के चलिए 38 गाने गाने पड़ेंगे। तो मैंने लड़कों को बता भी दिया कितने गाने आए गाने हैं और आपके पास बचे हैं कुल 4 मिनट। और 4 मिनट के अंदर अगर आप कॉल करके गाना गा लेते हैं तो आपकी टीम हो जाती है वैसे विजयी। तो चलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा और बोर ना करते हुए बढ़िया सा गाना सुना देती हूँ, जिससे कि आपकी एनर्जी जो है ना वो बरकरार रहे। और आज मैं नए पुराने गाने दोनों सुना रही थी, स्टार्टिंग में कुछ नए गाने सुनाए और अभी मैं मिडिल वाले गाने सुना रही हूँ आपको। तो एक गाना था रब्बा इश्क ना होवे, एक फिल्म आई थी अंदाज मूवी का ये गाना है, लोगों ने बहुत पसंद किया था। तो चलिए आपको सुना देती हूँ, लेट्स एन्जॉय दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। तब तक के लिए लड़कों की टीम से निवेदन है आप कॉल करें, अदरवाइज 2 मिनट 3 मिनट बाद मैं आपको आउट मान लूँगी, यानी कि आप कॉल नहीं करेंगे। अब

फिलहाल मुझे लग रहा है लड़कों की टीम के साथ यही सीन चल रहा है कि ये वादा निभाना है मुश्किल बड़ा, क्योंकि 38 गाने याद नहीं आ रहे. क्या बात है, कोई बात नहीं, आपके पास एक मिनट का टाइम और है, आप लोग सोच सकते हैं, और तब तक के लिए गाना एंजॉय करिए.

तो नियम रस्में तो हमारी अंताक्षरी में भी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि लड़कों की टीम से अब कोई नहीं गाना गाने वाला। और इसी के साथ मैं अनाउंस कर देती हूँ कि लड़कियों की टीम 520 पॉइंट से जीत गई है और लड़कों के पॉइंट्स हैं 150 अभी भी। और इसी के साथ हमारी लड़कियों की टीम जीत चुकी है। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टीम गर्ल्स, एंड मुझे लगता है कि ये काफ़ी ग्रैंड विनिंग है। और आजकल लड़के जो है ना, वो मुझे लग रहा है लड़ाई में ज़्यादा मन लगा रहे हैं और इसीलिए गाने नहीं सुना पा रहे हैं और जीत नहीं पा रहे हैं। सो अभी आप लोग की बारी है, आपको जीतना है या फिर नहीं जीतना है। तो चलिए हमारी लड़कियों के लिए एक प्यारा सा गाना, विनिंग सॉन्ग सुनाती हूँ और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। और वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम गर्ल्स, एंड यस आप लोगों ने बहुत मज़ेदार खेला, मतलब आप लोग लगातार एक्टिव रही, ये बहुत अच्छी बात है। और इसी के लिए मैं हमेशा से ये कहूँगी कि अगर आप कॉन्टीन्यूसली किसी चीज़ को मन लगा के करो ना, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको मतलब सफलता हासिल ना हो। सो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू द गर्ल्स टीम एंड एन्जॉय दिस इवनिंग। वैसे लड़कों ने भी अच्छा खेला, पर जीतने के लिए अच्छा खेलना नहीं, बेहतरीन खेलना ज़रूरी है। तो इसी के साथ लड़कियों के लिए गाना हम सुनते हैं, ये प्यारा सा गाना देसी गर्ल, बिकॉज गर्ल्स ने देसी अंदाज में और विदेशी अंदाज में, दोनों ही अंदाज में मिलके हमारी जो गर्ल्स टीम है उसको जिता दिया। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन।

बाघ को जन्म देने वाला बागबान, परिवार को जन्म देने वाला पिता, दोनों ही अपने खून पसीने से अपने पौधों को सींचते हैं, ना सिर्फ अपने पेड़ से

उसके साये से भी प्यार करते हैं, क्योंकि उसे उम्मीद है एक रोज जब वो जिंदगी से थक जाएगा, यही साया उसके काम आएगा।

आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, अब तो खोल लीजिए ना। क्या फरमाइशी की गठरी, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए। उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और हमेशा की तरह लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत, क्योंकि शो आपका, जज्बात आपकी, यार जस्ट सिंपल नॉट सो सिंपल। तो हमेशा के लिए आपकी वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो फरमाइशी की महफिल में आपका स्वागत है। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से, राजेश कुमार बेदर्दी गोंडा से, अनुष्का श्रावस्ती से, मुस्तफा जी मालवीय नगर से, राजेश जी, आशु मिश्रा जी लखनऊ से एक बार फिर से आपका स्वागत है, और विजय पाल यादव जी ललहवा लखीमपुर खीरी से, नव्या आरजे बीना जी आप भी हैं तो आपका भी स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आरजे सिंपल जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से, बंटी गुर्जर और सुरेश कुमार जी चौक से, शशि सिंह जी गोंडा से, सविता शास्त्री आपका भी स्वागत है। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, और इंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश। सो दोस्तों, हमारे पास में पहली फरमाइश है आशु मिश्रा जी के लखनऊ से। आशु मिश्रा जी को लखनऊ से सुनना है गाना, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले, और हमको किसी का डर नहीं, कोई जोर जवानी पर नहीं, धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और इस गाने को एंजॉय करने के बाद में मैं इस गाने को मैंने पहली बार कब सुना है उसके पीछे की एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगी। सो एंजॉय करते हैं मुकेश जी की, लता जी की आवाज़ में ये नगमा, और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले और सेज से कलियां चुन ना ले। हमने एंजॉय किया, ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले दोस्तों मैंने कहा था कि इस गाने से जुड़ी हुई एक स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगी। तो वो स्टोरी कुछ ऐसी है कि ये गाना मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार तभी सुना था जब मैं बहुत छोटी थी, जब शायद छोटे बच्चे पुराने गाने सुनते ही नहीं, ओल्ड इज गोल्ड का उनको सही से मतलब ही नहीं पता होता है। उस टाइम पे मेरे छोटे मौसा जी इस गाने को अपने उनके मतलब उनके घर में गई हुई थी समर वेकेशन में, तो वो इस गाने को गुनगुनाते थे, अक्सर गुनगुनाया करते थे और वो यही गाना गुनगुनाते थे जब भी गुनगुनाते थे। सो पहली बार मैंने उनको गाना गुनगुनाते हुए सुना था और पहली बार को गाना गुनगुनाते हुए यही गाना सुना था कि धीरे धीरे बोल कोई सुन ना ले। इस गाने को मैंने जैसे ही अपने घर आई हूँ तुरंत अपने मम्मा पापा के फोन में मैंने इस गाने को सर्च किया है, फिर इस गाने को अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर दिया है और बचपन से लेके अभी तक और शायद बचपन तक ये गाना हमेशा मेरी प्लेलिस्ट में ऐड रहेगा। सो ऐसे ही स्टोरीज होती हैं हर एक गाने के पीछे। सो आप लोग भी चाहें तो अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। निशा पटेल नगर गोंडा से आपका स्वागत है, अनिल वर्मा जी सादापुर से और आयुष तिवारी कोंडा से। स्टे ट्यून्ड, अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों अनुष्का किश्रावस्ती से। अनुष्का कुश्रावस्ती से सुनना है फूल और अंगारे नहीं, फूल और कांटे मूवी का गाना जिसे देख के दिल मेरा धड़के। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। हमारी अनुष्का की फरमाइश पर जो की है श्रावस्ती से। स्टे ट्यून्ड, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। धर्मेंद्र मोहन फ्रॉम आवास विकास गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

0: सो हमने एंजॉय किया है अनुष्का की फरमाइश पर ये वाला गाना और अनुष्का है श्रावस्ती से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले चांदनी आपका स्वागत है और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सोनू निगम और अलका याग्निक के गाने की हसीना मान जाएगी। 1999 में शायद ये मूवी रिलीज हुई थी, आई एम नॉट डैम श्योर, और इंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा इस मूवी का सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा जी की फरमाइश पर। व्हाट इज योर डायल नंबर, व्हाट इज मोबाइल नंबर, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही तगड़ी और बहुत ही कमाल की प्लेलिस्ट बनी हुई है। ऐसे ही प्लेलिस्ट बनाते रहिए और फिलहाल एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड।
1: हेलो 9821026212 BPL।
0: नो इट्स 6393316429 मींस 6393316429 बस यही नंबर डायल करना है और आपकी पसंदीदा गीतों को हम लोग के साथ में एंजॉय करना है। स्टे ट्यून्ड।

जी की फरमाइश पर हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा सोनू निगम अलका याग्निक की आवाज में। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो सबीहा फ्रॉम गोंडा, आपका स्वागत है। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मालवे नगर से राजेश सिंह जी की। मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है गाना मुझे रहना है तेरे दिल में। सो एंजॉय करते हैं आशा जी और किशोर कुमार की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा, नागेश्वर धाकड़, द ग्रेट सीन साहब, आप सभी का स्वागत है। आई नो आप लोग शो एंजॉय कर रहे हैं।

तो प्यार की बीन बजा दे, मैं तुझे डस लूंगी। अच्छा, डसने के लिए प्यार का बीन बजाना है। वैसे रियलिटी तो इन्होंने कह ही दिया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, चाहे जैसे सही कहा ना मैंने। सो हमने इंजॉय किया प्यार की जीत मूवी का ये वाला गाना मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। पढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले दोस्तों, उसके पहले क्या, उसके पहले दोस्तों कमल नयन जी का स्वागत करेंगे और विजयपाल यादव जी का ललुआ लखीमपुर की जी से कहना है कि विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए, विचार और जल हमेशा स्वच्छ होना चाहिए। दूषित जल स्वास्थ्य बिगाड़ देता है और दूषित विचार जीवन को, इसीलिए सोच समझ के डिसीजन लेना। एंजॉय करते हैं विजयपाल यादव जी की फरमाइश पर गाना दीवाना मूवी का, हम तो जाते अपने गांव। तो एंजॉय करेंगे ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा सिर्फ और सिर्फ हमारे विजयपाल जी की फरमाइश पर, जो कि है ललहुआ लखीमपुर खीरी से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अपनी राम राम राम सबको राम राम राम हमने एंजॉय किया। दीवाना गई ये गाना, ये रियलिटी बेस्ड गाना सिर्फ और सिर्फ विजय पाल यादव जी की फरमाइश पर, जो की है ललुआ लखीमपुर खीरी से। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है नव्या की। नव्या को सुनना है गाना मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। सो ऐसा ही होता है ना, जब कहीं से कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन हमने किसी न किसी से लगा रखी होती है, और वो एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं से ख़त्म होती नज़र आ रही होती है, या फिर कहीं हमने एफर्ट डाल रखा होता है और वो उधर से हमें एफर्ट मिलना कम हो जाता है, तो यही मन में चलता है ना यही वाला गाना कि कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे। मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। आए हाय, इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, जिस नगमे में दर्द होता है पता नहीं क्यों, वो नगमा मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, और मैं मज़े से इंजॉय करती हूँ। मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मुझे कहा जाए कि आपको कोई कॉन्सर्ट इंजॉय करना है और आपको डीजे बनना है, तो मैं डीजे बन के ये 90s के 20s के ऐसे ही गाने बजाऊं और सबका दिल भाई एकदम गदगद हो जाएगा। क्यों, सही कहा ना मैंने?

मेरे सनम शुक्रिया मेहरबानी करम। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में हमने इंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नव्या की फरमाइश पर। इंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश और नव्या का कहना ये आपके लिए है। अब उन्होंने क्यों ये कहा है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों आपकी आज सिंपल जब कुछ भी ऐसा देखती है ना तो बहुत दूर की सोचने लगती है। और इस गाने को मैंने इतने ध्यान से सुना है कि इस गाने को आज तक मैंने इतने ध्यान से कभी नहीं सुना होगा। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की और जुगल किशोर वर्मा जी को MP से सुनना है जुदाई मूवी का गाना। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा एक बार फिर से, लेकिन इस बार जग्गू दादा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

0: दोस्तों मार गई मुझे तेरी जुदाई, डस गई ये तन्हाई। किशोर कुमार आशा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है जुदाई का ये नगमा जग्गू दादा की फरमाइश पर, जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ बिना बिना बिना बिना किसी देरी के। और अगली फरमाइश हमारे पास में है बंटी गुर्जर की। बंटी गुर्जर को सुनना है गाना, अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं। सो एंजॉय करते हैं हम दोनों का ये गाना मोहम्मद रफी आशा जी की आवाज में। और इसी के साथ में मुकेश यादव का कहना है गोंडा से, मैंने कहा वो अजनबी है, दिल ने कहा दिल की लगी है। मैंने कहा वो सपना है, दिल ने कहा फिर भी तो अपना है। मैंने कहा वो दो पल की मुलाकात है, दिल ने कहा ये सदियों सदियों का साथ है। फिर मैंने कहा वो मेरी भूल है, दिल ने कहा फिर भी तो मुझे कबूल है। मैंने कहा वो मेरी हार है, और दिल ने कहा यही तो प्यार है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। Stay tuned. So, अभी ना जाओ छोड़कर, क्योंकि दिल अभी भरा नहीं।
1: छोड़कर
0: और जो दिल में होते हैं, जो जिनका दिल होता है, उनसे दिल

छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये नगमा बंटी गुर्जर की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों निशा की पटेल नगर गोंडा से, और निशा को पटेल नगर गोंडा से सुनना है गाना अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। सो एंजॉय करते हैं सोनू निगम की आवाज में बेवफा सनम का ये बहुत ही खूबसूरत सा बेवफाई वाला गाना हमारी निशा की फरमाइश पर जो की है पटेल नगर गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार नहीं लूट लिया घर यार का। हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, ये दर्द वाला नगमा, ये बेवफाई वाला नगमा, सिर्फ और सिर्फ निशा की फरमाइश पर, जो की है पटेल नगर गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन उसके पहले एक खास अनाउंसमेंट करना चाहूंगी दोस्तों कि इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग वापस आएंगे आपके अपने हमारे अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यहीं बने रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पर अपनी खट्टी मीठी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। मिलते हैं सीधे 9 बजे। अगर खाना पीना नहीं खा के रखा है तो खाना पीना खा के पेट पूजा करके आना, क्योंकि मेरे पिताजी का कहना है कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। सो दूजा काम हम बाद में करेंगे, मींस हम फिर से एंटरटेनमेंट की दुनिया में आएंगे और एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट ही पाएंगे। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा, मींस राजेश कुमार बेदर्दी की फरमाइश पर ये वाला नगमा, आ कहीं दूर चले जाएं हम। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज में 90s का सदाबहार गाना एंजॉय करेंगे हम राजेश कुमार बेदर्दी की फरमाइश पर, और फिर न्यूज की से रूबरू होने के बाद में 9 बजे मिलेंगे जरूर, क्योंकि प्लेलिस्ट अभी भी बहुत तगड़ी बची हुई है, बहुत ही कमाल के गाने अभी भी हमारे फरमाइशी की प्लेलिस्ट में एडेड है। स्टे ट्यून्ड, ऐसा ना हो कि मिस हो जाए।

0: सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार को मंजूरी दी। योजना पर 25,500 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। कहा, यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को बढ़ावा देती है। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित। यूसीसी लागू करने वाला 3रा राज्य बना। भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने आईएसएसएफ विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। और भारत 2027 एशियाई रिले और 2028 एशियाई इंडोर चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। अब समाचार विस्तार से। मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने आज सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण में सहयोग करेगी।
1: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जिस सरकारों के एजेंसीज राज्य में तो एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देश के प्रत्येक जरूरतमंद लोगों को समय पर अनाज पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में इस प्रणाली को और अधिक आधुनिक तथा प्रभावी बनाने का निर्णय लिया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सार्थक पीडीएस योजना के विस्तार की मंजूरी का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सरकार गरीबी उन्मूलन योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें प्रौद्योगिकी का समावेश कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एसआईआर प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के अंतर्गत एसआईआर करवाने की शक्ति रखता है। एक रिपोर्ट।
2: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में एसआईआर आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल अमान्य नहीं कहा जा सकता है क्योंकि ये नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारतीय जनता पार्टी ने एसआईआर को पूर्णतः संवैधानिक करार देने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस फैसले को कांग्रेस समेत विपक्ष की संवैधानिक पराजय बताया। दिल्ली में एसआईआर की प्रक्रिया 20 जून से शुरू होगी। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 5 अगस्त को और अंतिम मतदाता सूची इस वर्ष 7 अक्टूबर को प्रकाशित की जाएगी। श्री कुमार ने बताया कि बूथ स्तर के अधिकारी 30 जून से दिल्ली की मतदाता सूचियों के सत्यापन के लिए घर घर जाकर सर्वेक्षण करेंगे। असम विधानसभा ने आज समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया है। इसके साथ ही असम ऐसा कानून पारित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला और देश का 3रा राज्य बन गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस विधेयक को विधानसभा के पहले सत्र में सोमवार को पेश किया गया था।
3: असम में समान नागरिक संहिता विधेयक का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानूनी व्यवस्था स्थापित करना है। संवैधानिक संरक्षण और पारंपरिक रीति रिवाजों को सुरक्षित रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। वहीं विभिन्न धर्मों पर आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर समानता और लैंगिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक समान कानूनी ढांचा लागू करने का प्रावधान किया गया है। विवाह संबंधी प्रावधानों के तहत विधेयक में एक विवाह की व्यवस्था अनिवार्य की गई है तथा वर की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और वधु की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य विधानसभा में समान नागरिक संहिता पारित होने पर असम की जनता को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता भाजपा का स्थापना दिवस से ही संकल्प रहा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 से 3 दिनों तक मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में लू की स्थिति बनी रहेगी। विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में लू का रेड अलर्ट जारी किया। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी कल लू का प्रकोप बना रहेगा। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के कई भागों में भीषण गर्मी के और लू के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों के साथ मौजूदा लू की स्थिति पर चर्चा की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि उन विशेष कदमों पर चर्चा हुई जिन्हें प्रत्येक मंत्रालय और विभाग अपने अपने कार्य क्षेत्र में उठा सकते हैं।
4: प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट में मौसम की जो हीट वेव की परिस्थिति है उसका भी सभी मंत्रियों के साथ चर्चा की और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो राष्ट्र के प्रति आह्वान है उसी आह्वान के तहत सभी से अपने अपने मंत्रालय में सुविधा पहुंचाने की किस तरह की सुविधाएं की जा सकती है उसके ऊपर भी चर्चा हुई।
3: आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर विक्रम ने लोगों को लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखना और ORS जैसे इलेक्ट्रोलाइट युक्त तरल पदार्थों का सेवन करना और दिन के समय तपती धूप में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी। अनुपम मिश्र के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: उधर राजस्थान में भी राज्य के 5 जिलों में लू की चेतावनी जारी की गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: दिन और रात के बढ़ते तापमान से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में जनजीवन पर असर पड़ा है। दिन के समय गांवों और शहरों में सड़कों और बाजारों में लोगों की आवाजाही सीमित हो गई है। विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से गर्मी से निपटने के लिए कई स्तरों पर इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही विभिन्न संस्थाएं भी ठंडे पेय का वितरण कर लोगों को राहत पहुंचाने के जतन में जुटी है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने प्रदेशवासियों से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करने की भी अपील की है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
2: सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज सभी न्यायाधीशों से अपील की कि वे भीषण गर्मी को देखते हुए मामलों की सुनवाई ऑनलाइन करें। न्यायालय ने कहा कि वह इस संबंध में न्यायिक निर्देश जारी नहीं कर सकता। न्यायालय दिल्ली में बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए सभी अदालतों में ऑनलाइन कार्यवाही करने के निर्देश देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर सरकार द्वारा पूर्व प्रभावी 28% GST को बरकरार रखते हुए इसे वैध बताया है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म केवल मध्यस्थ नहीं है बल्कि उन्हें आपूर्तिकर्ता माना जाना चाहिए और उन पर वस्तु तथा सेवा कर GST लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए कम से कम 2 भारतीय भाषाओं सहित 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने संबंधी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करेगा। शीर्ष न्यायालय ने केंद्र सरकार, बोर्ड और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG पेपर लीक मामले में आज 3 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें महाराष्ट्र के लातूर का एक डॉक्टर और पुणे स्थित कोचिंग संस्थान का एक शिक्षक शामिल है। जांच एजेंसी ने पुणे के ही एक अन्य कोचिंग संस्थान के भौतिक विज्ञान शिक्षक को भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में अब तक कुल 13 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। संघ लोक सेवा आयोग ने पहली बार सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 की अनंतिम उत्तर कुंजी जारी की है। आयोग ने कहा कि परीक्षा में शामिल हुए उम्मीदवार 31 मई शाम 6 बजे तक upsconline.nic.in पर उपलब्ध प्रश्न पत्र आपत्ति पोर्टल के माध्यम से अपनी आपत्तियां प्रस्तुत कर सकते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2026 के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने नामांकन आमंत्रित किए हैं। नामांकन राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल www.awards.gov.in के माध्यम से 5 जुलाई तक भेजे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि देश की उन्नति के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास बेहद आवश्यक है। आज गंगटोक में सिक्किम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने शिक्षा को सशक्तिकरण का मार्ग बताया और विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने विचारों, नवाचारों और आपसी विश्वास के जरिए राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। और खेलों में म्यूनिक में ISSF निशानेबाजी विश्व कप में ईशा सिंह ने महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 43 हिट लगाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने जूनियर और सीनियर दोनों वर्ग में विश्व रिकॉर्ड कायम किया। फाइनल में ईशा ने पूर्व विश्व चैंपियन मिरोस्लावा मिंचेवा और कोरिया की शीर्ष खिलाड़ी जीन यांग को हराकर पहला स्थान हासिल किया। डेरिन वेनेकैंप दूसरे और मिरोस्लावा मिंचेवा तीसरे स्थान पर रहीं। उधर न्यू चंडीगढ़ में IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 4 विकेट पर 211 रन बना लिए हैं। वैभव सूर्यवंशी ने 97 रन की पारी खेली। भारत ने एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 और एशियन रिले 2028 की मेजबानी के अधिकार हासिल कर लिए हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष आदिल सुमरेवाला ने आज इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि एशियन इंडोर चैंपियनशिप 2027 का आयोजन भुवनेश्वर में जबकि चंडीगढ़ एशियन रिले 2028 की मेजबानी करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए सार्थक PDS योजना के विस्तार को मंजूरी दी। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2-3 दिन तक भीषण लू की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ते तापमान के मद्देनजर जरूरतमंद और संवेदनशील वर्ग के लोगों का ध्यान रखने का आह्वान किया। सर्वोच्च न्यायालय ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के निर्वाचन आयोग के निर्णय को बरकरार रखा। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित, UCC लागू करने वाला तीसरा राज्य बना। और भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

सो एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। हमने एंजॉय किया है बर्बाद सैयारा मूवी का गाना जुबिन नौटियाल की आवाज़ में, और ये फरमाइश थी आयुष तिवारी की गोंडा से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है शशि सिंह जी की, और शशि सिंह जी को सुनना है गाना तू कहाँ गई थी। सो एंजॉय करेंगे किशोर कुमार जी की आवाज़ में और लता मंगेशकर जी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत सा ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा हमारी शशि जी की फरमाइश पर।

तू कहाँ गई थी तेरा मर जाए सांवरिया, हमने एंजॉय किया ये गाना शशि सिंह की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। हरीश चंद सविता जी आपका स्वागत है, सचिन शुक्ला स्टे ट्यून्ड वेलकम इन योर शो, और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से। धर्मेंद्र मोहन को आवाज विकास गोंडा से सुनना है अगम कुमार निगम का गाना, सो एंजॉय करते हैं ये फरमाइश। स्टे ट्यून्ड।

हमसे तो कहीं अच्छी तस्वीर तुम्हारी है। धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर हमने इंजॉय किया है ये वाला गाना, और वो है आवाज विकास गोंडा से। इतना ही नहीं, उन्हें कुछ कहा भी है धर्मेंद्र मोहन जी का। आवाज विकास गोंडा से कहना है कि कभी प्यार करने का दिल करे तो अपने गमों से प्यार कर लेना। सुना है जिसे जितना प्यार करो वो उतना दूर चला जाता है। सो ये कहना है धर्मेंद्र मोहन का। एंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अनिल वर्मा जी को सैदापुर से सुनना है गाना दीवानों से ये मत पूछो। सो एंजॉय करते हैं उपकार का ये गाना हमारे अनिल वर्मा जी की फरमाइश पर, जो की है सैदापुर से। स्टे ट्यून्ड।

0: ओहो ये पीने वाले क्या जाने मेहमानों पे क्या गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में चांदनी की। चांदनी को सुनना है गाना, ना तू चाहिए ना प्यार तेरा जो बदल गया है यार तेरा। अच्छा जी, सो यार सबके बदल जाते हैं एक समय के बाद में, समय समय की बात होती है दोस्तों, वक्त वक्त की बात है। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना चांदनी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: Happy birthday.

हैप्पी बर्थडे। सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे फिर से अपना लो प्लीज। सॉरी, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। सॉरी।

तो चाहिए ना प्यार तेरा, जस संभल गया है यार तेरा, वही तो ना। लोग बाद में पछताते हैं लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि अब पछताए हो कहा जब चिड़िया चुग गई खेत। जब इंसान ने दर्द झेल ही लिया है, उस दर्द को झेलने के बाद में वो सर्वाइव कर चुका है, सर्वाइव करने के बाद में निकल चुका है, मूव ऑन कर चुका है, नाउ व्हाई द हेल आर यू हियर, है ना, यही वाला क्वेश्चन आ जाता है कि अब क्यों आए हो, अब क्या करना है, अब तो हमने रास्ता बदल दिया है, अकेले चलना हमारे लिए सबसे अच्छा है, या फिर हमारे लिए हमारे हिसाब से जो अच्छा मिलेगा हम उसके साथ चल लेंगे, लेकिन अब आपके साथ तो नहीं चलेंगे, है ना। सो हमने एंजॉय किया चांदनी की फरमाइश पे, ये गाना बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है कमल नयन की, और कमल नयन को सुनना है गाना बेटा।

नजर के सामने जिगर के पास, कमल नयन की थी ये फरमाइश। बढ़ते हैं अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुकेश यादव की गोंडा से, और मुकेश यादव को गोंडा से सुनना है गाना कॉलर ट्यून बेबी कॉलर ट्यून बेबी। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना मुकेश यादव की फरमाइश पर जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एंड रॉक द फ्लोर एवरीवन।

हमने कॉलर ट्यून बना लिया है, हम एंजॉय करेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सबीहा की, और सबीहा को सुनना है गाना बारिश आई है। सो एंजॉय करते हैं ये वाला नगमा सबीहा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया है ये गाना सभी है की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है कैफ मोबाइल वाले की गोंडा से। एंजॉय करेंगे कैफ मोबाइल वाले की फरमाइश। और इसी के साथ मैं आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा दोस्तों। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए। और आप सभी की तरफ से बेइंतहा बेइंतहा बेतहाशा प्यार आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं कल, इंजॉय करते हैं ये वाला गाना कैफ मोबाइल वाले की फरमाइश जो की है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में, सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा, जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन। और जेंट्स के लिए, जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
6: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
5: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
12: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें आप। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो 9.6 FM, यह गुना शहर की धड़कन, और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ। और कार्यक्रम चल रहा है बहारे गज़ल, और आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और ख़ास। जी हाँ, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं भाई, इतने सिंह जी, और देखते हैं भाई पहले फ़ोन में पड़ चुका, देखते हैं कौन हमारे साथ।
1: हेलो
0: हेलो हेलो
1: सर, नमस्ते
0: जी। नमस्कार,
1: क्या हाल चाल है सर?
0: आपका आशीर्वाद।
1: जी हाँ, आशीर्वाद।
0: जी जी
1: जी, और सब बढ़िया?
0: जी जी बढ़िया। अब बताइए, अब आप क्या सुनाएंगी?
1: आप पहले बताएं कि आप मुझे पहचाना या नहीं।
0: जी,
1: आपने मुझे पहचाना या नहीं?
0: अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दीपांशी जी हैं आप?
1: जी नहीं, मैं दीपांशी जी नहीं हूँ।
0: तब तो मुश्किलों के बचने में काव्या जी हैं आप?
1: जी बिल्कुल नहीं।
0: तब तो भाई बड़ी मुश्किल है।
1: सर मैंने काफी दिन बाद फोन किया, मैं माँ ही बोल रही हूँ।
0: हो क्या बात है, मतलब मुद्दतों बीत गई।
1: यस सर।
0: जी कैसी हैं आप?
1: सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर आप कैसे हैं?
0: बढ़िया, आपका आशीर्वाद।
1: सर हमारा आशीर्वाद सर बड़ों का आशीर्वाद होता है।
0: छोटों की शुभकामनाएं होती हैं और आपकी शुभकामनाएं मेरे साथ हैं, हमको ऐसा लगता है।
1: जी सर।
0: जी
1: तो वही मेरा पुराना कविता वगैरह।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
1: जी तो सुनाती हूँ।
0: जी सुनाइए।
1: आज की कविता है हमारी, रुकते तो बिछड़ जाते, चलते तो बिखर जाते। शुरुआत करते हैं सर।
0: जी।
1: आगे सफर था पीछे हम सफर, आगे सफर था पीछे हम सफर था, रुकते तो छूट जाता, चलते तो हम सफर छोड़ जाता। मंजिल की भी हसरत थी कि मंजिल की भी हसरत थी, हमें उनसे बे इंतहा मोहब्बत भी थी कि हमें उनसे बे इंतहा मोहब्बत भी थी। ऐ दिल अब तू ही बता कि ऐ दिल अब तू ही बता, उस वक्त मैं कहाँ था। मुकद्दर का सफर भी था और बरसों का हम सफर भी था।
0: क्या बात है।
1: मुकद्दर का सफर था और बरसों का हम सफर भी था, रुकते तो बिछड़ जाते, चलते तो बिछड़ जाते, रुकते तो बिछड़ जाते, चलते तो बिखर जाते। थैंक यू सर।
0: क्या बात है क्या बात है, मतलब हर मोड़ पे बिखरना जरूरी था।
1: यस सर।
0: क्या बात है भाई, इतने दिन बाद आप फोन करेंगे तो हम कैसे पहचान पाएंगे आपको, जरा मिलती रहिए कीजिए आप लगातार।
1: जी सर बिल्कुल। सर एक और है, सुना लूं?
0: जी जी
1: चलिए। तुम इच्छ तो करो मैं निभा ना पाऊँ तो कहना। तुम इच्छ तो करो मैं निभा ना पाऊँ तो कहना, मंजिल तक चलूंगी बीच में छोड़ जाऊँ तो कहना। खुद से ज्यादा तुम पे भरोसा है करती हूँ कि खुद से ज्यादा तुम पर भरोसा करती हूँ, धोखा दे जाऊँ तो कहना। बदले में बस इतना सा तुमसे चाहती हूँ कि बदले में बस इतना सा तुमसे चाहती हूँ, मैं तुम्हारे लिए वफादार हूँ, तुम भी मेरे लिए वफादार रहना।
0: क्या बात है क्या बात है क्या बात है भाई, बहुत शानदार बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर।
0: क्या बात है, वफादार रहना, और इस बात को उम्मीद करते हैं हम कि वो फरार रहेंगे आपके साथ।
1: जी सर।
0: अच्छा, बहुत बहुत प्रणाम आपको।
1: ठीक सर, नमस्ते सर।
0: जी नमस्कार। जी हाँ, मैं उपस्थित भाई सविता शास्त्री जी भी, नमस्कार, शुभ संध्या जी, आपको शुभ संध्या, और देखते हैं कौन मेरे साथ फिर आए अगला फोन। हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो
2: कोई कहा
0: यह लगता है कि आपसी संबंधों में कुछ विवाद चल रहा है। जी हाँ, मेरे साथ मुकेश साधु जी उपस्थित हैं। वेलकम डियर सर, आपको भी भाई शुभ संध्या, आपको भी। और शास्त्री जी मुझे गुड इवनिंग। आहा, क्या बात है रोमांटिक कुमार जी, हमारे गोरखपुर से। कभी कभी ये दर्द कुमार भी बन जाते हैं। हालांकि धर्मेंद्र मोहन जी उपस्थित हैं। नमस्कार जी, क्या बात है, क्या बात है। मेरे दिल की चॉइस सुनकर खुश दिल कितना। आहा, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जी हाँ, आपको भी। आपका आगाज शामे बरकत है, अंजाम की बुलंदी आपकी फितरत है। शुभ संध्या दे चरण स्पर्श। अरे ऐसा मत कहिए, बस आपका आशीर्वाद है। और मुकेश लिनका भाई जी, वाह वेरी नाइस, बहुत ही शुभ शुरुआत कर दी है आपने। अब देखते हैं भाई, शुरुआत हो चुकी है, अब देखते हैं जी अब क्या होता है आगे।
2: हेलो
0: हेलो,
2: हाँ नमस्कार।
0: अरे दादा प्रणाम, मैं गलत नहीं हूँ?
2: मैं बिल्कुल सही है सर। आप कहाँ कभी गलत होते हैं?
0: नहीं नहीं, मैं हो भी सकता हूँ भाई।
2: नहीं नहीं, आप कभी गलत नहीं
0: होते। अरे ऐसा न कहें आप, बस आपका आशीर्वाद मिला रहे मेरे सर पर।
2: वो तो हमेशा रहेगा
0: जी। तो आज हम क्या सुनने वाले हैं आपसे?
2: बस पगला कहीं का एक।
0: हाँ, तुम मुझे यूँ भुला न पाओगी।
2: लेकिन थोड़ा गला सही है, नहीं फिर भी
0: गला सही हो या ना हो, लेकिन गली सही होनी चाहिए और वो सही है।
2: नहीं, मैं बोला
0: जी दादा बिल्कुल।
2: तो मैं शुरू करूं?
0: निसंदेह दादा, निसंदेह।
2: तुम मुझे जो भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे जो भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे संग संग तुम बेगुनगुनाओगे, तुम मुझे जो भुला न पाओगे, तुम मुझे जो

की बातें उन नजारों के याद आओगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे।

संग संग तुम बेगुन गुनाओगे, तुम मुझे यूं

किस

बेदार मुझे झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाऊँ।

0: सामने आज उपस्थित हुआ है।
1: पगला ही था।
0: हाँ हाँ, तो ये गीत कोई पागल ही गा सकता है, हम भी पागल आप भी पागल। वास्तव में बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार।
1: धन्यवाद सर,
0: बहुत शानदार, बहुत शानदार।
1: थैंक यू सर।
0: मतलब वो भी है जिनकी हमको प्रतीक्षा है?
1: वो है
0: जी। हाँ, तो हम उनको सुन ले।
1: हाँ तो अभी पूछ ही लेते हैं।
0: जी पूछ लीजिए। जी
1: वो अभी गाएंगे तो थोड़ी देर में अपने भगवान से गाएंगे।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, ये बात है, ये बात है।
1: जी जी
0: भाई, उनकी आराधना के बिना हमारी साधना सफल नहीं हो सकती। और श्री
1: जी, मेरी साधना जल्दी जल्दी ही समाप्त होने वाली है।
0: जी
1: मैंने जो आपसे वादा किया है वो पूर्ण होने वाला।
0: बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, हम इंतजार में हैं।
1: बहुत जल्दी मेरे। हाँ बस बस, बहुत जल्दी। बोलेंगे नहीं?
0: हाँ न बोलिए, नजर लग जाती है।
1: नजर लग जाती है।
0: ठीक है,
1: स्पर्श
0: स्पर्श
1: रहिए।
0: जी हाँ भाई, तो श्री तेजनाथ शुक्ल ने बता दिया है, शानदार जानदार सिंगिंग, क्या बात है भाई। पगला कहीं का ये गीत तुम मुझे यूँ भुला ना पाओगे। जी हाँ, देखते हैं कौन मेरे साथ।
2: हेलो।
0: हेलो
2: नमस्कार, कैसे हैं आप?
0: जी नमस्कार, बहुत अच्छा हूँ मैं आपके आशीर्वाद से। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे हम।
2: कई बार आपने मेरा शुभ नाम पूछा है, रविंदर सिंह।
0: हाँ मुझे एहसास था, लेकिन हमने कहा एक बार कंफर्म कर ले कोतवाली के सामने।
2: अच्छा, आप शुभ नाम अपने लिए पूछते हैं या लोगों को सुनाने के लिए?
0: जी लोगों को सुनाने के लिए, ताकि लोग ये जान पाए कि आपको कौन सुन रहा है। हमको तो
2: ठीक है, मुझे पता था कि आप पहचान गए होंगे।
0: जी हाँ, आपकी आवाज मेरे दिल में छपी हुई है, हम आवाज पहचान लेते हैं।
2: यदि मैं कुछ सुनाऊंगा।
0: जी जी सुनाइए आप।
2: समय को बर्बाद न करते हुए।
0: जी,
2: यह ठीक हुआ हम मिल न सके, मिलना साधारण हो जाता। हर दूजी प्रेम कहानी सा अपना भी जीवन हो जाता। बेहद साधारण होता है संयोग मिलन जीना मरना। न पीर सही न प्रेम किया, ऐसे जीवन का क्या करना।
0: क्या क्या कहा, क्या कहा है आपने?
2: कितना टूटे उतना मीठा, गाता है गीत हृदय जग में। कैसे यह प्रेम समर्पण के मानक से आगे बढ़ पाता। जिसको तीर्थ माना है यदि वो घर का आंगन हो जाता।
0: क्या बात है?
2: एक दूजे को पाकर कोई कब कहता है इकरार हुआ। हम तुमसे दूर हुए जब से कुछ ज्यादा तुमसे प्यार हुआ।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: एक दूजे को पा लेते तो हम इतने खास नहीं होते। एक दूजे के संग होते तो हम इतने पास नहीं होते। तस्वीरों का फिर क्या होता, क्या होता सूखे फूलों का। एक दूजे की यादों के दिन कितना खाली मन हो जाता।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: आगे कुछ लाइन और है।
0: जी
2: चल, एक अधूरे किस्से को मन चाहा अंत लिखे दोनों। जैसे चाहा एक दूजे को वैसे ही रोज दिखे दोनों। एक दूजे के सपनों में रहने का हमको अधिकार रहे। एक दूजे के हो हम दोनों का संसार रहे। अब आधी प्रेम कहानी में कस्तूरी बनकर महकेंगे। हम दोनों का संयोग महज

0: भूख का बंधन हो जाता है।
1: क्या क्या बात है, क्या बात है, क्या पंक्ति आपने सुनाई, मतलब वास्तव में दिल को छू लेने वाली पंक्ति है।
0: क्या वफा जिनसे की बेवफा हो गए, वो वादे मोहब्बत के क्या हो गए। वफा जिनसे की, अच्छा मैं एक कहानी सुनाऊंगा, उस जमाने की कहानी सुनाऊंगा जब वो ऑडियो कैसेट बिकते थे मार्केट में।
1: जी जी, मैंने खरीदा।
0: मैं गया एक ऑडियो कैसेट लेकर आया, रफी का गाना, और जब ऑडियो टेप में हमने लगाया तो जो मेरा डेक था, जो उसमें साउंड स्पीकर जिसमें लगे हुए थे, गाना शुरू हुआ, हलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए। तो मुझे लगा मेरा साउंड खराब है क्या। फिर जब कैसे निकाल के देखा तो उसमें लिखा था सिंगर बाई सोनू निगम।
1: हाय हाय हाय, क्या बात है।
0: फिर मैं फिर गया मार्केट और कैसे लिखा आया एचएमवी के यादों में मोहम्मद रफी के आवाज में।
1: जी।
0: और जब फिर से लगाया तब फिर जब उन्होंने ऐसा सुनाई पड़ा, फलक पे जितने सितारे हैं वो भी फरमाए, तब लगा मेरा साउंड सही था पर गाना गलत लेकर आया था।
1: सिंगर नहीं सही थे
0: तो मोहम्मद रफी की आवाज है
1: जी, बिल्कुल। फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे।
0: फलक पे जितने सितारे हैं वो भी शर्माए, और देने वाले मुझे इतनी जिंदगी दे दे, यही सजा है मेरी मौत ही न आए मुझे, किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे। बेटे बेकली उर्दू शब्द है, समझने वाले समझ गए होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे इतना उलझन दे दे, इतना वो जिंदगी पूरा मायूस कर दे,
1: गम उठाने के लिए मैं तुझे जाऊंगा।
0: किसी को चैन मिले मुझको बेकली दे दे। फिर उसके बाद जब लाइन शुरू होता है,
1: गम
0: उठाने के लिए मैं तो जिए जाऊंगा। खैर मैं उस तरह से गा नहीं पाऊंगा तो रहने दीजिए।
1: नहीं,
0: लेकिन गाना वाते ही
1: बहुत
0: छू जाता है।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा गीत।
0: हाय तूने मुझे उल्फत के सिवा कुछ न दिया, और मैंने तुझे नफरत के सिवा कुछ न दिया, तुझसे शर्मिंदा हूँ ऐ मेरी वफा की देवी, तेरा मुजरिम हूँ मुसीबत के सिवा कुछ न दिया। अच्छा वो उठाने और गिराने का जो कला था रफी के गानों में,
1: मेरे हुजूर का ये बहुत ही खूबसूरत गीत है, जावेद अख्तर जावेद, मतलब उसमें नाम था उनका जितेंद्र का, उन्होंने कहा था।
0: अच्छा, मोहम्मद रफी का एक कहानी मैं सुनाऊंगा, वो आखिरी समय में कुछ लाइनें गाए और गाने के बाद वो जाने लगे।
1: जी।
0: फिर उनके अंदर ये ख्याल आया क्यों ना गाना मैं पूरा कर दूं।
1: जी।
0: और वो फिर जाके स्टूडियो चले गए कि पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा है घर जाने का, मैं गाना पूरा गाके जाऊंगा। और फिर से ऑडियो रिकॉर्ड हुआ, गाना उन्होंने पूरा गाया, उसके बाद उसी रात मोहम्मद रफी का स्वर्गवास हुआ था।
1: क्या बात है। वो गीत कौन सा था?
0: वो गीत तो मुझे याद नहीं, लेकिन वो आखिरी गीत था उनका, और मैं याद नहीं तो मैं हवा में नहीं बात करूंगा, लेकिन ऐसा कुछ कहानी था।
1: क्या बात बताई आपने, क्या बात है। रफी रफी रफी को छू पाना किसी के बस की बात नहीं।
0: अरे क्या क्या लाइन है उनका, भदंत सितारे लपेटे हुए ओ जान तमन्ना कहाँ जा रही।
1: जी हाँ बिल्कुल, क्या बात है भाई, रवि सिंह जी का फोन अचानक कट गया, हम सुन नहीं पाए और देखते हैं कौन वैसा। हेलो,
0: हाँ नमस्कार।
1: अरे क्या बात है भाई, आप आए हो, नेहा जी भी आई। नमस्कार मनु सर, गुड इवनिंग, कैसे हैं?
0: समझा शायद भाई, ठीक है, फर्स्ट क्लास। ट्रैफिक की बात चल रही थी, चलो भाई।
1: जी जी जी जी,
0: बहुत सही था वो फिल्म, आस पास था धर्मेंद्र हेमा मालिनी की। हाँ आस पास था वो गीत ने, बस दो लाइन कहा था उन्होंने बस।
1: क्या
0: दो लाइन कहा था मनु ने पिक्चर के गानों में?
1: हाँ?
0: जी, बगैर जिंदगी उदास है दूर, लगता है फिर भी तू आस पास, बस इतना ही कहके फिर वो।
1: क्या बात है।
0: हाँ रफी साहब, चलो फिर बिना देरी किए, ये तो साथ जैसे रफी साहब का।
1: जी
0: मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तुझे दिल के आईने में मैंने बार बार देखा, तेरी आँखों में देखा तो छलकता प्यार देखा, तेरा तीर मैंने देखा तो जिगर के पार देखा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरा रंग है सलोना, तेरे अंग में लचक है, तेरी बात में है जादू, तेरे बोल में खनक है, तेरी हद अदा मोहब्बत तू जमीन की धनक है, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, मेरा दिल लुभा रहा है तेरा रूप सादा सादा, ये झुकी निगाहें कर प्यार दिल में ज्यादा, मैं तुझी पे जान दूंगा है यही मेरा इरादा, मैं कहीं कभी न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कभी न बन जाऊं। धन्यवाद।
1: क्या क्या बात है भाई। और नव्या दादी ने आपको कहा है गुड, दादाजी मतलब दादी जी आपके सामने हैं और दादाजी को बहुत बहुत स्टार दे दिए हैं, क्या बात है भाई। अच्छा भाई सुरेश कुमार जी, अगर मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, अगर आपको अपने दौर में ये गाना गाना होता तो आप किसके लिए गाते?
2: हाँ बस उसी के लिए गाता जिसको ये दिल चाहता।
1: अच्छा अच्छा, मतलब नाम नहीं आया पर। मतलब बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं आप, मतलब आपको कोई हरा नहीं सकता, ये बात मैंने मान लिया। क्या बात है,
2: पहले बताओ
1: जी,
2: मतलब कोई गलत लाइन तो नहीं था?
1: अरे नव्या दादी ने लिखा है गुड दादा जी।
2: अरे वाह,
1: मतलब एक दादी है और एक दादा है।
2: वाह,
1: उन्होंने कहा हमको मौका दीजिए और हम चाहते हैं कि नव्या दादी जी भी सुनाए।
2: अच्छा अच्छा,
1: बहुत प्यारी पंक्तियाँ, बहुत प्यारी पंक्तियाँ, और हम नव्या जी का इंतजार कर रहे हैं।
2: अच्छा अच्छा ठीक ठीक भैया, चलो भगवान का सके भैया, आपको बहुत बहुत
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हेलो
3: हेलो,
1: अच्छा स्पर्श
3: जी कैसे हैं?
1: अरे बस जैसा आप रख लीजिए,
3: हम तो आपको हमेशा अच्छा ही चाहेंगे सर।
1: बस बस तो बस, अगर बड़ी बहन का आशीर्वाद है छोटा भाई हमेशा खुशी रहेगा।
3: बहन कभी चाहती ही नहीं ना कि भाई दुखी हो।
1: बस वही तो बात है, आपकी रक्षाबंधन का इंतजार है हमको।
3: बात क्या सुनेंगे आप बताइए?
1: जो आप सुना दीजिए। वैसे मैंने आपकी भाभी जी से कहा था कि अनुराधा पौडवाल का कोई भी गीत सुना दीजिएगा, अब आपकी इच्छा आगे।
3: तो भाभी जी से कहा था तो ननद जी कैसे सुना दें?
1: वही तो बात है, वही तो बात है, वही तो बात है, मतलब संदेश आप पहुंचा सकती हैं उन तक।
3: हाँ
1: वैसे आप कुछ भी गाएंगे तो बहुत शानदार लगेगा, मैं जानता हूँ।
3: आज मेरे पिटारे में दो गाने हैं और दोनों अलग फ्लेवर के हैं। पहले मैं आपको रंगीला पिक्चर का गाना सुनाती हूँ, रंगीला उर्मिला मातोंडकर वाला।
1: ओहो क्या बात है। हाँ
3: ठीक है
1: जी,
3: दोनों का रस अलग है
1: जी,
3: कोशिश करते हैं आपको सुनाने की।
1: अरे आपकी कोशिश हमेशा कामयाब रहती है।
3: हाय राम ये क्या हुआ, यूं कैसे हमें सताने लगे तुमने।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या नया फ्लेवर भी आपके आपके पास ही तो हमने आज जाना।
0: हाँ सर,
1: क्या
0: थोड़ा
1: बात, मतलब आप सतरंगी दुनिया से हैं, मतलब कोई भी रंग आपसे छूटा
0: बहुत
1: नहीं है।
0: आप लेकिन पकड़ नहीं पाए सर। तो
1: हम पकड़ पाए, क्यों नहीं पकड़ पाए,
0: बताइए क्या पकड़ पाए हैं।
1: क्या बताएंगे, मतलब आप तो कुछ भी सुना लेंगे तो हमको तो अच्छा ही लगेगा।
0: मेरे ना मेरे साथ मेरी बिटिया भी गा रही थी।
1: हाँ मतलब मुझे लगा कि हाँ दो लोग कोई हैं, लेकिन वो इतना अच्छा गा रही थी कि लगा ही नहीं कि दो गा रहे थे, लगा कि एक ही
0: तो
1: गा रहे।
0: ऐसे है।
1: हाँ मतलब बहुत सोचती है, और जब एक और एक मिलकर एक हो जाए तो ये प्रेम का प्रेम की पराकाष्ठा होती है। तो आपने उस
0: जी
1: पराकाष्ठा पर को पार किया और आपकी बच्ची ने भी पराकाष्ठा को पार किया।
0: चलिए सर, हम आपका थोड़ा फ्लेवर चेंज कर देते हैं, गाना बहुत पुराना।
1: हाँ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात
0: है। तिरंगी नारी
1: है।

0: थैंक यू सर।
1: क्या बात है, वो चार पंक्ति हमारे कहने पर नाम गुम जाएगा,
0: नाम गुम जाएगा,
1: मेरी आवाज पहचाने गया।
0: एक सेकंड
1: सर, गला चौक हो गया है। जी जी, हम दो सेकंड तक
0: कौन सा बोले सर, नाम गुम जाएगा?
1: हाँ, अरे आपकी आवाज वही है ना,
0: तो
1: हम तो चाहते हैं कि अगर हम बेटी हो तो आपकी आवाज पाए।
0: तो दो लाइन सर।
1: हाँ हाँ, बस बस, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही पहचान है गलियां से, बस इतना ही।

0: क्या बात है, मुझे जितनी उम्मीद थी उससे भरकर निकली आप। और भाई साहब ने तारीफ कर दी है, बहुत बेहतरीन गाया शिल्पी, मतलब हमने वो कह रहे हैं। और नव्या लिखते हैं वाह वाह वाह वाह वाह, मतलब वाह के लोग कुछ ही नहीं, मेरी आवाज ही पहचान है। क्या बात है, हाउ फिटिंग फॉर शिल्पी दीदी, भाई क्या बात है। और मुकेश जी शिल्पी जी वेरी नाइस, और कमल लाइन भी लिखते हैं, देखे जो पंक्ति हम आपने हमने आपके लिए चुन ली वो एकदम सटीक बैठती है आपके ऊपर।
1: कौन सी पंक्ति सर?
0: यही मेरी आवाज ही पहचान है गरिया।
1: अरे ये तो लता जी का बहुत खूबसूरत गाना है, और वाकई उनकी आवाज के लिए ये है,
0: और उसी प्रकार से आपकी आवाज के लिए भी ये है। हमने तो आपको गुंडा की लता मंगेशकर मान लिया है।
1: अरे सर बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है,
0: बहुत छोटी बात है, गुंडा बहुत छोटा सा है।
1: ठीक ठीक ओके सर
0: ओके। अच्छा अच्छा स्पर्श आपको जी हाँ, देखते हैं भाई अगले कौन है मेरे साथ। पंचमन जी नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, और देखते हैं कौन मेरे साथ। हेलो
2: हेलो
0: हेलो,
2: हाँ सर नमस्ते।
0: हमारे बहुत ही जानकार और प्यारे श्रोता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो श्री राजेश कुमार सिंह जी हैं आप।
2: 100%
0: मतलब ये बताइए, इतना भी क्या शर्माना कि इतने महीनों बाद आपसे बात कर रहे हैं।
2: फोन नहीं मिला है, थोड़ा बिजी थे।
0: नहीं क्यों नहीं मिला है?
2: नहीं मिला सर, अगर काम था, बाहर थे।
0: अरे बाहर थे तो मतलब जहनों में दीवार ना हो तो मिलना कोई दुश्वार नहीं है। तू भी कुछ ऐसे दूर नहीं है, मैं भी समंदर पार नहीं हूँ, तो मतलब सात समंदर पार तो नहीं रहोगे आप, और सात समंदर पार भी होते तो ये नंबर लगता।
2: जी जी जी वो तो है।
0: तो मतलब आप कहाँ थे और कहाँ व्यस्त थे?
2: जी सर
0: आप कहाँ थे और कहाँ व्यस्त थे?
2: हम सब बाहर थे।
0: ठीक है, अब आप गोंडा में हैं?
2: हाँ जी
0: जी। तो हम आप आज आपसे भी कुछ सुनेंगे, और अपनी गुरु माता यानी आपकी धर्म पत्नी से भी कुछ सुनेंगे।
2: नहीं सर।
0: अच्छा मतलब संभव नहीं है।
2: अगर सुरेश जी को सर नमस्ते कहिएगा।
0: जी जी जी हम उनको कह दिया नमस्ते।
2: हाँ तो वो जो वो उस पर किए थे चर्चा वो रफी साहब पे।
0: जी
2: तो वो धर्मेंद्र की मूवी आई थी 1980 में।
0: जी
2: और रफी साहब का वो लास्ट गाना था जो है 31 जुलाई 1980 को ये रिकॉर्डिंग हुई थी। तो वो गाना उसमें कुछ ऐसे अंतरा है कि तेरे जाने की खुशी दिल क्यों दास है दोस्त, महकी महकी फिजाए कहती है के तू कहीं आस पास है दोस्त। यही लास्ट अंतरा था सर। और फिर जो है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इसके संगीत थे, गीत थे आनंद बख्शी के। तो लक्ष्मी प्यारे से कहा कि अब मैं क्या घर चलूं, तो फिर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कहा जी सर, वो घर आए और उसी दिन रात में 10:35 पे दिल का दौरा पड़ा था और उनकी डेथ हो गई थी। और ये देखिए सौभाग्य धर्म जी का जो पहला मूवी आई थी दिल भी तेरा हम भी तेरे 60 के दशक की मूवी थी ब्लैक एंड व्हाइट।
0: जी
2: तो वो उसमें भी पहला गाना रफी साहब ने ही गाया था।
0: वो कौन
2: और लास्ट गाना भी रफी साहब ने ही गाया था। एक बार धर्मेंद्र साहब ने इंटरव्यू में बोला था।
0: क्या जानकारी है आपकी।
2: और तो धर्मेंद्र साहब की वो जो हम दिल भी तेरा हम भी तेरे जो गाना है उसमें ये आप गाना सुने होंगे, यही है तमन्ना तेरे घर के सामने मेरी जान जाए, मेरी जान जाए आए, यही है तमन्ना। ये गाना था।
0: क्या बात है, मतलब उनकी शुरुआत धर्मेंद्र जी से भी हुई और अंत भी धर्मेंद्र जी पर हुआ,
2: और लास्ट गाना भी रफी साहब ने धर्मेंद्र जी के ही लिए गाया था। वैसे ज्यादातर गाने धर्मेंद्र जी पे हैं, उन्होंने अधिक गाने गाए हैं।
0: नहीं, सबसे ज्यादा गीत तो उन्होंने शम्मी कपूर के लिए गाए हैं,
2: लेकिन सबसे अधिक गाने तो उन्होंने धर्मेंद्र जी पे गाए हैं।
0: नहीं नहीं नहीं, सबसे ज्यादा गीत उन्होंने शम्मी कपूर जी के लिए गाए हैं।
2: हम नहीं बताए तो थे कि हमारे रफी साहब ने ज्यादा गाने हमारे लिए ही गाए थे।
0: नहीं नहीं, शम्मी कपूर नंबर एक पर शम्मी कपूर है, नंबर दो पर राजेंद्र कुमार है।
2: शम्मी कपूर में तो जो है कल्याण जी, आनंद जी, ये सब थे। तुमसे अच्छा कौन है ये गाना है
0: जी,
2: जिसमें गाना है कभी हमने नहीं सोचा था ऐसा भी दिन आएगा, पत्थर पे आग लगेगी दिल भी पिघल जाएगा, देखो तुमसे अच्छा कौन है। ये भी एक गाना, बड़े गाने गाने की स्टाइल बड़ी अच्छी थी।
0: अच्छा, हम आपसे वो सुनना चाहेंगे, दीवाना हुआ बादल।
2: हाँ, वो तो गाना है।
0: हाँ, तो बच्चा सुना दीजिए आप।
2: लेकिन सगा और लोगों को भी मौका दीजिए, नहीं समय ज्यादा लेगा।
0: नहीं नहीं, ये चार लाइन आप सुना दीजिए, इसके बाद हम दूसरे को मौका दें।
2: दीवाना हुआ पागल। ये आशा भोसले जी और रफी साहब ने गाया था
0: जी। जी,
2: तो अगला अंतरा नहीं याद है।
0: ये देख के दिल झूमा, क्या बात है, हमारी आपकी जोड़ी बनी रहे राजेश जी। आधा आप गाते रहिए, आधा हम गाते रहे।
2: ठीक है सर, मिला लिया बिटिया आपकी, ठीक है
0: जी। जी जी, आपका आशीर्वाद है।
2: जी जी सर, चलिए ठीक है सर।
0: अच्छा,
2: बात करते जी सर।
0: जी, प्रणाम प्रणाम। जी हाँ भाई, देखते हैं कौन मैं साथ हो फिर भाई, देखते हैं। जी हाँ, ये कौन आ गया है, इसने दस्तक दी है। हेलो
3: हेलो
0: हेलो।
3: हाँ नमस्कार सर, मैं सविता गोरखपुर से बोल रही
0: हूँ। अरे चल स्पर्श
3: खुश रहिए, कब से लगा रही थी तो आप लोग बिजी थे, हालांकि बहुत अच्छा सभी लोग आए।
0: थोड़ा सा भाई बुधवार के दिन मैं माफी मांग लेता हूँ।
3: नहीं नहीं, माफी की बात नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बहुत लोग बहुत अच्छा अच्छा गाना गाए हैं।
0: क्षमा प्रार्थी हूँ मैं, थोड़ा सा लोग लाइन में लगे रहते हैं, हमको खुद भी नहीं।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं सर, ऐसा मत कहिए, हम लोग की भी इच्छा रहती है ना, जैसे आप प्रतीक्षा करते हैं वैसे हम लोग भी प्रतीक्षा करते रहते हैं। तो आपने फरमाइश किया था वो अनुराधा पौडवाल जी का कोई गाना।
0: जी जी,
3: तो मेरी समझ में एक उनका बहुत फेमस है साजन पिक्चर का, तो उसे मैं गा रही कोशिश करती हूँ। ठीक है, शुरू करें।
0: जी जी, निसंदेह।
3: बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको

बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।

करते तुमको सनम, हमारी गजल है तसव्वुर।

बहुत प्यार करते तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं

0: नाभ होगी कम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुम। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ एकदम फिट। लेकिन हम आपसे दो पंक्ति वो जरूर सुनना चाहेंगे भाई, जो आपने पहली बार सुनाई थी। ऐ मेरे दिले नादा तू गम से ना,
0: ऐ दिले नादा जी सुना देते हैं।
1: ऐ मेरे दिले नादा तू गम से ना घबराना।
0: जी जी
1: जी।
0: ऐ मेरे दिले नादा

0: दादान तू गमचे न घबराना। थैंक यू सर।
1: क्या बात है। और मैं आपको बताऊंगा, कहीं भी आपको गाना हुआ करे तो आप पहले ये गाना गाया कीजिए, क्योंकि ये तो लता जी ने ही बहुत अच्छा गाया था, तो आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत बहुत प्यारा गाती हैं। और ये मैं नहीं, ये बात तो आपकी ननद भी कह रही है। भाई क्या बात है भाभी, यानी शिल्पी जी है,
0: मतलब वो भी तो मेरी ननद भी बहुत अच्छा गाती हैं, और उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ पे शुरू की गाना। उन्होंने कहा कि भाभी आप गाइए,
1: नहीं तो
0: मैं शुरू की।
1: मतलब क्या मतलब ये गीत आपकी मतलब कंठ से, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: जी हाँ, मुझे भी ये बहुत पसंद है।
1: मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये गीत आपके अलावा बाकी कोई और सूट मतलब किसने गाया भी नहीं, और मुझको लगता है अगर कोई गाएगा भी तो आपसे बेहतर शायद ही गा पाएंगे।
0: नहीं, गाने वाले तो अभी एक से एक लोग आते हैं।
1: नहीं, मतलब कुछ गाने ऐसे होते हैं जो कुछ लोगों को बहुत सूट करते
0: हैं, किसी के आवाज में वो गाने अपने मस्तिष्क में अपने दिमाग में वो फिट हो जाते हैं।
1: तो आपके गले में आपकी आवाज में जो गीत फिट है वो है मेरे गले नादा तू गम से न घबराना। ये बहुत सूट करता है, आप किससे पूछ लीजिए। मतलब ये मेरा अपना ओपिनियन हो सकता है, लेकिन आप फीडबैक और उससे भी ले सकती हैं। ये गीत आप बहुत प्यारा गाती हैं।
0: जी सर, आपसे एक गुजारिश थी मेरी।
1: जी जी,
0: कि आप कभी भी जैसे जैसे भी सुविधा हो, मैथिली शरण का जो एक कविता था यशोधरा के, उसमें साकेत संकेत तारों ने किया दिन ढल गया, तो एक बार उसके बारे में थोड़ा सा जरूर बताइएगा।
1: जी एक बार फिर से बताइए हम सुनने पे।
0: वो जो कवि थे ना मैथिली शरण गुप्त,
1: हाँ राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, उन्होंने साकेत लिखा,
0: उन्होंने हाँ साकेत, उन्होंने अपने कविता में वो जो जब ये छोड़कर चले जाते हैं सिद्धार्थ, हाँ। मतलब बुद्ध जी, तो उनकी पत्नी जो यशोधरा थी
1: जी,
0: तो उनकी जो उनके मन का जो उद्गार था, जो विरह वेदना थी, उनको उन्होंने अपने कविता के रूप में ढाला है
1: जी।
0: तो कभी भी किसी भी कार्यक्रम के दौरान अगर आपको ये हो सके तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा, क्योंकि मुझे भी याद आ जाएगा कॉलेज लाइफ में हम उनकी कविता गाया करते थे, संकेत तारों ने किया दिन ढल गया वाला।
1: जी जी बिल्कुल,
0: क्योंकि आप जिस ढंग से आप प्रस्तुत करते हैं बहुत अच्छा लगता
1: है। नहीं नहीं, ये मत कहिए, ये मत कहिए, मतलब साकेत उनकी पढ़ी है हमने, कहते आते थे अभी यही नर्दे ही, माता न को माता पुत्र को पुत्र भले ही, पर कहे सभी अब हाय विरुद्ध विधाता है, पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। मतलब हिंदी की खड़ी बोली में पहला महाकाव्य भगवान राम पर उन्होंने ही लिखा है, और आपने हमसे जो है वो हमको आदेश दे दिया है, तो बिल्कुल हम
0: नहीं आदेश आदेश नहीं है सर, आदेश मत मानिए, ये रिक्वेस्ट है कि किसी कार्यक्रम के दौरान आप इसको, तो उससे क्या होगा नए लोग जो साहित्य से दूरी हैं, कवियों से दूरी हैं, उनको भी जानकारी होगी।
1: बिल्कुल, मैं मतलब कल नहीं लेकिन परसों प्रयत्न करूंगा कि मैं मैथिलेश्वर गुप्त पर ही चर्चा करूँ।
0: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद,
1: आपका आदेश तो उधार है।
0: नहीं आदेश मत बोलिए सर।
1: नहीं नहीं, आप बड़ी हैं, आप आदेश दे सकते हैं, हमको खुशी है।
0: ठीक है, ये भी एक अपनापन ही है।
1: जी अच्छा, क्षण स्पर्श,
0: खुश रहिए।
1: जी हाँ, तो बड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे मत लेने का वक्त आ चुका है। कमल नैन जी भाई हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुकेश यादव जी हैं, भाई क्या बात है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब क्या बताएं समय। आशुष मिश्रा जी हमारे साथ लखनऊ जुड़ी हुई हैं, बहुत दिन से नहीं सुना उनको हमने, बहुत प्यारा गाती हैं, उनकी बच्ची बहुत अच्छा गाती है। शशि सिंह जी हमारे साथ हैं, जी हाँ आप सब लोगों को सुन नहीं पाए हम, लेकिन कोशिश करेंगे कि शनिवार को एक बार पुनः आप सभी को सुने। जी हाँ, और अब हमको दीजिए अनुमति, शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा, और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर सकी पहली सी मुस्कान। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। आसमान बने चाह तो कल फिर मिलेंगे आप सभी से, सुनते रहिए रेडियो 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है धुंधली यादें। अब तक आपने सुना समीर और अनन्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिले। समीर बेहद शांत स्वभाव का इंसान था, पर अनन्या उसके बिल्कुल उलट। दोनों को एक ही प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए असाइनमेंट मिला था। अब आगे अनन्या को समीर की सादगी, उसकी शुद्ध हिंदी और बातों की गहराई बहुत पसंद आने लगी। जहां बाकी लड़के सिर्फ दिखावे में यकीन रखते थे, वहीं समीर का निश्चल स्वभाव अनन्या के दिल को छू गया। महीने बीतते गए और प्रोजेक्ट का काम खत्म हो गया, लेकिन उनकी मुलाकातों का सिलसिला नहीं थमा। अब वो सिर्फ प्रोजेक्ट पार्टनर्स नहीं थे, दोस्त भी बन चुके थे। समीर अब अनन्या के लिए चाय की टपरी पर इंतजार करता और अनन्या समीर को नई नई जगहों पर ले जाती। जुलाई का महीना था और दिल्ली में मॉनसून की पहली बारिश हो रही थी। कॉलेज का कैंपस पूरी तरह भीग चुका था। पेड़ों से गिरती पानी की बूंदें और मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू पूरे माहौल को जादुई बना रही थी। समीर हमेशा की तरह कैंटीन के शेड के नीचे खड़ा अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था। तभी अनन्या भागती हुई आई। उसके बाल पूरी तरह गीले थे और उसके चेहरे पर पानी की बूंदें चमक रही थीं। वो समीर के सामने आकर रुकी और हांफते हुए बोली, समीर इस बारिश को देखो, तुम यहाँ सूखे में खड़े होकर क्या लिख रहे हो, बाहर आओ। समीर ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अनन्या, मुझे भीगना पसंद नहीं, सर्दी हो जाएगी। अनन्या ने उसकी एक ना सुनी। उसने समीर का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर खुले मैदान में ले आई। समीर चौंक गया, उसका हाथ अनन्या के हाथों में था। वो सब कुछ भूलकर बस अनन्या के चेहरे को देखने लगा, जो बारिश में और भी मासूम लग रहा था। अनन्या गोल गोल घूमकर बारिश का आनंद ले रही थी। तभी अनन्या रुकी और उसने समीर की आंखों में सीधे देखा। हवा थम सी गई थी। समीर ने अपनी जिंदगी में कभी इतनी हिम्मत नहीं की थी, लेकिन उस पल बारिश के शोर के बीच उसने अपने दिल की बात कह दी। अनन्या, समीर की आवाज थोड़ी कांपी। हाँ समीर, मुझे नहीं पता कि यह वक्त सही है या नहीं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। ये कॉलेज, ये शहर, ये बारिश, ये सब मुझे सिर्फ तुम्हारी वजह से खूबसूरत लगते हैं। अनन्या ने कुछ नहीं कहा, वो बस स्तब्ध खड़ी रही।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है धुंधली यादें। अब तक आपने सुना अनन्या और समीर यूनिवर्सिटी में मिले, अच्छे दोस्त बने और फिर एक दिन पहली बारिश के साथ समीर ने अनन्या से अपने प्यार का इजहार कर दिया। अब आगे समीर को लगा कि उसने शायद बहुत बड़ी गलती कर दी। वो अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटने लगा। आई एम सॉरी अनन्या, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इससे पहले कि समीर पीछे मुड़ता, अनन्या ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। समीर की धड़कनें रुक सी गईं। अनन्या ने उसके कंधे पर सिर रखकर फुसफुसाया, तुमने इतनी देर क्यों कर दी समीर? मैं कब से इन शब्दों का इंतजार कर रही थी। उस दिन दिल्ली की उस पहली बारिश में दो अलग अलग दुनिया के दिल हमेशा के लिए एक हो गए। कॉलेज का आखिरी साल खत्म होने को था। प्यार के सुनहरे दिनों के बाद अब दोनों के सामने असल जिंदगी खड़ी थी। समीर को प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी के लिए वापस अपने राज्य जाना था या फिर दिल्ली के ही किसी कोचिंग में दाखिला लेना था। उसके लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। वहीं अनन्या के माता पिता ने उसके लिए अमेरिका से मास्टर्स करने की पूरी तैयारी कर ली थी। एक शाम इंडिया गेट के लॉन में बैठे हुए दोनों बहुत शांत थे। आइसक्रीम पिघल रही थी लेकिन किसी का ध्यान उस पर नहीं था। समीर, पापा ने मेरा एडमिशन कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पक्का कर दिया है, अगले महीने की फ्लाइट है, अनन्या ने रुआसी आवाज में कहा। समीर ने एक गहरी सांस ली। वो अंदर से टूट रहा था लेकिन वो अनन्या के सपनों के आड़े नहीं आना चाहता था। उसने अनन्या का हाथ थामकर कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है अनन्या, तुम्हें जाना चाहिए, ये तुम्हारा सपना था। लेकिन हमारा क्या होगा समीर, लॉन्ग डिस्टेंस, 3 साल बहुत लंबे होते हैं। अनन्या की आंखों से आंसू छलक पड़े। समीर ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, हमारा प्यार कोई कमजोर धागा नहीं है जो दूरी से टूट जाए। तुम वहां अपने सपने पूरे करो, मैं यहाँ अपने माता पिता के सपने और हमारे भविष्य के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो तुम्हारे पापा के सामने सिर उठाकर तुम्हारा हाथ मांगने आऊंगा। विदाई का वो दिन बेहद भारी था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिपार्चर गेट पर अनन्या समीर से लिपट कर रोई। समीर ने खुद को संभाला और उसे विदा किया। अनन्या चली गई और उसके साथ ही समीर की जिंदगी की रौनक भी चली गई।

सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है धुंधली यादें। अब तक आपने सुना समीर और अनन्या कॉलेज में मिले, एक दूसरे से प्यार का इजहार किया और कॉलेज पूरा होने पर अपना अपना भविष्य बनाने के लिए अलग हो गए। समीर इंडिया में रहकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लगा और अनन्या अमेरिका चली गई। अब आगे शुरुआती कुछ महीने तो फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स के सहारे कट गए। समय के अंतर के बावजूद दोनों एक दूसरे के लिए वक्त निकालते थे, लेकिन जैसे जैसे अनन्या की पढ़ाई का दबाव बढ़ा और समीर यूपीएससी के कठिन चक्रव्यूह में फंसा, बातचीत कम होने लगी। समीर दिल्ली के मुखर्जी नगर के एक छोटे से 10x10 के कमरे में रहता था। दिन रात सिर्फ किताबें, नोट्स और चाय। उसकी दुनिया बेहद नीरस हो चुकी थी। दूसरी तरफ अनन्या न्यूयॉर्क की चकाचौंध और नए माहौल में ढलने की कोशिश कर रही थी। कभी समीर का फोन बिजी आता तो कभी अनन्या असाइनमेंट में व्यस्त होती। एक दिन दोनों के बीच इसी बात को लेकर बहस हो गई। समीर, तुम्हारे पास अब मेरे लिए 15 मिनट भी नहीं है, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हूँ, अनन्या ने गुस्से और दर्द में कहा। अनन्या, तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? मेरे ऊपर इस एग्जाम को पास करने के लिए कितना प्रेशर है, तुम्हें अंदाजा भी है? मेरे पिता ने अपनी जमीन गिरवी रखकर मुझे यहाँ भेजा है। समीर भी अपना आपा खो बैठा। उस रात के बाद दोनों के बीच एक लंबा सन्नाटा पसर गया। किसी ने भी पहले फोन नहीं किया। अहंकार, व्यस्तता और गलतफहमियों ने उस पवित्र रिश्ते पर धूल जमानी शुरू कर दी थी। देखते ही देखते 2 साल बीत गए। न समीर ने कोई मैसेज किया, न अनन्या का कोई फोन आया, लेकिन दोनों एक दूसरे को एक पल के लिए भी भूल नहीं पाए थे। समीर जब भी थक कर आंखें बंद करता, उसे बारिश में भीगती अनन्या याद आती। अनन्या जब भी न्यूयॉर्क की बारिश देखती, उसे समीर की वो चाय की टपरी याद आती। 3 साल बाद समीर ने अपने तीसरे प्रयास में यूपीएससी की परीक्षा पास कर ली। पूरे देश में उसकी 32वीं रैंक आई थी। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी। उसके छोटे से गांव में दिवाली मनाई गई। वो अब एक आईएएस अधिकारी बन चुका था। सफलता उसके कदम चूम रही थी, लेकिन उसके दिल का कोना आज भी खाली था। उसे अपनी पहली पोस्टिंग के रूप में दिल्ली ही मिला। दिल्ली वापस आकर उसकी यादें फिर से ताजा हो गईं। एक दिन समीर को दिल्ली विश्वविद्यालय के उसी कॉलेज में चीफ गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया जहां से उसने पढ़ाई की थी।

वो बत्ती वाली गाड़ी से उतरा। कॉलेज का स्टाफ और प्रोफेसर उसके स्वागत में खड़े थे। समीर की नजरें सीधे उसी कैंटीन के शेड पर गईं, जहां वो कभी डायरी लिखा करता था। तभी नजरें प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर खड़ी एक लड़की पर पड़ी। वो अनन्या थी। वो भी भारत लौट आई थी और कॉलेज के किसी काम से वहां आई थी। दोनों की नजरें मिली। समीर ने प्रोटोकॉल की परवाह किए बगैर अपने कदम अनन्या की तरफ बढ़ा दिए। अनन्या भी अपनी जगह पर जमी रह गई। कैसी हो अनन्या? समीर की आवाज में वही पुराना संकोच और असीम प्यार था। अनन्या की आंखों में तुरंत आंसू आ गए। अखबार में तुम्हारी फोटो देखी थी, बधाई हो आईएएस साहब। समीर मुस्कुराया। इस सफलता का कोई मोल नहीं है अनन्या, अगर इसमें तुम शामिल ना हो।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है धुंधली यादें। अब तक आपने सुना, अनन्या और समीर एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन कॉलेज पूरा होने के बाद दोनों ही अपना अपना लक्ष्य पाने के लिए अलग हो गए। 2 साल बाद फिर अचानक अपने ही कॉलेज के कैंपस में मिले। समीर एक बड़ा अधिकारी बन चुका था और अनन्या न्यूयॉर्क से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस आ गई थी। अब आगे समीर बोला, क्या हम बात कर सकते हैं? दोनों कॉलेज के उसी पुराने लॉन में आए। तुमने कभी फोन क्यों नहीं किया समीर? अनन्या ने शिकायत भरे लहजे में पूछा। डरता था अनन्या, मुझे लगता था कि तुम न्यूयॉर्क में खुश हो और मैं अपनी नाकामी के अंधेरे में तुम्हें खींचना नहीं चाहता था। लेकिन सच कहूं तो एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद ना किया हो, समीर ने भावुक होकर कहा। अनन्या ने उसके हाथ को देखा और धीरे से अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया। मैं वहां किसी और की नहीं हो पाई समीर। जब भी किसी ने मेरा हाथ थामने की कोशिश की, मुझे तुम्हारी उंगलियों का स्पर्श याद आ जाता था। समीर ने अनन्या की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ वही पुराना असीम और शुद्ध प्रेम था। अनन्या, मैंने तुमसे वादा किया था कि जब मैं कुछ बन जाऊंगा तो तुम्हारे पिता के पास आऊंगा। क्या आज शाम का वक्त सही रहेगा? समीर ने मुस्कुराते हुए पूछा। अनन्या ने हंसते हुए अपने आंसू पोंछे और कहा, वो पिछले 3 साल से सिर्फ यही देखना चाहते थे कि क्या मेरा प्यार सच में इतना मजबूत है कि इतनी दूरियों को सह सके। चलो समीर, घर चलते हैं। शाम को जब वो दोनों कॉलेज से बाहर निकले तो आसमान में काले बादल छा चुके थे और देखते ही देखते दिल्ली में एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई। इस बार समीर भागा नहीं, उसने अनन्या का हाथ कस कर थाम लिया और दोनों बारिश में भीगते हुए अपने सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ चले। उनका प्यार दूरियों की अग्नि परीक्षा में तपकर और भी निखर चुका था।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी धुंधली यादें। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं। तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास सो फूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन।
1: इस महफिल की रात सुहानी है, ये महफिल भी बहुत ही प्यारी है। आप सबकी मौजूदगी से इस महफिल की रौनक भी बहुत सुहानी है। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरीके से भूले बिसरे गीत, जिनकी यादों को हम कहीं ना कहीं बिल्कुल विसार के बैठे हैं। विसारने का मतलब ये नहीं होता है कि वो हमारे जहन में ही नहीं है। जब किसी की याद आती है तो बहुत सारी उमंग हमारे शरीर में फैला के चली जाती है। ठीक वैसे ही जब भूले बिसरे गीत हमारे पास आते हैं तो कई ऐसी मीठी यादों को हमारे पास लौटा के दे जाते हैं। मैं हूं आपकी आज एक ख्वाहिश और लेकर के आई हूं फिर से भूले बिसरे गीत का एक प्यारा सा एपिसोड, जिसमें आज हम लेने वाले हैं बहुत ही प्यारी सी गीतों को।

0: ये नजरें ना होती तो ये नजारा ना होता, ये नजरें ना होती तो ये नजारा ना होता, आप जैसी महफिल ना होती तो हमारा यहाँ आना गंवारा ना होता। बिल्कुल, आप हैं ये महफिल है, तभी तो दिल में इतनी हसरत लेकर हम यहाँ आते हैं। हर रात आपसे थोड़ी गुफ्तगू करते हैं, आपको कुछ नया बताते हैं, अपने साथ कुछ खास एहसासों में पिरो कर ले जाते हैं।
1: और मेरे साथ यानी कि आज ये ख्वाहिश के साथ में आज गुमसुम, आज थोड़ी सी गुमसुम सी लग रही है, क्यों ना हो, क्योंकि अभी अभी जल्दी से वैलेंटाइन बीता है। तो वैलेंटाइन के मौके पर आज हम जिनकी बहुत प्यारी सी आवाज को लेकर के आए हैं वो है हमारी सुमन कल्याणपुर। उनके गीतों को हम बेहद बहुत ही खूबसूरती तरीके से आज भी सुनना पसंद करते हैं। तो आइए एक प्यार से गीत से शुरू करते हैं आज का शो भूले बिसरे गीत।

आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही बेहतरीन पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर जी के बारे में, जिनका जन्म 28 जनवरी 1937 को हुआ। उनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था, लेकिन वे बम्बई में पली बड़ी थी। वे एक पेंटर बनना चाहती थी। करना तो वो रंगों से शरारत चाहती थी, पर उनके सुर उन्हें सीधा संगीत की तरफ ले गए। मैं आपको बता दूं कि जे आर्ट्स कॉलेज की वह छात्रा भी थी, लेकिन आपको पता है कि उनकी संगीत का सफर कैसे शुरू हुआ? उनका संगीत का सफर शुरू हुआ जब उनके पड़ोसी केशव राव भोले ने उनकी आवाज पहचानी और उस्ताद खान अब्दुल रहमान खान से कहा कि ये कितना ही मधुर गाती है। जब उन्होंने भी उनकी आवाज सुनी तो उन्हें महसूस हुआ कि अरे, इनका तो जन्म ही संगीत के लिए हुआ है। और फिर उन्होंने गुरुजी नवरंग से बात की और उनकी संगीत की शिक्षा शुरू हो गई। उन्होंने फिल्म दरवाजा में तलत महमूद के साथ अपना पहला युगल गीत गाया। सुमन कल्याणपुर जी ने आशा भोसले जी के साथ भी कई यादगार गीत गाए हैं, जैसे तुम हमें न जानो, दिल गम से जल रहा है, बहना ने भाई की कलाई में, मोहब्बत कर लो जी, थोड़ी मोहब्बत कर लो। उनकी आवाज का स्वर वैसे तो लता जी से बहुत मिलता जुलता था, जिसके कारण कई लोग उनके गीतों को लता जी का गीत समझ लेते थे। सुमन जी को इस बात का बहुत ही गुमान था कि उनकी आवाज को लोग लता जी से जोड़ते हैं। उन्होंने इस बात को हमेशा एक प्रेरक के तौर पर लिया। वो इस बात से प्रेरित होती थी और बेहतर से और बेहतरीन करना चाहती थी और आगे जाना चाहती थी। हमेशा यही सोचती थी कि कैसे वो अपनी आवाज को, अपनी कला को और बेहतर बनाए, क्योंकि कहते हैं ना कि समय के साथ हमें अपनी कला में हमेशा निखार लाते रहना चाहिए।

सुमन कल्याणपुर ने अपने करियर में सैकड़ों गाने गाए हैं, जिनमें हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं के कई गाने शामिल हैं। उन्होंने 1960 से 70 के दशक में कई शीर्ष संगीत निर्देशकों के साथ काम किया और कई लोकप्रिय युगल गीत भी गाए, और वो इतने ज्यादा पसंद किए गए कि युगल गीतों के लिए उन्हें जाना जाने लगा। मोहम्मद रफी के साथ 140 से अधिक युगल गीत गाए हैं उन्होंने। खासकर लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी के साथ इनके गाए हुए गीत बहुत ही ज्यादा पसंद किए जाते थे, क्योंकि इनकी आवाज थोड़ी थोड़ी लता जी से मिलती भी थी। उन्होंने 170 से अधिक फिल्मों में गाने गाए, खासकर 70 के दशक में, जब उन्हें रफी लता विवाद के कारण कई अधिक अवसर मिले। उन्होंने मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, मन्ना डे और मुकेश जैसे गायकों के साथ कई लोकप्रिय युगल गीत गाए, जैसे आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, तुमने पुकारा और हम चले आए। ऐसे बहुत ही लोकप्रिय, आज भी याद किए जाने वाले उनके बहुत ही बेहतरीन गीत हैं।

सुमन कल्याणपुर जी ने रामानंद जी से शादी की, जो कि एक व्यवसाय चलाते थे। जब उन दोनों तो सुमन जी का करियर बहुत ही ज्यादा तरक्की कर रही थी। उन्हें इस बात की चिंता सदा होती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी ये तरक्की, उनका करियर उन दोनों के रिश्ते के बीच आ जाए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। कहते हैं कि जब भी सुमन जी की कोई रिकॉर्डिंग होती थी या कोई भी काम होता था तो रामानंद जी हमेशा उनके साथ जाते थे और उन्हें सपोर्ट करते थे। उनका ये आपसी तालमेल और प्यार ही था जिसने उन्हें हमेशा शीर्ष पर पहुंचा दिया। मैं आपको बता दूं कि उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम चारुल है। शादी के बाद दोनों के बीच में हमेशा वो प्यार, वो लगाव वैसा ही बना रहा और इस बात ने सुमन जी के करियर को एक बहुत बड़ी मजबूती भी दी। उन्हें महाराष्ट्र सरकार द्वारा सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका के लिए 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें मेरे तो गिरधर गोपाल के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार भी मिला और इसके साथ ऐसे कई सारे पुरस्कार हैं संगीत जगत में जो कि सुमन जी के नाम है। भारत सरकार द्वारा उन्हें 2023 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और लता मंगेशकर पुरस्कार जो कि उन्हें 2009 में दिया गया, सुर सिंगार पुरस्कार जो कि उन्हें शास्त्रीय गानों के लिए दिया गया था।

0: फिल्मी दुनिया के बाहर भी उनके भजन और भक्ति गीत इतने ज्यादा लोकप्रिय हुए थे कि आज भी लोग शाम को उनके गीत को सुनते हैं। सुबह शाम कह लें तो उनके गीतों की ऐसी मिसाल है जिसे हम सभी सुनना चाहते हैं। उनकी आवाज लता मंगेशकर से मिलती जुलती होने की वजह से उन्हें कई बार लता जी की परछाई भी कहा गया। उनको मौके कम मिले, लेकिन जिन गानों में उनको मौका मिला वो यादगार बन गए। इंडस्ट्री के चकाचौंध से दूर सुमन जी की निजी जिंदगी काफी शांत और सादगी भरी रही और वो इंसान हमेशा से मासूम की नजर से जानी गईं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजी ख्वाहिश। सुमन की धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान उनके शुद्ध शास्त्रीय आधार और भावपूर्ण गायन शैली पर निर्भर है। ईश्वर के प्रति उनकी गहरी श्रद्धा से जुड़ी हुई है। उन्होंने न केवल फिल्मों में भक्ति गीत गाए हैं, बल्कि व्यक्तिगत एल्बमों के माध्यम से भी धार्मिक संगीत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। तो आइए अब चलते हैं और सुनते हैं उनका एक प्यारा सा गीत।

0: भी अपने दिल दिमाग में इस तरीके से बैठाए बैठे हैं जैसे मानो उनकी परछाई छवि आज भी हम कहीं न कहीं मिस करते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, उनकी आवाज में मौजूद ठहराव और स्पष्ट उच्चारण के कारण उन्हें भक्ति गीतों के लिए विशेष रूप से पसंद किया जाता है। उन्होंने भगवान गणेश, श्री कृष्ण और विट्ठल की महिमा का बहुत ही अद्भुत गान किया है। साथ ही साथ उनकी आवाज इतनी रसमय है कि जो भी इन भजनों को सुनता है वो उनकी गायन शैली का मुरीद हो जाता।
0: लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा तो गाने नहीं गाए थे, पर क्वालिटी हमेशा हाई रखती थी, इसलिए उनके गाने आज भी हमें फ्रेश लगते हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं एक प्यारे से गीत को जो कि सुमन कल्याण जी के रूप में और हम सभी के रूप में यानी आज भी मौजूद है हमारे दिल में। इस प्यारे से गीत को आइए सुनते हैं।

0: हिंदी फिल्म संगीत की एक बहुत मशहूर पार्श्व गायिका जिनकी आवाज को हम इतनी देर से सुनते आ रहे हैं। 90 की दशक कह ले या 80 के दशक में उनके गाने खूब ज्यादा लोकप्रिय हुए थे। उनकी गायकी रोमांटिक, दर्द भरे और भक्ति गीत इन तीनों में बराबर ही जमी रही। जैसे आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे, ये गाना मोहम्मद रफी के साथ सुपरहिट नहीं, युगल जोड़ी के साथ में सुपरहिट हुआ था। साथ ही साथ में न तुम हमें जानो, इस गाने की जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो कहा जाता है कि पूरे सेटअप को शांत और बिल्कुल एकांत में किया गया था। वैसे भी कहा गया है, जब हम कोई भी रिकॉर्डिंग करें या फिर कुछ ऐसे माहौल को बना लें तो उस काम में उपलब्धि मिलती ही मिलती है। उनकी आवाज का अंदाज कुछ लता मंगेशकर से मिलता जुलता माना जाता था, इसीलिए कई लोग उनके गीतों को सुन करके भ्रमित हो जाते थे और उनकी आवाज को लता मंगेशकर की परछाई भी कहा जाता था।
1: मन मोहना, वो मन मोहने वाला, ये बहुत ही बेहतरीन गीत है जो कि भक्ति गीत है। ये भक्ति गीत सुमन कल्याणपुर जी ने गाया और आपको पता है इस गीत में उन्होंने किसकी महिमा का बखान किया? इस गीत में उन्होंने श्री कृष्ण और राधा की प्रेम का बखान किया है। और एक गीत और है जो कि है जय जय श्री गणेश, जिसमें कि उन्होंने गणेश वंदना की है। और ये एक बहुत ही बेहतरीन गीत जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वो है मैं तो प्रेम दीवानी, जिसमें कि उन्होंने प्रेम की महिमा को बताया है। इतने सुंदर तरीके से इन गीतों में उन भावनाओं को उन्होंने उकेरा है कि जिसने सुना वो इन भावनाओं का और उनकी आवाज का मुरीद ही हो गया। मैं आपको बता दूं कि उन्होंने सिर्फ हिंदी नहीं बल्कि मराठी में भी भक्ति सुन नाम से एक एल्बम बनाई है जिसमें कि 12 भजन शामिल हैं। यमन भैरवी और राग भजन सिर्फ और सिर्फ उन्हें ही आते थे। जी हाँ, सुमन कल्याणपुर ऐसी एक अकेली पार्श्व गायिका थी जिन्हें की यमन भैरवी और राग भजन आते थे। उनकी आवाज में उनकी सांस्कृतिक धरोहर बहुत ही साफ तरीके से झलका करती थी। जो भी उनकी आवाज सुनता था वो भारतीय संस्कृति से रूबरू हो जाता था। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं उनका ही प्यारा संगीत।

0: हजारों फिल्मों और गैर फिल्मी एल्बम्स मिलाकर के सैकड़ों गीत रिकॉर्ड किए गए। हिंदी के साथ साथ मराठी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ जैसी कई भाषाओं में उन्होंने महारत हासिल करी। ड्यूट में कमाल करने के साथ साथ मोहम्मद रफी के साथ उन्होंने ड्यूट बेहद लोकप्रिय गाने गाए और आज भी जब उनके गाने हम सुनते हैं तो ये ड्यूट हमेशा से हमारे कानों में और हमारे जहन में बैठ सा जाता है। रोमांटिक और हल्के फुल्के मूड वाले गानों में उनकी जुगलबंदी यादगार बनी रही। भक्ति गीत की अगर बात करें, जैसा कि अभी आरजे गुमसुम ने बताया, फिल्मी गानों के अलावा उनके भक्ति गीत और मराठी भाव गीत भी बहुत पसंद किए जाने लगे। उनकी आवाज में एक अलग ही शांति महसूस होती थी। क्यों आरजे गुमसुम, मैंने सही कहा ना?
1: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे ख्वाहिश। उनकी आवाज ऐसी ही थी, चाहे मराठी गीत हो, धार्मिक संगीत हो या फिर फिल्मी गीत, हर शैली में उनकी आवाज जैसे ढल सी जाती थी, अपनी एक अलग पहचान बना लेती थी उनकी आवाज। सुनने वाले हमेशा हर भाव में उनकी आवाज को सुनकर बहुत ही आनंद महसूस करते थे। तो आइए चलते हैं, हम भी आनंद में होते हैं उनके एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ।

0: सुमन कल्याण की आवाज में जो मिठास खुली है हर दर्द को जैसे चुपचाप सुला देती है। ओहो सच्ची में वो भी रात के सफर में अगर ऐसे गीतों के साथ हम कोई भी प्रोग्राम को सुनते हैं या फिर किसी की आवाज को सुनते हैं तो कितना बड़ा सुकून मिलता है। वक्त बदल जाए जमाने गुजर जाए मगर उनके सुरों की खुशबू दिल में बस जाती है। साथ ही साथ में सुमन कल्याण की तानों में जब प्यार झलता है खामोश दिल भी मुस्कुराने लगता है। एक एक सुर में छुपी होती है मोहब्बत की कहानी, सुनते ही मन कहीं दूर ठहरता है। उनकी आवाज चले तो रातें सुकून बन जाती हैं, पीते लम्हे फिर आंखों में उतर आते हैं। वक्त कितना भी आगे बढ़ क्यों ना जाए मगर उनके गीत दिल के आंगन में ठहर जाते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा आरजी ख्वाहिश ने, ऐसी आवाज जो कानों में घुले तो लगे रस घुल रहा है, ऐसी शख्सियत कि जिसके जैसी कोई और शख्सियत ही नहीं, इतना प्यार इतनी सराहना इतना सभी के लिए स्नेह और प्रेम उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता।
0: सुरों में भक्ति की जो रोशनी जली है मन के अंधेरों को चुपचाप हटा गई है। उनकी आवाज जब प्रभु का नाम बहे रूह को एक मीठी सी राह मिल गई है। बिल्कुल भटकते हुए राहों को भटकते हुए राहियों को जैसे एक राह सी मिल गई है। तो मैं हूँ आरजे ख्वाहिश और आरजे गुमसुम के साथ में आज के रात के सफर में सुमन कल्याणपुर के बहुत प्यारे से गीतों के साथ में आज हमने इस एपिसोड को किया। आइए हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एपिसोड में एक नए राह के साथ एक नए राहगीर के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
1: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
2: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
1: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
2: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
1: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
2: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
3: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
4: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
3: और जेंट्स के लिए?
4: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
3: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
4: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838 288 386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
3: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
2: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 88 40 33 95 84। अब सपने होंगे साकार।